आते हैं, संबंध में आते हैं, सेवा में आते हैं, तो जो बातें आती है उसमें थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं। अमृत वेले का जो उमंग उत्साह है, बाबा कहते अमृत वेले का जो उमंग उत्साह है वह कर्म करते संबंध में आते थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। बाबा कहते उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, परंतु कर्म में आते संबंध में आते थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। अभी बाप दादा एक कार्य देते हैं, क्या कार्य देते हैं? करने के लिए तैयार हो ना, कांध हिलाओ, हाथ उठाओ। बाप दादा का संकल्प है कि अभी एक मास के लिए, कि एक मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। एक मास के लिए अपने को दृढ़ संकल्प के आधार से बाप समान स्थिति में स्थित कर सकते हो। एक मास कर सकते हैं कि ज्यादा है? जो समझते एक मास दृढ़ता से, दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, दृढ़ता को साथी बनाना, बाप को सदा सामने रखना, ब्रह्मा बाप को नैनों में समाये रखना, और ब्रह्मा बाप ने क्या किया, मनसा वाचा कर्मणा वही करना है। चाहे कोई ने प्रैक्टिकल में देखा या नहीं देखा, लेकिन नॉलेज तो है ना। कोई भी कर्म करने के पहले ये चेक करना, बाबा कहते कोई भी कर्म करने के पहले ये चेक करना कि ब्रह्मा बाप का ये संकल्प रहा, ये बोल रहा, ये कर्म रहा, ये संबंध रहा, ये संपर्क रहा। पहले सोचो पीछे करो, पहले सोचो पीछे करो। हो सकता है इसमें हाथ उठाओ, जो कहते हैं हम पहले सोच करके फिर कर सकते हैं। ब्रह्मा बाप समान संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब रहा। हो सकता है तो लंबा हाथ उठाओ। माताएं यहां एक्सरसाइज करती हो ना, तो हाथ लंबा उठाओ, आगे वाले भी उठाएंगे ना। सब मधुबन वाले इसमें नंबर वन आना, आगे आगे मधुबन वाले बैठे हैं ना। मधुबन में सिर्फ शांतिवन नहीं, जो भी है, एक मास निर्विघ्न, हर सेंटर भी निर्विघ्न। गुजरात के टीचर्स हाथ उठाओ। गुजरात की टीचर समझती है कि हो सकता है। बाबा गुजरात की बहनों से पूछते हैं कि गुजरात की टीचर समझती है कि हो सकता है, इसमें लंबा हाथ उठाओ। ऐसे ऐसे नहीं करो, कोई छोटे छोटे हाथ उठा रहे थे तो बाबा करके दिखाते, ऐसे छोटे नहीं उठाओ, हो सकता है। अच्छा, शांतिवन निवासी हाथ उठाओ, थोड़े हैं, जो भी बैठे हैं पीछे भी बैठे हैं, तो मधुबन के चार पांच स्थान जो भी है वह करेंगे, करेंगे तो हाथ उठाओ। मधुबन वाले दो हाथ उठाओ, गुजरात वाले जिज्ञासु भी, निमित टीचर्स भी, गुजरात वाले जिज्ञासु भी, निमित टीचर्स भी, निमित भाई भी, सभी हाथ उठाओ, करेंगे। बड़ा हाथ उठाओ, पीछे वालों का हाथ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, गुजरात वाले खड़े हो जाओ, गुजरात तो बहुत आया है, आधा हॉल तो गुजरात है। उस समय गुजरात वाले 15,000 थे, बाकी के स्टेट के 3,000 थे। गुजरात वालों को बाप दादा और परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। जैसे अभी तालियां बजाई ना, वैसे ही एक मास के बाद रिजल्ट में गुजरात नंबर वन आएगा। एक मास के बाद बाबा कहते गुजरात

को देखना, नंबर वन आएगा। अच्छा है, संख्या तो बहुत अच्छी है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को बाप से और मधुबन से दिल का प्यार है। बहुत अच्छा है, अभी गुजरात कमाल करके दिखाना। इस एक मास की रिजल्ट में नंबर वन आके दिखाना। वैसे नंबर वन सबको आना है, फर्स्ट डिवीजन में सबको आना है। मधुबन वाले नंबर वन आएंगे ना, हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी, माया सुन रही है, तो माया अपना रूप तो दिखाएगी। तो बाबा कहते, कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी, माया सुन रही है ना, तो माया अपना रूप तो दिखाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजयी पाना। ये नहीं कहना ये हो गया वह हो गया, ये नहीं करना, आएगा होगा, यह तो बाप दादा पहले ही सुना देते हैं, क्योंकि माया सुन रही है। वह बहुत चतुर है, लेकिन आप माया कितनी भी चतुर है, आप तो सर्वशक्तिमान के साथी हो, माया क्या करेगी। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, तो सभी नंबर वन लाना, कोई टू नंबर नहीं बनना, वन नंबर। अच्छा, बाप दादा अभी सभी बच्चों को एक ही श्रेष्ठ संकल्प सुनाना चाहते हैं। कौन सा? कि अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो और अपने साथियों को, संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाओ। समय को समीप लाओ। दुख और अशांति बाप दादा बच्चों का देख नहीं सकता। अभी अपना राज्य जल्दी से जल्दी धरनी पर लाओ। बाप दादा को हर बच्चा प्यारा है। लास्ट नंबर बच्चा जो है वह भी प्यारा है, क्योंकि कमजोर है ना, तो कमजोर पर और ही रहम ज्यादा आता है। आप सभी भी कैसी भी स्थिति वाला स्वभाव वाला हो, लेकिन हमारा है। कितना प्यार से बाबा कहते, कैसे भी हो लेकिन हमारा है। जैसे बाप हमारा है, वैसे परिवार हमारा है। तो उसके स्वभाव संस्कार न देख, उनको और ही सहयोग दो, सद्भावना दो, शुभकामना दो, शुभ भावना दो। अच्छा, सामने वाले बच्चों को या दूर बैठे देखने वाले बच्चों को बाप दादा एक एक बच्चे को अपने सामने देख दृष्टि भी दे रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। दृष्टि भी दे रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। विस्तार है, जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। अनेक हर शब्द में सेंस यानी सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके हर शब्द में सेंस
यानी सार भरा होता है, उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है, उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वह सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं, उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। आज का स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम व उमंग आना चाहिए कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। दाता के बच्चे, अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। महादानी वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणिया बन, सर्व को संतोष दो, सर्व को संतोष दो। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। बाबा ने हम सभी को एक बहुत बड़ा काम दे दिया है कि बच्चे तुम्हें इस संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित करना है। हम जानते हैं पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर किसी के जीवन में शांति नहीं तो अवश्य कहीं ना कहीं पवित्रता में कमी है। हम ध्यान दें, हमें शांति स्थापित करनी है तो अपने किसी स्वभाव संस्कार से या अपने इरिटेशन और क्रोध की नेचर से हमें घरों में अशांति पैदा नहीं करनी है। हमें किसी भी संगठन में अपने क्रोध और अहम के कारण अशांति पैदा नहीं करनी है। जितना हम शांत चित्त होंगे उतना ही हम भगवान के सहयोगी होंगे। और शांति का जहां पवित्रता आधार है वहीं आधार है देह से न्यारेपन की स्थिति। जैसे जैसे हम देह से न्यारे होते जाएंगे हमारी अंदर की शांति बढ़ती जाएगी। तो आइए आज हम सभी संकल्प करें, मुझे स्वयं को क्रोध से मुक्त रखना है, छोटी बातों में इरिटेट नहीं होना है और दूसरों को ऐसा भी नहीं बोलना है कि दूसरे भी क्रोधित हो जाएं। दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। कोई हमारे सामने उल्टा सुल्टा बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है, कोई हमारे सामने झूठ बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है। इससे हमें बचना है क्योंकि क्रोध हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। क्रोध हमारे विवेक को खाने लगता है। जिस मनुष्य को क्रोध आता है उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय उसकी पावर ऑफ जजमेंट भी समाप्त हो जाती है, बोल पर भी कंट्रोल समाप्त हो जाता है। वो अपनों को ही कुछ भी बोल देता है, उसके मन से सम्मान की भावना भी समाप्त हो जाती है और उसकी जिव्या से सरस्वती विदा ले लेती है। क्रोध उसकी जिव्या पर सवार हो जाता है, मानो भूत उसकी जिव्या पर सवार हो गया। तो हम सभी जो ज्ञानी हैं, जो योगी हैं, जिन्हें संसार अपने आदर्श रूप में देखना चाहता है, जिन्हें अपने चेहरे और चलन से बाबा का नाम रोशन करना है, उन्हें क्रोध मुक्त जीवन बनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अपने क्रोध को मान्यता नहीं दे देनी चाहिए कि इस परिस्थिति में तो क्रोध आएगा ही, मुझे तो क्रोध आता ही है, क्रोध तो मेरा संस्कार बन गया है। नहीं, मेरा संस्कार क्रोध नहीं, मेरा संस्कार तो शांति और प्रेम है। ये तो रावण की संपदा है, ये मेरी नहीं। मुझे क्रोध क्यों आएगा इन परिस्थितियों में? मुझे क्रोध आएगा तो मुझ में और संसार के लोगों में अंतर ही क्या रहेगा? तो ध्यान दें, हमें क्रोध मुक्त जीवन जीना है। इसके लिए चेक करना है मुझे क्रोध किन परिस्थितियों में आता है। जिन परिस्थितियों में क्रोध आता है उसको अवॉइड करने के लिए एक ज्ञान का सुंदर पॉइंट रखना है और ध्यान देना है, धैर्य से ही क्रोध को जीता जाता है। तुरंत रिएक्ट करने की आदत क्रोधित कर देती है। नो रिएक्शन, रिएक्ट करना है तो 10 सेकंड बाद करना है। ऐसी प्रैक्टिस सभी अपने अंदर डालते चलें। दूसरा, सवेरे उठते ही 5 बार सच्चे मन से संकल्प करें, मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, मेरा चित्त शांत हो गया है। इससे सवेरे सवेरे यदि उठते ही अभ्यास कर लिया जाएगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन तीनों चीजों को स्वीकार कर लेगा कि हम विजयी हैं, हम क्रोध मुक्त हैं, हम शांत हैं, और ये तीनों चीजें हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। तो आज सारा दिन हमें शरीरी होने की प्रैक्टिस करेंगे, स्वयं को चमकती हुई मणि भ्रकुटी की कुटिया में देखेंगे और संकल्प
देंगे, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा संस्कार शांति है, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है। इस तरह के अभ्यास से अपने जीवन में हम क्रोध मुक्त होंगे और गहन साइलेंस की अनुभव।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। स्वागतम सुस्वागतम। सुबह के सुंदर वेला पर सुविचारों का सुनना ये भी एक बहुत सुंदर आनंद है। आज का विचार बहुत सुंदर है, जो हमें हमारे मन को अंदर से प्रकाशित कर देता है। किसी ने कहा है कि जब कहने को बहुत सारी बातें हो, लेकिन फिर भी आप कुछ भी कहना नहीं चाहते हो, साथ ही साथ चुप रहने में ही सुकून मिलता हो, तो बस यही समझना कि समझदारी ने आपके मन को अंदर से प्रकाशित कर दिया है। वैसे भी कहा जाता है कि मौन की एक बहुत सुंदर शक्ति है, अंदर ही अंदर कुछ मंथन करना,

0: और गंभीरता के साथ हर्षित मुखता भी आना, ये दरअसल आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक गुण है। और इसीलिए ही जब कभी ऐसी हमारी मन की स्थिति हो तो मैं समझती हूँ हमने एक उच्च श्रेष्ठ मन की स्थिति की प्राप्ति की है, ये जरूर समझना दोस्तों। चलिए इन्हीं बातों के साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का भी हम स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, सचमुच ही मौन की शक्ति बहुत ही सुंदर है और महान है। अभी ये मौन की शक्ति के ऊपर जब मैं सोच रहा था, आप जब सुना रहे थे, तब मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या ये मौन है या वाचा में आना है। तो क्या हम हमारी शक्ति का अपव्यय करते हैं या उपयोग करते हैं, इसके ऊपर जब सोचा तब मुझे लगा कि कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्दों का अनुभव करने के लिए, कुछ विचारों का अनुभव करने के लिए हमें वाचा में आना जरूरी है। अगर वाचा में आना जरूरी नहीं होता तो जितने भी भागवत कथाकार है, प्रवचन है, कीर्तन है, उसकी जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब उसके परे जाना है तब मौन की शक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि मौन जो होता है वो जैसे मुख का मौन है, वैसे अगर विचारों का मौन है, मन का भी मौन है, तो वो बहुत शक्तिशाली होता है। कभी कभी हम मुख का मौन तो रखते हैं, लेकिन मन का मौन जो है वो रखना भूल जाते हैं। मन ऐसा है कि वो सोचते ही रहता है, और जितना ज्यादा सोचता है उतना शक्ति का अपव्यय व्यय होता है, खर्चा होता है। और इसलिए अगर शक्ति जमा करनी है तब क्या करना चाहिए, मन का भी मौन रखना चाहिए, मुख का भी मौन रखना चाहिए। और मन का मौन रखने की शुरुआत जो है वो मुख का मौन रखने से होती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर दिन भर मैं किसी से बात ही ना करूं तो क्या होगा, पूरा दिन भर मेरी शक्ति जो है वो खर्चा होती है बोलने में, वो बच जाएगी और मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। और इसलिए सुविचारों के साथ अगर हम उसका उपयोग करें, मन के मौन का और मुख के मौन का सुविचार सुनने के बाद भले हम 2 या 3 घंटा दिन में मौन रखें तो भी बहुत अनुभव अच्छे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, दरअसल बात यह है कि मन का मौन हम थोड़े समय के लिए भी रखते हैं तो मन को चार्ज करने का, मन को शक्तिशाली करने का ये एक बहुत सुंदर उपाय है। और इसीलिए सुविचार में कहा है कि आप समझ लेना कि आप अंदर से प्रकाशित हो गए हो। दोस्तों तो चलिए अब समय हो गया एक सुंदर कहानी सुनने का। आज की कहानी सचमुच बहुत चिंतन करने जैसी है। एक बेटी थी, उसने एक संत से आग्रह किया कि वो घर आकर उसके बीमार पिताजी से मिले, प्रार्थना करे। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते हैं। तो संत को सारा बताने के बाद और आग्रह करने के बाद जब संत घर में आए, घर में पधारे, तो देखा कि पिता पलंग पर 2 तकिए पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी थी। संत ने सोचा शायद मेरे आने की उन्हें वार्ता मिली है और मेरे आने के वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। फिर संत ने उस बीमार व्यक्ति को कहा कि मुझे लगता है कि आप मेरी राह देख रहे थे। तो वो पिताजी कहते हैं, नहीं, मैं नहीं जानता आप कौन हो, आइए। तो संत ने अपना सारा परिचय दिया और फिर कहा, मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। तो पिताजी ने कहा, ओ ये बात है, खाली कुर्सी, अगर आपको बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाजा बंद करेंगे। अब तो संत को भी बहुत बड़ी उत्सुकता होने लगी कि ये मुझे कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों आपको भी उत्सुकता जरूर हुई होगी कि कहानी आगे कौन सा मोड लेती है। चलिए हम सुनते हैं एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, तो संत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुर्सी जो खाली थी वो मेरे लिए तो नहीं रखी है। और फिर पिताजी ये भी बात कहने लगे कि दरवाजा बंद कीजिए। तो फिर दरवाजा बंद करने के बाद पिताजी बोलने लगे, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मैं अपनी बेटी

0: नहीं सलाह दी, ये खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहां भगवान खुद विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। और मैंने ऐसा ही करके देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर तो मैं रोज दो दो घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन ये भी ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसे में देख न ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था, वो फिर मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाती थी ताकि उसे लगता था कि पिताजी ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, उनके सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन दो दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए वो विदाई लेकर चले गए। दो दिन बाद बेटी का संत को फोन आ गया कि उसके पिताजी की उसी दिन कुछ घंटे के बाद मृत्यु हो गई थी जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बेटी जवाब देती है कि मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा, पर यह सब करते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हुआ हो। तो संत जी, ऐसा क्यों? इस बात का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। ये सुनकर संत की आंखों में आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगे? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा ही नहीं सकेगा? और किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत मेरी आत्मा का बोझ भी उठा नहीं पाएगी? ऊपर वाले के अदालत में कभी वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत भी नहीं होती। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। सचमुच उस लड़की के पिताजी ने कई बार ये अनुभव किया था कि उस कुर्सी पर भगवान बैठे हुए हैं, और वो भगवान से बातें भी करते थे, उनको बहुत सुकून मिलता था। तो अंत के समय भी जैसे कि उन्होंने भगवान की गोद में अपने प्राण छोड़ दिए। ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो कथाएं हैं वो हमें सचमुच एक बहुत बड़ा संदेश देती है जीवन जीने के लिए।
1: बिल्कुल भक्ति जी, बहुत ही सुंदर कथा है, और ये कथा सुनने के बाद ये भगवद गीता का जो श्लोक है, प्रयाण काले मनसा चले न, ये श्लोक मुझे याद आता है कि मृत्यु के समय अगर हमारा मन चलायमान ना हो, बुद्धि स्थिर हो, और जो मन जो है वो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में स्थित हो, तो क्या होगा? हमें भगवान की याद आएगी। और भगवान की याद आएगी इसका मतलब है, जैसे कि इस कथा में बताया गया कि भगवान की गोद में सर रख कर हम सो गए।
0: यहाँ ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि खुदा दोस्त की भी एक कहानी है। भगवान को दोस्त बनाना, अपने मन के सारे विचार उसके सामने प्रकट करते हुए मन को खाली रखना, मन को हल्का रखना, और ऐसा दोस्त जो कभी किसी को जिंदगी में नहीं मिलता, इतनी उसके

0: साथ निकट आभास की परिकल्पना जो है और वो उन्होंने वास्तविकता में जो परिवर्तन किया उसका, वो अगर हर एक के पास है तो सचमुच ही भगवान भी हमें बहुत बहुत मदद करता है।
1: बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भगवान को दोस्त बनाते हैं, उसे सब राज खुल के बताते हैं, तो क्या होता है, मन के ऊपर जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। अगर हमने किसी मनुष्य को दोस्त बनाया और बहुत सारे राज उसके सामने खोल दिए, तब ये संभावना होती है कि कभी मनुष्य की बुद्धि चलायमान हो गई और बदल गई, तो फिर जो छुपे हुए राज है वो खुल जाने का डर है। लेकिन भगवान के सामने जब हम खुल के बातें करते हैं, तब एक तो मनुष्य मन का बोझ हल्का कर देता है और फिर एक सुकून मिलता है कि मेरे मन की जो बातें हैं वो मैंने किसी से कह दी। और जब हम प्यार से, श्रद्धा से, आस्था से भगवान के साथ बातें करने लगेंगे, तो भगवान क्या कहता है ये भी हमें सुनाई देगा, क्योंकि हमारा ट्यूनिंग उसके साथ होगा। जब हम कुछ बातें करते हैं रेडियो मधुबन पे, जब बातें करते हैं श्रोताओं से, बातें करते हैं श्रोताओं को, हम दिखते नहीं है, हमें श्रोताएं दिखते नहीं है, लेकिन ये ट्यूनिंग जो है 107.8 FM का, वो ट्यूनिंग इतना श्रेष्ठ है कि श्रोताओं के मन में क्या चल रहा है, उनके विचार क्या है, वो भी हम तक पहुंचते हैं। भले विचार भी पहुंचते हैं, मेल के द्वारा भी पहुंचते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते जरूर है। और ऐसे ही हम भगवान से बातें करें तो हमें भगवान को क्या कहना है ये भी पता चलेगा, और भगवान हमें क्या कह रहा है वो भी पता चलेगा, और उसका जो आनंद है वो बहुत ही अवर्णनीय है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है, और हम सब भी हर प्रकार से भगवान के साथ रिश्ता तो जोड़ते ही है, लेकिन दोस्त का रिश्ता जो है, फ्रेंड का रिश्ता जो है, वो सबसे नज़दीक का है, जिसको हम सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं जिसके साथ। दोस्तों ज़रूर हम इस कथा से भी ये सुंदर सबक लेकर अपने मन को भी ऐसे ही सदा तरोताज़ा रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वर्णन भगवतकारों ने किया है जो राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद से हम सब तक पहुंचाया है। कहते हैं कि अध्यात्म जो है वो कभी भी हमारी जिम्मेदारियों को निभाना सिखाता है, न कि जिम्मेदारियों से मुक्त होना सिखाता है। यहाँ भी भागवतकारों ने ये बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जैसे ही श्री कृष्ण और सब गोपियों का मिलन हो गया तो फिर श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुम लोग कुलीन स्त्री हो, स्वयं भी सती हो, तो जाओ अपने पतियों की सतियों की सेवा करो, अपने नन्हे बच्चों को आप छोड़कर आई है, गौवे जो है वो भी आपकी राह देख रही है और इसीलिए तुम स्त्री का जो परम धर्म है और गृहस्थ को आश्रम बनाना जो बताया है, जिम्मेदारियों को कर्तव्यों को निभाना जो बताया है, वो सब निष्कपट भाव से सेवा करते हुए पालन पोषण करते हुए निभाते रहो। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद गोपियां जो है वो श्री कृष्ण से नाराजगी व्यक्त करती है। वो कहती है कि हम तो अभी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उनके नेत्रों से दुख के आंसू बहते हैं और वो जैसे कि उन्हें लगता है कि अपने प्राण धन को वो छोड़ रही है और फिर से कभी वो उनको मिलेंगे नहीं, और इसीलिए वो गदगद वाणी से कहती है कि हमें स्वीकार कर लो, हमारा त्याग मत करो। अब यहाँ ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर एक समन्वय जो है कि हमें आध्यात्मिक होना है, हमें अध्यात्म को अपनाना है, लेकिन अनासक्त भाव से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सब जिम्मेदारियों को सब कर्तव्यों को भी निभाना है। ये एक बहुत सुंदर संदेश श्रीमद् भागवत कथा में दिया है। कई बार लोग इस प्रकार से विचार करते हैं कि अध्यात्म अर्थात इन सब बातों का संन्यास करना, संसार का संन्यास करना, लेकिन संन्यास संसार का नहीं करना है, लेकिन हमारी वृत्तियां जो है उनमें अनासक्त भाव हो, हमें जो आकर्षण लगता है हर एक के प्रति, जो लोभ होता है, जो मोह होता है, इसका संन्यास करना है। ये बात मुझे लगता है भागवतकार हमें समझाना चाहते हैं गोपियों के द्वारा।
1: बहुत ही सुंदर बात है भक्ति जी, क्योंकि बहुत बार लोगों के मन में, किसी के मन में ये आशंका पैदा होती है कि अगर कम उम्र में, जवानी में अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करता है तो लोगों के मन में विचार आता है कि अभी आपकी उम्र क्या है, आप तो जवान हो और अभी आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक कार्य आप करते हो वो आपको शोभा नहीं देता, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, खाओ पियो ऐश करो। तो ये भाव जो है वो स्वाभाविक रूप से अनेकों के मन में आ सकता है, लेकिन अध्यात्म और श्रद्धा, आस्था, ये सब विषय जो है उसे गहराई से सोचना है, और इसलिए भागवतकारों ने बहुत ही सुंदर संदेश इस कथा के द्वारा दिया है, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से दिया है कि गोपियों को वो कहते हैं आप अपने पतियों की सेवा करो। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि पति अगर पापकर्मी नहीं है तो भले वो बुरा है, स्वभाव उसका ठीक नहीं है, अशांत है, तो भी उसकी सेवा करो। उसका मतलब ये नहीं कि पुरुष प्रधान संस्कृति है और स्त्री को पति कैसा भी हो उसकी सेवा करनी है, लेकिन उसके प्रति भाव ऐसा है कि स्त्री जो है वो अपने परिवार की बैकबोन है, परिवार की नींव है, और वो अपने परिवार को बहुत ही अच्छी रीति से संभाल सकती है, और इसलिए कहते हैं अगर स्त्री अच्छी है तो परिवार बंधा हुआ रहता है, और स्त्री अगर बुरी है तो परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। तो ये संदेश मेरे ख्याल से भगवान श्री कृष्ण जी के मुख के द्वारा भागवतकार हमें देते हैं, हमें उसके ऊपर गौर करना है। हम सिर्फ कथा सुनने के भाव से इस कथा को ना सुने, इस कथा को ना देखे, इस संदेश को ना देखे, लेकिन अगर हम उसे आचरण करने की कोशिश करें तो क्या होगा, हमारा परिवार एक असंध रहेगा, साथ साथ रहेगा, बिखरेगा नहीं। बहुत बार लोगों के मन में ऐसा भी विचार आता है कि आध्यात्मिक कार्य करना है, संसार को त्यागना है, तो रिश्तों में सूखापन आता है। यह भी नहीं होना चाहिए। हम प्यार से बातें करेंगे, प्यार से साथ में रहेंगे, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, देह का आकर्षण ना हो, देह का भाव ना हो। अगर मेरे बच्चे हैं तो उनका कल्याण करना है, ये मेरी भावना है। अगर मेरा पति है या मेरी पत्नी है तो भी उसका कल्याण करना है, ये मेरी भावना है। अगर और कोई संबंधी है तो भी उनका कल्याण करना है, ये मेरी भावना है। और ये करेंगे तो हम विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, इसीलिए ही आगे भागवतकार कहते हैं कि गोपिकाएं इन बात को मानना नहीं चाहती थी। वो तो श्री कृष्ण को कहने लगी कि हम सच कहती है, तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर ही जला देगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को फिर से प्राप्त करेगी। कहने का भाव ये है कि गोपिकाएं जो है वो उस सुख को त्यागना नहीं चाहती थी। अतीन्द्रिय सुख इसका वर्णन है, अर्थात इंद्रियों से परे। ऐसा सुख गोपिकाओं ने भगवान की प्राप्ति के बाद अनुभव किया, महसूस किया। इंद्रियों का सुख जो है वो तत्कालिक है। इंद्रियों का सुख तो हम सब जानते ही है भली भांति। इंद्रियों को सुख देने के लिए चाहे वो जिह्वा हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो मुख हो, हम इंद्रियों के सुख के लिए आज तक जीते रहे। लेकिन भगवान की प्राप्ति के बाद मिलने वाला जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। इसका गायन भी है कि अतीन्द्रिय सुख अगर पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि यही भागवतकारों का कहना है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गोपिकाओं की श्री कृष्ण के प्रति ये अभिलाषा जो है, ये अभिलाषा भागवतकारों ने बहुत ही सुंदर वर्णन की है कि कितना भी समझाने पर जब गोपिकाएं दुखी होती है, अपना प्रेम भाव व्यक्त करती है, कृपा करने के लिए कहती है, तो गोपिकाओं की ये जो व्यथा है और उनकी जो व्याकुलता भरी वाणी है, वो सुनकर श्री कृष्ण जी का हृदय दया से भर जाता है और वो उनके साथ मुस्कुराते हुए क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार की जो एक एकरस स्थिति है, अपने स्वरूप में उनको स्थित करते हैं, वो बहुत ही सुंदर गोपिकाएं और श्री कृष्ण की लीला का वर्णन इस अध्याय में भागवतकारों ने किया है। और कुछ समय के बाद जब वो आनंद के अत्युच्च क्षण को प्राप्त करती है, तब इस प्रकार से गोपिकाओं का सम्मान करने के बाद उनके मन में जब ये भाव उभरता है कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे समान और कोई है ही नहीं, और जब ये भगवान देखते हैं कि उनको तो अपने सुहाग का गर्व हो गया है और वो अब मान करने लगी है कि जैसे कि हम ही श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, तब उनका गर्व शांत करने के लिए वो बीच में ही अंतर्धान हो जाती है और गोपिकाओं को अकेला छोड़ देते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि यहाँ भी अभिमान की, अहंकार की बात जो बताई गई है, उसका भी एक हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है।
1: बिल्कुल भक्ति जी, क्योंकि कहते हैं कि आप भक्ति करो, प्यार करो, भगवान से बातें करो, भगवान से प्यार करो, लेकिन उस भक्ति का अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आप मनुष्य मात्रों की तो बात क्या है। जब नारद मुनि को जब अहंकार आ गया, वो मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, तभी उसका अहंकार दूर करने के लिए उन्होंने उन्हें हनुमान जी के पास भेजा। तो ये अहंकार जो है, भक्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हम भगवान के भक्त है, ये भाव जरूर होना चाहिए, अभिमान जरूर होना चाहिए, लेकिन जब मैं ही भगवान का भक्त हूँ, बाकी कोई भी भक्त हो नहीं सकता, इसे अहंकार कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि सर्व संबंध हम भगवान से प्राप्त करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तब क्या होगा, इंद्रिय सुख का जैसे आपने वर्णन किया, कान मेरे सुख के लिए है, फिर मेरे मुख का सुख, जिह्वा का सुख है, तो उसमें कहते हैं कि हर सुख, हर इंद्रिय का सुख जो है, हम भगवान से जोड़े। अगर मुझे देखने में खुशी है, देखने में सुख है, तो मेरी आंखें भगवान का दर्शन करे। अगर मेरे मुख से वाणी का सुख लेना है, तो मैं भगवान के गुणों का वर्णन करूं। और अगर मेरी जिह्वा कुछ पीना चाहती है, कुछ चखना चाहती है, तो भी मैं भगवान के रस का वर्णन करूं। उसमें एक श्लोक बहुत अच्छा है, ये मुझे याद आता है। वो कहते हैं, हे जिह्वे रस सारद्य सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। इसका मतलब यह है कि जिह्वा को कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा अच्छा मीठा खाने का मोह है, आपको सुख है उसमें, तो नारायणाख्य पीयूषम, नारायण का जो अमृत है, नारायण की स्मृति का, नारायण के चिंतन का जो अमृत है, एक बार उसका रस चखो, तो बाकी सब रस फीके लगने लगते हैं। तो ये जो भाव है, बहुत श्रेष्ठ है, और गोपिकाओं ने ये भाव प्राप्त किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें रममाण होने के बाद क्या हो गया, अहंकार आ गया। तो भागवतकार हमें चेतावनी भी देते हैं कि भले आप संसार में रहो, घर गृहस्थी में रहो, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। एक आसक्ति अगर रखनी है, मोह रखना है, तो भगवान के प्रति हो। तो भगवान के प्रति जो मोह है, उसका नुकसान नहीं होता। भगवान के प्रति मोह है, उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि देह से परे आकर्षण है, और इसलिए भगवान से सब संबंध जोड़ के उसका सुख प्राप्त होना बहुत ही अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर वर्णन है ज्ञानेश्वर जी। मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत कथा जो ज्यादातर हमारे लिए एक बहुत सुंदर आईना है। हम कैसे जीवन व्यतीत करें, भगवान के साथ हम अपने संबंध कैसे जोड़े, और संबंध जोड़ते हुए भी हम संसार में रहे और संसार में रहते हुए एक अनासक्त भाव को रखे, ये बहुत ही सुंदर उन सब बातों का, इन सब भावनाओं का मिलाप इस अध्याय में किया गया है। और इसीलिए ही श्रीमद् भागवत कथा का ये जो अध्याय है, श्री कृष्ण और गोपिकाओं की रासलीला का वर्णन, मैं समझती हूँ ये सबसे ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है।
1: बिल्कुल, और इसलिए रास जो है, रास क्या है, रस से निर्वाण होने वाली रास है। भगवान के प्रति अगर हमारा रस अच्छा है तो हम रास कर सकते हैं, और इसलिए वहाँ मथुरा में या वृंदावन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम घर में बैठे हुए हमारे मन को एकाग्र करते हैं, और जब भगवान का ध्यान करते हैं तब वो भी भगवान के साथ रास है, ऐसा मुझे लगता है। रास करना क्या है, गरबा आजकल लोग बहुत खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं, उसमें मेरी डंडी, मेरा हाथ दूसरे के हाथ पे पड़े, ताली बज जाए तो भी रास होती है। अगर मुझे ताली देनी है तो मैं भगवान को दूं, अगर मुझे ताली लेनी है तो मैं भगवान से लूं, अगर ऐसी रास हो जाती है तो वो भी एक आनंदमय यात्रा हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, दोस्तों आपका क्या ख्याल है, बहुत ही सुंदर रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में किया है, जिस पर हमने चिंतन किया, आपका भी चिंतन रहेगा, और हमेशा की तरह हम आपका चिंतन सुनने के लिए भी बहुत उत्सुक है। दोस्तों जरूर आप अपना चिंतन हमें भेजिएगा, इसका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं भक्ति अपने वाणी को विराम देती हूँ, फिर से मिलेंगे अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि आपके सामने दो चित्र रखे जाएं, एक चित्र किसी फिल्म अभिनेत्री का हो और दूसरे चित्र में मदर टेरेसा या माँ शारदा या दादी प्रकाशमणि जी हो, तो आपका सिर किसके सामने झुकेगा? आप किसके सामने नतमस्तक होंगे? किसके सामने आपका सिर स्वतः ही श्रद्धा के भाव से झुक जाएगा? मैं जानता हूं कि आप सभी का एक ही जवाब होगा, माँ शारदा, मदर टेरेसा या फिर दादी प्रकाशमणि जी के। भले ही फिल्म अभिनेत्री चेहरे से बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इन आध्यात्मिक हस्तियों में ऐसा क्या है जिसके कारण हमारा सिर इनके सामने झुक रहा है? जवाब भी साफ है, इनके अंदर मानसिक व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, इसके ये धनी है। भले ही चेहरा कैसा भी है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तित्व इन्हें संसार में उज्जवल सूर्य की तरह बनाता है, जिसकी ओर सभी स्वतः ही आकर्षित होते हैं। तो जीवन में केवल बाह्य व्यक्तित्व नहीं, लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक व्यक्तित्व बहुत बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसी की चर्चा हम आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: प्रातः जी, जब कभी हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात करते हैं या आध्यात्म की बात करते हैं, तो इसको शायद व्यक्तित्व के साथ कभी भी जोड़ा नहीं गया है, लेकिन जब आपने शुरुआत की व्यक्तित्व विकास की, तो आपने इसे भी एक पहलू के रूप में रखा था कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। इसका क्या कारण है?
1: देखिए, आपकी बात सुन के मेरे सामने बिल्कुल विजन आ रहा है स्वामी विवेकानंद का
0: जी।
1: मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व के सामने और किसी का व्यक्तित्व ठहर नहीं पाएगा, और उसका कारण यही, शारीरिक रूप से भी, लेकिन उनका चेहरा ही इतना आकर्षक था कि उस पर प्योरिटी की दिव्य आभा झलकती थी, उसके बोल में बहुत ओज दिखाई देता था। और असली कारण यही है, विवेकानंद नाम उनका पड़ा क्योंकि विवेक में वो बहुत ही परिपूर्ण थे, अति बुद्धिमान, पहले से ही बहुत बुद्धिमान वो भी थे, अपने को मानते थे और लोग भी उन्हें मानते थे, लेकिन इन सब के साथ साथ आध्यात्मिकता जो एक स्पिरिचुअल पावर है, उसने उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा दिए थे। यही तो कारण था कि शिकागो में 3 मिनट के भाषण में उन्होंने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। विद्वान तो वहां बहुत बैठे थे, चेहरे जिनके बहुत अच्छे चमक रहे थे, जो लंबे चौड़े भी उनसे ज्यादा थे वो भी चमक रहे थे, लेकिन बौद्धिक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सामने सभी नतमस्तक हो गए। तो इसीलिए हमारे व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिक विकास का परम महत्व है।
0: रता जी, अब हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहते हैं तो आध्यात्म शब्द ही जैसे धर्म से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, तो आप आध्यात्म को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आध्यात्म है क्या।
1: देखिए, इसमें धर्म की ज्यादा बात नहीं है, यद्यपि धर्म भी उसका एक पहलू है, लेकिन आत्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, आत्मा के जो मूल क्वालिटीज हैं उनको अपने जीवन में ले आना, इसको आध्यात्म कहते हैं। प्योरिटी भी उसका एक प्रमुख अंग है, जो मैंने स्वामी विवेकानंद के बारे में आपसे चर्चा की। आत्मा के मूल रूप से 7 गुण हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति, इन सब का एम्बोडीमेंट है आत्मा। तो जिस व्यक्ति में ये 7ों हैं, उसके व्यक्तित्व जैसा व्यक्तित्व तो संसार में किसी के पास नहीं। और इसका उदाहरण भी हमारे सामने है, देवताएं। आप श्री लक्ष्मी नारायण को देख लीजिए, उनके व्यक्तित्व में इन 7ों बातों का समावेश है, इसलिए परफेक्ट पर्सनालिटी उनकी मानी जाएगी। तो जो व्यक्ति इन सभी आत्मा के गुणों से परिपूर्ण है, जिसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, जिसने सभी के लिए अपने मन में प्रेम भाव पैदा कर लिया है, जिसने सभी के लिए कल्याण की भावना पैदा कर ली है, जिसने अपने विचारों को बहुत विशाल बना लिया है, वही वास्तव में अध्यात्म से परिपूर्ण व्यक्तित्व है
0: जी। लेकिन जब कभी हम इसकी चर्चा करते हैं भ्राता जी, तो चर्चा व्यक्तित्व की जब की जाती है तो शारीरिक या फिर मानसिक ज्यादा से ज्यादा इनकी चर्चा होती है, लेकिन आध्यात्मिक बातों की चर्चा नहीं होती। और जैसा आपने कहा कि अध्यात्म का भाव ही है कि सीधा आत्मा के गुणों से जुड़ा हुआ, तो फिर अब यदि हमें आध्यात्मिक व्यक्तित्व का भी समावेश करना है अपने व्यक्तित्व में, तो फिर हम किस प्रकार के अभ्यास करें या किस प्रकार की बातों का ध्यान रखें?
1: जैसे मैंने आत्मा के सात गुणों की चर्चा की
0: जी,
1: कि हमारे मन में सभी के लिए प्रेम भरा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, क्योंकि अध्यात्म में ये सिखाता है कि सभी आत्माएं हैं, सभी शरीरों में आत्मा का निवास है। ये जाति पाति, ये धर्म भेद, ये तो सब बाह्य हैं, शारीरिक हैं, लेकिन मूल रूप में तो सभी आत्माएं हैं। तो हम सभी से प्रेम पैदा करें और इसकी झलक हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देगी, हमारे बोल पर वो चीज आएगी, हमारी भावनाओं से वो चीज परिलक्षित होगी। तो पहली चीज इसका हम ध्यान दें।
0: बिल्कुल, वैसे भी सभी लोग प्रेम चाहते हैं हमसे, और यदि हम सभी को, चाहे वो किसी भी जाति भाषा धर्म वर्ग का है, छोटा है या बड़ा है, यदि हम सबको निस्वार्थ भाव से प्रेम बांटते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा।
1: सब उसकी ओर आकर्षित होंगे जो सबको प्यार देता ही है। देखिए, दो तरह के लोग संसार में देखे जाते हैं। कुछ लोग प्यार की डिमांड कर रहे हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये लोग मुझे प्यार करें तो कितना अच्छा, और कुछ लोग प्यार को देने वाले बन गए हैं। तो प्यार देना सचमुच एक बहुत बड़ी चीज है।
0: लोग ये सोचते हैं कि कोई हमें प्यार नहीं देता तो हम
1: भी
0: एक प्रकार से सोचते हैं कि ये भी एक बिजनेस की तरह है, लेकिन बिजनेस नहीं है। व्यक्तित्व में यदि हम इस गुण को शामिल कर ले कि सबको प्यार देना है।
1: दूसरी चीज हम लेंगे, सभी के लिए श्रेष्ठ भावनाएं, शुभ भावनाएं, बिल्कुल अपनेपन का भाव। जब मैं भी आत्मा हूं और वो भी आत्माएं हैं, तो हम सब समान हो गए ना। सबके कल्याण का भाव रखना हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है। तो जिस मनुष्य के मन में दूसरों को सुख देने की भावना है, दूसरों को सहयोग देने की भावना है, दूसरों का अच्छा करने की भावना है, सब आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, उसके व्यक्तित्व को तो सब पसंद करेंगे ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शुभ भावना भी तभी आ पाएगी, जैसा आपने कहा कि एक प्रकार से आत्मा देखने की हमारी दृष्टि हो जाए और एक समझ अपने अंदर ये विकसित हो जाए कि चाहे कोई कैसा भी है, किसी भी धर्म का है, लेकिन सभी हैं आत्माएं मूल रूप से और मेरे भाई हैं। इस भावना से हमारे अंदर शुभ भावना पैदा होगा और निश्चित रूप से व्रता जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं, मूल रूप से व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए बहुत आवश्यक।
1: हाँ, हम इनको अध्यात्म कह के इसको समाज से काट न दें।
0: कई बार ऐसा लगता है कि अध्यात्म शब्द हमें भारी लगता है, और इससे जुड़े हुए जो मूल तत्व है वो बहुत ही सिंपल है, सुंदर है और लोगों को आकर्षित करने वाले हैं, इसकी ओर हमारा ध्यान।
1: लोग ये सोच लेते हैं अध्यात्म क्या बात करें, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, और कहां पर्सनालिटी से इसको जोड़ दिया गया। परंतु हम हैं ही आत्मा, अध्यात्म तो हमसे निरंतर जुड़ा हुआ है, उसके बिना तो हम क्षण भर भी नहीं है। इसका विकास सचमुच हमारे व्यक्तित्व में एक चांदनी की तरह प्रकाश फैला देता है। और आगे हम चलें, हमें बहुत क्षमाशील भी होना चाहिए। देखिए, वो व्यक्ति, दो व्यक्तियों को हम ले लें, एक व्यक्ति वो जो बात बात में दूसरों को धमकी देता है, बदला लेने पर उतारू रहता है, किसी ने दो बुरे शब्द बोले जब तक आठ न बोल दे उसको चैन नहीं पड़ती, एक उस व्यक्ति को ले लें। और दूसरा व्यक्ति बहुत सहनशील है, क्षमा भाव रखता है, किसी ने कुछ भी किया कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू, बी हैप्पी। तो ये क्षमा भाव कितना आकर्षण करेगा, और उसका बदला लेने का भाव या एक की बदली चार बातें बोलने की आदत कैसे मनुष्यों को उससे दूर कर देगी। तो वास्तव में क्षमा भाव रियल स्पिरिचुअलिटी है।
0: वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि क्षमा वीरस्य भूषणम्, कि क्षमा वही कर सकता है जो वीर है, लेकिन कई लोग टीट फॉर टैट की नीति अपनाते हैं कि तुमने दो कहा तो हम चार कह देते हैं, इससे शायद बात बढ़ती ही चली जाती है। मैंने चार कहा तो आठ कहेगा, उसने आठ कहे मैं 16 कहूंगा, तो इसका कहीं शायद अंत ही नहीं,
1: अंत नहीं, और इससे हमारी सारी एनर्जी नष्ट होने लगती है, हम उन चीजों में बिजी हो जाते हैं जिनका हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं है। अब उसने दो बात क्या कही थी, वो मीनिंगलेस थी, और वो बात हजारों पे पहुंच गई, वो बात आपसी झगड़ों में पहुंच गई, तो हमारा वो लक्ष्य तो बहुत पीछे छूट गया जिसको लेकर हम जीवन में आगे चले थे। इसलिए सहज भाव से क्षमा कर देना, ये भी ना लगे कि हम क्षमा कर रहे हैं। क्षमा करना हमारा ऐसा संस्कार, हमारी ऐसी नेचर हो जाए कि बस दूसरे उससे अभिभूत हो जाएं, दूसरे उससे पिघल जाएं।
0: और हमने इतिहास में भी बहुत देखा है भ्राता जी कि जहाँ क्षमा किया गया वहाँ पे सामने वाला व्यक्ति स्वतः झुक जाता है। हम एक नाथ जी की बात जानते हैं कि वो बार बार स्नान करके आते थे और कोई उनके ऊपर कूड़ा डाल दिया करता था, 10 बार 15 बार 20 बार अनेक बार उनको स्नान करना पड़ता था। एक बार जब उन पे कूड़ा नहीं डाला गया, वो ऊपर गए तो देखा वो व्यक्ति बीमार है। उन्होंने बहुत दिल से उनकी सेवा की तो वो व्यक्ति ठीक होने के बाद इनके चरणों में झुक गया कि मैं इतना आपको तकलीफ देता था और आपने मुझे क्षमा किया, हमेशा के लिए उनका जैसे सेवक बन गया।
1: उन्होंने ये कहा था कि तुमने बार बार कूड़ा डाला तो मुझे बार बार इस गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो देखिए, ये महानता है, ये वीरता है, ये विशाल दिल का परिचायक है। जो क्षमा कर देता है उसका चित्त भी शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जिनको करता है वो भी सदा के लिए अपनी उन कमियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं कहीं केवल हमारी बार बार क्षमा करने से दूसरे लोग दुरुपयोग कर ले सकते हैं, इसका मिसयूज कर सकते हैं, डिसएडवांटेज उठा सकते हैं, परंतु हमें अपने क्षमा भाव को भूल छोड़ना नहीं चाहिए। ये रियली हमारी पर्सनलिटी के लिए एक बहुत बड़ी चीज है।
0: और जब हम आध्यात्म की चर्चा करते हैं भ्राता जी, तो कहीं ना कहीं जितने भी आध्यात्मिक लोग होकर गए हैं उनके अंदर एक विशेष गुण देखने को आता है, वो है सेवा भाव, कि वो पूरी मानव जाति की सेवा करते हैं, जो भी उनके आसपास रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा, मतलब उनके अंदर जो सेवा भाव का गुण है उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बहुत महान बना देता है।
1: सेवा भाव के साथ हम ये भी जोड़ दें

0: ये वास्तव में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और इससे सभी का प्यार भी बहुत प्राप्त हो जाता है
1: जी, हम लोकप्रिय हो जाते हैं और साथ ही ये हमें एक अंतर में भी एक संतोष हमें प्राप्त होता है कि हमने दूसरों को दिया, मदद की हमने, और जब किसी को आवश्यकता थी उस समय पे हम उनके लिए उपस्थित हुए, तो बहुत ज्यादा इसका बल मिलता है।
0: देने का सुख कुछ अलग ही है,
1: बिल्कुल,
0: लेने की हीनता और देने की महानता, इन दोनों को सभी अपने अपने अनुभवों से जांच सकते हैं, परख सकते हैं
1: जी।
0: तो साथ साथ में ये भी जोड़ूंगा, अध्यात्म में अपने से भी प्रेम करना और प्रभु प्रेम में भी कुछ समय व्यतीत करना, ये भी अध्यात्म का एक लक्षण है। यहाँ हम भगवान की केवल भक्ति, पूजा पाठ, प्रार्थना, फूल चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में हमारे परम पिता के लिए प्रेम हो, श्रेष्ठ भावनाएं हो, हम उन्हें जान लें, यह अध्यात्म अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है लेकिन संपूर्ण ज्ञान और विवेक का मार्ग है, जिसमें हम अपने परम पिता को जानकर उससे अपना नाता जोड़ लेते हैं, अपने से भी प्यार करते हैं, यानी हम भी बहुत अच्छे हैं, ये नहीं हम तो नीच हैं, पापी हैं, हम तो न जाने विकारी हैं, क्या क्या बुरे, अपने से घृणा, वो आध्यात्मिकता नहीं है। अध्यात्माना अपने से भी प्यार, अपने अंदर छुपी हुई महानताओं को पहचानना, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जानना और उन्हें सेवा में लगा देना, उन्हें कार्यों में लगा देना और फिर परमात्मा से भी रियल अर्थों में प्यार करना।
1: जी जी जी, इस अध्यात्म के भाव को आपने बहुत सुंदर ढंग से रखा प्रताप जी। चाहे कोई किसी को भी मानता हो, किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो, और परमात्मा को चाहे वो गॉड कहता हो, अल्लाह कहता हो या ईश्वर कहता हो, लेकिन उनसे प्रेम करना आध्यात्म के मार्ग के लिए बहुत आवश्यक है और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि वो सबको देते हैं, वो सागर हैं, वो पिता हैं, तो जब हम उन्हें याद करते हैं या उनसे संबंध जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से विकास होता है।
0: जो अपने परम पिता से ही प्यार नहीं करता वो मानवता से प्यार कर ही नहीं सकता है, उसमें भेदभाव की दृष्टि रहेगी ही, उसमें ऊंच नीच की भावना बनी रहेगी, लेकिन एक पिता है और बाकी सब उसकी संतान हैं, तो यहाँ संभाव आ जाता है और प्यार देने की भावना पैदा हो जाती है। इसी स्पिरिचुअलिटी में हम थोड़ा और आगे बढ़े, मनुष्य को थोड़ा सा एकांत प्रिय भी होना चाहिए, थोड़ा अंतर्मुखी भी होना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, जो व्यक्ति अननेसेसरीली बोलता रहता है या जोर जोर से बोलता है, उसके व्यक्तित्व की छाप दूसरों पर नहीं पड़ती। लेकिन जो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट का अर्थ यहाँ ये नहीं कि हम कुछ भी ना बोलें
1: जी,
0: हम मुस्कुराएं ही नहीं, हम दूसरों की बातों का जवाब ही ना दें, लेकिन जो रियल अर्थों में इंट्रोवर्ट है और थोड़ा एकांत प्रिय भी है, एकांत प्रिय का यहाँ अर्थ है थोड़ा समय अपने लिए निकाल कर अपनी उन्नति के बारे में चिंतन करना, अपने बारे में सोचना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, अपने भविष्य का सुंदर दिग्दर्शन करना, एकांत इसलिए बहुत आवश्यक है। और एकांत वास करने से मनुष्य की एकाग्रता बहुत बढ़ती है, ये जो हम बौद्धिक पर्सनालिटी की विकास की बात कर रहे थे उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होगी। इन दोनों चीजों को भी अपने व्यक्तित्व विकास के साथ जोड़ देना चाहिए।
1: तो अंतर्मुखी हम बने और एकांत में अपने अंदर बहुत सुंदर विचारों को हम भरें, और साथ ही कुछ अच्छे सुंदर साहित्यों का भी अध्ययन किया जा सकता है, जिससे कि उनको प्रेरणा मिले, शक्ति मिले अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। प्रताप जी, एक विशेष प्रकार की बात आती है कि जब हम आध्यात्मिक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि कई लोग इससे इसके अर्थ को सही अर्थों में नहीं समझने के कारण इससे जैसे अपने जीवन से एक दूर कर देते हैं, या ये सोचते हैं कि जैसे आध्यात्म तो एक ऐसी चीज है जो एक उम्र होने के बाद हम के बारे में चर्चा करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को कैसे दूर की जाए?
0: देखिए, सत्य तो ये है कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब उसके पास न तो शक्तियां बचती, और आजकल के समय में आयु बढ़ने के साथ अनेक रोगों का मनुष्य शिकार होने लगता है। आयु बढ़ने के साथ जीवन की अनेक कटुताएं, कड़वे अनुभव उसको शांत नहीं रहने देते। अनेक बुजुर्ग लोगों का ये अनुभव हम देख रहे हैं, बहुत कम बुजुर्ग लोग हैं जो अपने जीवन से संतुष्ट हैं, जो अब भी खुश रहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी, जो अब भी बहुत

0: सेवा कार्यों में रत रहते हैं। सफल उन्हीं का जीवन हुआ है जिन्होंने अपने छोटे काल से ही आध्यात्म को अपने जीवन के साथ जोड़ दिया, तो उनकी पूरी जीवन की यात्रा ही सुखों से भरपूर हो गई। हमारे पास ऐसे हजारों लोगों के सुंदर अनुभव हैं और आज भी जिनके चेहरे कहानी खुद कहते हैं कि इनका जीवन खुशी से, प्रेम से, संतोष से, सफलताओं से भरा हुआ है। वही व्यक्ति अगर इंतजार करते कि 60 साल के होंगे, रिटायर होंगे, तब आध्यात्म को अपने जीवन से जोड़ेंगे, तो कोई भी इस कार्य में सफल नहीं हो पाता। इसलिए हम तो यही कहेंगे अनेकों के अनुभवों के द्वारा कि जब हम जीवन की नींव डाल रहे हैं
1: उस समय ही,
0: तभी हम क्यों ना अच्छी चीजें उसमें डालें। जब जीवन पूरा होने जा रहा है तब अच्छी चीज डालकर करेंगे भी क्या। तो शुरू से ही हम ये सब सद्गुण, ये सब आध्यात्म की चीजें,
1: मतलब ये जो एक मान्यता है कि ये आध्यात्म जीवन के अंत के लिए है, ये मान्यता गलत है। इसकी शुरुआत हमें बचपन से ही, अपने युवा काल से ही करना चाहिए, क्योंकि ये केवल भक्ति पूजा पाठ की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर के छुपे हुए गुणों को और शक्तियों को विकसित करने का एक सबसे सशक्त माध्यम और साधन है।
0: बिल्कुल, हमारे विचार इससे सुंदर रहेंगे तो हम अपने जीवन के हर फील्ड में सफल होंगे ना। मान लो एक व्यक्ति बैंक में काम करता है, 12 लोग वहाँ कार्यरत हैं, एक मैनेजर है, 2-3 ऑफिसर्स हैं। अब वहाँ कभी ज्यादा काम है, कभी कम काम है, कभी कैसे कस्टमर्स आ रहे हैं, कभी कैसे आ रहे हैं, कभी वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कभी कोई समस्या आ रही है, कोई पैसे की बात है, कई बातें होती हैं। उसमें अगर मनुष्य के व्यवहार में सौहार्द्यता नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, मृदुता नहीं है, वो कड़वा है, वो बार बार छोटी बातों में टेंशन में आता है। एक व्यक्ति ने पैसा जमा कराया, अब पैसा उसका है, उसको कई प्रश्न पूछने का अधिकार भी है, और मान लो वो प्रश्न 2-4 बार पूछ ले और वो सामने वाला इरिटेट हो जाए, तो उसका युवा काल में उसका जो प्रोफेशन है वहाँ भी लोग उसको प्यार नहीं करेंगे, उसको सफल व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उसको उसके आगे बढ़ने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। और जो व्यक्ति बहुत सौम्य है, बहुत व्यवहारिक है, जिसकी पर्सनालिटी में आकर्षण है, अगर वो ना भी कहता है तो इतने सुंदर ढंग से कहता है कि उसकी ना में भी हाँ समाई होती है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब वो बूढ़े होकर करेंगे तो जीवन का सुंदर काल तो उसने परेशानियों में, टेंशन में, दुखों में बिता दिया, तो बूढ़े होकर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो महत्व दें अपने युवा काल में, अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व में भी, और खास करके जो ध्यान देने योग्य बात जो व्रता जी आपने कही वो यही कि हम अंतर्मुखी होकर के एकांत में थोड़ा अपने आप को समय अवश्य दें, क्योंकि मूल बात जिस पे मैं आ रहा हूं व्रता जी वो यही है कि आजकल हर एक को शिकायत इस एक चीज की जरूर है कि हमारे पास समय नहीं है। एकदम भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, सुबह उठने से लेकर रात तक वो भाग ही रहा है। और जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं कि थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो, अपने आप को देखो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, तो वो कहता है समय नहीं है। ऐसे में आप उन्हें क्या सिखा देंगे?
0: अध्यात्म हमें ये भी सिखाता है, बिजी तो हर व्यक्ति है
1: जी।
0: और ये बात के हमारे पास टाइम नहीं है, हमने उन लोगों के मुख से भी सुनी है जिन्हें कोई काम नहीं है। वो ज्यादा कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम इस टाइम क्यों आ गए, ये काम हमें क्यों दे दिया, जबकि उनके पास कोई काम नहीं होता
1: जी।
0: तो एक सुंदर सी कला हम सीखें कि कार्यों को इतने सहज भाव से करें कि कार्य करते हम इस आभास को समाप्त कर दें कि हम बहुत बिजी हैं। जिन्होंने अपने मन में ये भावना बैठा ली है हम बहुत बिजी हैं, वास्तव में वो बहुत दुखी हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। नो, हम बिल्कुल इजी, एक काम आया, दूसरा आया, ठीक है, वी विल एंजॉय एवरीथिंग। हम कार्यों को कर रहे हैं, सहज भाव से करते जा रहे हैं, एक तो ये चीज हम अपने जीवन में अपनाएंगे, सहज भाव से कार्य करना, तो हर चीज में भागदौड़ नहीं, हर चीज में ज्यादा सोचना नहीं। वास्तव में जो व्यक्ति ज्यादा सोच रहा है वो व्यक्ति मन से बिजी है, बाहरी रूप से नहीं होता, उसके पास टाइम होता है लेकिन उसे लगता ऐसे है कि उसके पास टाइम नहीं है। एक ये बात। दूसरा, अगर हमारे जीवन में हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखेंगे तो ये बहुत सुंदर और बड़ा सूक्ष्म एक सीक्रेट है, एक डीप फिलोसोफी है कि जितना हमारा मन शांत रहेगा हमारी कार्य शक्ति उतनी ही बढ़ जाएगी। हम अपनी कार्य शक्ति को 10 गुना भी बढ़ा सकते हैं अगर हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, कुछ राजयोग की प्रैक्टिस करें, अपने चित्त को शांत रखने की प्रैक्टिस करें। तो हमें लगेगा जितने काम हम पहले करते थे ना 8 घंटे में, अब 8 घंटे में उससे 4 गुने काम हम कर लेते हैं और स्टिल वी आर फ्री।
1: बिल्कुल, आपने सुंदर बात कही भ्राता जी। मैं एक मैगजीन में पढ़ रहा था, अमेरिका में 200 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, और उन्होंने ये पाया कि जो लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है, वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मेडिटेशन सेंटर खोल दिए हैं कि जो भी एम्प्लॉई आएगा पहले मेडिटेशन करेगा, उसके पश्चात कार्य करने के लिए जाएगा।
0: बिल्कुल, ये अच्छी बात है। मान लो किसी भी कोई एक फैक्ट्री है और वहाँ बहुत काम चलता है, अगर वहाँ मेडिटेशन से कार्य प्रारंभ किया जाए, और बीच बीच में भी कई फैक्ट्री ऐसी होती हैं कि काम को रोका नहीं जा सकता, लेकिन काम करते करते ही लोग थोड़ा सा अच्छा चिंतन कर लें, थोड़ा सा अपने को मानसिक रूप से रिलैक्स कर लें, इसको हम कर्म योग कहते हैं, यानी कर्म करते हुए भी थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन किया जा सकता है, तो हम देखेंगे कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। और ये प्रयोग हमारे राजयोग सीखने वाले कई लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में कराया और देखा लोग बहुत रिलैक्स रहे, बहुत स्माइलिंग फीचर्स में रहे, और बिल्कुल लगा जब वो जा रहे थे कार्य पूरा करके, ड्यूटी पूरा करके, उन्हें ऐसा लगता था आज तो थके ही नहीं।
1: ये बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही, और बहुत गहन भी है और नवीन भी है मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, शायद इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है बाहर, और इसकी चर्चा आप जो कर रहे हैं इसमें बहुत गुह्यता है, बहुत सुंदरता है, और हमारे जीवन में बहुत विकास लाने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएं। आज वक्त हमें इतना ही इजाजत दे रहा है, इसलिए आज आपने जितनी सुंदर बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आध्यात्मिक व्यक्तित्व जीवन के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे अन्य व्यक्तित्व की ओर हम ध्यान देते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये एक प्रकार से हमारे अन्य व्यक्तित्व के लिए नींव का काम करती है। यदि आध्यात्मिक व्यक्तित्व है तो हमारे शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा अन्य व्यक्तित्व जिनकी हम चर्चा करते हैं स्वतः ही विकसित हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे मूल गुणों का, मूल शक्तियों का विकास होता है। और यदि अंदर से हम सशक्त हैं तो निश्चित रूप से बाह्य रूप से हमारा व्यवहार सबके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, सबके लिए बहुत सुखद होगा। तो आप इस व्यक्तित्व पर, अर्थात आध्यात्मिक व्यक्तित्व पर भी अवश्य चिंतन कीजिएगा। हम इस चर्चा को आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्म अंधश्रद्धा नहीं है इस विषय पर आपने जाना आदरणीय रुपेश भाई जी और सूरज भाई जी से। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आइए जानते हैं पंचांग के बारे में। आज का पंचांग 13 सितंबर 2026, तो आज संडे के पंचांग से जुड़ी हुई बातें हम ज़रूर जानेंगे। इसके साथ साथ वेदर रिपोर्ट रहेगा आप सभी के लिए। ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात भी हम सुनेंगे और इसके साथ साथ आसपास के घटनाक्रमों के ऊपर भी नज़र डालेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी देखेंगे। 13 सितंबर 2026 राष्ट्रीय शाके 1948 22 गते 28 है, भाद्रपद रविवार। विक्रम संवत 2083 है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार हस्त। इस्लामी हिजरी के अनुसार आज 1448 है, रबीउल आखिर इतवार अव्वा है आज के दिन।

तो आज हस्त नक्षत्र दोपहर 1:07 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र का आरंभ है। शुक्ल योग दोपहर 1:42 तक, उसके बाद ब्रह्म योग का आरंभ है। सूर्य अस्त का समय जो है वो 6:29 पर शाम को रहेगा और सूर्य उदय का समय 6:05 पे था। चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक है। आज रामदेव पीर की जयंती है, तो रामदेव जी के भजन आप सुनी ही रहे थे। अभी एक और भजन रामदेव जी को समर्पित।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। चलते हैं वेदर रिपोर्ट्स की ओर। और जैसे हल्की हल्की बारिश हुई ये कल यहाँ पर तलेटी में, आबू रोड में और माउंट में भी बारिश हुई है अच्छे खासे। तो आपके अंचल में कल बारिश हुई है कि नहीं हुई है आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। राजधानी जयपुर की ओर चलते हैं, यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। सुबह के समय 50% से ज़्यादा संभावना है थोड़ा बहुत बारिश होने के लिए, और शाम के समय बारिश होने की संभावना फिलवक्त नहीं है। बात करें उदयपुर की तो उदयपुर में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। और यहाँ पर दिन के समय और रात्रि के समय 80% तक संभावना है बारिश होने की। आबू रोड में 35 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 25 डिग्री तक जा सकता है। रात्रि के समय जोरदार बारिश होने की संभावना है, दिन के समय कम बारिश होने की संभावना है, लेकिन संभावना है बारिश होने की। बात करें माउंट आबू की तो माउंट आबू में भी लगभग 80% से ज़्यादा संभावना है दिन के समय रात्रि के समय बारिश होने की। यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 19 डिग्री तक जा सकता है। जोधपुर में 36 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री। यहाँ पर वर्षा की संभावनाएं दिन के समय रात्रि के समय 50% से ज़्यादा है। पाली जिले में 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय 50% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। सूरत में 26 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना दिन के समय रात्रि के समय 90% से ज़्यादा है, 95% से ज़्यादा है बारिश होने की संभावना सूरत में। मेहसाना में 25 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिन के समय रात्रि के समय 90% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। राजकोट में 24 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है। 59% तक दिन के समय संभावना है बारिश होने की और रात्रि के समय 100% तक संभावना है बारिश होने की। गांधीनगर और अहमदाबाद के अंचल में 25 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है और 90-95% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की गांधीनगर अहमदाबाद के अंचल में आज के दिन। राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें तो राजधानी दिल्ली में 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना है आज दिन में। और कोलकाता में 90% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की, 32 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। बेंगलुरु में 21 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की कम संभावना है, बहुत ही कम, बादल छाए रहेंगे आसमान पर। मुंबई में 29 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर बारिश होने की संभावना फिलवक्त है क्योंकि गणपति जब आते हैं तब थोड़ा बहुत बारिश तो होती ही है, उनकी स्वागत प्रकृति भी करती है, तो मुंबई में तो आज बारिश होने की संभावना है। चेन्नई में 33 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा चांसेस है बारिश होने की। और जिला सिरोही के बारे में बात करें तो यहाँ पर 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकते हैं, बारिश होने की संभावना है 73% से ज़्यादा। यहाँ पर एक दोस्त है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: नमस्ते नमस्ते दीदी जी, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते हैं आपको। और कल आपसे बात किया और रेडियो चालू हो गया है।
0: जी
1: तो आपको और रेडियो मधुबन को और हमारे सभी शो को नमस्कार करते हैं, हमारे दोस्त सुन रहे हैं। और आज का बारिश का मौसम है, रात से पड़ रहा था बारिश, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे पड़ रहा था और बारिश भी थी तो हवा भी थी, और पूरे गुजरात में कहीं कहीं पड़ रहा है, कहीं कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, मतलब बादल छाए हैं चारों तरफ और ऐसा कभी कहीं ज़्यादा पड़ सकता है, कहीं नहीं हो, ऐसा कुछ मौसम का रंग कह रहा है। और आपको नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन।
0: नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया
1: जी। और वो गाना लगा दिए, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे, राम जग किए भला, तेरे दुख दूर करेंगे राम। नमस्कार,
0: नमस्ते नमस्ते, मैं कोशिश करूंगी ये गाना प्ले करने के लिए, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे मदन लाल जी फ्रॉम मेहसाना से। तो आइए यहाँ पर एक अल्पविराम लेते हैं, मिलते हैं 8 बजे के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो माधवन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आइए चलते हैं अबुर रेलवे स्टेशन पर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां 8:03 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। गाड़ी संख्या है 22547 ग्वालियर से गांधीग्राम तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 8:25 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। आरावली एक्सप्रेस 14702 8:30 पर संभावित प्लेटफॉर्म 1 पर आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 12461 9:05 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है। गरीब नवाज एक्सप्रेस 16532 9:10 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर संभावित प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 19224 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 9:45 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है। अजमेर मैसूर एक्सप्रेस 16209 10:10 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। प्रयागराज से गांधीग्राम तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड 04111 संख्या वाली गाड़ी 11:00 अबुरुड रेलवे स्टेशन पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है। दौलतपुर से आने वाली गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 19412 11:30 पर पहुंचने वाली है, संभावित प्लेटफॉर्म 2 है। गांधीग्राम से जोधपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14822 11:40 पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 1:28 देरी से चलती हुई 12:18 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। जी हां, योगा एक्सप्रेस योगनगरी ऋषिकेश से साबरमती तक जाने वाली ये गाड़ी गाड़ी संख्या 19032 12:18 पर आएगी। 10:50 के बदले 1:28 देरी से चलती हुई 12:18 तक पहुंचेगी। तो ये कुछ गाड़ियों के बारे में जानकारियां हम जान रहे थे। अभी से 4 घंटे तक अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। नगरीय निकाय चुनाव मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन DOITVC रूम में किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल एवं संबंधित मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित रहे। वहीं रिटर्निंग अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुक्रवार को हुआ था। पश्चिमी रेलवे ने खिलाड़ियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।

और वहीं पर जिले में 43 दिन बाद फिर बरसा मानसून, पारा 8.6 डिग्री लुढ़का है। चुनाव सिरोही में 62.16% मतदान जिले के 6 निकायों में सबसे कम। सभापति के गृह वार्ड में 34% ही वोटिंग हुई है। दिग्गज नहीं बढ़ा पाए वोटिंग। पूर्व विधायक लोढ़ा के इलाके में 49.44% तक वोटिंग हुई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष के यहां 58% तक। माउंट आबू में सबसे ज्यादा, सिरोही में सबसे कम मतदान। माउंट आबू में 80.09% मतदान, मंडार में 77.89% मतदान, आबू रोड में 75.77% मतदान है। शिवगंज में 69.57, पिंडवाड़ा में 65.46, सिरोही में 62.16% मतदान हुआ है। और भी बातें जुड़ी हुई है आसपास के घटनाक्रमों के साथ जानेंगे, लेकिन देते हैं यहाँ पर एकल विराम।

0: ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूं पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई हमारे आसपास की घटनाक्रमों के साथ उस पर नजर डालते हैं। पर्युषण महापर्व पर जन्म वचन महोत्सव में गूंजे जयकारे। सिरोही में उपाश्रय वर्षों बाद खचाखच भरा है और मोतीचूर के लड्डू बांटकर मनाई गई खुशियां। 14 मंगल स्वप्नों की पूजा और पालने में झूले भगवान महावीर। मोती और डायमंड से शांतिनाथ प्रतिमा की पहली बार आंगी रचना की गई। पावापुरी रोड पर सिंधरथ के निकट अति प्राचीन जिनालय धानता में पर्युषण महापर्व पहली बार भगवान श्री शांतिनाथ की प्रतिमा पर आंगी रचना की गई। और वहीं पर नादरा में गांव में हाईवे पर लंबे समय से झूल रहे बिजली के तारों से बड़ा हादसा टल गया। शुक्रवार शाम को करीब 7 बजे बस स्टैंड के पास हाईवे पर झूलता तार ट्रक से टकरा कर टूट गया। तार हाईवे पर गिर गया और उसी समय एक मोटरसाइकिल सवार भी वहां से गुजर रहा था, वो बाल बाल बच गया। सेम घटना मेरे साथ भी हुई परसों, और हाईवे नहीं था लेकिन यहाँ पर जो पीछे के रास्ता है शांतिवन में, शांतिवन से मनमोहिनी जाने के रास्ते पर ही एक बिजली के तार बस से कट गई और नीचे गिरा। स्पार्क भी हुआ बस के ऊपर लेकिन बस के यात्रियों को कुछ हुआ, मैं जस्ट उसी के नीचे थी तो मैं भी बाल बाल बच गई क्योंकि आप सभी की दुआएं साथ में थी। लेकिन ये बहुत डेंजरस होता है, हर समय घटना एक जैसा नहीं होता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आपको ऐसे घटनाएं सामने दिख रही है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं बिजली विभाग में, कंप्लेन करना ही चाहिए ताकि किसी के जान माल का हानि ना हो। और वहीं पर 1.5 माह के बाद रेवदर क्षेत्र में बारिश, उमस से मिली राहत। स्कूलों में बाल विवाह मुक्त की शपथ दिलाई गई, नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान को लेकर के सिरोही एसपी के निर्देशन में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रामपुरा और राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खाम्बल में नशा मुक्ति बाल विवाह जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ। और वहीं पर भेव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम 1.5 साल से ज़्यादा समय बाद भी पूरा नहीं हुआ। गाँव की कई गलियों और कॉलोनियों में भी अब तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है। मंडी के भाव देखते हैं तो मंडी में मूंग के भाव 6,500 प्रति क्विंटल से 8,400 रुपये प्रति क्विंटल रहे। महाराजा श्री उमेद सिंह कृषि मंडी में शनिवार को भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गेहूं 2,700 से लेकर के 3,350 तक रहे। तिलहन में सरसों 8,275 और इसके साथ साथ लगभग 7,800 तक रहा। और तारा मीरा 6,000 से 6,300, एरंडी 7,100 से 7,346 प्रति क्विंटल रहा। मक्का वहीं पर 2,550 से 2,800 रुपये, बाजरा 2,350 से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल रहे। हल्दी की बात करें तो 20,100 रुपये से 20,500 रुपये प्रति क्विंटल हल्दी। आबू रोड में होगा राज्य स्तरीय स्काउट महोत्सव। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय सिरोही की ओर से जिला स्तरीय सीडी सेमिनार शनिवार को जिला मुख्यालय में हुआ। और वहीं पर मक्का मदीना की हाजिरी के लिए उमराह पर रवाना हुआ परिवार। कस्बे के हकीम खान सहित परिवार के सदस्य उमराह के मुकद्दस सफर के लिए रवाना हुआ। रवाना होने से पहले शुक्रवार शाम मिलादे मुस्तफ़ा का आयोजन किया गया। सभी मक्का मदीना की हाजिरी के लिए रवाना हुआ परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं रेडियो मधुबन की ओर से। और इसके साथ साथ बात करें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर परिसर में चल रहे 4 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन के 3रे दिन आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा मीडिया मानकों का उन्नयन विषय पर द्वितीय सत्र हुआ। 1500 से अधिक पत्रकार महासम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाकारों ने प्रस्तुतियां दिया,
तो वह आप देख सकते हैं कि उड़ीसी नृत्य के झलक का। सीपीआर प्रशिक्षण से दिया जीवन बचाने की तकनीक का प्रशिक्षण माउंट आबू राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय आबू पर्वत में है। शुक्रवार को अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये सेशन रहा और प्रभारी डॉक्टर कांतिलाल माली जी ने अचानक हृदय गति रुकने पर किए जाने वाले प्राथमिक जीवन रक्षक उपाय बताए। आबू रोड में गांधीनगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विज्ञान एवं गणित मेले का आयोजन किया गया। पुणे से रामदेवरा के लिए निकली साइकिल यात्रा का स्वागत किया गया जावाल में। शिवगंज में नशामुक्ति स्वच्छता अभियान पर जागरूकता 15 छात्राओं को सम्मानित किया गया। शिवगंज स्कूल में मेधावी छात्राएं सम्मानित। बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शारदा स्मृति पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। वहीं पर माउंट आबू में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा में सालगांव परिक्षेत्र की 17वीं परिक्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 14 से शुरू होगा 36वां गणपति महोत्सव। मिट्टी के गणेश स्थापित करने की अपील। माउंट आबू में महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन और समिति की बैठक हुई है। वहीं पर कोजरा में विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। चुनावों को देखते हुए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कोजरा विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने ELC गतिविधियों के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली। और इसके साथ साथ सनवाड़ा में पुलिस ने हादसे के कारण की जांच शुरू की। बाइक सवार के हाथ में गंभीर चोट। तो ढलान पर पीछे लुढ़क गया ट्रेलर। बाइक चकनाचूर सवार एक तरफ गिरा, बच गए। और इसके साथ साथ आबादी क्षेत्र में आया मगरमच्छ रेस्क्यू कर सिवेरा बांध में छोड़ा गया। गांव में विरवाड़ा में शनिवार सुबह 5 बजे शमशान घाट वाली गली में मगरमच्छ दिखा। वहीं पर स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण संस्थान ने हिमालय क्षेत्र में 6,111 मीटर ऊंचे माउंट यूनम का अभियान पूरा किया। अभियान गुजरात सरकार के सहयोग से हुआ। अनादरा में 2 माह से अघोषित कटौती, महिलाएं बोली धरना करेंगे। अघोषित बिजली कटौती हो रही है तो ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और वहीं पर सांसद लुम्बाराम चौधरी जी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 39 डिबेट और 100% उपस्थित रही। 7 शिक्षकों ने प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन के बाद ग्रामीणों ने खोला ताला। 252 बच्चों के लिए सिर्फ 3 शिक्षक। ग्रामीणों ने विद्यालय पर जड़ा था ताला। और इसके साथ साथ लेक में जलकुंभी फैलने से मछलियां मरने लगी है माउंट आबू नक्की लेक में। और वहीं पर अनादरा में पाइपलाइन लीकेज से व्यर्थ बहता पानी, शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती है। शिवगंज खरीफ फसलें खराब, शिवगंज को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई। तो ये बातें हम आपको बता रहे थे सिरोही आबूरोड भास्कर के जरिए। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। अभी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले क्विकली कुछ बातें जो जुड़ी हुई है जॉब्स के साथ वो भी जान लेते हैं। IIT BHU में नॉन टीचिंग के 55 पदों पर भर्ती होगी, आमंत्रित किया गया है आवेदन। लास्ट डेट है 24 सितंबर 2026। और आवेदन कैसे करेंगे, IIT BHUNT.samarth.edu.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा है 27 से 40 वर्ष तक। और वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी BGSSL में 2049 पदों पर भर्ती, 30 सितंबर तक आवेदन आप कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड ने विभागों के लिए 2049 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें फील्ड कलेक्शन ऑफिसर, डिजिटल ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट आदि शामिल है। www.bgss.in पर जाए और करियर्स में करेंट अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करके आवेदन भर सकते हैं। और वहीं पर लास्ट डे 27 सितंबर 2026 से दक्षिण रेलवे में 10वीं ITI पास के लिए 4471 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है। फ्रेशर श्रेणी के लिए संबंधित पद अनुसार न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। MLT ट्रेड के लिए 12वीं में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान विषयों के साथ 50% अंक जरूरी है। वहीं पर www.sr.indianrailways.gov.in पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के लिए 2615 रिक्त पदों पर भर्ती निकली है। आप ऑफिशियल लिंक aocrecruitment.gov.in का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13441 पदों पर भर्ती निकली है और लास्ट डेट है 21 सितंबर 2026। www.ibps.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक और ब्रांच पोस्टमास्टर सहित 25,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। और लास्ट डेट है 21 सितंबर 2026। इंडिया पोस्ट GDSONLINE यानी कि इंडिया पोस्ट GDSONLINE.gov.in का उपयोग आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 21 सितंबर 2026। और इसमें उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। उम्मीदवारों द्वारा 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ऑटोमेटिक जेनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट में आने वाले शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ग्रामीण डाक सेवा और ब्रांच पोस्टमास्टर सहित 25,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट 21 सितंबर 2026 है। अभी वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आज जीवन रोशनी कार्यक्रम आप जरूर सुने शाम को 4 बजे। अभी आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात, उसके बाद आपका स्वस्थ आपके हाथ प्रोग्राम सुनेंगे, फिर वंदे

0: मातरम लाइव सुनेंगे, पंडिताइन जी भी आप सुनेंगे लाइव कार्यक्रम पंडिताइन जी को, उसके बाद संगीत की दुनिया घर ऑन एयर, सलामी जिंदगी, जुनून, और इसके साथ साथ आप 4 बजे जीवन रोशनी, 5 बजे हमराई कार्यक्रम, और 6 बजे लव यू जिंदगी, एक गीत एक नारा, 7 बजे शाम को आप मेरा गांव मेरा अंचल सुनेंगे, 8 बजे मधुबन अनप्लग्ड, और 9 बजे आप सुनेंगे यशस्वी भारत। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, रामदेव पीर जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
3: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
5: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
7: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
8: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रैविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़िमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण।

उसको सौगाते उतनी मिलेगी। ला ला ला।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आशा करूंगा कि आप जब भी नेचुरोपैथी के बारे में सुनते हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि घरेलू जो नुस्खे हैं और साथ ही साथ हमारे जो पहुँच में होती है, यानी हम जिन चीज़ों को कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों पे जो है बातें होती है, और बहुत ही सुंदर तरीके से वो बताते हैं कि कैसे किस बीमारी में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे उसके ऊपर आयुर्वेद या फिर कोई ऐसी नेचुरोपैथिक तरीके से हमें उसको ठीक करने के बातें बताते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ध्यान से सुनिए और फिर कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। तब तक आप और हम मिलकर एक बहुत ही प्यारा सा साधना सरगम का गीत सुनते हैं अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आज आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। और फिर से हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, जिनसे हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। और नेचुरल थेरेपी क्या है, डाइट सिस्टम क्या है, इसके माध्यम से वो हमें हर बीमारी का इलाज संभव करके बताते हैं। तो आज हम लोग ज्वाइंट पेन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ठंड में और बहुत ज़्यादा जो ठंड बढ़ जाती है तो जॉइंट्स पेन दर्द होता है, तो ऐसा लगता है हमें कि ये ठंडी में ज़्यादा होता है, बाकी टाइम पे नॉर्मल रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होते हैं, कैसे है, इसको समझा जाए और फिर ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है क्या, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी की तरफ से नरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन
1: बिल्कुल बिल्कुल कैसे हैं आप
0: जी बिल्कुल बच्चे हैं
1: जी जी जी तो चलिए मैं चाहूंगा कि जॉइंट पेन पे क्यों बोलना चाहते हैं और ये है क्या चीज
0: जी जी ओवरऑल जो है अगर देखें तो हमने कुछ बीमारी को जैसे लाइफस्टाइल डिजीज बोल के बोल रखा है तो उसमें जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई डायबिटिक्स हो गया या तो ब्लड प्रेशर हो गया तो इनको हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं लेकिन अगर हम जॉइंट पेन के बारे में बोलते हैं तो उसको कोई हम लाइफस्टाइल डिजीज के कैटेगरीज में जो है हम उसको तो नहीं डाल रहे हैं लेकिन मेरे को जस्ट ऐसे ही संकल्प आया आज कि प्रकृति ने जो है जो हमारी ऊर्जा दी है तो क्या घुटने क्या 40 साल में खराब करने के लिए दिए हैं 35 साल में खराब करने के लिए दिए हैं
1: नहीं
0: तो जो एसिड बन के टॉक्सिस बन के जॉइंट डैमेज हो रहे हैं तो वो भी तो हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण ही तो हुआ है
1: जी जी जी
0: तो जॉइंट के जैसे आज के ये जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो हॉस्पिटल्स आज बढ़ते जा रहे हैं ठीक है ना रोज नए नए जो है कमर्शियली जो है हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं छोटे छोटे एरियाज में भी हम देख रहे हैं कि गांव में से लेके मतलब जो है कोई एरिया बचा नहीं है मतलब आज जो है अगर हम देखते हैं तो एवरेज जो है 35-40 साल की एज होते होते जो है लोगों को जो है वो जॉइंट पेन जो है अपना शिकंजा में ले चुका होता है तो ये जो इसको मैं मेजर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ही कहूंगा
1: जी जी जी जी
0: ठीक है ना क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है अगर मैं उसके उसका प्री फॉर्म अगर लूं तो हमारा जो कैट हमारे जो एनामेल है दांतों के तो ये जो है हार्डेस्ट लेयर ऑफ मतलब कैल्शियम होता है मतलब इतना सख्त कैल्शियम होता है मतलब सबसे स्ट्रांग होता है और हमारे जो कैटिलेज होते हैं जो भी जॉइंट्स को मूवमेंट करने के लिए घुटने हो चाहे जो है और ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ जॉइंट पेन के लिए नहीं है ये चाहे कमर का दर्द है चाहे गाउट का प्रॉब्लम होता है चाहे एडी का दर्द बोल रहे हैं और कई जगह पे टाइम पे जो है हम बोलते हैं ना कि वो एडी में उस जगह पे मांस बढ़ रहा है ठीक है ना वो गर्दन का दर्द है स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है अब प्रॉब्लम जो है यूरिक एसिड बनता है कि जमावट बढ़ती है या उस एरिया में होता है तो उसको हम पेन बोलते हैं जहां पर भी यूरिक एसिड जमता है वहां पेन के सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है तो वो अगर गर्दन में जमा होना शुरू हो गया तो हमने उसको स्पॉन्डिलाइटिस नाम दिया कमर में जमा हुआ तो हमने उसको बैकएक पेन दिया अब वो जो है L3-L4 में हुआ तो जो है उसको हमने वो उसके जॉइंट के जो है वो नस दब के हम बोलते हैं अच्छा सीटी स्कैन MRI तो करते हैं हर प्रॉब्लम में क्या आती है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है या तो यहाँ पर एक नर्व कंप्रेशन
1: बिल्कुल
0: ठीक है तो इसको जो है हम अगर लाइफस्टाइल को अगर ऑब्जर्वेशंस करें अगर चाय और कॉफी पी रहे हैं तो 3 से 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए तो जो है किडनी के ऊपर जो है उसके जो एसिड बनेगा उस एसिड को निकालने का कार्यभार किसके ऊपर पड़ रहा है किडनी के ऊपर 3-4 घंटे का पड़ जाता है अब लोग जो है बस चाय पीने का अच्छा लग रहा है तो 2 कप तो हो जाती है और 4-5 कप 8-10 कप पीने वालों की भी कमी नहीं है अब घर में जो है गेस्ट आते हैं सबके लिए चाय बनती है तो थोड़ा चाय बचता है तो जो है बनाने वाला पी लेता है मतलब हमने जो है काफी चीजों को जो है सोचा नहीं है अच्छा ट्रीटमेंट के नाम पे जो है जिसको घुटने रिप्लेस कराने पड़ते हैं
1: जी जी
0: वो उससे 10 साल पहले क्या कोई भी इलाज नहीं कराया है क्या अच्छे से अच्छे और भारी से भारी दवाई या कॉस्टली से कॉस्टली मेडिसिन्स और सप्लीमेंट्स को लेके जो है पहले दिन में तो कोई व्यक्ति घुटने बदलने के लिए तैयार नहीं हो जाता है लेकिन उसको 10 साल पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी एक 45 साल की एज में प्रॉब्लम शुरू हुआ था
1: बिल्कुल,
0: लेकिन 55 साल एज होते होते 10 साल में इलाज कराते हुए उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या उसकी प्रॉब्लम जो घुटने रिप्लेसमेंट तक पहुंची
1: क्या रिप्लेसमेंट तक पहुंच गई
0: तो मतलब इसका मतलब है कि हम जो जहां पर अगर शुरुआत हुई थी वहां पर भी हमने ट्रीटमेंट्स तो लिए ही हैं और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के कंसल्टेंसी तो लिया ही है या हमारे पास भी जो जानकारी है उस जानकारी को लेके हमने जो है उसको मैनेज करने की कोशिश तो की है लेकिन हम जो है प्रकृति के जो बेसिक नियम है बेसिक रूल्स है या जो बेसिक लाइफस्टाइल से वहाँ पर हम कहीं ना कहीं हमारे समझने में कहीं ना कहीं चूक किए हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किए हैं इसलिए ये प्रॉब्लम जो है लगातार जो है बढ़ती जा रही है
1: नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा। नरेश जी हमारे बीच आ गए हैं और उनसे बातें चल रही हैं। जैसे पिछली बार हमने बातें की थी अर्थराइटिस पर कि अर्थराइटिस क्यों होता है, क्या कारण है और किस तरह से उसको रोका जा सकता है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कई बार सर्दी जुकाम और मुंह में छाले वगैरह ये सारी चीज़ें आम हो रही हैं और ये कुछ लगातार एक्सटेंड होते जा रही कुछ समय तक। दवाइयाँ लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तब भी ठीक नहीं होता है, तो इस तरह का ये मौसम है, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप?
0: जी, हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन है
1: जी।
0: और नवरात्रियाँ चल रही हैं,
1: बिल्कुल चल रही है,
0: ठंड खत्म हो गई है, गर्मी शुरू हो गई है, तो नवरात्रि पे जो है उपवास का प्राकृतिक जो है मतलब अधिकतर लोग जो है उपवास करते हैं। तो बॉडी को डिटॉक्स करने का जो सबसे नेचुरल और सबसे पावरफुल तरीका अगर है तो वो उपवास है। तो नॉर्मली हमने जैसे बताया कि समझने की जरूरत है कि जो लास्ट 3 महीने में जो हमने अपने डाइट में गलतियां की थी या वो जो खाना पेट में पचा नहीं था, पेट में सड़ रहा था, तो उसके जो है जब खाना पेट में सड़ता है तो पहला निशानी क्या होती है कि जो है गैस बनती है और एसिड एक्स्ट्रा बनता है, मतलब एक्सेस गैस बनना और एक्सेस एसिड बनना। तो एक्सेस गैस बना तो बात को डिस्टर्ब कर रहा है और एक्सेस एसिड बना तो पित्त को डिस्टर्ब कर रहा है, और जो चीज पचा नहीं है तो वो क्या करता है ना, आम बन के या कफ बन के जो है वो शरीर में जमा हुआ रहता है। और प्रकृति के जो नियम है।
1: हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो जी नमस्कार बाबू जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा प्रणाम हो।
1: जी जी जी प्रणाम है, प्रणाम।
2: हाँ, डाइजेशन हमारा बिगड़ गया था तो उसके लिए क्या लेना चाहिए था डॉक्टर साहब?
0: जी
2: थोड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ है, त्रिफला लू या वो अपना क्या नाम आंवला चूरण लू?
0: नहीं, मॉर्निंग आमला चूर्ण लो। पेट अगर गड़बड़ है, मना एक तो पेट साफ नहीं हो रहा है या तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, क्या बताना चाहते
2: हैं? अरे मैं तो बुड्ढा आदमी हूँ, मुझे मुंह में दांत नहीं है मेरे, खाने पीने में थोड़ी तकलीफ पड़ती है।
0: अच्छा,
2: 80 साल की उम्र है साहब।
0: अच्छा, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, अभी जो है डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, पेट में दर्द मरोड़ा हो रहा है या तो कब्ज है, क्या है? पेट में जब हल्का हल्का दर्द होता है तो उस टाइम पे आप चित्रक आदि बट्टी ले सकते हो, और सुबह में जो है टमाटर का जूस या टमाटर का सूप अलग से, खटाई का जो है उसको अलग से पी सकते हो सुबह में।
2: खट्टी
0: छाछ? नहीं, छाछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, खट्टी छाछ शरीर में दर्द पैदा करता है, खट्टी छाछ स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है।
2: तो टमाटर
0: का जूस? हाँ, टमाटर का जूस हो या टमाटर का सूप आप पी लो, और चित्रक आदि बट्टी के 2-3 टैबलेट जो है सुबह शाम आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपके पेट के दर्द मरोड़े पेट के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। ठीक है,
2: ठीक है साहब, ओके साहब, धन्यवाद साहब, आपका इसने हमारा सोल्यूशन बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो
0: जी।
2: नमस्कार साहब।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी जी जी, हम लोग नवरात्रि के बारे में बात कर
0: जी। तो प्रकृति का जो सिस्टम है, जो खाना पेट में डाइजेशन में नहीं गया, पेट में सड़ा है या तो फिर जो है आम बन के या कफ बन के शरीर में डिपॉजिट है, तो जैसे मौसम की चेंज होती है तो प्रकृति उसको जो है शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करती है। और वो बाहर निकालने का सबसे जो है सहज साधन क्या है कि जो है जो टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है तो उसको कफ बना के निकलने के लिए प्रयास करती है। तो इसलिए इस टाइम पे जो गले की जो प्रॉब्लम हो रही है या तो फिर जो है थोड़ा सा बुखार आना, वायरल फीवर होना, या तो फिर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो है गले के, गले में जो है खराश होना या गले की प्रॉब्लम होना
1: जी, जी, जी।
0: तो ये जो है ये जैसे ठंड था गर्मी था तो पानी पीने की कमी है या पेट की गर्मी है, या तो फिर जो है अपना जो 3 महीने का जो लास्ट 3 महीने का जो हमारा लाइफस्टाइल या खाना पेट में सड़ा है तो उसके कारण ये इफेक्ट आते हैं। तो इस टाइम पे सबसे बढ़िया जो है अभी पतंजलि का जो है श्वासाहारी अबलेह करके एक छोटी सी पेस्ट टाइप जो है मेडिसिन आती है, उसमें पीपली है, काली मिर्च है, शहद है, इस तरह के कुछ और हर्ब से मिलके बना हुआ है। ये गले के जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, तो ये नॉर्मली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हर जगह पे जो है पतंजलि के दुकानों में मिल जाएंगी, पर बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ती भी है, लेकिन उसका जैसे आधा पौना चम्मच हम सुबह शाम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो गले से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कफ जमा हुआ है, खांसी आ रही है, कोई भी इनकी पुरानी खांसी है, तो उन सब में जो है ये श्वासाहारी अबले है, तो जो है पतंजलि का है, तो इसके रिजल्ट्स जो बड़े अच्छे आ रहे हैं और कॉमनली हर जगह पे अवेलेबल हो सकते हैं। पेस्ट टाइप का, जैसे चमनकास होता है ना, पेस्ट होता है ना, वैसे पेस्ट टाइप है। तो इसका पौना चम्मच से एक चम्मच सुबह से हम खा सकते हैं। तो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खांसी हो, जमा हुआ बलगम हो, तो ये सब में जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो साथ में जो है हमारा अभी जो गर्मी शुरू हो रही है, तो गर्मी शुरू होने से ये जो गले की खराश के प्रॉब्लम्स है, तो ये भी पेट की गर्मी से कनेक्टेड है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: हाँ, तो शरीर की इंटरनल गर्मी को कम करने के लिए जो है इस टाइम पे सबसे अच्छा जो है, मैं तो बोलता हूँ कि खीरा जो है, अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, तो नॉर्मल पानी पीते हैं तो उतना तो पानी यूरिन से जो है बार बार निकल जाता है, लेकिन जब हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं पानी, तो जैसे हम खीरा को क्वांटिटी में खाते हैं, जिनको भी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन रहता है, डिहाइड्रेशन रहता है, इवन के कंस्टिपेशन रहता है। कंस्टिपेशन भी क्या है, आंतों में पानी जो है, पानी सूख गया है, वो तो टॉयलेट उतना हार्ड हो जाता है, तो वहां पर अगर हम खीरा को अगर हम क्वांटिटी में खाते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि जैसे नाश्ता करने से पहले भी आप जो है 3-4 खीरे ले लीजिए, और दोपहर को लंच से पहले भी 3-4 खीरे ले लीजिए। मतलब 5-6 खीरे होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम से 600 ग्राम हो सकते हैं प्लेट। लेकिन उतनी क्वांटिटी में अगर हम खीरा अगर उपयोग में ले रहे हैं, और साथ में जो है मैंने बताया कि सलाद में जैसे आप टमाटर ले लो, मॉर्निंग में आंवला ले लिया, तो जिनको भी क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के प्रॉब्लम रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि अल्कालाइन वाटर, तो एक्चुअली अल्कालाइन वाटर पीएच बाहर होना और बॉडी में अल्कालाइन इफेक्ट कितना करना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। जैसे हम बोलते हैं नींबू, नींबू अल्कालाइन है या एसिडिक है? एसिडिक है, लेकिन नींबू डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट देता है? अल्कालाइन इफेक्ट देता है। तो ऐसे ही पानी, हमने बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि अल्कालाइन वाटर पियो, मतलब मशीनों से करके भारी भारी महंगे मशीन से बोलते हैं कि पानी का पीएच जो है ये पीएच चेंज हो गया, लेकिन अब डाइजेशन सिस्टम में जाने के बाद वो चेंज करके बॉडी के ऊपर कितना अल्कालाइन इफेक्ट देगा, ये कोई जजमेंट नहीं करता है। तो हम अगर अल्कालाइन सोर्स मतलब सलाद खाते हैं, या जैसे हमने बताया कि जो है एक ग्लास पानी में जो है थोड़ा सा पुदीना पत्ता, थोड़ा तुलसी पत्ता, थोड़ा एक छोटा टुकड़ा अदरक का, और 2-3 खीरे, 2-3 गाजर के टुकड़े डाल दो, वो जो पानी अल्कालाइन वाटर बना, वो बॉडी में जो अल्कालाइन इफेक्ट दे रहा है, इवन की ये सब चीजें ज्यादा डालने से क्या, पानी फिर 5-6 घंटे के बाद फिर पानी सड़ने लग जाता है और उसको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। तो इसमें जो है पुदीना और अदरक और तुलसी के पत्ते डाल दे, तो बार बार वो सड़हान की इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये जो हमेशा समझने की जरूरत है कि अल्कालाइन इफेक्ट बाद में डाइजेशन सिस्टम जाने के बाद बॉडी में एक्चुअली अल्कालाइन इफेक्ट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी बेनिफिट्स दे रहा है। और ये जो देखा, ये हमारे सलाद के फॉर्म में अगर हम खाते हैं, मतलब यंग और हेल्दी रहना है, तो सबसे इजीएस्ट साधन है कि आप सलाद खाने की आदत को कंपल्सन करो। और इसमें जो है आजकल खीरा अगर खा रहे हैं, हाँ, और अभी तरबूज का सीजन आ गया, खरबूजे का सीजन आ गया, प्रकृति देखो गर्मी के दिन में बॉडी को हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए इस तरह के फल और सब्जियां जो है प्रचुर मात्रा में गर्मी के दिन में उपलब्ध कराती है। तो तरबूज और खरबूज खाने का फिर से वही नियम है कि आप गर्मी के दिन के जितने भी फल ला रहे हैं उसको आप पहले पानी में डाल के रखिए और उसकी अंदर की इंटरनल गर्मी को निकल जाने दीजिए। और तरबूज अगर हल्का भी खराब है तो उसको चल जाएगा बोल के उसको खाने की कोशिश नहीं करो, नहीं तो वो गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है। इसलिए तरबूज को आप अच्छे से जो है लाइए, धो के जो है उसको पानी में डाल के 1-2 घंटा रखिए, उसकी गर्मी अंदर से निकल जाएगी। एंड उसके बाद जो आप सेपरेट खाइए, इसको खाने के साथ मिला के नहीं खाना। ऐसे भी हम बोलते हैं फल को सेपरेट खाओ, लेकिन तरबूज तो खाने के बाद अभी इनके आप पानी भी पीने की इच्छा तो होती नहीं है, लेकिन अगर पानी पीते हैं तो वो भी सेटल नहीं होती है।
1: हेलो जी, नमस्कार।
3: हेलो, नमस्ते। ओम शांति।
0: ओम शांति जी, बोलिए।
3: हाँ, सर को भी नमस्ते। ओम शांति।
1: ओम शांति जी। ओम शांति
0: जी।
3: मेरे हस्बैंड को अभी बुखार आ रहा है।
0: हाँ जी।
3: जो भी दवाई लाए बाहर से, दो तीन बार दवाई लाए, पहले तो मेडिकल से लाके पीते थे तो उसको फर्क नहीं हुआ, फिर दो तीन जगह से दवा लाए तो उससे भी क्या होता है, दवा लाते तो दो तीन दिन अच्छा रहता है, फिर रात को बुखार आ जाता है
0: जी। एक बार देखो बार बार हो रहा है तो आप जो बुखार के एक बार जांच भी करा लीजिए, कहीं पर जो है मलेरिया है, टाइफाइड है या दूसरा कोई बुखार तो नहीं है। और नॉर्मल वायरल बुखार है तो हमारे जैसे फीवर मैनेजमेंट के हमने डिस्कशंस किया था तो इसमें आयुर्वेदिक दुकान में एक अमृता रिस्ट आता है और महासुदर्शन घनबट्टी आती है, ठीक है ना। तो आप अमृता रिस्ट के जो है 25-30 ml पानी में मिला के सुबह शाम दीजिए और दो दो गोली महासुदर्शन घनबट्टी का दीजिए। और बुखार के लिए हमने जो काढ़ा बताया था, काढ़ा इन दी सेंस की जो है हमारा दालचीनी, तुलसी के पत्ते, पुदीना पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग, अदरक या सौंठ का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा या एक नीम का पत्ता। तो नीम का पत्ता क्या स्ट्रॉन्गली एंटी वायरल होता है,
3: कड़वा नीम
0: आधा या एक पत्ता ही डालना है। तो इसका एक काढ़ा बनाएंगे, 1.5 कप पानी में सारी चीजें डालेंगे और मीठा करने के लिए गुड़ डाल देंगे। इस काढ़े को 2-3 बार दे दो और ज्यादा प्रॉब्लम हो तो अमृता रिस्ट और महासुदर्शन घनबट्टी भी दो दो गोली एडिशन करके दे दीजिए। और दिन भर में जो लिक्विड डाइट या उबली हुई सब्जियां देनी है, बुखार अगर है तो 99.5 डिग्री से भी ऊपर का बुखार है तो अनाज पचने में नहीं जाएगा, लेकिन शरीर में पानी की कमी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो सिर्फ लिक्विड ऑरेंज का जूस है, मौसम्बी का जूस है, ये काढ़ा है, गुनगुना पानी है, शहद का पानी है, नारियल पानी है ना, कुछ भी लिक्विड आइटम या तो कुछ बॉइल्ड सब्जियां अगर बुखार ना हो तो इस रीति से एक दिन या दो दिन मेंटेन करके रखे डाइट में, शरीर में डिहाइड्रेशन होने ना दीजिए, ये काढ़ा दीजिए और ज्यादा प्रॉब्लम है तो अमृता रेस्ट और महासुदर्शन घनपट्टी को एडिशन कर लो। फिर भी 99% लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो है फिर से बुखार आ रहा है तो जरूर से खून का जांच कराए और डॉक्टर की सलाह लीजिए, ठीक है।
3: मैं तो बोलती हूँ सर, लेकिन वो ना डरते नहीं, बोले नहीं जाना है तो
0: नहीं। देखो ये जो है ये हमें गलत फहमी में नहीं रहना है, आप 2-3 दिन इलाज कराइए, अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल ही जाता है, फिर अगर नहीं मिलता है तो डॉक्टरी जांच हमें करानी है, ठीक है जी। अभी जो गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से, पूरे गाइडलाइन के हिसाब से आप मानिए, फिर भी अगर 2-3 दिन में आपको लगता है कि फिर भी बुखार बार बार आ रहा है तो जरूर से जांच कराइए, ठीक है।
3: तो काढ़ा क्या बोला, कौन सा पाउडर?
0: तुलसी के पत्ते, पुदीना के पत्ते,
3: वो नहीं, और बोला ना
0: अमृता रिस्ट वो गिलोय का ही काढ़ा होता है, अमृता माना गिलोय होता है, वो अमृता रिस्ट करके हर आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाती है। हाँ, उसका 25-30 ml पानी में मिला के साथ में दो दो महासुदर्शन घनबट्टी सुबह शाम दीजिए और ये काढ़े का प्रयोग करिए। और खाने में हमने जो बताया उस तरह से अनाज को एक बार अवॉइड करते हुए लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डाइट पे उनको रखिए 2 दिन के लिए, ठीक है। ओके
1: जी जी। नमस्ते, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का जी। अरे जी बताइए।
0: तो शरीर पे जो, क्योंकि हमेशा हर कोई क्या करता है ना, मार्केटिंग के तौर पे क्या करता है ना, प्रकृति के कुछ नियम को लेके बेनिफिट्स को अलग रीति से समझा के अपने प्रोडक्ट्स या मेडिसिन बेचने के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम बात को समझ जाए, अब जैसे हमने चाय के ऊपर डिस्कशन किया, अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो है गाँव में जो है एग्रीकल्चर जुड़ी हुई फैमिली है और उसके जो है माता जी जो है, तो जिस दिन में 3 कप चाय पीने की आदत थी और जो है कुछ मतलब चाय तो ऐसे बोलता था कि जो है जिनका बच्चा कंसल्टिंग के लिए आया तो बोला कि जो चाय तो छोड़ने के लिए समझाऊंगा तो जो समझ ही नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं। तो मैंने सिंपल सा बताया कि 1 कप चाय पीने से जो है किडनी के लिए 3-4 घंटे का काम बढ़ जाता है। जो यूरिक एसिड हम घुटने के दर्द से परेशान है, हम जो घुटने का दर्द को ठीक करना चाहते हैं उसके लिए जो भी मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, चाहे कहीं से भी ट्रीटमेंट करा ले, कितना भी पैसा खर्चा करा के ट्रीटमेंट करा ले, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा,
1: बिल्कुल
4: फिर तो वही कोई
0: फिर से हम यूरिक एसिड निकालने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यूरिक एसिड तो 3 कप चाय से लेके

0: 12 घंटे के लिए किडनी के ऊपर काम वर्कलोड हम बढ़ा रहे हैं तो कभी घुटने ठीक हो सकते हैं क्या?
1: नहीं हो सकते।
0: तो सिंपल सा हमने सजेशंस दिया कि आप सुबह से रात तक कन्विंस किया। कन्विंस करने के लिए हमने चाय के बदले में अल्टरनेट चाय, अभी जो हमने काढ़ा बताया ना, बुखार में इतने सारे इंग्रेडिएंट डालने की जरूरत नहीं है। अगर दालचीनी, पुदीना, जीरा या पुदीना पत्ता नहीं है तो तुलसी के पत्ते ले लिए, और स्वाद के अनुसार लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है ना,
1: तो भी चल जाएगा।
0: कुछ भी चीज,
1: थोड़े चार पांच इंग्रेडिएशन भी आप जा है ना यूज करके काढ़ा बना के पी सकते हैं। हाँ जी,
2: नमस्कार जी, ओम शांति, जय श्री कृष्णा।
1: जय श्री कृष्णा, बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
2: आपको भी नमस्कार मेरा।
0: जी नमस्कार
2: जी, तेज नारायण बोल रहे हैं लुधियाना पंजाब से।
0: जी जी बोलिए
2: जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। तो जी मेरा जो है ना, मेरे वाइफ का पैर जो है ना घोड़ी पर से फिसल के गिर गया, उसका जो है ना एड़ी में फ्रैक्चर हो गया है।
0: ओके,
2: तो उसके लिए खाने में हम डॉक्टर से तो इलाज हम करा ही रहे, लेकिन खाने में उसको क्या क्या हम दे सकते हैं?
0: जी भोजन में आप जो है, आप इनको जो कढ़ी पत्ता बिल्कुल दीजिए, कढ़ी पत्ता की चटनी बना के। कढ़ी पत्ता एक नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। सहजन की जो सिंगी आती है ना, ड्रमस्टिक फलियां, उसको जो है आप उबाल के उसकी सब्जी बना के या उसका सूप बना के दे सकते हैं। और हड़जोड़ और अश्वगंधा का भी प्रयोग कर सकते हैं। हड़जोड़ के जो है ताजे पत्ते आते हैं या पाउडर आता है, तो उसका घी में हलवा जैसे बना के या पाउडर एक चम्मच सुबह शाम देंगे और अश्वगंधा देंगे, तो उससे जो है बहुत अच्छे जो है आपको हड्डी क्विकली जुड़ने और सूजन नहीं रहने, वो सब में फायदा मिलेगा। भोजन से खटाई और उसको जरूर से अवॉइड करें, माना टमाटर आदि जो खटाइयाँ डालते हैं भोजन में,
2: जी
0: तो उसको सेपरेट खा सकते हैं टमाटर को आज ए सलाद, बट भोजन में खटाई आप अवॉइड करेंगे। और कढ़ी पत्ता, ड्रमस्टिक और अश्वगंधा या हड़जोड़, ये सब का प्रयोग करेंगे तो जल्दी से हीलिंग होगा, ठीक है?
2: और कढ़ी पत्ता तो इधर मिलते नहीं है ना?
0: कढ़ी पत्ता का देखो पाउडर आता है सब्जी के दुकान में मिलता है, नहीं तो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, तो आप कढ़ी पत्ता का पाउडर ले लीजिए और उसको धनिया पुदीना कुछ मिला के चटनी भी बना सकते हैं, ठीक है?
2: अच्छा, चटनी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं?
0: हाँ हाँ, चटनी के तौर पे आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए, तो उससे आपको बिल्कुल, वो ड्राइड कढ़ी पत्ता भी आता है तो उसका भी वही कैल्शियम का बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल।
2: और एक बताया था आपने कि जैसे गले में खराश आता है ना, खांसी होता है, पतंजलि का उसका नाम मैं
0: श्वासाहारी अबलेहा,
2: अबल
0: श्वासाहारी अबलेहा, अबलेहा माना चटनी पेस्ट, श्वासाहारी अबलेहा।
2: जी
0: ओके
1: ओके जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे यूरिक एसिड को कैसे हम लोग खत्म करें, या
0: तो हमने जैसे समझाया, कन्विंस किया, और उसके बदले में हमने दालचीनी का जो काढ़ा देते हैं जो बताया अपने अल्टरनेट चाय में, तो दालचीनी क्या करती है ना, दालचीनी दिमाग को जो है 7-8 घंटे के लिए ताजगी देती है। जैसे चाय कॉफी पीते ना, कैफीन के कारण 1-2 घंटे की ताजगी की महसूसता होती है, तो जैसे दालचीनी देते हैं तो दालचीनी हमें 7-8 घंटे के लिए ताजगी रखती है। और ये एक्सपीरियंस बताऊं तो उस माताजी का जो है, वो चाय जो है उन्होंने पहले दिन से एक आधा कप, मतलब 3 कप से रिडक्शन करते हुए 5-7 दिन में चाय छोड़ चुके हैं। तो कितना भी चाय पीने की आदत हो,
1: छूट जाती है। हेलो जी नमस्कार। हेलो
3: नमस्कार, नमस्कार
0: जी,
1: आपकी आवाज कम आ रही है भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, उनका फिर से इंतजार करते हैं। हाँ,
0: और उसमें हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया कि आप जो है दिन में 5 बार सब्जियां खाइए। सब्जियां में एक बार सलाद भी, एक बार फल भी ले सकते हैं, या तो उबली हुई सब्जी, अपने मन पसंद की सब्जी, सिर्फ उबली हुई सब्जी नहीं, आप उसमें हरी मिर्च डालिए, थोड़ा नमक डालिए, हल्दी डालिए, जीरा डालिए, धनिया डालिए, और कुछ गरम मसाला भी थोड़ा डालना है तो भी डालिए, लेकिन अपने मन पसंद की सब्जी बनाइए। लेकिन अनाज को हमें 12 घंटे के लिए जैसे नहीं खाना है, जैसे उपवास का हमने शेड्यूल दिया, एक तो होता है कि पानी से उपवास करें, और एक हमने सहज दिया कि आप दिन में 3-3 घंटा छोड़ के सुबह 8-9 बजे, 9 बजे, 12 बजे, दोपहर को 3 बजे और शाम को 6 बजे क्वांटिटी में सब्जी खाइए। 4 बार सब्जी खाने के बदले में 1 बार सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, कच्चा फॉर्म में खा सकते हैं, 1 बार चाहे तो सीजन का फल भी खा सकते हैं। और रात को 8 बजे जो है अगर भूख की फीलिंग है तो सब्जियों के साथ जो है 2 रोटी खा सकते हैं। अगर ये शेड्यूल, अगर प्रोग्राम कोई भी व्यक्ति कोई भी बीमारी में करता है, एंड ये शेड्यूल कुछ दिन के लिए लगातार किया जा सकता है,
1: बिल्कुल
0: सहज कर सकते हैं, तो चाहे उसका घुटने का प्रॉब्लम है, चाहे उसका जो है बीपी का प्रॉब्लम है, चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, चाहे उसका डायबिटिक का प्रॉब्लम है, चाहे शरीर के ऊपर से नीचे तक जो है कोई भी ऑर्गन में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर प्रकृति का ये सिंपल सा नियम कि पाचन तंत्र को जो अनाज खाने से जो है 12 घंटे के लिए तो छुट्टी दे दो रात को एक बार भूख लग रही तो भी हमने अनाज खाने का ऑप्शंस दिया, अगर ये शेड्यूल्स अगर मेंटेन करने हैं तो चाहे वेट मैनेजमेंट करना हो, उसके घुटने ठीक करना हो, तो उन माता का जो है घुटने में काफी अच्छा आराम हो गया, मतलब कुछ 5-7 दिन ही हुए हैं लेकिन जो परेशान थी दर्द से
1: वो खत्म हो गया,
0: वो खत्म हो गया।
1: हेलो जी नमस्कार।
4: हेलो जी नमस्कार रमेश भाई, मैं सुरेश भाई धानेरा से आपको और डॉक्टर साहब को और सभी सुनने वालों को मैं प्रणाम कहता हूँ। ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति जी।
4: जी जी जी, मैं डॉक्टर साहब ने ये कहना चाहूंगा कि मुझे बार बार पथरी हो जाती है, अभी 1.5 साल ही ऑपरेशन कराया, लगभग 50-52 mm निकाली, फिर भी 16-20 mm की हो गई है, और मैं पूरा खाने पीने की ध्यान रखता हूँ और जो आयुर्वेद देसी दवा का भी उपयोग करता हूँ, लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अब क्या करें, तो आप बताइए
0: जी।
4: फोन बंद करता हूँ, आप
0: कुछ टिप्स देता हूँ, बाकी फिर फोन से भी और बात कर लीजिएगा, कुछ पर्सनली भी डिस्कशंस कर लूंगा, इसमें कुछ बातें समझना चाहूंगा। एक तो जो है कि यूरिन को होल्ड करने वाला आदत जो है उसको हटाइए, यूरिन की फीलिंग आती है तो तुरंत यूरिन करना है। दूसरा जो है सीधा सोना है, सोने का पोस्चर जो पैर मोड़ के टेढ़े पोस्चर में सोते हैं, जितना सीधा सोएं या करबट पे सोए तो करबट सोले, लेकिन पैर फोल्ड करना, ये सब के पोस्चरल करेक्शंस करना जरूरी है। तीसरा जो है हमें तरबूज है, कुल्थी की दाल है, कुल्थी का दाल जो है घरों में आजकल कम बनता है, लेकिन कुल्थी को भी पानी में भिगो के 10-12 घंटे जो है उसका दाल बना सकते हैं, तो कुल्थी की दाल का पानी जो है हमें पथरी निकालने में मदद करता है। तो सुबह में जैसे हमने आंवला लिया, अगर हमारा कैल्शियम का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर हम ज़्यादा दूध वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा हम जैसे चाय लेते हैं, तो वहाँ पर कैल्शियम की मैनेजमेंट बिगड़ती है, तो टेंडेंसी होती है कि पथरी बार बार बनता है। तो हमें अगर पुनर्नवा का जैसे प्रयोग करते हैं, खीरा का सेपरेटली हम प्रयोग कर रहे हैं, तरबूज का हम सेपरेट प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, भुट्टे का जो बाल आता है तो उसको हम कलेक्ट करके उसका अगर काढ़ा बना के पीते हैं, ठीक है ना, तो पुनर्नवा जो हमारा पुनर्नवा रिस्ट आता है, पुनर्नवा का पाउडर आता है, उसको काढ़ा बना के पिए, क्योंकि किसी थोड़े लोगों को होता है कि एक रेगुलर किडनी स्टोन बनने की जो है टेंडेंसी बनी रहती है, तो उनको जो है वो कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन और कैल्शियम मैनेजमेंट बॉडी का करेक्शंस करते हुए, एंड ये जो चीज़ें हमारी जो डाइट में पैटर्न एंड स्लीप पोस्चर के ऊपर हमने जो खास अटेंशन दिलाया, ठीक है ना, इन सब बातों का अगर ध्यान में रखते, पुनर्नवा रिस्ट ले लिया, पुनर्नवा पाउडर ले लिया, तरबूज का सीजन अभी, तरबूज खाने में काम में लिया है ना, सीधा सोने पर ध्यान दिया, एंड सब्जी में टमाटर को हम कच्चा खा सकते हैं, पालक भी कच्चा खा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को पका के नहीं खाना है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान देते हुए हम अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस ट्रेंड को हम खत्म कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें थोड़ी सी भारी क्वालिटी की भी अलग से दवाई आती है जो कि मना गॉल ब्लैडर स्टोन को भी निकालने की कैपेसिटी रखती है, तो किडनी स्टोन तो निकाल ही देती है, पिघला देती है, तो ऐसा कुछ अगर ये सब पैटर्न अगर मैनेजमेंट नहीं होता है, किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम जैसे आप बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे आयुर्वेदिक स्पेशल दवाई है, थोड़े समय के लिए अगर यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है
4: जी। मैं यूज तो करता हूँ, दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुका,
0: करा लिया, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन को भी निकालने की एक स्पेशल दवाई है, तो वो आपके किडनी स्टोन या स्टोन के प्रॉब्लम को काफी मैनेज कर सकता है।
4: कौन सी दवाई कही आपने?
0: SBM आयुर कंपनी के केरला से कुछ आती है दवाई उस कंपनी का, तो आप सर्च कर लेना या फोन से बाद में बात कर लेना, ठीक है।
4: ठीक ठीक है।
0: ओके
1: ओके जी, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, 9:41 हो रहे हैं और आप हो हमारे साथ रेडियो मधुबन पर, आप सुन रहे हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम को। चलिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे स्टोन के बारे में, और स्टोन के बारे में अलग अलग मेडिसिन्स है जिसके लिए आपको नरेश जी से आप बात भी कर सकते हैं, और अभी हम लोग यूरिक एसिड की बातें और ग्रीन टी की बातें काढ़ा की बातें कर रहे थे।
0: ग्रीन टी से भी सुपीरियर है, जितना अच्छी क्वालिटी का ग्रीन टी है उसमें उतना अच्छा क्वालिटी क्वांटिटी का कैफीन है।
1: अच्छा
0: तो इसलिए एक दो कप की बात अलग है, नहीं तो कैफीन भी जो स्टोन बनाने में मदद करता है। अगर ज्यादा कैफीन इंटेक करते हैं तो भी ये बीपी को डिस्टर्ब करना, नींद को डिस्टर्ब करना एंड स्टोन बनाना
1: अच्छा
0: ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए हमने जो है काफी रिसर्च करने के बाद हम भी सोचते थे कि यार चाय का अल्टरनेट ग्रीन टी लोगों को बता दो, बढ़िया चीज है। लेकिन जो है बाद में जब उसके बारे में थोड़ी स्टडी किया, कैफीन के इफेक्ट के बारे में स्टडी किया, तो सबसे बढ़िया इफेक्ट जो है दालचीनी दिमाग को ताज रखने के लिए सबसे बेस्ट, बॉडी को भी डिटॉक्स कर रहा है, शुगर भी कंट्रोल कर रहा है ना, और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी दे रहा है। तो बेस्ट जो है दालचीनी का इफेक्ट सबसे बढ़िया है। और दालचीनी के साथ अगर आप जो है ये काढ़ा जैसे बना के पीते हैं, तो किसी की भी 20-25 कप पीने की चाय जिनकी आदत थी उनकी हमने एक झटके में छोड़े हैं लोगों ने इस काढ़े के मदद से। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स है मेरे पास। और साथ में मैंने जो सिंपल सा एक जो उपाय बताया कि आप जो है सब्जियों के ऊपर जो है सबसे अच्छा जो फ्रूट से भी ज़्यादा जो बॉडी को जो बेनिफिट्स देते हैं वो वेजिटेबल्स देते हैं। डायबिटिक वाले फ्रूट्स नहीं कह सकते, आजकल फ्रूट्स को जो है स्वीटनेस बढ़ा दिए ना, जो हाइब्रिड करते करते तो नेचुरल हो। इवन कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, अगर दांतों को मजबूत करना है ना तो गन्ने को छील के सारा कर लो और गन्ने को चूस के खाओ। और डायबिटिक वाले पेशेंट भी अगर शुगर कंट्रोल्स में अगर गन्ने को चूस के चबा के मेहनत करके खाएंगे तो भी उनको शुगर में नुकसान नहीं करता है। और इवन की मैंने देखा कि थोड़ा प्रयोग किया मैंने गन्ने को जो है मैंने चूस के खाने की, क्या कि 4-5 दिन में भी फीलिंग ऑफ वेलबिंग जो आई कि दांतों की मजबूती जो है बढ़ी है। दांतों के इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और वो जो स्वीटनेस वो जो चीज जो है जो शरीर को जो सुकून देती है। एक साथ हम गन्ने का जूस पी जाते हैं लेट एक ग्लास, एक मिनट में हमने कितने क्वांटिटी में शुगर ले लिया तो बॉडी को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन उतने गन्ने के जो हमने जो है मेहनत करके उसको चूस के खा रहे हैं छोटा सा पीस गन्ने को, वो शरीर में जो उसके शुगर जो जिस तरह से सलाइवा के साथ मिल के जा रहा है
1: तो उसका अलग ही
0: वो जो शरीर में बेनिफिट दे रहा है। और दांतों के एक्सरसाइज के साथ जितना जो है उसको उसमें जो गन्ने का नेचुरल कैल्शियम है ठीक है ना, नेचुरल आयरन है, नेचुरल मिनरल्स है, वो जो बेनिफिट रियली जो बेनिफिट दे रहा है इट इज मतलब जो है बहुत ही यूनिक बेनिफिट्स दे रहा है। तो इस तरह से जो है हमें नेचुरली चीजें खाएंगे और नेचुरल जो है शरीर को हम जो फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग का भी जो है पाचन तंत्र को आराम देना और ये सब्जियों का प्रयोग करते हैं। कोई भी बीमारी है, कोई भी क्रोनिक से क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि हमें मैनेज नहीं हो पा रही है, मैं तो बोलता हूँ ये इतना सहज प्रोग्राम है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो एक दिन से लेकर लगातार 10 दिन 15 दिन, मैं तो बोलता हूँ कि 2 दिन कर लिए, 3 दिन कर लीजिए, फिर आपको मूड नहीं है तो 2 दिन आप नेचुरल डाइट पे भोजन पे आ जाओ, दिन में 2 टाइम खाना खाना है तो खाना खाओ, फिर बाद में जो है आप फिर 2 दिन 3 दिन कर लो। तो ऐसे 1 महीने में तो 15 दिन तो व्यक्ति सहज कर सकता है। और 15 दिन 1 महीना का ये पुरुषार्थ कर ले तो उसका 10 से 15 किलो तो वजन मैनेज हो जाएगा। और उसके जॉइंट पेन है, बीपी का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर के प्रॉब्लम से ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे या उसको मैनेज हो चुके होंगे। डेफिनेटली उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी ब्रेक डाउन हो ही जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने बोला इतने बड़े बड़े डिग्रीज की जरूरत नहीं, इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट करने की मेथड्स की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जो है प्रकृति के नियम को समझो, भोजन पाचन होने में जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं कि खाना जल्दबाजी में खाते हैं, एक तो खाना चबा के खाओ एंड भोजन के साथ खटाई को सेपरेट करो, क्योंकि गर्मी का सीजन आया है तो अब लोग क्या करेंगे, अब अच्छी क्वांटिटी में दही और छाछ खाने के साथ ही खाओ। और सबसे पहले हमने बताया कि भोजन के साथ आप खटाई को मना, दही छाछ लेनी है तो आप घंटे पहले या 2 घंटे बाद दो, कृपया करके खाने के साथ जो दही छाछ खाने की आदत है उस आदत को चेंज करके देखो। इवन की जो है आयुर्वेद का पहला ही हिसाब में लिखा है कि दही जो है प्रकृति में गर्म होती है, लेकिन हम सभी जो है पेट ठंडा करने के लिए दही के साथ जो है रोटी और दही के साथ चावल खाते हैं। एक बार लगता है कि शायद जो है थोड़ी सी ठंडगी की महसूस तो होती है, लेकिन क्योंकि दही और छाछ को भी हम ठंडा करके फ्रिज में रख के खाते हैं, तो ऐसे ही ठंडी चीजें ले तो एक बार लगता है कि यार ठंडा होता है, लेकिन फिर भी सिस्टम को अंदर गर्म करता है और उसकी तासीर गर्म है। इसलिए आप उसका प्रयोग जो है सेपरेट करके देखिए। और छाछ हो तो छाछ को दही को पानी मिला के डाइल्यूट करने को छाछ नहीं कहा जाता है, उसको बिलोने में बेल के उसका जब क्रीम या फैट निकाल दिया जाता है तब उसको छाछ बोलते हैं। और खट्टी छाछ पीने का जो है नहीं करिए, शरीर में दर्द बढ़ाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, कफ की प्रॉब्लम बढ़ाता है। और लोग जो है फिर रात को दही लेते तो जब माइक्रो जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो माइक्रो सर्कुलेशन के लिए जो अपने सूक्ष्म नस नाड़ियां है ना उनको ब्लॉकेज करने का काम जो है दही करता है। और रात को अगर ये दही लेने के लिए मना इसलिए करा किया गया है आयुर्वेद में कि कई कोई आस्थमा वाला पेशेंट कफ वाला पेशेंट ले ले तो उसको जो है उसके प्रॉब्लम जो है क्रोनिक हो जाते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जैसे बॉडी का हर ऑर्गन सिस्टम से जब तक 40-50% तक ब्लॉकेज या प्रॉब्लम डेवलप नहीं होते तब तक हमें सिम्टम्स नहीं आते। ऐसे नहीं कि खराटे आ रहे हैं, खराटे आ रहे हैं तो उसका जो है 30-40% उसका सिस्टम जो है चोक, कहीं ना कहीं 40% से ज्यादा उसका जो है लंग्स चोक है, इसलिए उसको खराटे आ रहे हैं। तो इन व्यक्तियों को अगर वो पता नहीं चलता कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम को क्रोनिक करना जाता है और बॉडी उसको अंदर से संघर्ष करती रहती है उस कफ को रिमूव करने के लिए, और बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो है वहाँ वेस्ट जा रहा है। तो जो बॉडी की लाइफ फोर्स हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन अंदर से जो है संघर्ष में वो एनर्जी खत्म हो रही, इसलिए हमारी उस बॉडी के ऑर्गन में धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए अगर इन जो फूड कॉम्बिनेशन के जो सूक्ष्म नियम है, अभी आम का सीजन आने वाला है तो सारी दुनिया को क्या मजा आता है। तो फल को जब हम बोलते हैं कि दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए, फल को भोजन के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फल जो है वो पचने के लिए उतनी ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती, उतनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिड वाला वातावरण जरूरत नहीं होता जो कि अनाज को पचने के लिए जरूरत होता है। तो फल सुपाच्य होता है, फल जो है 20 मिनट के लिए पेट में प्रोसेस होके छोटी आंत में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हम जब अनाज के साथ फल मिला लेते हैं और आम तौर पे मिलाए नहीं मिलाए लेकिन आम के सीजन में तो हम आम के साथ जो है रोटी खाना और आम के साथ चावल खाना पसंद करते हैं। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप कभी मूड हुआ थोड़ी सी एक छोटी पीस आपने खाने के साथ खाने की इच्छा हुई तो खा लिया, वो सेपरेट बातें, लेकिन अधिकतर आप कोशिश कीजिए कि खाने से 2 घंटा पहले या तो नाश्ते के बदले में मैंगो खा लेंगे या दिन में 11-12 बजे सेपरेटली मैंगो खा लेंगे या खाने के 2-5 घंटे बाद शाम को सेपरेट खा लेंगे, लेकिन भोजन के साथ जितना हो सके इस सीजन में मैंगो हो या कोई भी फल हो भोजन के साथ मिला के नहीं खाएंगे, सेपरेट ही खाएंगे। एंड दूध के साथ भी फल नहीं मिलाना चाहिए, ये तुरंत ही एसिड बन जाता है, 100% ये एसिड बन जाता है। और आम का जो न्यूट्रिशन है फाइबर है अगर सही तरीके से खाते हैं तो ये बॉडी में स्टोर होके इसके जो विटामिन से मिनरल से लीवर में स्टोर होके साल भर तक हमें काम मदद कर सकते हैं, पेट के डाइजेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। बेल का सीजन आ रहा है तो जहां पर अच्छी क्वांटिटी में बेल मिलता है तो डायरेक्ट बेल खाना या कम थोड़ा मीठा कम करते हुए इसको खाना। तो जिनको भी पेट की समस्या रहती है, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, हार्ड स्टूल रहता है, अगर पका हुआ बेल का फल का अगर सही तरीके से हम प्रयोग करते हैं तो फिर पेट की समस्याएं जो है ठीक कर सकती है। जैसे हमने बताया कि बारिश के दिन में नाशपाती आती है, ये पेट की समस्या ठीक करती है। और ये बेल जो है हमें अभी 3-4 महीना आराम से मिलेंगे, तो बेल का चाहे पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, बेल का मुरब्बा फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी जो ताजा बेल आएगा तो इस बेल का प्रयोग करते हुए हम जो है अपना डाइजेशन सिस्टम्स को जो है बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और जैसे गर्मी का दिन है तो जो लू लगता है तो नींबू के साथ चीनी मिलाना है, और नींबू चीनी का जो शरबत बनाते हैं बहुत ही राइट कॉम्बिनेशन नहीं है, नींबू खट्टा है और इधर हम चीनी का मीठा मिला रहे हैं। तो दोनों ऑपोजिट नेचर के चीज को मिला के पीते हैं तो पीने से हम बोलते हैं कि वहां पर अगर आप गुड़ और नींबू गुड़ और इमली का कॉम्बिनेशन लेते हैं या कोकम और गुड़ का कॉम्बिनेशन लेते हैं, देखिए दोनों चीज को पानी में भिगो दीजिए और मसल के छान के जो है उसका शरबत बना के आप पी लीजिए, उसमें थोड़ा नींबू डालना है तो बेशक डाल लीजिए। नींबू तो जो है गर्मी बढ़ती जाएगी नींबू महंगा होता जाएगा लेकिन इमली तो जो है इमली तो स्टोर्ड है तो इमली गुड़ या कोकम गुड़ का काढ़ा बनाए घर में, जो हम रिफ्रेशिंग करने के, लू से बचने के लिए हम जहां पर चीनी और नींबू का पानी पीने का जो आदत है उसके बदले में आप इसको चेंज करिए। कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको भी वो सर्व कीजिए, उनको एक स्पेशल रिफ्रेशमेंट की अनुभूति होगा, लू नहीं लगेगा, लू लगने से भी बचेगा। तो इस टाइम पे जो हमारा जीरा, धनिया, सौंफ, ये तीनों ही की तासीर क्या होती है, बॉडी की गर्मी को कम करना। तो जिनको भी बॉडी में गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है तो जीरा, धनिया, सौंफ को और मिश्री को जरूरत पड़े तो रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह छान के मसलते हुए उसका एक ग्लास पानी उसको सुबह में पी। तो टोटल बॉडी की जो गर्मी है, हीट को जो है ड्रेन आउट करने में और खीरा का जो है क्वांटिटी बढ़ाते हुए खाने में, ठीक है ना। तो ये सब जब के जो है बॉडी को जो है हाइड्रेट करके मेंटेन करने का जो है हम आदत अगर बना के रखेंगे तो ये जो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, खांसी की प्रॉब्लम है या कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये सब जो हमें सहज जो है हमारे सॉल्व हो सकते हैं।
1: चलिए नरेश जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि जैसे आपने काढ़े के बारे में बताया और शरबत के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि जैसे अभी जी मचल जाता है कभी कभी ऐसे टाइम में
0: जी
1: थोड़ा सा अनइजीनेस लगता है
0: जी,
1: तो मुँह कड़वा कड़वा भी हो जाता है
0: जी,
1: तो ये क्या कारण है इसका?
0: सिंपल सा काम है कि बॉडी बोल रही है कि जो है वो, क्योंकि खाना इस टाइम पे क्या होता है सड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो एक टेम्पर एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ती है बहुत ज्यादा गर्मी होना शुरू हो जाता है, जैसे अपना मई जून की गर्मी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है भूख की इच्छा भी जैसे खत्म हो जाती है। तो और उस टाइम पे जो हमारा खाना बनाते जो सब्जी हमने बनाई है वो सब्जी भी मतलब 3-4 घंटे के बाद खराब होना शुरू हो जाती है, मतलब बाहर रखा हुआ है तो इवन कि अब हमने 4 घंटे बाद हमने क्या किया, खाना हमने जो है हमने 4 घंटे बाद खाया, खाने के टाइम पे
5: अभी बजे हैं सुबह के 10, स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: आरामी की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है हेमलता गोयल। आप आबू रोड के रहने वाले हैं, आपने 8वीं तक पढ़ाई की है, आपकी उम्र 60 प्लस है और आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। घर परिवार को तो आप चलाते हैं, अच्छी तरह संभालते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गीत संगीत, डांस सभी का शौक है और विशेष करके सत्संग में जाना, भजन कीर्तन करना। वो भी तो कहते हैं ना कि नारी शक्ति में क्या नहीं होता है, नारी शक्ति में हट करके विशेषताएं होती है, तभी तो कार्यक्रम का नाम रखा है वंदे मातरम। तो आइए मिलवाते हैं। हेमलता जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: जी हाँ, धन्यवाद।
0: हेमलता जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप पहली बार इंटरव्यू दे करके खुश है या पहले कभी दिया?
1: नहीं, पहली बार देके खुश हूँ।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, एक नया अनुभव।
1: नया अनुभव है
0: जी। जी तो चलिए आपके बचपन की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, पिचपन में बचपन की बातें करें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
1: मेरा बचपन जोधपुर में बीता और बहुत अच्छा बीता, फ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ। खूब घनश्याम जी मंदिर और मंदिर में जाके खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सिलाई बुनाई करना, बहुत अच्छा रहा 8वीं तक।
0: जी जी, आपकी चार फ्रेंड है?
1: चार,
0: आपने बताया, मेरे चार फ्रेंड के साथ बीता।
1: चार फ्रेंड है मेरे साथ
0: और पांचवे आप?
1: पांचवी में।
0: पांच पांडव। तो चलिए, आप कितने भाई बहन हैं, आपके माता पिता क्या काम करते थे, बताएंगे?
1: मेरे छह भाई हैं और एक बहन हूँ मैं, और मेरे पिताजी रेलवे में चेयरमैन थे।
0: तो क्या बात है, छह भाइयों की इकलौती बहन है आप, तो बहुत ही लाड प्यार मिला होगा आपको तो।
1: हाँ जी, बहुत लाड प्यार मिला,
0: स्वाभाविक है, हर डिमांड आपकी पूरी हुई होगी।

0: पूरी हुई है और डिमांड पूरी हुई और आज भी हो रही है।
1: क्या बात है, आज भी पूरी हो रही है।
0: हाँ आज भी पूरी हो रही है।
1: चलिए ये बहुत अच्छी बात है, 60 की उम्र में आज भी डिमांड पूरी होना। नहीं तो कहते हैं कि भाइयों की शादी हो जाती, भाभी आ जाती है, फिर नंदों को भाई फर्क पड़ जाता है देने लेने में, लेकिन आज भी आपकी डिमांड पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर के अच्छा लगा
0: जी। हाँ धन्यवाद।
1: अच्छा तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि 6 भाइयों की इकलौती आप बहन है, आप सातों ही भाई बहन कैसे रहते थे?
0: सातों भाई बहन मिलके रहते थे, सब भाई मुझे प्यार करते थे। मैं चौथे नंबर की थी, 3 भाई मेरे से बड़े हैं, 3 भाई छोटे हैं, मैं 5वें नंबर की थी।
1: अच्छा तो फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की?
0: पढ़ाई इसलिए नहीं की कि छोटे भाइयों को संभालना था, फिर आगे पुराने जन्म पढ़ाते नहीं थे इतना, फिर घर वाले बाहर नहीं निकालते थे, बंदिश बहुत थी, पहला जैसा जमाना अभी नहीं है।
1: इकलौती बेटी है तो चिंता भी रहती थी कि कहीं हमारी बिटिया के नजर नहीं लग जाए।
0: सही बात है।
1: ये तो मजाक थी, खैर माता पिता की जो सोच होती है वो होती है, ऐसा नहीं है।
0: जन्मन कहा निकालते थे बाहर?
1: जी जी जी, पहले बहुत ही बंदिश होती थी
0: बहुत,
1: पर आप तो जोधपुर जैसे शहर में थे, फिर भी
0: बंदिश थी ना। मेन बाजार में रहते हैं, हमारा मकान सिटी में ही है।
1: अच्छा आपके पिताजी क्या काम करते थे?
0: मेरे पिताजी रेलवे में फोरमैन थे।
1: अच्छा अच्छा,
0: फोरमैन की पोस्ट पे थे। पर
1: जी जी, तो आपने जैसे 8वीं तक पढ़ाई की, तो आपके टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार था?
0: अच्छा व्यवहार था मेरा, टीचर के साथ में भी अच्छा था, फ्रेंड के साथ में भी। एक फ्रेंड तो ये बेटी सामने।
1: अच्छा क्या बात है,
0: दोनों एक ही स्कूल में पढ़े।
1: तब तो आपके फ्रेंड का भी जरूर लेंगे, हम बात करेंगे आपके फ्रेंड से भी। हेमलता जी के फ्रेंड है, यही साथ में बैठे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, पहले हम हेमलता जी के अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा बचपन आपका गुजरा है, बीता है। आपके जमाने में कौन से गेम खेला करते थे?
0: हमारे जमाने में खो खो, चंगा पो और आंख मिचोली, सतोलिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल।
1: अच्छा ये सारे गेम होते थे, आपने किसी में पार्टिसिपेट किया?
0: मैंने वॉलीबॉल में फर्स्ट डिवीजन आई।
1: क्या बात है, कौन सी क्लास में?
0: 7th में।
1: फिर 8th में भी गए?
0: 8th में नहीं गई थी फिर।
1: तो 7th में फर्स्ट आई तो 8th में क्यों नहीं गए?
0: 8th में नहीं गई ना, मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, बीमार बहुत रहने लग गई थी मैं, फिर इसके कारण मैंने स्कूल छोड़ दिया था 8वीं पास करके।
1: अच्छा अच्छा, तो 7वीं तक आप वॉलीबॉल खेलते थे?
0: वॉलीबॉल खेले, अभी भी है मेरे पास।
1: अभी भी वॉलीबॉल रखा हुआ है?
0: नहीं, वो कार्ड रखा हुआ है ना जो फर्स्ट मिला था,
1: सर्टिफिकेट
0: और इनाम।
1: जी जी, सर्टिफिकेट तो वो कहते हैं ना कि प्राणों से भी प्यारा होता है।
0: प्राणों से भी प्यारा होता है, दिखाना पड़ता है ना भाई।
1: अपने पास सुरक्षित रहना चाहिए,
0: चाहिए। टीसी के साथ में ही देते हैं ना वो तो स्कूल में।
1: जी जी, तो आपने उसको संभाल के रख रखा, कभी काम आया?
0: कभी काम आता ही है ना, अभी तो किसी में काम लिया नहीं है मैंने।
1: अच्छा चलिए, फिर भी एक मन को खुशी प्रदान करता है
0: ना, कभी मैंने जीता ही है।
1: जी जी, देखते हैं तो बातें याद आ जाती है स्टूडेंट लाइफ की,
0: लाइफ की।
1: अच्छा और साथ ही साथ आप कह रहे थे गीत संगीत का शौक है, तो आप पढ़ाई करते थे तब गीत संगीत बोलते थे?
0: उस टाइम तो गाने ही चलते थे, भजन तो चलते नहीं थे। जब रेडियो रेडियो चलता था तो रेडियो में गाने आते थे, तो वो मैं करती रहती थी साथ साथ, तो इसी वजह से याद रह गए सारे।
1: नहीं, स्कूल में कौन से गीत गाते थे आप?
0: स्कूल में तो वही स्कूल के राष्ट्र गीत और सरस्वती के ऊपर और
1: जी जी देशभक्ति गीत, बहुत सारे गीत गाते हैं।
0: जैसे ये मनाते हैं ना सरस्वती का फंक्शन बसंत पंचमी के दिन, उस पे भी प्रोग्राम में भाग लेती थी, सब कुछ नाच कूद में। और
1: तो चंदेलाइना सुनाएंगे आप?
0: हाँ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सका।
1: जी जी जी, तो ये प्रार्थना बोलते थे आप?
0: ये प्रार्थना बोलते थे।
1: और आप किसमें भाग लेते थे?
0: बस ये खो खो में और वो बताया ना मैंने वॉलीबॉल में, और उसमें भाग लेते थे।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। तब तो आप कह रहे थे 8 में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया
0: था, इसकी वजह से फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी।
1: तो आप तो अच्छे प्लेयर रह चुके, फिर स्वास्थ्य कैसे ऊपर नीचे हो गया?
0: डिप्टेरिया हो गया था, फिर गला बंद हो गया था मेरा, तो आवाज भी नहीं आती थी मेरे से, पर फिर पढ़ाई कैसे करती। मैं 3 महीने तक एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। फिर मेरा ठीक हुआ, फिर पापा मम्मी ने कहा अब नहीं पढ़ाना बोले।
1: अच्छा, इसी वजह से आपकी पढ़ाई
0: रुक गई मेरी, नहीं तो मैं आगे पढ़ने के लिए तैयार थी।
1: जी जी जी,
0: मजबूरी थी मेरी, मेरी बीमारी के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी थी।
1: पढ़ाई में आप कैसे थे?
0: अच्छी थी, फर्स्ट डिवीजन आती थी हर विषय।
1: तो आपको बहुत दुख हुआ होगा पढ़ाई छूट गई?
0: पढ़ाई छूट गई तो मेरे को दुख हुआ था ना, आज मैं कहाँ की कहाँ पहुँचती नहीं।
1: स्वाभाविक है। जी जी जी, हर एक के सपने होते हैं जी। तो हेमलता जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरी आंखों में सपने छोटे हो या बड़े, चुन लिए है मैंने क्यों जिद पे होड़े। मेरी आंखों में सपने

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम।
1: नारी की लचक में करुणा है, पर उसके हौसलों में धार है। हर युग में उसने साबित किया नारी ही असली शक्ति का आधार है, नारी ही असली शक्ति का आधार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव बचपन के हमने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। हेमलता जी, पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: तो आपकी बचपन की बातें चल रही है, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है। याद आ रहा है बचपन भी।
1: जी, बचपन याद आ गया। तो आप बता रहे थे कि आप प्रार्थना भी बोलते थे, आप काफी बीमार हो गए इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो जब आपकी तबीयत ठीक हुई तो फिर आपने कोशिश नहीं की कि अब मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं?
2: नहीं, कोशिश तो करी थी, पर घर वाले इतना लाड़ प्यार करते थे तो भेजने के लिए मना कर दिया। बोले नहीं, एक का एक बच्ची है और तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा।
1: अच्छा, इसलिए आपको भेजा नहीं?
2: इसलिए भेजा नहीं।
1: कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओवर लाड़

0: भी गए होंगे उन बातों को,
1: बातें भूल गए अब तो यही याद आता है, और सत्संग का।
0: जी जी, सत्संग का याद आता है, सही बात है। कहते हैं एक वानप्रस्थ अवस्था आती है, एक उम्र जब बढ़ती है तो अपने आप ही मन ईश्वर की तरफ लग जाता है, तो आप भी सत्संग की तरफ ज्यादा रुचि रखने लगे। अच्छा चलिए ये बताइए, जैसे आप बता रहे थे आपके 6 भाई है, आप इकलौती बहन है, तो भाई बहनों के साथ आप कुछ खेलते थे खेल?
1: खेलते थे ना, घर में खेलते थे भाई बहनों के साथ।
0: अच्छा, तो कौन सा खेल हमको भी पता चले उस समय क्या?
1: उस समय तो यही थे ना, आग मिचोली, छुपा छुपी और खो खो खेलना, चंगा पो खेलना, भाइयों के रात में बैठ के खेलते थे बस, दिन में तो टाइम मिलता नहीं था।
0: तो आप मम्मी को हेल्प कराते थे घर के काम में?
1: घर के काम में हेल्प कराती थी, जब तो कोई बहू नहीं थी, मम्मी और हम ही थे अकेले।
0: जी जी, फिर आपके सामने ही भाभियां आ गई होगी?
1: मेरे सामने 3 भाभियां आ गई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई।
0: जी जी, तो भाभियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
1: अच्छा व्यवहार, भाभियां तो बहुत प्यार करती थी, बहुत, मेरे कपड़े तक मेरी भाभी ही धोती थी, शादी होने के बाद में भी।
0: जी जी जी, इकलौती ननंद है, सभी का प्यार मिला?
1: सभी का प्यार मिला, कभी कोई, कभी कोई, कभी वो।
0: जी, और वो कहते हैं ना कि भले कितनी भी बेटी प्यारी हो, लेकिन माताओं की आदत होती है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, तो ससुराल जाएगी तो ये वो। तो आपको भी आपके मम्मी बीच बीच में शिक्षा संस्कार देते थे?
1: देते थे, घर का काम कराते थे, सिखाते थे, रोटी बनाना सिखाते थे, सब्जी रोटी चाय पानी सब मम्मी ने सिखाया था, भाभियों ने सिखाया, जब आज हम सही है यहाँ पे।
0: जी जी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कहाँ सीखी?
1: ये यही आके सीखा सारा। अच्छा, स्कूल में सिखाते थे ना सिलाई के लिए बड़ाई, वो तो सब कागज के वो बनाने सब स्कूलों में सीखा था।
0: अच्छा, तो स्कूल में सीख करके फिर आप घर पर बनाते थे?
1: घर पे बनाए, थैलिया मनाई, कसी देखी और सब कुछ बनाए, बैग बनाए और सामान बनाए।
0: जी जी जी, और आप कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: मैं 18 या 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, 8th में।
0: 8वीं पास होने के बाद आपकी शादी हो गई?
1: मेरी शादी हो गई थी।
0: तो आपको बीच में गैप नहीं मिला थोड़ा घर पर रहने का?
1: नहीं, वैसे तो गैप मिला ना, उस समय तो मैं 15-16 साल की थी, 8वीं में पढ़ी जब, फिर 2 साल मेरे को घर पे रेस्ट करवाया ना, बीमार थी जो, उसके बाद बोलेगा अब शादी कर देते हैं, इसकी पढ़ाई कर देते हैं, ये तो और कुछ हो जाएगा इसको, ऐसा सोचते थे घर वाले,
0: पढ़ाई कर देंगे तो कुछ नहीं होगा।
1: ऐसा पुराने जमाने में ऐसे लोग सोचते थे ना, तो फिर 80 में मेरी शादी हुई थी।
0: अच्छा, तो 80 में फिर आपकी शादी हो गई?
1: 1980 में मेरी शादी हुई थी।
0: तो शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए?
1: शादी के बाद तो वही गृहस्थी संभालो, घर का काम करो, बच्चों को संभालो।
0: नहीं, बच्चे तो बाद में हुए होंगे, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
1: हस्बैंड प्रिंसिपल है।
0: अच्छा, प्रिंसिपल है, मतलब आपका सपोर्ट करते थे?
1: बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं, अभी भी करते हैं, सब में सपोर्ट करते हैं।
0: और घर में उस समय कौन कौन थे जब आप शादी करके आए? तब
1: मैं शादी करके आई जब मेरी जेठ जेठानी और हम दोनों, मैं और मेरा हस्बैंड, 4 जने थे।
0: सास ससुर नहीं थे?
1: ससुर नहीं थे मेरे,
0: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी?
1: पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, मेरे हस्बैंड 12 महीने के थे जब भी उनकी डेथ हो गई थी।
0: सास ससुर दोनों की?
1: सास तो थी, ससुर पहले गुजर गए थे, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जब सास भी गुजर गई थी, एसटीसी करी माउंट आबू से, फिर जब सास गुजर गई थी फिर इनकी नौकरी लग गई एसटीसी करने के बाद, फिर हमारी शादी हुई।
0: तो फिर आपके जेठ जेठानी ने आपका सारा काम किया?
1: सारा काम उन्होंने किया, जेठ जेठानी।
0: जी जी,
1: वही सास ससुर के बराबर ही है मेरे।
0: जी जी, आपने तो उन्हीं को देखा है।
1: उन्हीं को देखा है मैंने, यही है सास ससुर।
0: बिल्कुल, समझदार के लिए तो यही है,
1: यही है। हम कहाँ जाएंगे, नहीं तो किसके यहाँ जाएंगे, शादी करी तो उनको ही सम्मान देना है ना।
0: सही बात है, आप जैसे शादी करके अपने ससुराल में आए तो आपने देखा कि जेठ जेठानी आपके सास ससुर है, तो कैसे रहते थे आपस में, रिश्ता कैसा रहा आपका आपके जेठ जेठानी के साथ?
1: हमारा दोनों का रिश्ता अच्छा रहा था, आपस में साथ में ही निभाए 20-25 साल तक, फिर वो पोस्ट मास्टर थे तो उनका बार बार ट्रांसफर होता था जेठ जी का, तो फिर मेरे को अकेला ही रहना पड़ता था इनके साथ में, उनके भी बच्चे नहीं है, जेठ जी के भी एक ही लड़की थी जो उसकी शादी कर दी।
0: अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं?
1: मेरे 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं,
0: 4 बच्चे
1: हैं, 4 बच्चे
0: हैं। जब आप शादी करके आबू में आए, एक तो जोधपुर इतना बड़ा शहर, फिर जोधपुर से आप एक कस्बे में आए, तो यहाँ आपका मन लग गया?
1: नहीं लगा था मन।

0: बहुत अभी तो वो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो वीरान था पूरा। मैं शादी करके आई जब कुछ भी नहीं था, और मैं तो देख देख के रोती थी, खाना भी नहीं खाती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे को तो जोधपुर छोड़ के आओ, ऐसे करती थी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, फिर ये नौकरी पे जाते, फिर मैं अकेली रहती दिन भर, जब तो बच्चे ही नहीं थे और नई नई किससे बात करूं मैं, तो मैं अकेली कमरा बंद करके बैठी रहती थी, रोती थी अंदर ही अंदर।
1: आपके माता पिता ने ये नहीं देखा कि बच्ची इतने लाड़ प्यार से पली हुई है, एक गांव में दे रहे हैं। उस समय, आज तो फिर भी कस्बा है, उस समय तो आप कह रहे हैं कि वीरान था, तो उस समय कुछ था नहीं, तो उनको थोड़ा सा ये नहीं लगा कि बच्ची कैसे सेट होगी वापस।
0: उनको बहुत लगा था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था, 4 बार रिश्ता तोड़ा है, 4 बार।
1: अच्छा,
0: मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल कह दिया, मेरी एक ही लड़की है, मैं बाहर नहीं दूंगी। रोने लग गई थी वो भी, पर अब किस्मत ने यहाँ लाया साथ, तो फिर क्या करें। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं बाहर नहीं दूंगी।
1: जी, फिर कैसे हुआ यहाँ पर आपके पिताजी?
0: अगले ने भी जिद करी, इन्होंने भी जिद करी कि नहीं, हमको लड़की यही पसंद है, हम तो यही करेंगे साथ।
1: और आपके पिताजी भाई लोग का फोर्स था क्या?
0: सपोर्ट दिया ना, फिर क्या करें कि भाई करो, जिद कर रहे। तो बाकी मेरे खानदान में कोई बाहर नहीं है, मैं अकेली बाहर हूं।
1: तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?
0: उस पुराने जमाने में तो हमसे बात ही कहां करते थे पहले, वो तो बड़ों ने जो कर दिया वो सही है, हमने ना आदमी को देखा ना किसी को देखा,
1: अच्छा, देखने का सिस्टम था ही नहीं, तो
0: सिस्टम था
1: देखा
0: ही
1: ही
0: नहीं
1: नहीं।
0: मेरी शादी के टाइम, तो सिस्टम था ही नहीं, पूछते ही नहीं थे।
1: जी, बस जो बड़ा ने किया वो
0: बड़ों ने
1: पत्थर की
0: किया,
1: लक।
0: पत्थर की लकीर हो गई।
1: तो जब आप यहां पर आए, आपने देखा कि वीरान है, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपके हस्बैंड से आपने बात नहीं की कि कहीं अच्छे शहर में सेट हो जाए?
0: नहीं तो वो नौकरी का इशू था ना भाई, बाहर नौकरी तो यहीं लगी हुई थी ना, फिर बार बार इनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर ये अप डाउन करते थे पास में, अनादरा है जैसे, आतल है, 4-5 जगह इन्होंने नौकरी करी, फिर मावल, ये तो मावल तो आबू रोड में ही था जो चल गया,
1: जी, छोटे छोटे गांव में।
0: गाँव में इनकी प्रमोशन होता रहता था बार बार,
1: जी, इसलिए आप जा नहीं पाते, बड़े शहर में हो तो आप चले जाओ।
0: चली जाती, नहीं तो मैं छोटे शहर में मैं क्या करूंगी जाके, जब एक जगह ही अपना रहना है तो। फिर 2 बच्चे छोटे थे दोनों, एक इनको लेके कहाँ घूमती इधर उधर,
1: और आपके जेठ जेठानी बाहर रहते थे?
0: जेठ जेठानी का ट्रांसफर हो जाता था हर 3 साल में, तो फिर वो बाहर जाते थे, 3 साल यहाँ रहते, 3 साल बाहर रहते थे,
1: अच्छा, इसलिए आप बिल्कुल ही अकेले रह जाते
0: अकेली हो
1: हैं।
0: गई थी मैं बिल्कुल, छोटे से घर में रहती थी फिर।
1: तो आपके जेठ जेठानी को बोला नहीं कि मैं अकेले, मतलब मेरा मन नहीं लगता है कि आप लोग ट्रांसफर
0: और
1: मत होना
0: उनका भी तो
1: दो?
0: मजबूरी थी ना, नौकरी थी उनकी भी, तो ट्रांसफर होता था ना, उनके 3 साल फिक्स होते थे, हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता था,
1: जी, 3 साल में आपको जाना ही है।
0: रहना ही है चाहे आप कैसे भी रहो।
1: जी, और जैसे आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती थी, तो आप अकेले पढ़ते थे कि जैसे आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे, आप अकेले हो घर में, तो आपने कैसे समय व्यतीत किया? इन चीजों में ध्यान दिया, सिलाई कढ़ाई बुनाई में, भजन सत्संग में, या फिर कैसे? आप भाई रोज अकेले रहना, रोना, वो तो अच्छी बात नहीं है।
0: नहीं तो घर का काम तो करना पड़ता था ना मेरे को पीछे, जैसे घर का काम करना, बच्चों को रखना, सिल ऐसे ये स्वेटर वेटर बना लेती, टोपे मोजे और ये बनाती बैठे बैठे सर्दी में, फिर बच्चों को रखना भी तो मेरे को ही पड़ता, जब इनको सुला के फिर घर का काम करती। पहले नौकर चाकर कहाँ थे, कोई संभालने वाला भी नहीं, सास नहीं, जेठानी नहीं, ननद नहीं, कौन संभालता।
1: जी बिल्कुल, तो इन चीजों में ध्यान दिया, और जरूरी भी है, और बच्चे होते हैं जिस घर में, वहां तो टाइम कैसे बीतता पता ही नहीं चलता।
0: इसीलिए मैंने बच्चों के साथ ही जिंदगी लगाई, फिर धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाने लगी बच्चों को, छोटे बच्चों को, 5वीं तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तो दिन उसमें पूरा हो जाता था मेरा,
1: क्या बात है, आपने 8वीं तक पढ़ाई की, और आज के युग के 5वीं तक के बच्चों का आप पढ़ा लेते हैं?
0: पढ़ा लेती थी सारा
1: क्योंकि आपके समय में तो इतनी अंग्रेजी नहीं थी।
0: अंग्रेज। मैं तो अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ी हुई हूँ 8वीं तक, तो मेरे को इंग्लिश तो बहुत अच्छी आती है।
1: अच्छा, चलो ये आपका अच्छा रहा, तो आप 5th तक के बच्चों को आराम से पढ़ा
0: आराम
1: लेते
0: से
1: हैं।
0: पढ़ा लेती थी, पहले तो इतनी हाई फाई किताबें नहीं थी ना छोटे बच्चों की, 5वीं तक तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश भी कहा ABCD और यही होते थे, स्पेलिंग है वो ही होती थी, अब ये कोर्स तो अब भारी हुए।
1: हाँ जी हेमलता जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Nari ko kamzor kehne walo, nari ko kamzor kehne walo, himmat karo, pehle use samjho to sahi. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था। फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
2: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेली किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अब रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी। तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
1: अच्छा सोचा। तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
2: हाँ, हस्बैंड से बात की ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
1: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
2: शुरुआत
1: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
2: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
1: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
2: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
1: जी जी। तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
2: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
1: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
2: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते हैं, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
1: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते हैं ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
2: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
1: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
2: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
1: तो बच्चे लोग आते थे?
2: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
1: तो इसकी एड कैसे की आपने?
2: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
1: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
2: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब के भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
1: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
2: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
1: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापिस रिपीट हो जाती थी?
2: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से, कि भाई इसको ये पढ़ाना है, इसको ये पढ़ाना।
1: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके 4 बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
2: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
1: अच्छा, ट्विंस हुई?
2: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
1: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
2: तो फिर काम वाली भाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
1: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
2: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
1: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो?
2: आई थी ऐसे तो, मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई दो चार महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती। उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
1: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद वो दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
1: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
2: 10 साल का गैप, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा और इनके साथ 10 साल का रहा।
1: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
1: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे काम वाली माई लगा रखी थी?
2: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना। काम तो बहुत मजबूरी से, बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
1: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलते हैं,
2: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
1: जी जी, 4 बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजे भतीजे को बड़ा किया हो तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
2: सरल है ना, कराना बड़े को भतीजे भतीजे, 3 की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं।
1: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
2: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
1: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा?
2: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
1: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है, एक साथ में बना के देना पड़ता, उस समय मुश्किल होता?
2: क्या मैं तो मुश्किल ही भाई, बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
1: बिल्कुल, 3 जनों का टिफिन, फिर 2 बच्चों को संभालना,
2: बच्चों को संभालना सारा।
1: जैसे आपने कहा कि काम वाली बाई लगाई आपने, तो काम वाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
2: दोनों काम करती थी काम वाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी। जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, 2 बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
1: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
2: आते थे ना पियर वाले मिलने आते थे, कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
1: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
2: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, कैसे लेके जाना दोनों बच्चों को। आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो, मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
1: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
2: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
1: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
2: नहीं
1: थे?
2: नहीं, मैं 2 साल तक कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई मैं।
1: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो 2 साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े?
3: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी। मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी 2 साल।
2: लेकिन 2 साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं?
3: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
2: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकता
3: है। बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे 2 साल के।
2: जी जी, तो 2 साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया?
3: शुरू किया 2 साल के बाद।
2: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
3: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए तो चारों के।
2: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
3: नानी बन गई ना।
2: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए?
3: कहाँ, जिम्मेदारियां तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
2: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
3: है, होता है।
2: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है?
3: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, देख किडनी की प्रॉब्लम है जो।
2: अच्छा, पोते पोती के?
3: पोते पोती को।
2: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई?
3: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
2: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में जाता है?
3: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर, जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ।
2: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं?
3: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
2: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
3: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
2: अच्छा, सभी साथ में है, दोनों बहुए साथ में?
3: सब साथ में, सब साथ में।
2: तो बच्चों का कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
3: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
2: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
3: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
2: अच्छा, कोरोना के समय हो गया?
3: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हो गए।
2: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
3: कुछ नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
2: फिर भी कैंसर हो गया, तो अभी ठीक है?
3: हाँ, अभी ठीक है।
2: तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
3: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ है तो एक तरफ चबा नहीं सकते, फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
2: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती
3: है? बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहू संभाल लेती है।
2: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं, उनको कितना पढ़ाया आपने?
3: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
2: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती है?
3: नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
2: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है? अच्छा, दिया
3: सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
2: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
3: उन्होंने पूरी कर दी मेरी। सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
2: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
3: खुश हूँ मैं, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मेरे जीवन में।
2: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही हैं, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती है, तो आप क्या कहेंगे?
3: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
2: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
3: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें। जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो। किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है। अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, ना करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी। इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
2: क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
3: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से है आप, आपने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपके नॉलेज देते कितना है। आज आप अपने बहुओं के साथ बहुत प्यार से रह रहे हैं, जब शादी करके आए तो अपनी भाभियों के साथ बहुत ही प्यार से रहे, तभी घर में सुख शांति बनी रही। और आज भी आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए और भजन सत्संग में भी अपना समय देते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सर। रविवार की सुप्रभात, कैसे हैं? सब कुशल मंगल होंगे प्रभु की कृपा से। और आप जानते हैं कल कौन सा बड़ा दिन है? गणपति बप्पा मोरिया। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया, मोदक तैयार हो गया, देवा मंगल मूर्ति मोरिया कर कृपा अब तू दया। चारों ओर ये शोर मचा, ढोल नगाड़ा दुंदुबी बजा, देखो रे आया लंबोदरा, गणपति बप्पा मोरिया, मोदक तैयार हो गया, देवा मंगल मूर्ति मोरिया कर कृपा अब तू दया। एक दंत मेरी सुन, सदा सुख समृद्धि दो संपदा, देखो ये जीवन हो नया, गणपति बप्पा मोरिया, मोदक तैयार हो गया, देवा मंगल मूर्ति मोरिया कर कृपा अब तू दया। है पान फूल मेवा चढ़ा, ले मूसक लड्डू खड़ा, फासला ना हो दरमिया, गणपति बप्पा मोरिया, मोदक तैयार हो गया, देवा मंगल मूर्ति मोरिया कर कृपा अब तू दया। यही सब आपको मन से भी निकल रहा होगा ना गणपति बप्पा के लिए। कल से वो बड़ी गणेश चतुर्थी शुरू होने वाली है सब जगह। मुंबई में तो बहुत बड़ा गणपति बैठता है, और जहाँ हम रहते थे ना मुंबई में, वहाँ पे तो सबसे बड़ा मुंबई का गणपति बैठता था। उसको कहा जाता था राजबाग, लालबाग का राजा, कहे कि हम लालबाग के बाजू में परेल है, वहाँ रहते थे। तो इस तरह से हमको तो बहुत वो दिन की खूब याद आती है। तो चलिए भाई, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आपका अपना प्रोग्राम में प्रभा पंडिताइन स्वागत करती है। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, घर को स्वर्ग बनाइए। ससुराल में बेटी जैसा सम्मान और प्यार पाना चाहते हैं तो एक बात दिल से समझिए। आज बहुत सी बेटियों के मन में एक शिकायत होती है, हमें ससुराल में बेटी जैसा प्यार और सम्मान नहीं मिलता। शिकायत जायज भी हो सकती है, लेकिन इस शिकायत के साथ कभी कभी हमें एक सवाल खुद से भी पूछ लेना चाहिए। क्या मैं इस घर को उतना ही अपना मानती हूँ जितना चाहती हूँ कि ये घर मुझे अपना माने? यही सवाल शायद रिश्तों की बहुत सी उलझनों का जवाब दे सकता है। जब हम मायके में बेटी थी तब माँ हमारे लिए कितनी सहजता से सब कुछ कर देती थी। हम देर से उठते तो माँ बिना शिकायत के नाश्ता बना देती, चाय चाहिए होती तो चाय मिल जाती, खाना चाहिए तो खाना तैयार मिलता। घर के बहुत से काम माँ या मेड संभाल लेते, और हम भी अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार कभी कभी हाथ बटा देते थे। लेकिन शादी के बाद जिंदगी की भूमिका बदल जाती है। अब हम सिर्फ किसी की बेटी नहीं रहती, हम किसी की पत्नी बनती है, किसी की बहू बनती हैं, और आगे चलकर किसी की माँ भी बनती है। इसका मतलब ही बिल्कुल नहीं कि बहू को घर का हर काम अकेले करना चाहिए। नहीं, बहू भी इंसान है, उसको भी थकान होती है, उसको भी आराम चाहिए, उसे अपने सपने और अपनी पहचान भी चाहिए। ससुराल कोनो नौकरी की जगह नहीं, एक घर है जहाँ जिम्मेदारियों के साथ प्यार सम्मान और समझदारी भी होगा चाहिए। लेकिन एक पल के लिए अपने आप को अपनी भाभी की जगह रख कर देखिए। अगर आप मायके जाए और देखें कि आपकी माँ सुबह से अकेली रसोई में लगी हुई है, घर का सारा काम कर रही है और आपकी भाभी आराम कर रही है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? शायद आप तुरंत माँ से कहेंगी, माँ आप काहे इतना काम कर रही हो, भाभी को भी थोड़ा हाथ बटाने दो। लेकिन क्या हमने कभी अपनी भाभी की जगह खुद को रखकर सोचा है? जो अपेक्षा हम अपनी भाभी से रखते हैं, वही अपेक्षा कौन हमारे साथ रखता है? जौन अपेक्षा हम भाभी अपने लिए रखते हैं तो वो तो हमारे घर में भी रखा जाता है ना। तो का कह रहे हम, तो याद रखिएगा कि घर को सिर्फ ससुराल नहीं, अपना घर समझने की कोशिश कीजिएगा। का होता है ना, कई बार हम अपना घर यानी जहाँ पैदा हुए उनको तो अपना समझते हैं, लेकिन ससुराल समझते हैं। आप सब समझते हैं हम काहे बोले। तो क्या हमने कभी अपनी भाभी की जगह खुद को रख कर सोचा? जो अपेक्षा हम अपनी भाभी से रखते हैं, वही अपेक्षा कभी कभी हमारे ससुराल वाले भी हमसे रखते हैं। रिश्ते सिर्फ इस बात से नहीं चलते कि मुझे क्या मिला। रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब हम पूछते हैं, मैंने इस रिश्ते को क्या दिया। और ये बात सिर्फ बहुओं के लिए नहीं है, सासुओं से भी एक छोटी सी विनती। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बहू आपको माँ कहकर सिर्फ पुकारे ही नहीं बल्कि दिल से माँ माने, तो उसे सिर्फ बहू मत समझिए। उसे अपने घर की बेटी की तरह अपनाइए। उसकी छोटी छोटी गलतियों को तानों का विषय मत बनाइए। उसकी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर समय उसकी परीक्षा मत लीजिए। काहे कि जौन घर में बहू को हर पल खुद को साबित करना पड़े, वहाँ वो घर तो संभाल सकते हैं, संभाल सकती है, लेकिन दिल नहीं खोल पाती। और बहुओं से भी एक बात, अगर आपको सास से माँ का प्यार चाहिए तो सास के प्रति बेटी जैसा अपनापन भी दिखाइए। उनकी तबीयत पूछिए, उनकी जरूरत समझिए। घर को सिर्फ ससुराल नहीं, अपना घर समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप अपनी गरिमा, अपनी सीमाएं और अपने अधिकार भूल जाएं। अपनापन रखिए लेकिन आत्मसम्मान के साथ, जिम्मेदारी निभाइए लेकिन अपनी पहचान के साथ, प्यार दीजिए लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। काहे कि बेटी बनना सिर्फ अधिकार पाने का नाम नहीं है, बेटी बनना जिम्मेदारी निभाने और रिश्तों को दिल से अपनाने का नाम भी है। याद रखिए, मायका हो या ससुराल, घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है समझदारी से, घर बनता है सम्मान से, घर बनता है त्याग से, घर बनता है एक दूसरे की भावनाओं को समझने से। जहाँ मैं से ज़्यादा हम की आवाज़ सुनाई देती है, वहीं घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाता है। हेलो
1: हेलो दीदी, भुराराम बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, कैसे हैं? नमस्कार।
1: बस नमस्कार, और आपको बहुत दिनों के बाद में मुलाकात हो गई है। और सब बीच में तो रेडियो सबका बंद था, सुरेश भाई और ये उषा बहन जी ने सबको फोन लगा था, लेकिन रेडियो बंद था कि क्या मालूम।
0: अच्छा ओ, पता नहीं।
1: हाँ तो मैं बोला मुझे आज आपसे मुलाकात हो गई है।
0: देखिए
1: अच्छा अच्छा, बस आपके प्रवचन सुन रहा हूँ
0: जी।
1: तो मैं बोला पहले राम राम दीदी को कर देता हूँ।
0: हाँ बहुत अच्छा किया आपने, चल बहुत दिनों के बाद फोन किया।
1: बहुत मैं रोज करता हूँ लेकिन आप ही नहीं मिल रहे थे।
0: अच्छा
1: आज यार लगता नहीं था यार आपका प्रोग्राम नहीं रहेगा, ऐसा मेरे को लगता कुछ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आज बात हो गई। कल गणेश चतुर्थी है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ओके सर, दीदी सुन रहा हूँ आपके प्रश्न।
0: जी जी जी
1: ओके
0: ओके नमस्कार। तो हम कह रहे थे जहाँ मैं से ज्यादा हम की आवाज सुनाई देती है, वहीं घर धीरे धीरे स्वर्ग बन जाता है। इसलिए अगली बार शिकायत करने से पहले बस एक पल ठहर कर खुद से पूछिए, क्या मैं इस घर को उतना ही अपना मानती हूँ जितना चाहती हूँ कि ये घर मुझे अपना माने। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, रिश्तों में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि घर को स्वर्ग बनाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा त्याग और बहुत सारा अपनापन चाहिए। आशा करते हैं प्रभा पंडितान की ये बात को आप गांठ बांध लेंगे। चाहे कोई बेटी है, बहू है, सास है, अगर आप घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो उनको अपनापन महसूस कराइए, तभी घर स्वर्ग बनेगा। चलिए भाई, ये बात पर एक बहुत सुंदर सा गीतवा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए सुनिएगा गीत।

0: गणपति बप्पा,
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
0: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
2: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
3: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण। मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्ष उल्लास के साथ।

0: चलो चलो वो आ गए हैं।
1: हमारे घर में उन्नति लाए हैं।
2: अरे गीत गाओ, उत्सव मनाओ, शुभकामनाएं दो।
3: हाँ, खुशियों को वो अपने साथ लाए हैं।
4: कौन आया है हमारे घर?
5: सिर्फ आपके नहीं बल्कि हमारे और सभी के घर शुभ कदमों से आए हैं गणपति बाप्पा। आइए उनका खूब सत्कार करें, मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्षोल्लास से। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को गणपति बप्पा के आने की ढेरों शुभकामनाएं।

चंद राजा महाराजा, ओ लाल बाग का राजा, अरे आजा रे आजा, अरे ओ मोरिया राजा, मुझे दरस दिखा जा, मेरा कष्ट मिटा जा, ओ लाल बाग का राजा, अरे आजा रे आजा। महाराष्ट्रियन झूम रहे, देखो रे पुणे से, धाने से, मुंबई सारी बोरी बली, आज दादर नगाड़े से, देवा स्वागत में तेरे बजता है बाजा, ओ लाल बाग का राजा, अरे आजा रे आजा। बप्पा तेरी ये दुनिया, जो देखूँ तो होती है रानी है, मोह माया ग्रसित हूँ मैं, मुझे तेरी बिगड़ी बनानी है, आ मायावी नगरी में मोदक प्रिय खाजा, ओ लाल बाग का राजा, अरे आजा रे आजा। चौखट पे तेरे मिटे कष्ट, हर क्लेश दुख दर्द सारे, दर्शन से तेरे सुख समृद्धि हो फली भूतारे, अरे तेरी हरी भरी बस्ती में हूँ मैं तरोताजा, ओ लाल बाग का राजा, अरे आजा रे आजा। ऐसे आप मनाते हैं का, ऐसे आप बुलाते हैं का, हम बता रहे ना, लाल बाग में हम रहते थे और सबसे बड़े गणपति मुंबई का वहीं पर आती है। चलिए भाई, ये तो हो गए गणपति बापा का आवाहन कर लिया, अब जिंदगी के कुछ पहलुओं को सीरियसली समझते हैं कि जिंदगी के एक पड़ाव पर आने के बाद, उम्र के कुछ ढलने के समय, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं जितने साल जी चुकी हूँ उससे अब कम

0: साल मुझे जीना है। इस समझ आए के बाद मुझ में ये परिवर्तन आया है। पहला, किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी है। दूसरा, उही प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, ये सोचना भी छोड़ दिया है। काहे कि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, सामने वाले व्यक्ति के पैसे पावर और पोजीशन से अब मैं डरती नहीं हूँ। खुद के लिए, चौथी बात, खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालती हूँ। मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधों पर टिकी नहीं है, मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है। छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना बंद कर दिया है। कभी कभी जानती हूँ कि मैं ठगा जा रही हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते चली जाती हूँ। कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देती हूँ। 25-25 रुपए खर्च करती हूँ, जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। सड़क पर व्यापार करने वालों से कभी कभी बेकार की चीज भी खरीद लेती हूँ। बुजुर्गों और बच्चों की एक ही बात कितनी बार सुन लेती हूँ, कहने की आदत छोड़ दी है कि उन्होंने ये बात कई बार कही है। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना पसंद करती हूँ। दसवां, लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करती हूँ। ऐसा करे से मिलने वाले आनंद का मजा लेती हूँ। ग्यारहवां, ब्रांडेड कपड़ों, मोबाइल या न किसी ब्रांडेड चीज से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना छोड़ दिया है। व्यक्तित्व विचारों से। हेलो,
1: ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग।
0: ओम शांति भैया, गुड मॉर्निंग। कल गणेश चतुर्थी है, उसकी शुभकामनाएं।
1: बहुत बढ़िया हो, और आपको रेडियो मधुबन परिवार सभी श्रोताओं को हरताली का गणेश उत्सव, सभी सावन बादों की बधाई शुभ भावना। कल का भी प्रोग्राम पूरा सुना हमने दो बार, बहुत ही भावना प्रधान प्रोग्राम हुआ। तीनों पॉइंट, मंदा के, सोनाली के और टीचर की व्याख्या, तो आपने बहुत ही अच्छी बताई। हाँ। तो दीदी आपको बहुत बहुत थैंक्स, और ओम शांति दीदी।
0: थैंक यू भैया।
1: और मेरे फोन लगते ही नहीं दीदी, क्या बात है क्या मालूम। दूसरे कोई कनेक्ट हो जाता है। 10 बार मैंने फोन लगाए तो अभी एक फोन बराबर आपको लगा।
0: अच्छा,
1: गड़बड़ो
0: कभी कभी हो जाता है
1: क्या।
0: हाँ। चलो आज बात हो गई। हाँ भैया।
1: हाँ बोलो।
0: मैंने कहा आज बात हो गई, चलिए आपकी संकल्प था तो आज बात हो गई। और आप इतने ध्यान से सुनते हो प्रोग्राम, हर बात याद रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसीलिए रात को भी, शनिवार को हम रात को भी सुन लेते हैं
0: 11 से 12।
1: बहुत बहुत थैंक, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम ओम शांति। थैंक यू भैया। तो देखिए भाई, भाई फोन करे रहे तो व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीजों से नहीं, ये समझ गई हूँ। बारवा, मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखती हूँ जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करती। कहे कि कई लोगों ने ये पहले ही कर दिया है। जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चाले खेलता है तो मैं शांत रहकर उसे रास्ता दे देती हूँ। आखिरकार ना तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूँ, ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी है। मैं वही करती हूँ जिससे मुझे आनंद आता है। लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दी है। चार लोगों को खुश रखे के लिए अपना मन मारना छोड़ दिया है। 15वीं बात, 5-स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करती हूँ। जंक फूड के बजाय बाजरे की रोटी और मटर की सब्जी में संतोष पाती हूँ। 16वां, अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करने की बजाय किसी ज़रूरतमंद के हाथ में 500 रुपए रख देने का आनंद लेना सीख गई हूँ। और हर किसी की मदद पहले भी करती थी और अब भी करती हूँ। गलत के सामने सही साबित करने की बजाय मौन रहना पसंद करने लगी हूँ। बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगी हूँ। खुद से प्यार करने लगी हूँ। मैं बस इस दुनिया का यात्री हूँ। 18वीं बात है, मैं बस इस दुनिया की यात्री हूँ। मैं अपने साथ केवल वो प्रेम, आदर और मानवता ही ले जा सकूँगी जो मैंने बांटी है, ये मैंने स्वीकार कर लिया है। 19वां पॉइंट, मेरा शरीर, मेरी आत्मा और मेरा नाम सब मुझको दिया हुआ है। जब मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो लाभ हानि की का गणना। 20वीं पॉइंट, अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयों या दुख लोगों को कहना छोड़ दिया है। कहे कि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता और जिसे कहना पड़ता है वो समझता ही नहीं। अब अपने आनंद में ही मस्त रहती हूँ। कहे कि मेरे किसी भी सुख या दुख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मुझे समझ में आ गया है। और 22वीं पॉइंट, हर पल को जीना सीख गई हूँ। कहे कि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये दिन भी बीत जाएंगे। और 23वीं बात, आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा जी दया। हेलो,
1: हाँ, ओम शांति दीदी, ओम शांति,
0: ओम शांति भैया।
1: और एक बात रह गई दीदी,
0: हाँ?
1: आपका जो लाल बाग पनेर का जो गणपति है बड़ा,
0: हाँ?
1: मुंबई का सबसे बड़ा,
0: हाँ?
1: उसका दर्शन के लिए, लाल बाग का गणपति का दर्शन के लिए आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आज आने वाले हैं। लाल बाग का गणपति के आरती दर्शन के लिए आज शाह जी आने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ओम शांति,
0: ओम शांति भैया। गृह मंत्री मेरे घर के पास जा रहे हैं, क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, हम सुना रहे थे 23वीं पॉइंट, आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूब गई हूँ। मुझे समझ आया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है। और 24वीं पॉइंट जो अंतिम है, प्रकृति में रहने लगी हूँ। मुझे समझ आ गया है कि अंत में उसी की गोद में समा जाना है। देर से ही सही, लेकिन समझ आ गया है, शायद मुझे जीना आ गया है, शायद मुझे जीना आ गया है। चलिए भाई, ये बात पे बहन जी बहुत निकवा सा गीतवा सुना रही हैं। एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। बहन जी, कौन निकवा सा गीतवा सुनवा दीजिए। तो

0: था।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: देखे भाई, पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं, है कि नहीं? ऐसे कितना पत्थर पड़ा रहता है, कोनो उसकी परवाह नहीं होती। सब समय का खेल है, चाहे जितनी भी तैयारी कर लो, आखिर होता वही है जो समय चाहता है। और हम सब इस बात को नकार नहीं सकते, समय से बड़ा तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। वक्त भी बड़े कमाल का होता है, वक्त भी बड़े कमाल का होता है। सभी से अपना इंतजार करवाता है, पर खुद कभी इंतजार नहीं करता। ये बात से भी आप हमारे सहमत होंगे, इसलिए समय की वैल्यू कीजिए। जब आप वैल्यू देते हैं तभी आपका जीवन वैल्यूबल बनती है। जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज की कमी आने नहीं देता। ये तो आपका भी अनुभव होगा जिंदगी में। साथ किसका है ये मत सोचो, साथ किसका है ये मत सोचो, महादेव किसके साथ है ये सोचो। और वो है जिसके साथ तो आप जानते हैं कि का हो सकता है। और नियत के बारे में, अच्छे बनने का दिखावा मत करो, बस दिल की नियत साफ रखो। अच्छे बनने का दिखावा मत करो, बस दिल की नियत साफ रखो, क्योंकि दुनिया को धोखा दिया जा सकता है पर ईश्वर को नहीं। वो सब जानता है। हमेशा वो काम करो जिससे आत्मा खुश हो, लोग नहीं। समझ गए? तो बहुत गहरी बात है। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है। बेहतर यही है कि हम, हेलो,
4: हाँ जी नमस्कार, मदन भाई बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी नमस्कार मदन लाल भाई, कैसे हैं?
4: बहुत बढ़िया से बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ।
3: आज छुट्टी है कि आज भी ड्यूटी पे हैं?
4: आज भी नौकरी पे है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझे आज संडे है तो शायद छुट्टी होगी।
4: आज छुट्टी नहीं रखी है, हमारी छुट्टी गुरुवार को ही होती है। सतगुरुवार?
3: अच्छा, सतगुरुवार को होती है। अच्छा अच्छा अच्छा,
4: उस दिन छुट्टी होती है, क्योंकि सतगुरुवार के दिन हजार हजार कोई भी खुला रहता है कोई।
3: हाँ, तो जिसको जो कुछ मार्केटिंग करना हो, शॉपिंग करना हो तो कर सकते हैं घर की।
4: हाँ, जो राशन कार्ड है, मतलब वो बैंकों का काम है।
3: जी जी,
4: को क्या है कि छुट्टी रखें तो वो बैंकों का काम,
3: बैंक
4: तो
3: हाँ खुली नहीं रहती है उस दिन।
4: हमारा चेक बड़ा दिलदार है, एक नंबर का है
3: जी,
4: बड़ा अच्छा है।
3: हाँ जी,
4: और उनको देख के सब अच्छे ही हो जाते हैं।
3: हाँ, कल गणेश चतुर्थी है, गणपति बप्पा आ रहे हैं, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई।
4: बहुत बहुत नमन है उनको। देखता हूँ
3: जी,
4: रस्ते में चलता हूँ ना
3: जी,
4: गणपति बापा हाईवे ऊपर है, इतने कल तो बहुत भीड़ थी, इतने में कि बाप रे बाप, लेने वाले भी कम नहीं है तो बेचने वाले भी कम नहीं है। बाबा बाबा,
3: हाँ विघ्न विनाशक है ना, सभी उनका आवाहन करते हैं ताकि घर निर्विघ्न रहे और हमारा जीवन निर्विघ्न रहे।
4: जी जी जी, और अभी सभी को खुशियों का बड़ा आनंद है
3: जी,
4: क्या? और सभी अपने अपने गणपति आ रहे हैं, फिर अम्बा जी जाने वाले आएंगे वो भाद्रवी पूनम को
3: जी,
4: और इसके बाद में सोल सराद आ जाएंगे और नवरात्रि आ जाएगी और बहुत सारे त्योहार दिवाली तक आ जाएगी
3: जी,
4: और सभी का माहौल है
3: जी,
4: और अच्छा है। दीदी जी नमस्कार करते हैं आपको,
3: नमस्कार,
4: और हमारे सभी दोस्तों को और जिनका भी जन्म।
3: थैंक यू थैंक यू। तो कह रहे थे हम, इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। जो चला गया उसे शांति से विदा करो। जो चला गया उसे शांति से विदा करो। जो पास है उसे प्रेम से संभालो और जो आने वाला है उसका विश्वास से स्वागत करो। जीवन में ये बात गांठ बांध लीजिए और अगर आपने बांध ली तो जीवन बहुत खुशनुमा होगा। हमें सीखना है झुकना है, हमें सीखना है झुकना है, सम्मान देना है। वही बड़ा बनता है जो झुकता है। जो झुकना नहीं सीखा वो बड़ा नहीं बन सकता। ये भी कड़वा सत्य है। जिस कार्य को करने से हेलो
0: हाँ जी दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं आपकी दुआ से।
3: बाबा की दुआ से जी।
0: आपकी सब बातें सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव बातें सुनते
3: जी
0: बहुत अच्छा लग रहा है दीदी
3: जी। हाथों से काम भी करते हैं और कानों से रेडियो भी सुनते रहते हैं ना। दोनों काम होता है।
0: थोड़ा काम के लिए बाहर जा रहे थे तो हाँ। भी पहले मैं भी बात कर रही
3: थी। जी जी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फोन करके बताते हैं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं। हम सब समझते हैं चलो हमारी मेहनत सफल हो रही है क्योंकि हमारे भाई बहन सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, इसलिए फोन भी कर रहे हैं जी।
0: हम तो फोन करते ही रहते दीदी, कभी भी देखो।
3: हाँ
0: करते होते तो काम करते करते भी फोन तो कर लेते हैं। हमारी दीदी आती है देखो 10 बजे, उस इनसे भी हम बात कर लेते हैं। हमारा काम तो देखो रहता है कैसे पानी वानी सुबह सुबह काम ज्यादा बढ़ जाता है।
3: हाँ, हाँ.
0: तो भी हम फोन तो कर लेते हैं, कभी नहीं करते नहीं तो कर देते हैं।
3: जी जी
0: जी हमारे लिए तो इतना प्रयत्न करते हैं ना, इसलिए हम भी तो थोड़ा करना ही चाहिए फोन वोन करके, हमारा दिल खुश हो जाए, ऐसा ही करना चाहिए
3: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आने वाली गणेश चतुर्थी कल है, उसकी भी शुभकामनाएं
0: आपको भी और सभी मधुबन रेडियो परिवार के लिए
3: जी। थैंक यू जी जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए भाई बहन जी भी फोन की, सभी भाई लोग भी फोन करे हैं। जब भी समय जिसको मिलता है तो बहुत खुशी लगती है। जिस कार्य को करने से ईश्वर प्रसन्न हो वो कार्य किसी पूजा से कम नहीं। भगवान को जो चीज़ अच्छी लग गई तो वो भगवान के पूजा काहे करते हैं, भगवान खुश हो जाए तो बस। जो काम का अच्छा करते हैं तो भगवान खुश होते हैं, तो भगवान के समझ लीजिए पूजा हो गई, भगवान आप पे प्रसन्न हो गए। किसी को खुश रखने का मौका मिले तो छोड़िए मत। फरिश्ते होते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं, है कि नहीं। सुबह की पहली सोच, सुबह की पहली सोच जैसी होगी दिन की दिशा भी वैसी ही बनेगी। उठते बरोबर जिस प्रकार का विचार आता है वो विचार ही आपके पूरे दिन को सेट करता है। तो सुबह उठते बरोबर भगवान जी को गुड मॉर्निंग कर दीजिए। सोचिए कि भगवान की किरणें आप पर आ रही है और आप भगवान की किरणों से भरपूर हो रहे, पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। मिलाने का कार्य ईश्वर करते हैं, निभाना तो इंसान को ही पड़ता है। ये भी सत्य बात है। कहानी जिस पक्ष से सुनोगे सच वही लगेगा। कहानी जिस पक्ष से सुनोगे सच वही लगेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जरूरी है ध्यान दोनों पर दिया जाए। कई बार किसी एक की बात सुनकर हम बस उसके लिए एक माइंडसेट बना लेते कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं। दोनों तरफ की बात सुन लेने का चाहिए, फांसी देने वाले को भी जज उसकी भी बात सुन लेता है। तो फिर हम तो किसी एक की व्यक्ति की बात सुनकर कोई विचार ना बनाए। खुशी की डिलीवरी कोई और नहीं करता, उसका एड्रेस हमेशा भीतर है। आशा वो शक्ति है जो अनजाने भविष्य में भी विश्वास बनाए रखती है। और आपको एक मराठी बात बताते हैं, फिर हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे। जुनी मानसे मनायची भाकरी दोनी बाजू ने भाजली तरच चौ येते, नाताचे ही तसे चसते, ती दोनी बाजू ने निभावली गेली तरस टिकून राहतात। यानी पुराने लोग कहते थे कि रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरह सिकी होगी तो ही टेस्ट आता है। उसी प्रकार रिश्ते नाते हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरह से निभाएं तभी वो टिकते हैं। कितनी सही बात कही भाई, लोग भी कितना सुंदर सुंदर बात लिखते हैं और कहते हैं, और उनका अर्थ कितना गहरा होता है। समझने वाले तो समझ जाते हैं, जीवन में परिवर्तन भी कर लेते हैं। अब बाकी के लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसे कि कोई कथा कर रहा है, जिसको सुनना है वो सुन ले, जिसको गुनना है वो गुन ले। सुनने और गुनने में फर्क तो होता है ना भाई। सदैव प्रथम स्थान पर रहो, मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में और अपनी गलती मान लेने में, और फिर देखिए कैसा जीवन होता है। जरूरत जितनी हो उतना ही काफी होता है। लोग ख्वाहिशों में हर चीज बेहिसाब चाहते हैं, यानी कभी मन की वो बात पूरी ही नहीं होती, मन की इच्छा कभी पूरी ही नहीं होती, और लेकिन जरूरत तो भगवान पूरी कर देता है। तो अगर इन बातों को जरूर ध्यान में रख लें तो देखिए भाई, जीवन में कोनो कमी नहीं है। भगवान सब कुछ देता है, लेकिन वो हमारी पेट भरने के लिए तो इंतजाम कर देता है, पेटी भरने के लिए नहीं। और आज इंसान पेट से ज़्यादा पेटी की फिक्र करता है। एक और बात बताते हैं, एक गलत फहमी ने सिखाया बड़ा सबक। राघव स्वभाव से बहुत तेज तर्रार आदमी रहा। छोटी सी बात पर गुस्सा करना और बिना पूरी बात जाने किसी को दोषी ठहरा देना, उसकी आदत बन चुकी रही। एक दिन उसका पुराना मित्र नरेश कई बरसों बाद उसको मिलने आया। दोनों ने साथ साथ चाय पी और पुरानी यादें ताजा की। बातचीत के दौरान नरेश ने कहा, राघव तुम अब भी पहले जैसे ही गुस्सेल हो। राघव हंसते हुए बोला, क्या करूं दोस्त, गलत बात देखकर चुप नहीं रह सकता। नरेश ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी गलत बात दिखाई देती है लेकिन सच कुछ और होता है। राघव उसकी बात समझ नहीं पाया। कुछ महीनों बाद राघव की बेटी की शादी तय हुई। शादी की तैयारियों की पूरी जिम्मेदारी उसके छोटे भाई समान मित्र मोहन ने अपने ऊपर ले ली। मोहन ने वादा किया कि वो शादी के दिन सुबह सबसे पहले विवाह स्थल पर पहुंच जाएगा। शादी वाले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल रही, मेहमान आए वाले लगे और रस्में शुरू हो गई, लेकिन मोहन कहीं दिखाई नहीं दिया। राघव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, जे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी वही आज गायब है, ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छा। परिवार वालों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी की भी सुनने को तैयार ही नहीं रहा। शाम को बेटी के रिसेप्शन की तैयारियां चल रही थी, तभी एक आदमी मोहन की ओर से एक सुंदर साड़ी और 501 रुपए का शगुन और शुभकामना पत्र लेकर आया। राघव ने बिना पढ़े पत्र फाड़ दिया और गुस्से में बोला, जाकर कह देना अब हमें उसकी किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। रात बीत गई, शादी भी संपन्न हो गई। करीब 10 दिन बाद राघव की बेटी ने कहा, पिताजी मोहन चाचा हमारे लिए परिवार जैसे हैं, वो शादी में नहीं आए तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी, हमें उनके घर जाकर मिलना चाहिए। राघव मन ही मन नाराज था, फिर भी बेटी के साथ मोहन के घर चला गया। दरवाजा खुला था, घर में अजीब सी खामोशी थी। मोहन की पत्नी सुशीला रसोई से बाहर आई, उन्होंने बेटी को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। राघव ने देखा कि उसकी आंख लाल थी और चेहरा बेहद थका हुआ था। उसकी पत्नी ने धीरे से सुशीला का हाथ पकड़ कर पूछा, बहन सच बताइए, बात का है, आप कुछ छिपा रही हैं? इतना सुनते ही सुशीला फूट फूट कर रोए लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भैया जिस दिन आपकी बेटी की शादी थी उसी सुबह मोहन को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, डॉक्टर के आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुशीला ने आगे कहा, मोहन आखिरी समय तक आपकी बेटी की शादी की चिंता कर रहे थे, उनकी इच्छा थी कि शादी में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैंने उनकी मृत्यु की खबर किसी को नहीं दी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी बेटी की शादी का माहौल दुख में बदल जाए। राघव की आंखों से आंसू बहे लगे। उसे याद आया वो पत्र जो उसने गुस्से में फाड़ दिया था, वो साड़ी जिसे उसने ठुकरा दिया था, और वो कठोर शब्द जो उसने बिना सच जाने कहे थे। वो सिर झुकाकर बोला, बहन मैंने मोहन को नहीं समझा, मैंने सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखा था। सुशीला ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया इंसान की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसका दूसरा पहलू न जान लिया जाए। उस दिन राघव हमेशा के लिए बदल गया। हम अक्सर किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत फैसला सुना देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो व्यक्ति भीतर से किस दर्द या मजबूरी से गुजर रहा है। किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसकी परिस्थिति को समझिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर इंसान की कहानी का भी। अधूरी जानकारी पर लिया गया फैसला अक्सर रिश्ते तोड़ देता है, जबकि थोड़ी समझदारी वही रिश्ता बचा सकती है। आशा करते हैं आप ये कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। कहे कि ये बहुत जोर देने वाली बात है, और कई बार गुस्से में सही में इंसान दूसरे पहलू को न जानकर और अपने ही मन की भड़ास निकाल देता है, और जब सच्चाई यानी दूसरे सिक्के की बात पता चलती है तब बहुत दर्द होता है कि ये हमने का बोला का सोचा और ये का निकला। जीवन में कोशिश करिए, तुरंत किसी बात पर रिएक्ट मत करिए। कुछ चीज़ें निकट जाने पर बिन मांगे मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट। हरो
5: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप?
6: अच्छे दीदी, आपको चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी हमारे मधुबन परिवार को भी
5: जी,
6: सभी साथियों को भी। हम तो शुरुआत से कार्यक्रम सुन ही रहे थे, लेकिन मैंने सोचा आपसे बात कर लूं
5: जी।
6: तो कई सारी हमारे मित्रों ने, हमारे मदन भाई, सुभाष भाई, बुराराम जी, हमारे सजना, कई हमारे सारे मित्रों ने आपसे बात की
5: जी।
6: तो बहुत अच्छा लगा, आपका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा चला है। दीदी आपने जो साथ में पहले शुरुआत में जो बात की
5: जी,
6: वो सास बहू की बात की बहुत अच्छी बात है दीदी की। एक कहते ना कि दोनों को मिलजुल माँ बेटी का जो सब प्रेम रहता है
5: जी।
6: और दूसरी बात बताई दीदी आपने, ये अभी अभी मोहन की जो बात बताई वो भी बहुत अच्छी लगी। और कई सारी बातें जो हम इसके जीवन में, इसके जीवन का परिवर्तन करने के लिए आप हरदम बता रहे थे दीदी
5: जी, ये कि किस बात से जी, कौन सी बात किसको लग जाए और उसके जीवन में अच्छा परिवर्तन आ जाए, है ना?
6: बिल्कुल सही बात है दीदी, एक शब्द ही आपका जीवन का परिवर्तन कर देता है दीदी। तो ये आपकी जो बातें
5: जी
6: बहुत अच्छी बातें हैं
5: जी।
6: जीवन का एक नया शुरुआत करना, जीवन से कोई अनबन है तो ठीक हो जाना, कई सारी बात आप बता रहे हैं, तो हमको भी दीदी बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम
5: जी।
6: नमस्ते दीदी, ओम
5: शांति। नमस्ते, ओम शांति। तो देखिए भाई, आज सभी भाई बहन फोन हुआ कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सुने ना अभी आप सुरेश भाई को, तो हम कह रहे थे कुछ चीजें निकट जाने पर बिन मांगे मिल जाती है, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और फूलों से खुशबू। इसलिए ईश्वर से भी कुछ मत मांगिए, बस उनके निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलेगा।
3: जीवन रूपी बगीचे के दो सबसे सुंदर फूल है, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार। इनकी देखभाल जो स्वयं करता है उसका जीवन सदैव खुशियों से महकता रहता है। हम सब चाहते हैं हमारा जीवन भी खुशियों से महके, तो इन बातों को जीवन में उतारिए। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। बस जीवन में इन्हें उतार लीजिए। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी की भी मनोदशा और जीवन को बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही है। जिंदगी छोटी सी है, इसे शिकायतों में नहीं रिश्तों की मिठास और अपनों की मुस्कान में जीना सीखिए। ईश्वर आपके जीवन में प्रेम और सुख बनाए रखे। ई परवा पंडिताइन परमात्मा से आप सबके लिए दुआ करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। बहुत गहरी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे। जो मुश्किल वक्त में हाथ थामे उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और जीवन में बड़ा कोई विद्यालय नहीं। जीवन से बड़ा कौनो विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। समय जो सिखाता है वो कोई और नहीं कर सकता है, है कि नहीं? तेज चलना हो तो अकेले चलो, तेज चलना हो तो अकेले चलो, लेकिन यदि दूर तक जाना हो तो सबको साथ लेकर चलो। ये भी जीवन की बात गांठ बांध लीजिए। जो टूटे को संभाल लेते हैं वो सुई की तरह होते हैं, जो टूटे को संभाल लेते हैं वो सुई की तरह होते हैं। जो दिखते कम हैं काम बड़े करते हैं, जो दिखते कम हैं और काम बड़े करते हैं। हर समय अपनी बात साबित करना बुद्धिमानी नहीं है। कई बार खामोशी ही सच्चाई की सबसे सुंदर गवाही होती है। समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है, इसलिए धैर्य और मौन दोनों को अपना मित्र बनाइए। जीवन खुशनुमा रहेगा। और अंत में तो यही कहेंगे कि जो उम्र भर समय, सेहत, दोस्त और व्यवहार ऐसे कीमती निवेश है। समय, सेहत, दोस्त और व्यवहार ऐसे कीमती निवेश है जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। जीवन की खुशियों के लिए इनको संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। भरोसा उसी पर करना जो वक्त बदलने पर भी न बदले। दिल की बात उसी से कहना जो शब्दों से नहीं एहसासों से समझे। साथ उसी का चुनना जो मुश्किल राहों में भी हाथ न छोड़े, क्योंकि अपने वही होते हैं जो दूर होकर भी हर पल दिल के सबसे करीब होते हैं। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। न कल में था न कल में है, जीवन मात्र इसी पल में है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। आज का दिन हम सभी के लिए मंगल है हो, और इसी शुभकामनाओं के साथ प्रभा पंडिताइन अपनी वाणी को विराम देती है। ये वादा करके कि अगले शनिवार 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत का मूल्य मानव जीवन और प्रकृति के साथ कितना है, ये हम जानेंगे। जैसे एक छोटा शिशु जब सारा दिन खेल पाल करके थक जाता है, तब माँ से चाहता है कि वो उसे लोरी सुनाकर सुला दे। एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी हम संगीत सुनाकर बहला सकते हैं। मन और तन दोनों ही हर पल संगीत से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी सबको नमस्कार करते हैं।
0: श्यामली जी, आज आप कौन सा राग लेकर आए?
1: हाँ, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा राग, नाम है जौनपुरी।
0: जौनपुरी?
1: यस।
0: अच्छा,
1: तो जौनपुरी ऐसा राग है, इसको ठाट जो है आशावड़ी, शायद पहले भी लिसनर जो है वो सुना है कि आशावड़ी एक राग भी है, ठाट भी है, राग भी है। ठाट में गा और नी कोमल है, लेकिन जब आशावड़ी राग बन जाते हैं तब है जाने का टाइम का नी वर्जित है, आवरोहन में कोमल नी कोमल गा होता है। लेकिन ये जौनपुरी राग में जैसे सारे मा पा धा नी सा, आशावड़ी राग में सारे मा पा धा सा डायरेक्ट धा से सा लगता है।
0: अच्छा,
1: और आने का टाइम दोनों में एक ही है, हम इसमें अंतर कर सकते हैं, लेकिन ठाट आशावड़ी है, ठीक है।
0: okay.
1: तो यही ऐसे राग हमने लाए हैं। समय जो है 9 से 12 अर्थात दिन में दूसरा प्रहर।
0: अच्छा,
1: हम ये गा सकते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो ठाट भी, इसको मैंने पहले कह दिया कि ठाट है आशावड़ी, और जाति जो है सारव संपूर्ण, मतलब जाने के टाइम गा यूज नहीं होता है, गा वर्जित है
0: जी।
1: और आने का अवरोहन में सात सारी प्रयोग होता है।
0: okay.
1: इसमें गा और नी कोमल है, ठीक है। इसका जो प्रकृति जो है बहुत शांत प्रकृति का है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा गा के सुनाते हैं
0: जी,
1: ठीक है। थोड़ा मैं क्या करती हूँ, आशावड़ी राग भी थोड़ा करके दिखाऊंगी, उसके बाद जनपुरी, तब लिसनर
0: डिफरेंस पता
1: डिफरेंस पता चलता है। पहले हम कर रहे हैं आशावड़ी राग
0: जी।

0: अरहुन अवरहुन पकर हम बता दिया। एक बात है, वादी सर जो है धा है, संवादी है गा।
1: अच्छा
0: ठीक है। अभी आज हम पहले सिखाएंगे इसका विलंबित राग बड़ा ख्याल। तो बड़ा ख्याल के लिए, विलंबित ख्याल के लिए लिसनर को किताब पेन से बैठना है, लिखना है
1: जी।
0: वही 12 मात्रा की है, एक ताल की है। 12 मात्रा मतलब 48 मात्रा है। तो 48 मात्रा की जो गीत है बंदी।

0: इसके लिए जो स्वर लिपि हम अभी देते हैं, ठीक है?
1: ओके।
0: चार मात्रा मुकरा है, एक साथ लिखना है, जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। नी और गा कोमल है, ध्यान रखना है, गा और नी कोमल है।
1: जी
0: शुरू करते हैं। पाधा मापा, पाधा एक साथ, मापा एक साथ, रेमा पाधा एक साथ, मापा एक साथ, मतलब एक एक मात्रा, चार मात्रा है ना। पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, एक साथ है। सा ऊपर की सा है, सा में सोम है। पहले शुरू करती हूँ। पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, सा आ नी धा, पाधा नी धा पा, पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, गा आ रे सा, रे ए सा आ धा नी। ये जो धा नी है ये मंद्र सर की है, नीचे का है। धा नी सा आ रे मा, रे मा पाधा पा आ मा पा, धा नी सा सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, रे ए सा आ, ये जो रे है सा है ऊपर की सा है, निधा आ पा आ। फिर से पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, सा आ। हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे, अगर वो उसे जैसे हम जहाँ जल्दी बोल रहे हैं, मतलब कि एक मात्रा में दो स्वर है
1: साथ साथ में।
0: साथ साथ पाधा एक साथ है, मापा एक साथ है, रेमा पाधा एक साथ है, मापा मतलब एक एक मात्रा है, लेकिन उसमें दो स्वर चार स्वर है, कभी भी तीन स्वर भी हो सकते हैं।
1: आपकी बोलने की गति के ऊपर भी
0: ऊपर भी ध्यान देखना है
1: जी, जी।
0: कि आगे बढ़ते हैं ना।
1: हाँ जी।
0: फिर से हम करते हैं। पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, सा आ नी धा, पाधा नी धा पा, पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, गा आ रे सा, रे ए सा आ, धा नी सा आ, रे मा, रेमा पाधा पा आ मा पा, धा नी सा सा, रे ए सा आ, नी धा आ पा आ। ये है स्थाई का स्वर लिपि।
1: जी
0: अंतरा भी दे देते हैं। चार मात्रा मुकरा है, मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, सा में सोम है। फिर से बोलती हूँ। मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा, रे रे सा सा, सा रे मा गा रे सा। ये जो है सब ऊपर की है, नी सा रे रे सा नी धा, सब ऊपर की है, रे रे सा जो है ऊपर की है। पाधा पाधा नी धा पा, पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, मागा आ रे सा, धा धा पा पा, धा नी सा सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, रे ऊपर की है, रे ए नी धा, पाधा नी धा पा। फिर से मैं बोलती हूँ। मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा, रे रे सा सा, सा रे मा गा रे सा, नी सा रे रे सा नी धा, पाधा पाधा नी धा आ, पाधा मा पा रे मा पाधा मा गा आ रे सा, धा धा पा पा धा नी सा सा, रे ए नी धा, पाधा नी धा पा। ये स्थाई अंतरा के जो स्वर लिपि है हमने दे दिया है।
1: तो ये स्वर लिपि जो आपने लिखवाई है,
0: हाँ जी,
1: इसके ऊपर अभ्यास करना।
0: हाँ, अभ्यास करना, बात हम धुन में बैठा देंगे।
1: अच्छा, तो धुन में बिठाने के लिए भी हमको ये बाय हार्ट करना पड़ता है।
0: हाँ जी।
1: श्यामली जी, जौनपुरी राग की आपने जो स्वर लिपि दी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आगे जौनपुरी राग के बारे में आपसे जरूर जानेंगे। तब तक के लिए ब्रेक में हम अपने श्रोता मित्रों को सुनाना चाहते हैं इसी राग से संबंधित एक प्यारा सा मीठा सा गीत। श्रोता मित्रों, आप इस गीत का आनंद लीजिए और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से जौनपुरी राग की शुरुआत की और शुरुआत में उन्होंने हमको आशावरी राग और जौनपुरी राग के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी बताया
1: जी।
0: साथ साथ में उसकी स्वरलिपि भी हमने देखी। आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, हमने जो स्वरलिपि दे दिया इसको धुन में बैठाना है ना।
0: हाँ जी,
1: अभी धुन में बैठाती हूँ, ठीक है?
0: ओके।

0: हमने जो स्थाई अंतराज्य स्वर लिपि दिया है
1: उसको धुन में बिठा दिया।
0: एक्यूरेट माने ग्रामेटिकली मैथमेटिकली चलना है।
1: अच्छा,
0: एक एक मात्रा, इसलिए मैं ऐसे सिखा रही हूँ। ऐसे जब हम करते हैं, जो बड़े बड़े महारथी वो ताल को एकदम अपना लेते हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं उसमें ध्यान नहीं है कहाँ वो दो मात्रा है कहाँ तीन मात्रा है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अभी जो लिसनर सीख रहे हैं
1: जी,
0: नए नए सीख रहे हैं, उसके पास थोड़ा कठिनाई ये
1: सीखने के समय।
0: हमने क्या किया, एक एकदम ग्रामेटिकली मैथमेटिकली इसको सुर में बैठा दिया, एकदम चार चार मात्रा करके 48 मात्रा में बैठा
1: अगर
0: दिया।
1: अगर ध्यान से उन्होंने किया होगा, हाँ, अभ्यास
0: होगा
1: तो वो भी कर पाएंगे।
0: नी और गा जैसे से हमने किया है, जैसे बोल दिया करेंगे, तब तबला के साथ एकदम एक्यूरेट चल सकता है।
1: अच्छा।
0: और इसके लिए मस्ट है आकार सहयोग।
1: हाँ।
0: जितना आकार करेंगे उसमें बैठ जाएंगे। पहले मैं आप बताया है कि जितना करेंगे आकार अंदर में बैठ जाएंगे, जब हम बंदिश देंगे वो आसानी से वो कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये तो आपने स्वर लिपि को धुन में बिठा दिया।
0: हाँ,
1: अब आगे आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
0: हाँ, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सुनाना चाहती हूँ।
1: अच्छा,
0: कैसे ये जो राग है छोटा सा बंदिश करती हूँ, बहुत अच्छा बंदिश है।
1: अच्छा,
0: तो करके सुनाती हूँ
1: जी।

0: जौनपुरी राग की ये छोटी सी बंदिश आपने सुनाई। श्यामली जी, समय देता है हमको इजाजत, फिर भी सुने बिना तो हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते। जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: हाँ, बहुत अच्छा एक फिल्म है, दो बदन।
0: दो बदन, अच्छा।
1: इसमें लता जी का बहुत अच्छा एक गीत है, लो आ गई उनकी याद।
0: वो नहीं आए,
1: वो नहीं आए।
0: वाह,
1: सुपर। मैं सुनाना चाहती हूँ जौनपुरी राग, तब भी इसमें थोड़ा मिस्र है। मैं सोचती मिस्र है तब भी चलता है हिंदी।
0: पूरा जौनपुरी नहीं है।
1: हाँ, जौनपुरी है।
0: हाँ, मैक्सिमम
1: है, थोड़ा मिस्र है। ठीक है
0: जी।

0: वाह बहुत सुंदर,
1: थैंक यू। कोशिश कर सकते हैं
0: जी। और ये गीत के जो बोल हैं
1: कितना सुंदर,
0: जिसने है। भी लिखे हैं
1: जी,
0: सच में इतनी भावना भरे बोल
1: हाँ जी,
0: जिसकी याद में उसने ये गाए है या लिखत है, बहुत सुंदर
1: बहुत सुंदर।
0: श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, रागों की श्रृंखला में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौड़ परिवार के जमाईसा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौड़ परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौड़ परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे हैं, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं। चलो, हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
1: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
9: क्या?
8: क्या?
9: क्या?
1: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
2: हाँ जमाईसा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
2: बहुत अच्छी बात है,
10: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर है।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
13: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपके ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
2: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
11: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
12: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
7: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या करेले के लड्डू
6: या मिर्ची का हलवा?
2: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊँ, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
9: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
10: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
2: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
10: हाँ हाँ वही।
11: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
3: किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
9: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
10: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
9: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
10: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
7: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
10: जमाई सा आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई सा के सामने ये सब शोभता नहीं।
9: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया और ये कहते हैं।
2: भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है, दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
9: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
11: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
1: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
7: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
1: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है लेकिन दिल में नहीं।
11: चलिए जमाई साहब अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
2: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाई सा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोल कर इस्तेमाल कर लिया था, वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाई सा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
15: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाई सा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए। उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर, मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अमर कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
1: हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी आभा समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कम लिखा किंतु इतना उत्कृष्ट लिखा कि उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ही महान साहित्यकारों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। वे हिंदी की आधुनिक कहानी के अग्रदूत में गिने जाते हैं। आज शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हिंदी के साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और बहुमुखी प्रतिभा संबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की।
0: गुलेरी जी बहुभाषाविद, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, निबंधकार, आलोचक, संपादक और विद्वान शिक्षक भी थे। उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, बंगला और मराठी जैसी अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। उन्होंने प्राचीन अभिलेखों, शिलालेखों और भारतीय सभ्यता का गंभीर अध्ययन किया। उनका मानना था कि अपने इतिहास को जाने बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
1: हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव के वासी ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी ने 7 जुलाई 1883 में चंद्रधर को जन्म दिया। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन तथा धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला और मेधावी चंद्रधर ने इस सभी संस्कारों और विद्याओं को आत्मसात किया। जब गुलेरी जी 10 वर्ष के ही थे कि इन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना था कि वे 5 वर्ष में अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चंद्रधर ने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। चंद्रधर बीए की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे।
0: सन 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में बड़ा ही मान सम्मान था। अपने शिष्यों में चंद्रधर लोकप्रिय तो थे ही, इसके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से अनुपालन करते थे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहे।
1: कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण करने के बाद चाहते हुए भी वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। हालांकि उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम अबाध रूप से चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला की जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक में अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
0: हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेदशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की।
1: अपने अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और सन 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे।
0: पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं, जो मात्र एक कहानी उसने कहा था के बल पर हिंदी साहित्य के संपर्क में आने वाली पीढ़ियों के स्मृति पटल पर छाए रहे हैं। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी इनकी ये कालजयी रचना निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और त्याग की अमर गाथा है। लेकिन गुलेरी जी ने अपने पूरे साहित्यिक जीवन में केवल एक कहानी नहीं लिखी थी। 1911 ईस्वी में उनकी दो अन्य कहानियां भी प्रकाशित हुई थीं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये दोनों कहानियां भी अपने समय की अद्भुत कहानियां थीं।
1: इन तीनों कहानियों के पात्र साधारण हैं। इन साधारण पात्रों को लेकर गुलेरी जी ने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए, वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता क्षण क्षण नए सौंदर्य के प्रकट करने में है। मौलिकता ही वह तत्व है जो किसी रचना को नित्य नया सौंदर्य प्रदान करती है। गुलेरी जी की तीनों कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन उत्कृष्ट कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यह यश ध्रुव तारे की तरह सदा अटल रहेगा। जहां अनेक लेखक लंबी लंबी रचनाएं लिख रहे थे, वहीं गुलेरी जी ने कम लिखकर भी अमर स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रत्येक रचना गुणवत्ता की दृष्टि से अत्यंत उच्च स्तर की है।
0: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य सर्वोपरि है। जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर उन्होंने मानवता को महत्व दिया। उनका विश्वास था कि सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्य को बेहतर इंसान बना सके।
1: हिंदी के अनन्य आराधक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी अमर कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा जी का साहित्यिक जीवन 20वीं शताब्दी के उन्मेष से प्रारंभ होता है। यह समय पुरातत्व इतिहास तथा भाषा विज्ञान संबंधी अनुसंधानों का था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्य सेवी इस समय अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके थे। ऐसे साहित्यिक परिवेश में गुलेरी जी भी समालोचक, सरस्वती, अभ्युदय एवं आनंद कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं के विशेष रूप से जुड़कर हिंदी जगत के बौद्धिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए थे।
0: विजेंद्र स्नातक के शब्दों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और एकता प्रियदर्शनी हिंदी के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संबंधों से परिपूर्ण विषयों पर सामान्य भाषा में निबंध लिखे, किंतु भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं विषय अनुकूल है। कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठाओ इनके बहुचर्चित निबंध हैं। इसके अलावा उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंधों की बात करें तो शेषुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म और आंख। कविताओं की बात करें तो एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, वैनाक, वर्ण, अहिताग्नि, झोंकी कमान, स्वागत और ईश्वर से प्रार्थना। कहानी संग्रह की बात करें तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
1: उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी जी के लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव की एक अंतरधारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। हिंदी कहानी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हिंदी की पहली कहानी लिखी गई। दूसरे दशक में कई प्रतिष्ठित कहानीकारों का उदय हुआ। इस दूसरे दशक में ही ऐसी कई कहानियां भी सामने आईं जो हिंदी की अमर कहानियां मानी जाती हैं। इसी दूसरे दशक की उपलब्धि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनकी कहानियां हैं।
0: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानीकार गुलेरी जी के संदर्भ में जो कहा है वो सर्वथा उपयुक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, पर इन स्वल्प रचनाओं के बल पर वे साहित्य में अपूर्व गौरव के अधिकारी हुए हैं।
1: यूं तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, लेकिन निबंध विधा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले गुलेरी जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार भी हैं। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचित हिंदी की सर्वकालिक श्रेष्ठतम कहानियों में से एक उसने कहा था है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दो अन्य कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तथ्य और शिल्प की दृष्टि से ये कहानियां भी उल्लेखनीय हैं। इस परियोजना पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों में तथ्य और शिल्प एक समीक्षात्मक अध्ययन। इस परियोजना के अंतर्गत उनके द्वारा रचित उपर्युक्त तीन कहानियों के आधार पर साहित्य की इस सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय विधा के प्रणेता के रूप में गुलेरी जी की विशिष्टताओं को रेखांकित करना इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।
0: गुलेरी जी की कहानियां शाश्वत नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की दृष्टि से अद्वितीय है। उसने कहा था का प्रकाशन आज से एक शताब्दी पूर्व हुआ था। अपने युग के प्राय समस्त प्रतिष्ठित आदर्शों, प्रेम और प्रेमी का आदर्श, युद्ध और वीरता का आदर्श, देशभक्ति और राजभक्ति का आदर्श, सेवा, त्याग और आत्म बलिदान का आदर्श, इन सभी को गुलेरी जी ने अत्यंत कुशलता के साथ इस कालजयी रत्ना में चित्रांकित किया है। आदर्शवाद की दृष्टि से उनकी अन्य दोनों कहानियां भी उल्लेखनीय है। ये आदर्श आज के युवाओं का मार्गदर्शन करने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। इन रचनाओं के पुनरावलोकन द्वारा युवा पीढ़ी की मानसिकता को सकारात्मक दिशा में विकसित करना इस शोध पत्र का विशिष्ट उद्देश्य है।
1: परियोजना के लिए हमने शोध प्रविधि की द्वितीयक पद्धति का प्रयोग किया है। तथ्यों के संग्रह के लिए अध्याय रचनाओं पर किए गए पूर्व शोध ग्रंथों, संबंधित पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट की मदद ली है। गुलेरी जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं सशक्त कथाकार थे। यद्यपि उनकी प्रसिद्धि का आधार उसने कहा था है, लेकिन उन्होंने दो और कहानियां भी लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा।
0: सुखमय जीवन ये शीर्षक कहानी 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी छद्म लेखन को आधार बनाकर लिखी गई एक रोचक कथा है। मात्र किताबी ज्ञान के बल पर जीवन के अनुभवों की आंच में तपे बिना लेखक बनने और हर पुस्तक को बिना विवेचन ब्रह्म वाक्य की तरह लेने वालों पर इस कहानी में सशक्त व्यंग किया गया है।
1: जयदेव शरण वर्मा ग्रेजुएट होने के बाद कुछ पुस्तकों से ज्ञान संग्रह करके सुखी वैवाहिक जीवन पर एक पुस्तक लिखते हैं। वे स्वयं अविवाहित हैं। वैवाहिक जीवन के बारे में उनका अनुभव नगण्य है। समालोचकों द्वारा कहानी की कटु आलोचना होती है और पुस्तक की मात्र 17 प्रतियां बिकती हैं। गुलाब राय वर्मा नाम के एक जागरूक ब्रह्म समाजी तथा उनकी बेटी कमला को यह पुस्तक बहुत पसंद आती है। उन्हें लगता है इस पुस्तक का लेखक बहुत ही अनुभवी होगा, जबकि गुलाब राय की पत्नी का विचार है कि पुस्तक सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी गई है। संयोग से जयदेव शरण वर्मा और कमला की मुलाकात होती है। संक्षिप्त परिचय के बाद एक दिन जयदेव कमला के समक्ष प्रणय निवेदन करते हैं। कमला और उसके पिता उन्हें खूब फटकारते हैं, लेकिन जब जयदेव उन्हें बताता है कि वह अविवाहित है और पुस्तक उसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिखी है, तो कमला और बाबू गुलाब राय पानी पानी हो जाते हैं और जयदेव के साथ मिलकर कमला का विवाह तय हो जाता है।
0: यह कहानी प्रारंभ से अंत तक छद्म लेखकों और छद्म पाठकों पर तीखा प्रहार करती है। नाटकीय स्थिति के द्वारा कहानी में व्यंग की अभिव्यंजना की गई है और संवाद काफी चुटीले हैं। कुछ समीक्षकों ने इस कहानी को अति नाटकीयता और असंभाव्यता के कारण सामान्य कोटि का माना है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सुखमय जीवन में तो कहानी अच्छी तरह बन भी नहीं पाई। उसकी चरम घटना में विस्मय का अत्यंत अस्वाभाविक और अतिरंजित प्रयोग है, किंतु यदि इस कहानी को व्यंग रचना के रूप में देखा जाए तो अस्वाभाविकता और अतिरंजन स्वाभाविक और अनिवार्य तत्व बन जाते हैं।
1: बुद्धू का कांटा का प्रकाशन भी 1911 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी लेखक की व्यंग दृष्टि स्पष्ट है। यह कहानी एक प्रेम कथा है। इस कहानी में लेखक ने अपने आदर्शवादी चरित्रों की रचना की। कहानी का ढांचा उपन्यास का सा है, इसलिए वे रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी के पिता बाबूजी और इलाही का विस्तृत शब्द चित्र खींचते हैं। इस कहानी का एक अंश पनघट शीर्षक से अलग छपा बताया जाता है। रघुनाथ प्रयाग से पढ़कर आया है और जो गांव के तौर तरीकों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। भागवंती कुएं में पानी भरने वाली महिलाओं के दल में एक ही हंसोड़, चुलबुली और बड़बोली किशोरी है। वह रघुनाथ के बुद्धूपन पर फप्तियां कसती है क्योंकि वह कुएं से पानी का लोटा भी नहीं खींच सकता और औरतों से बात करते करते पसीना पसीना होने लगता है। मजाक और फप्तियां

0: गया होता है। विवाह के फेरों के बाद जब वे दुशाले की ओंट में एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों हतप्रभ रह जाते हैं। बाद में मिलन के समय भागवंती अपनी उद्दंडता के लिए पति रघुनाथ से क्षमा मांगती है और रघुनाथ रखे हुए कांटे को दिखाकर अपनी मनोभावना को प्रकट करता है। इस प्रकार कुल मिलाकर यह कहानी एक प्रेम कथा बन जाती है।
1: 1915 में प्रकाशित उसने कहा था, हिंदी की सर्वाधिक श्रेष्ठतम कहानी है। हिंदी में कहानी विधा का स्वतंत्र विकास इस कहानी से माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग, मानवता और वचन पालन की अनुपम कथा है। कहानी में प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट हुआ है। गुलेरी जी तांगे वाले के संवाद में तथा सिपाहियों के वार्तालाप में हास्य, विनोद और जीवन की ताजगी पर उतना ही बल देते हैं जितना प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति पर।
0: यथार्थ चित्रण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सरल भाषा, प्रभावशाली संवाद, मानवीय संवेदना, देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, उत्कृष्ट कथानक, इन्हीं गुणों के कारण ये कहानी आज भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। अभी तक उसने कहा था को लहना सिंह के ही प्रेम और बलिदान त्याग की कहानी के रूप में देखा जाता रहा है। एक पक्षी प्रेम की दृष्टि से पाठ्यक्रमों में इसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसे सूबेदारनी के उदात्त गंभीर प्यार और अडिग विश्वास की कहानी के रूप में भी देखा गया है। इसी आधार पर इसका नामकरण भी हुआ है।
1: ये कहानी कालजयी रचना सिद्ध हो चुकी है क्योंकि इसी एक कहानी के बल पर गुलेरी जी एक शताब्दी से हिंदी जगत पर छाए रहे। विमल राय द्वारा इस कहानी पर फिल्म बनाए जाने के बाद इसकी लोकप्रियता में और भी विस्तार हुआ। यह कहानी प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति की है। आध्यात्मिक इस अर्थ में कि इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध की ऊष्मा नहीं है बल्कि प्रेम एक ज्योति की तरह दोनों के हृदय में विद्यमान रहता है और वह अनुभूति इतनी सुखद, इतनी निर्मल है कि युद्ध की विभीषिका भी उसे भंग नहीं कर पाती।
0: अपनी पहली दो कहानियों में गुलेरी जी ने नायक और नायिका के बीच प्रेम की उत्पत्ति की सूचना स्पष्ट शब्दों में दे दी है, किंतु तीसरी कहानी में केवल संकेत दिए हैं, बाकी पाठक के अनुमान के लिए छोड़ दिया गया है। श्रेष्ठ कला होती भी सांकेतिकता में ही है। पहली दो कहानियों में घटनाओं को सीधे साधे कालानुक्रम में रखा गया है। उसने कहा था शीर्षक से ही पाठक के मन में जिज्ञासा क्रमशः तीव्रतर होती जाती है, किंतु इसका समाधान कहानी के अंत में जाकर होता है।
1: अपनी तीन कहानियों के आधार पर ही गुलेरी जी ने हिंदी के विशिष्ट कहानीकार के रूप में ख्याति पाई। पुरानी पीढ़ी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, अमर नाथ झा, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र आदि से लेकर नई पीढ़ी के समर्थ आलोचकों तक उन्हें श्रेष्ठ कहानीकार स्वीकार किया है। जिस प्रकार गुलेरी जी की कहानियों में उनके अनुभव और जीवन दृष्टि में क्रमशः परिपक्वता आई है, उसी प्रकार उनकी कहानी कला में भी उनकी कहानियों में संयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है।
0: अपनी तीनों कहानियों में उन्होंने विकास के तीन सोपान पार किए हैं और हर सोपान पर इनकी कहानी कला परिपक्व होती गई। कथाकार गुलेरी जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी कहानी उसने कहा था कि लोकप्रियता का सिक्का आज भी जमा हुआ है। गुलेरी जी विद्वान थे, उनकी विद्वत्ता की झलक उनकी कहानियों में साफ दिखाई देती है, लेकिन इस विद्वत्ता को उन्होंने ना तो अपने ऊपर हावी होने दिया ना ही अपनी कहानियों के ऊपर। इसका कारण यह था कि वे यथार्थ जीवन और उसके अनुभव से निर्मित हुई हैं। उनकी कहानियों में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जो सकारात्मक कथन हमें मिलते हैं वे उपदेश नहीं है, ये जीवन के अनुभव है।
1: गुलेरी जी ने न केवल तीन कहानियां ही लिखी बल्कि 1900 से 1922 तक प्रचुर साहित्य सृजन किया तथा अनेक हिंदी लेखकों का मार्गदर्शन भी किया, लेकिन अपनी केवल एक कहानी उसने कहा था कि बल पर हिंदी साहित्यकाश के नक्षत्र बन गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार उसने कहा था न सिर्फ

0: कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में भी शामिल है। हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया।
1: यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस, ना गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और ना ही वादे किए जाने का। लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो अनेक लोगों की स्मृति में सबसे पहले इसी कहानी का नाम याद आता है।
0: किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले, हर बार यह लगे कि कुछ और समझने को शेष रह गया है। उसने कहा था, इस कसौटी पर 100% खरी उतरती है।
1: सामान्य तौर पर देखा जाए तो 3 विशेषताएं हैं, इसका शीर्षक, फलक और चरित्रों का गठन, जो उसने कहा था को अमर और कालजयी बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसके शीर्षक के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो, किसने कहा था, किससे कहा था, कब कहा था, क्या कहा था। शीर्षक में वह नाटकीयता है जो पूरे संयोजन को मंच बना देती है।
0: युद्ध और प्रेम की इस कहानी के 2 सिरे हैं। यह कहानी अमृतसर की गलियों की उस घटना के बाद सीधे प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है। वहां के भारतीय सैनिकों, उनकी चूहलबाजियों, अपने वतन की याद और स्मृतियों के बीच
1: 5 खंडों और 25 वर्षों के लंबे अंतराल के युद्ध में सिमटती ये कहानी विषय और अपने अद्भुत वर्णन में किसी उपन्यास सी है। प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम के 3 मूल उद्देश्य से जुड़ती हुई उसे अपने विषय बनाती हुई शाब्दिक विवरणों से और अधिक मनोविज्ञान को पढ़ते पकड़ते और उसके चित्रण में रमती हुई यह कहानी कहीं भी अपने विषय से भटकती नहीं है। सोच कर देखें तो प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं और उसके मूल में प्रेम ही है। कर्तव्य तो प्रेम का ही एक रूप होता है और देश प्रेम भी तो बड़े और वृहद अर्थों में प्रेम होता है। इसीलिए ये कहानी हर अर्थ में प्रेम कहानी है।
0: अपने सामान्य जीवन में सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर्मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितने उच्च भूमि पर पहुंचा सकती है, यह इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, यह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम कालक्रम पर नहीं मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है।
1: यही इस कहानी की अनन्य विशेषता और इसकी शाश्वत लोकप्रियता का कारण है। इसी संदर्भ में विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, रचना शिल्प की दृष्टि से यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी।
0: जैनेन्द्र ने एक बार गुलेरी के विषय में कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी विलक्षण विद्वान थे, उनकी प्रतिभा बहुर्मुखी थी, उनमें गजब की जिंदा दिली थी और उनकी बोली भी अनोखी थी। गुलेरी जी न केवल विद्वत्ता में अपने समकालीन साहित्यकारों से ऊंचे ठहरते थे, अपितु एक दृष्टि से वह प्रेमचंद से भी ऊंचे साहित्यकार हैं। प्रेमचंद ने समसामायिक स्थितियों का चित्रण तो बहुत बढ़िया किया है, पर व्यक्ति मानस के चितेरे के रूप में गुलेरी का जोड़ नहीं है।
1: गुलेरी जी की 3 कहानियों के पात्र साधारण है, लेकिन इन साधारण पात्रों को लेकर उन्होंने असाधारण सौंदर्य की सृष्टि की। जीवन की जिन स्थितियों के चित्र उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किए वे आज भी नवीन हैं। साहित्य की विशिष्टता ही है क्षण क्षण नए सौंदर्य को प्रकट करने में, और जो तत्व किसी रचना को नित नया सौंदर्य प्रदान करती है वो है मौलिकता।
0: गुलेरी जी की 3 कहानियां मौलिक होने के साथ साथ परिस्थितियों पर अपनी इच्छा शक्ति की विजय की रचनाएं हैं, इसलिए ये आज भी ताजगी और ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। ये कहानियाँ हिंदी कथा साहित्य की अनमोल विरासत हैं। हिंदी साहित्यकाश के जगमगाते नक्षत्रों के मध्य इन कालजयी कहानियों के रचनाकार के रूप में गुलेरी जी का यश ध्रुव तारे की तरह अटल रहेगा।
1: खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता वाले युग में गुलेरी जी खेल को शिक्षा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाल विवाह के विरोध और स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ ही आज से 100 साल पहले उन्होंने बालक बालिकाओं के स्वस्थ चारित्र के विकास के लिए सहशिक्षा को आवश्यक माना था। ये सब आज हम शहरी जनों को इतिहास के रोचक प्रसंग लग सकते हैं, किंतु पूरे देश के संदर्भ में यहाँ फैले अशिक्षा और अंधविश्वास के माहौल में गुलेरी जी की बातें आज भी संगत और विचारणीय है। भारतवासियों की कमजोरियों का वे लगातार जिक्र करते रहते थे, विशेषकर सामाजिक राजनैतिक संदर्भों में। हमारे अधःपतन का एक कारण आपसी फूट है। जाति व्यवस्था भी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। छुआछूत को वे सनातन धर्म के विरुद्ध मानते थे। उनके अनुसार उदारता, सौहार्द और मानवतावाद ही धर्म के प्राण तत्व होते हैं।
0: गुलेरी जी भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के समर्थक थे। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना दिखाई देती है। वे शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम मानते थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, ईमानदारी, संवेदनशीलता और उत्कृष्ट कर्म ही किसी व्यक्ति को अमर बनाते हैं। हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।
1: 12 सितंबर 1922 को काशी यानी वाराणसी में उनका निधन हो गया। वे मात्र 39 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, किंतु अपने अल्प जीवन में उन्होंने जो साहित्यिक विरासत छोड़ी वह अमूल्य है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी कहानी के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य में महान बनने के लिए रचनाओं की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। आज भी उनका नाम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकारों में आदर पूर्वक लिया जाता है।
0: चंद्रधर शर्मा गुलेरी भारतीय साहित्य के ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनकी रचनाएं समय की कसौटी पर सदैव खरी उतरी हैं। वे केवल कथाकार ही नहीं बल्कि महान विद्वान, इतिहासकार, भाषाविद और संस्कृति के संवाहक थे। उनकी अमर कहानी उसने कहा था आज भी पाठकों के हृदय को स्पर्श करती है और त्याग, प्रेम, वचन पालन तथा मानवता का संदेश देती है।
1: शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न सरस्वती पुत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। इसी भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हम आपसे अनुमति लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन, वाचक स्वर मैं नूपुर शर्मा
0: और मैं वेणु बालन,
1: प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: Om Shanti. कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो, विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक श्री गणेश की हम बहुत प्यार से महिमा करते हैं, उन्हें याद करते हैं, पूजा करते हैं, हर कार्य की शुरुआत उनकी स्थापना से करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ याद करना और उनकी महिमा करना क्या उतना काफी है? क्यों ना उनसे प्रेरणा ले, उनकी विशेषताएं, उनकी शक्तियां अपने जीवन में धारण करें और सिर्फ श्री गणेश जी की महिमा ना करें, खुद ही श्री गणेश जैसे बन जाए। श्री गणेश जी की जो जन्म की कहानी है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। कहते हैं शंकर जी तपस्या के लिए बहुत दूर पहाड़ों में गए थे तो पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी निकालकर एक बच्चे का निर्माण किया। एक दिन पार्वती जी ने उस बच्चे को घर के बाहर खड़ा किया कि वो स्नान करने जा रही थी तो घर में अंदर में कोई नहीं आना चाहिए। और अचानक उस दिन शंकर जी वापस आ गए तो उस बच्चे ने अपने कर्तव्य का पालन किया और शंकर जी को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता को ही नहीं पहचाना। कहा जाता है शंकर जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने उस बच्चे का सर काट दिया। और पार्वती जी उतनी देर में बाहर आई तो उन्हें पता चला कि शंकर जी ने उनके बच्चे का सर काट दिया। फिर शंकर जी ने कहा, अच्छा अगला जो अब यहां से जाएगा मैं उसका सर इस बच्चे को दे दूंगा। हम ये कहानी बहुत समय से सुनते आए हैं लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार ही नहीं किया कि ये हमें क्या सिखा रही है। तो अगला जो वहां से गुजरा वो एक हाथी था तो शंकर जी ने हाथी के सर को काटा और उस बच्चे पर लगा दिया और उस बच्चे को नाम दिया गणेश। ये कहानी क्या सिखा रही है हमें कि बच्चा अपने पिता को नहीं पहचानता और शंकर जी देवता 10 साल की तपस्या बाद आए थे और इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे का सर काट दिया। आज आप और मैं भी अगर 10 मिनट भी मेडिटेशन कर ले तो इतने शीतल और शांत हो जाते हैं कि ऊंची आवाज में नहीं बोल पाते हैं और देवता 10 साल की तपस्या बाद एक बच्चे के ऊपर इतना गुस्सा आया और बात भी कितनी थी, अपने ही तो कर्तव्य का पालन कर रहा था, सर काट दिया। ये कभी नहीं कहते कि शंकर जी ने उस बच्चे की हत्या की, नहीं कहते, सिर्फ कहते हैं उसका सर काटा। दो बातों में बहुत फर्क है। वैसे तो अगर बच्चे का सर काट दो या किसी का भी सर काट दो तो उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी लेकिन उसको हत्या नहीं कहते, कहते सर काटा और किसी और का सर लगा दिया। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम अपने अहंकार वश परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस, क्यों ये कहा जा रहा है कि पार्वती जी ने अपनी मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया? क्या किसी देवी के शरीर में इतनी मिट्टी हो सकती है? क्या हमारे शरीर में इतनी मिट्टी है कि हम एक बच्चे का निर्माण करें? तो मिट्टी से बच्चे का निर्माण किया मतलब ये शरीर मिट्टी का है। दिस इज मिट्टी, दिस इज बॉडी कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा सबसे पहली चीज क्या करते हैं, हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के सर को काटते हैं, हमारे अहंकार के सर को काटते हैं। तो शंकर जी ने बच्चे का सर काटा, अच्छा सर काटा ही था तो वापस वही सर लगा देते, एक और की हत्या करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जब परमात्मा हमारे अहंकार का सर काटते हैं तो फिर उसकी जगह सोल कॉन्शियस, ज्ञान से भरा हुआ, प्योरिटी और डिविनिटी से भरा हुआ एक बहुत वाइज सर हमारे ऊपर लगाते हैं। तो शंकर जी ने वो सर काट के ज्ञान का सर उस बच्चे को दिया और फिर उसका नाम रखा गणेश। तो गणेश जी के अगर हम एक एक अंग को देखें वो हमें सही जीवन जीने का तरीका और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाना है उसकी धारणा सिखाता है। सबसे पहली चीज जो सर है, मस्तिष्क, वो बहुत बड़ा मतलब विजडम एंड विशाल बुद्धि। फिर दूसरी चीज जो आंखें हैं वो बहुत छोटी, सर इतना बड़ा, आंखें इतनी छोटी। तो जो वाइज होगा, जो वाइज इंटेलेक्ट होगा, वो दूरादेशी होगा। जब हम कोई चीज दूर देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो दूर देखकर फिर कर्म करना, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। लेकिन कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर फिर कर्म करना, तो वाइज इंटेलेक्ट एंड फार साइटेडनेस। फिर मुंह छोटा कि कम बोलना, लेकिन कान बड़े ज्यादा सुनना, तो टॉक लेस एंड लिसन मोर। अब कान सिर्फ बड़े नहीं हैं, कान सूप जैसे हैं। तो सूप क्या करता है? छन्नी का काम करता है, अच्छी चीज को रखता है, कचरे को फेंक देता है। तो कान सूप जैसे हो, मतलब सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, दूसरी बातों को तो अंदर जाने भी ना दें। दुनिया में लोग कहते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमने सुन लिया तो वो अंदर तो चला ही गया ना। तो अगर एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, लेकिन बीच में ये आती है बुद्धि, और यहाँ उसकी बात की छाप लग जाती है, तो सुनना ही नहीं है। आज मीडिया से, सोशल मीडिया से, आसपास के लोगों से हम कितनी बातें सुन रहे हैं, सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, मैसेज आफ्टर मैसेज आफ्टर मैसेज सुनते ही जा रहे हैं, अंदर लेते ही जा रहे हैं। अगर हम इतना कुछ अंदर ले लेंगे और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? तो हमेशा कान सूप जैसे, सिर्फ प्योर कॉन्टेंट, अच्छी बातें, लोगों की विशेषताएं, सिर्फ उनको ही सुनना है और अंदर लेना है। फिर गणेश जी के दो दांत हैं, लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं, एक दंत, वन टस्क इज ब्रोकन। इसका क्या मीनिंग है? एक दंत क्यों कहा जाता है? हमारे जीवन में ड्यूअलिटी है, मेल फीमेल, रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ड्यूअलिटी, एज बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, प्रोफेशन बेसिस पे, सीनियोरिटी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जहाँ बॉडी कॉन्शियस होंगे, जहाँ ईगो होगा, वहाँ ड्यूअलिटी होगी। परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं? मैं आत्मा, तुम आत्मा, सारी ड्यूअलिटी खत्म, वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक। ये जो ड्यूअलिटी है, ये सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से खत्म होती है। तो जब वो विजडम जीवन में आ जाए तो ड्यूअलिटी खत्म, इसलिए एक दंत, दो नहीं। फिर गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। सूंड की क्या विशेषता है? कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ लेता है, लेकिन एक बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेता है। वो ही सूंड से पेड़ भी उखाड़ा, वो ही सूंड से बच्चे को भी उठाया। विच मीन्स आत्मा जो वाइज बन जाएगी, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी धारण हो जाएगी, जो सोल कॉन्शियस हो जाएगी, वो बहुत सॉफ्ट भी होगी, बहुत लविंग भी होगी, लेकिन बहुत पावरफुल भी होगी। कई बार हमारे अंदर एक भ्रांति आती है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हम बहुत वीक हो जाएंगे, पॉजिटिविटी मतलब दुनिया हम पर ट्रैम्पल करके आगे बढ़ जाएगी। अगर हम बहुत सीधे होंगे, सादे होंगे, तो लोग हमें धोखा दे देंगे। But that's not true. Spirituality means the perfect balance of soft but powerful. Love and law. ये दोनों का balance वो सूंड दिखाता है। फिर गणेश जी देवता हैं, लेकिन उनका पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के जो शरीर है वो परफेक्ट दिखाते हैं, कंचन काया, लेकिन गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। जो वाइज आत्मा है, वो हर बात को अपने पेट में समा लेती है। आज भी अगर कोई बात हर एक को सुनाता रहता है तो लोग कहते हैं इसके पेट में बात ही नहीं टिकती है, लेकिन गणेश जी के पेट को बड़ा दिखाते हैं, मतलब वो हर बात को अपने पेट में समा लेते हैं। इधर से सुना, उधर सुनाया, ये ज्ञान रूपी आत्मा की क्वालिटी नहीं होती है। और बड़ा पेट ऑल्सो सिग्निफाइज द पावर टू एक्सेप्ट। हर एक से मिलें, हर एक के साथ काम करें, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन हर एक को एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, तो पेट बड़ा। फिर गणेश जी के चार भुजाएं दिखाते हैं और चार भुजाओं में बहुत सुंदर अलंकार है। एक भुजा में कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? जो परमात्मा से ज्ञान मिलता है तो वो कुल्हाड़ी, ज्ञान की कुल्हाड़ी मतलब अपने विकार, अपने वाइसेस, अपनी नेगेटिविटीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास्ट रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स को काटना, उनको फिनिश करना। क्योंकि अभी हमें ज्ञान मिला है तो पास्ट का कोई भी कार्मिक अकाउंट आएगा, लेकिन ज्ञान से प्रेजेंट थॉट्स, प्रेजेंट बिहेवियर्स उस पास्ट के कार्मिक अकाउंट को काट के फिनिश कर देंगे। दूसरे हाथ में रस्सी दिखाते हैं, द रोप। ज्ञान यूज किया, मेडिटेशन किया, लेकिन धारणा तब होगी जब जीवन में डिसिप्लिन होगा। डिसिप्लिन, संयम, नियम, इसके बिना धारणा नहीं हो सकती। तो अपने जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांधना है। ऐसा नहीं कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, कुछ भी बोला, कुछ भी किया, पैसे कमाने गए तो किसी भी तरह काम कर दिया, ऐसी आत्मा वाइज नहीं बन सकती है। लेकिन जीवन को मर्यादाओं की रस्सी में बांध दिया, सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही खान पान, सही धन कमाने का तरीका, ये मर्यादाओं को रस्सी से बांध लो। फिर तीसरे हाथ को ब्लेसिंग देता हुआ दिखाते हैं, मतलब हाथ हमेशा ऐसे। आज अगर हम अपने जीवन में देखें, हमेशा सारा दिन हमें किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और कुछ नहीं तो प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, अक्नॉलेजमेंट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, ऐसे हाथ है हमारा। लेकिन गणेश जी का हाथ ऐसा नहीं है, गणेश जी का हाथ ऐसा है, मतलब चाहिए चाहिए कुछ नहीं, सब कुछ देना है, सबको देना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको ब्लेसिंग्स देना है, दुआएं देना है। विच मीन्स कोई भी आत्मा आए, कैसे भी संस्कार हो, कैसा भी व्यवहार हो, वो अपने संस्कार लेकर आएंगे, वो अपने कर्म करेंगे, लेकिन हमारे से उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्योर थॉट्स, प्योर वर्ड्स, ब्लेसिंग्स। तो एक हाथ ऐसे, मतलब सबको दुआएं देते जाओ, दुआएं देते जाओ। फिर चौथे हाथ में मोदक है, और वो मोदक हाथ में होता है। मोदक अर्थात स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लाना सहज है, लेकिन केयरलेस होकर नहीं हो सकता है। कॉन्स्टेंट अटेंशन, मोदक बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इट सिग्निफाइज कि स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से अपने जीवन में ले आने में अटेंशन, कॉन्स्टेंट अटेंशन, उतनी मेहनत करनी है। लेकिन एक बार वो मेहनत कर ली तो मोदक मीठा बहुत होता है, विच मीन्स मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। लेकिन जब इतना सब कुछ अपने अंदर धारण कर लिया तो फिर महिमा भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। बहुत लोग आपको अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा भी बहुत कहेंगे। उस समय ध्यान रखना है ज्ञान का अहंकार ना आ जाए, विशेषताओं का अहंकार ना आ जाए, जो कार्य परमात्मा आपसे करवा रहा है उसका अहंकार ना आ जाए। तो मोदक बन तो जाता है, मीठा भी बहुत है, लेकिन गणेश जी उसको खाते नहीं है, हाथ में रखते हैं, विच मीन्स सफलता मिलेगी, महिमा को स्वीकार नहीं करना है, उसको सिर्फ हाथ में ही रखना है। तो किसी भी मूर्ति में गणेश जी को मोदक खाते हुए नहीं दिखाते हैं, सिर्फ संभाल कर पकड़े हुए दिखाते हैं। दिस इज अ रिमाइंडर कि द मोर वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, People will have lot of nice things to say about us, but take care. अहंकार नहीं, सब अहंकार से सबसे बड़ा अहंकार होता है ज्ञान का अहंकार, एंड वो एक ऐसा अहंकार होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि पता भी नहीं चलता कि ये अहंकार है। तो मोदक को हमेशा पकड़ के रखना है। फिर गणेश जी को बैठा हुआ कैसे दिखाते हैं? एक लेग फोल्डेड होता है और एक लेग नीचे होता है, और जो पांव नीचे होता है उसका भी सिर्फ टो नीचे टच करता है, और हर मूर्ति में एक पांव नीचे और एक पांव ऐसा फोल्डेड है, विच मीन्स इस दुनिया में रहना है तो पांव नीचे। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन मूव अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मूव अवे फ्रॉम पीपल, स्टॉप वर्किंग, नो, पांव दुनिया में रहेगा, सब कुछ करना है, सबके बीच रहना है, सारे रिश्ते निभाने हैं, काम कारोबार करना है, लेकिन सबसे डिटैच्ड भी रहना है, न्यारे और प्यारे, सब कुछ करना है लेकिन किसी भी चीज का प्रभाव हम पर नहीं आना चाहिए, सबके बीच रहना है लेकिन किसी के संस्कार के प्रभाव में आकर अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ देना है, तो रहना भी है लेकिन ऊपर भी रहना है। अब इतनी महानता धारण करके, इतनी दिव्यता अपने जीवन में लाकर, लेकिन श्री गणेश जी का वाहन क्या दिखाया? देवता है तो उसका आसन, उसका वाहन बहुत सुंदर होना चाहिए, लेकिन श्री गणेश जी को तो चूहे पर बैठा हुआ दिखाते हैं। तो चूहा किसका प्रतीक है? अगर हम देखें तो चूहा सारा दिन कुछ ना कुछ पर खुरेदता रहता है, खाने की चीज नई भी होती है, कोई वायर है, कोई प्लास्टिक है, कुछ भी चीज पर वो खुरूर करता रहता है। ये हमारी कर्म इंद्रियों का प्रतीक है, सारा दिन कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नई भी जरूरत तो पीते जा रहे हैं, जो सामने दिखा उसको सुना। तो चूहे की तरह कर्म इंद्रियों पर संयम खत्म हो गया है। तो चूहा एक तो कर्म इंद्रियों के वशीभूत होने का प्रतीक है, और दूसरा चूहा छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। हम सब कहते हैं दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, ये चूहा कहाँ से आ गया घर के अंदर? क्योंकि चूहे को जगह की जरूरत नहीं है, वो छोटी सी जगह से अंदर घुस जाता है। वाइसेस, कमजोरियां, डिस्ट्रैक्शंस, पता ही नहीं चलता जीवन में कब आ जाती हैं, कहाँ से आ जाती हैं। और चूहा जब किसी को काटता है तो शुरू में एक बहुत एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, पता ही नहीं चलता कि चूहा काटा है, एकदम से स्टिलनेस हो जाती है उस जगह पर, बहुत देर बाद पता चलता है कि कुछ काटा है। वाइसेस, डिस्ट्रैक्शंस जब जीवन में आते हैं, शुरू में तो पता ही नहीं चलता है, अच्छी भी लगते हैं शुरू में बहुत, दर्द बहुत बाद में होता है। तो जब हम विशाल बुद्धि, दूरादेशी, बड़े कान, सिर्फ अच्छा सुनेंगे, कम बोलेंगे, सॉफ्ट भी होंगे, पावरफुल भी होंगे, बातों को अपने अंदर समा लेंगे, ज्ञान की मर्यादाओं पर चलेंगे, विकारों को कुल्हाड़ी से काटेंगे, ब्लेसिंग सबको देंगे और ईगो में कभी नहीं आएंगे, ह्यूमिलिटी में रहेंगे, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर, सेंस ऑर्गन्स के ऊपर और अपने वाइसेस के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। विच मीन्स ऐसी आत्मा गणेश जी को चूहे के ऊपर बिठाया दिखाते हैं, चूहा उनके नीचे है। अब ये सब कुछ होने के बाद गणेश जी के साथ दिखाते हैं एक तरफ रिद्धि और दूसरी तरफ सिद्धि, कि गणेश जी की दो पत्नियां जो हमेशा गणेश जी के साथ साथ चलती हैं। तो स्पिरिचुअल सोल जो इस विजडम को धारण कर ले, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस साथ साथ चलते हैं, उसको प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस के लिए भागना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है, प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस ऐसे व्यक्ति के साथ साथ चलता है। और एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि गणेश जी को और उनके भाई को कहा गया सारी दुनिया का एक चक्कर लगा कर आओ, तो उनके भाई ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने तो सिर्फ अपने माता पिता का ही चक्कर लगा लिया। आज हम सब जीवन में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, खुशी के लिए, हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, काम के लिए, आर होल वर्ल्ड जो हमारी दुनिया है उसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, टाइम भी आजकल नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, बिकॉज हम अपनी दुनिया को ही नहीं संभाल पा रहे, उसको समेट नहीं पा रहे। लेकिन जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा, विच मीन्स जिसने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, परमात्मा के साथ कनेक्शन, हर थॉट प्योर, हर वर्ड एक्यूरेट, तो हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स एंड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, ये नेचुरल हो जाएगा। दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश करेंगे कभी पूरा नहीं होता, लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लें तो अपनी दुनिया परफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो मन जीत हो जाता है वो जग जीत अपने आप हो जाता है। तो गणेश जी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, और जो आत्मा ये सब कुछ कर लेती है उसको विघ्न विनाशक कहते हैं, कि विघ्न तो उसके जीवन में आता ही नहीं है, आने से पहले ही विघ्न खत्म हो जाता है। और वो सिर्फ अपने नहीं दूसरों के भी दुख हर के उनको सुख देता है। तो क्या सिर्फ श्री गणेश जी की पूजा करेंगे, क्या सिर्फ उनकी महिमा करेंगे? नहीं, हम सबको श्री गणेश जी जैसा बनना है, विघ्न विनाशक आत्मा बनना है, सबके दुख हर के इस सृष्टि पर पुनः सुख लाना है। तो गणेश जी की महिमा नहीं, सिर्फ पूजा नहीं, एक एक विशेषता को अपने जीवन में धारण करते जाएं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या? परमात्मा से कनेक्शन, डेली कनेक्शन विद गॉड। ज्ञान को अपने अंदर भरते जाएं, अहंकार रूपी सर को काटते जाएं और वो स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियसनेस वाला सर अपने ऊपर ले आएं, तो जीवन श्री गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक, वो जीवन हम सिर्फ अपने विघ्न नहीं, हमारे आसपास जो आएंगे इतनी पावर आ जाती है उस आत्मा में, वो औरों के भी विघ्न खत्म कर देते हैं। तो श्री गणेश जी जैसा हम सबको बनना है।

0: गणपति बप्पा,
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
0: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
2: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
3: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए, उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण। मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्ष उल्लास के साथ।
4: श्रोताओं, आज फिर से एक बार लेकर आया हूं मैं आपका फेवरेट शो जुनून। आज आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज में वो तेजी क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं और कारण पे तो आपकी समझ अपने आप ही बन जाएगी ऐसा क्यों है। मेरी आवाज इतनी ठहरी हुई और शांति के साथ मैं आज अपनी बात कह रहा हूँ। मैं आपका होस्ट हूँ और आपका दोस्त, आपका फेवरेट शो लेकर आया हूँ जुनून। मेरा नाम है शरद और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। और रेडियो मधुबन माउंट आबू की वादियों में तो आपको मिलता ही है एफएम पे 107.8 एफएम पे, और इसके साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। और पिछले ही कुछ समय में हमने अन्य माध्यम यानी कि स्पॉटिफाई पर भी इसको हम आपके लिए लेकर आए। हमारे साथ आज एक बेहतरीन आवाज जिनकी आवाज में है शीतलता, है ठहराव, अनुभव और रंगमंच का अनुभव, ग्रीन रूम का अनुभव। तो ग्रीन रूम के बहुत सारे ग्रीन अनुभव, रंग बिरंगे अनुभव, उसे कहते तो ग्रीन रूम है लेकिन जब वो मंच पर आता है तो सतरंगी हो जाता है। तो वो सतरंगी रंगमंच के कलाकार माध्यम को मजबूत बनाने वाले, उस माध्यम को और अपने रंगों से भरने वाले एक कलाकार, एक निर्देशक, एक मजबूत आवाज मेरे साथ हैं राजकुमार रजक। आप राजस्थान के टोंक जिले में अपना रंगमंच का अनुभव ग्रामीणों के बीच, शिक्षकों के बीच, शिक्षा के बीच लंबे समय से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं और आज हम उनको लेकर आए हैं हमारे फेवरेट शो जुनून में। हमारी कोशिश होती है कि हम हर एक शो में, हर एक एपिसोड के माध्यम से, इस हमारे छोटे से प्रयास के माध्यम से एक जुनूनी से आपको हर सप्ताह मिलाएं, एक नई आवाज से आपकी मुलाकात करवाएं। तो हमारे साथ एक ऐसे ही जुनूनी हैं आज राजकुमार रजक जी। राजकुमार जी रंगमंच आवाज तो हैं ही, रंगमंच के निर्देशक भी हैं, रंगमंच के कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं, या अपने रंगमंच के सब कुछ हैं। तो आइए रंगमंच उनसे बात करते हैं, रंगमंच के बारे में, इस अभिनय की इस विधा के बारे में, इस कला की इस विधा के बारे में। राजकुमार जी आपका स्वागत है हमारे फेवरेट प्रोग्राम जुनून में।
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद भाई, मधुबन रेडियो, कृष्णा बैन, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: श्रोताओं, किसी ने कहा है ना, कहें कि हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनें ही कहती हैं कि एक शुभ भाव से कहे गए मीठे बोल जो है वो हीरे जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान है। तो हमारे जो राजकुमार भाई हैं ये ऐसे ही मीठे बोल के धनी हैं और अपनी आवाज, अपनी भाषा शैली, अपने अनुभव से लोगों का दिल जीतते हैं। आम जन और आम जन मानस में रंगमंच को लेकर बहुत सालों से एक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहे हैं और आइए हम उनसे जानते हैं दुनिया के बारे में कि उनका जुनून क्या है। जैसे हमारी ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनें एक दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहती हैं, एक दुनिया को रहने लायक बनाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हमारे युवा सकारात्मक जीवन जी सकते हैं, कैसे हमारे समाज में जो गंदगी फैली हुई है, हमारे समाज में जो ऊंच नीच है, हमारे समाज में जो भेदभाव है, हमारे समाज में जो हिंसा है, उसको कैसे हम प्रेम के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही हमारे बहनों के प्रयास को देखते हुए राजकुमार भाई भी हमारे साथ हैं। वो रंगमंच के माध्यम से क्या जुनून रखते हैं, इस माध्यम को कैसे अपने जुनून के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो राजकुमार भाई ये शुरुआत कैसे हुई और ये जुनून आपको कैसे मिला और आपका जुनून है क्या, पहले तो ये बताइए।
5: जी पुनः बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं आप सभी को सहृदय धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और समस्त श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी आवाज सुन रहे होंगे या और सुनेंगे। तो जो सवाल है बहुत ही प्यारा और नाजुक सा सवाल है, खुद बुदाने वाला सवाल भी है और टटोलने वाला सवाल भी है शरद भाई। तो मैं अपनी बात रखूं, उसके पहले मैं एक दृश्य खींचना चाहता हूं, वो ये कि देखिए जब हम एक बीज को, किसी भी एक कल्पना कर लीजिए कि आम की गुठली को ही ले लीजिए कि आम की गुठली को जब हम धरती में गाड़ते हैं, जमीन में रखते हैं, गाड़ते हैं उस, तो असल में जब से वो धरती के स्पर्श में आता है तब से उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक बदलना धीरे धीरे शुरू होता है, और दोनों के मिलाप से, दोनों के मिलन से एक अलग संयोग बनता है और एक यात्रा शुरू होती है। तो आम का पेड़ और बीज दोनों के अवस्था में बहुत तफात है, पर जो कांस्टेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस ओर मैं आप सभी का इशारा चाहूंगा, सभी का ध्यान लेना चाह रहा हूं कि असल में एक यात्रा है ये, पूरी की पूरी एक यात्रा है। तो हम चीजों को मेरे संदर्भ में, मेरी बातचीत के संदर्भ में एक जर्नी के रूप में देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे जुनून की खेती हुई और उसकी यात्रा कैसे रही, उसने कैसे फेर बदल हुए। तो अमूमन बहुत ही शौकिया तरीके से ही रंगमंच में मैंने भी प्रवेश किया, और प्रवेश करने की अपनी एक यात्रा रही कि कहाँ पर नाटक होता है और कैसे होता है। मैं इलाहाबाद का, चूंकि मेरी परवरिश, मैं 12वीं तक इलाहाबाद में ही रहा हूँ, प्रयागराज में, तो उस वक्त के उम्र में 9वीं 10वीं में मैं पढ़ रहा था, करीब 97-98 का साल रहा होगा, उस वक्त का वो मेरा जुनून बनना शुरू हुआ था कि मैं भी इलाहाबाद का एक दूसरा अमिताभ बच्चन बनूंगा। और
4: क्या बात है क्यों? लेकिन इस बात में कई मायने हैं राजकुमार भाई। अमिताभ बच्चन तो इलाहाबाद में चुनाव जीतकर और बीच में अपनी सांसदी छोड़ के भी चले गए थे, कुछ ऐसा भी आपने तो नहीं किया इलाहाबाद के साथ?
5: नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल।
4: लेकिन उन्होंने वहाँ के बहुत विराट व्यक्तित्व तो हेमवती बहुगुणा नंदन को चुनाव हराया था, और वो बात अलग है कि हम सफर ने भी उनके लिए वोट मांगे थे, लेकिन खैर जो भी हुआ वो राजनीतिक बात। आपने क्या किया इलाहाबाद में?
5: तो मेरे लिए तो वो बस एक अभिनेता की मूर्ति के रूप में ही सामने आते थे मेरे इमेजिनेशन में, मेरी कल्पना में। अब उस वक्त की भाषा में वो जो भी था, पर वो मतलब बेहद पागलपन की स्थिति में आ गया था मैं कि बस एक्टिंग करना ही है। और चूंकि मैं एक कामकाजी परिवार से आता हूँ, एक श्रमजीवी परिवार से आता हूँ, तो ये भी था कि हमारी लॉन्ड्री हुआ करती थी प्रेस करने की। पिताजी घाट जाते थे, कपड़े धुल के लाते थे, फिर वो प्रेस करते थे। तो भाई बहनों में मैं ही बड़ा था। तो जब मुझे किसी रंगमंच का ठिकाना मिला इलाहाबाद में, एक ग्रुप मिला, तो बड़ा ही शानदार कि अरे वाह क्या एक्टिंग हो रही है यहाँ, तो शायद अमिताभ बच्चन बनने की पहली कक्षा यहीं से शुरू हो। तो इस तरह से वो यात्रा जो
4: है।
5: तो अब चूंकि समन्वय भी बैठाना है परिवार के साथ, श्रम भी करना है, तो मैं क्या करने लगा कि मैं सुबह 4-5 बजे ही उठने लग गया, और मैं सालों साल उठा हूँ, 1-2 महीने भी नहीं। मतलब सोचिए कि 9वीं 10वीं से लेके कम से कम 12वीं तक 3-4 साल मैंने लगातार ये काम किया कि सुबह उठता था और सबसे पहले, अब मैं दुकान में ही सोने लग गया था, मैं लॉन्ड्री के ही भीतर सोता था, और वहीं पर सुबह उठ के ही अपना प्रेस करने में लग जाता था, और करीब 6-7 बजे तक 2-3 घंटे रगड़ के प्रेस करता था, और फिर स्कूल चला जाता था। मैं स्कूल से आने के बाद 2-3 बजे 1-1.5 घंटे रेस्ट करता था, दोस्तों यारों के साथ मोहल्ले में खेलना घूमना, और उसके बाद सीधे रंगमंच में। तो कोई टोकने वाला फिर नहीं था, शुरू में काफी टोका टाकी हुई थी, तभी ये मैंने हथकंडा अपनाया था। तो ये है कि जो मैं यात्रा की बात कर रहा था, तो वो यही था कि एक अभिनेता बनने का जुनून उस वक्त अंदर कुलबुलाहट पैदा कर दे रहा था। और एक मजेदार चीज थी, मैं जब अभी याद करता हूँ उन दिनों को, तो जुनून में एक बहुत खास, ऐसा लगता है कि जुनून कोई एक चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जुनून सुनते ही ऐसा लगता है कि एक सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था, मतलब एकदम एनर्जेटिक ना, जैसे एकदम फ्यूजन हो रहा हो। तो इस तरह ये शब्द में ही अपने आप में ऐसी ताकत है। तो ऐसा लगता था मुझे कि देखिए, मैं रणनीति भी कर रहा हूँ, समन्वय भी बैठा रहा हूँ, मैं अपने मकाम को फोकस भी किए हुए हूँ, और अपने व्यवहार पर संयम भी साधे हुए हूँ, मैं लोगों को सुनने की और अपनी प्रतिक्रियाओं की और चलने फिरने की सब पर मेरी एकदम जागृत नजर है। तो जब ये सारा कंपोजिशन मिल जाता है, तब आप धीरे धीरे जुनूनी होना आरंभ कर देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपका मकसद और आपकी सारी क्रियाकलाएं जब एक हो जाती हैं तो वो जुनून तरफ रुख करने लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है कि असल में एक तरह से प्रयागराज से इलाहाबाद से निकलने से पहले खुदा ना खास्ता परिस्थिति वश जुनून को कैसे संभाला जाता है, जुनून को कैसे सृजित किया जाता है, जुनून को कैसे कंटिन्यूएशन मतलब उसको गतिशीलता की ओर लिया जाता होता है। इन तीनों चरण का एक तरह से मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद में रिहर्सल कर रहा था, क्योंकि जुनून की कठिन परीक्षा उसके बाद होनी थी, जो मुझे अब पता लगता है। क्योंकि आप भविष्य को केवल अंदाजा लगा लेते हैं पर चीजें कुछ और ही होती हैं बहुत बार, तो वो बहुत मजेदार है को जब जुनून को जब चुनौती मिलती है तब।
4: जी
5: तो
4: नहीं तो जुनून क्या था, मैं वही जानना चाह रहा था कि
5: वही
4: हमारे छोटे
5: जुनून।
4: बहन।
5: जी तो पहला जुनून तो यही था कि रिहर्सल मतलब कि मैं एक इलाहाबाद में एक अभिनेता बनूं और सुनहरे पर्दे का एक नायक बनूं, और इलाहाबाद तक तो कम से कम यही बना रहा था। अब जब मैंने कहा कि एक यात्रा होती है और जुनून की भी अपनी एक यात्रा हो, उसके पड़ाव होते हैं और वो और भी तीखा या शार्प या बोले कि स्पष्ट होता चला जाता है। आपको बहुत बार
4: जी
5: उसकी भाषा पकड़ में नहीं आती है आपको अपने जुनून की। तो जब मेरी इस कदर जो मेरा कंट्रीब्यूशन मेरा लगाव था रंगमंच पे, और पिताजी उधर धीरे धीरे चूंकि 12वीं मैं पास कर रहा था तो पिताजी का दबाव बन रहा था कि मैं कोई दरोगा बनूं, पुलिस बनूं और उस दर की पढ़ाई लिखाई करूं, कांस्टेबल बनूं, और इस तरह का उनका विचार था या उनका योजना थी पिताजी की। पर मैंने माताजी को पिताजी से बहुत मुकाबला नहीं कर पाया, वो कई बार मतलब हिंस्र हो जाते थे, ठोक देते थे मतलब ना उन्होंने तो ये भी ठोक दिया था कि मुझे अच्छे से याद है कस्टमर के सामने ही उन्होंने मुझे मारा था और ये बोला था कि तुम भगत सिंह बनोगे, ऐसे थोड़ी होता है। और फिर मेरी संगत को, शरद भाई एक बात याद आ गई है, मैं कहना चाहूंगा श्रोताओं को कि पिताजी ने तंज कसा था और वो उस तंज के पीछे बहुत बड़ी व्यवहारिकता थी भाई साहब। उन्होंने कहा था कि देखिए आप अपने संगत का मूल्यांकन करिए, नहीं तो इस दुनिया में कई बार बड़े लोगों की भी कहानियां अदृश्य हो जाती हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की भी कहानी देखिए पता नहीं चलती है, तो मैं अपने बेटे राजकुमार की कहानी को कैसे खोजता फिरूंगा। सो अपने संगत को दुरुस्त करिए, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह के वाकयात थे, मेरी माँ ने मेरी मदद की और भी ज्यादा। शायद अब मुझे लगता है कि पिताजी माताजी दोनों बातचीत किया करते थे पर पिताजी वो उजागर नहीं होने देते थे मुझे ना। मेरी माँ ने जब मेरी ये हालत देखी, मेरा ये झुकाव, मेरा ये रुझान देखा रंगमंच के प्रति, अभिनय के प्रति, अखबारों में
4: जब
5: नाम आ
4: जुनून
5: रहे,
4: देखा है।
5: जुनून देखा मेरा, तो मेरी माँ ने मतलब उधर ही मेरे कुछ संबंध भी बन रहे थे कि मैं कैसे पढ़ूंगा, तो कुछ मेरे सीनियर लोग भी मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि बंबई की जगह तुम कलकत्ता जाके नाटक की ही पढ़ाई पढ़ो, और क्योंकि कलकत्ता जरा सा आर्थिक रूप से वहां बहुत तुमको चुनौती नहीं मिलेगी तो कलकत्ता जाकर पढ़ो। तो सोचिए मेरी माँ ने मुझे 500 रुपए, उस वक्त वो वर्ष रहा होगा सन 1999 का और 2000 के बीच का समय रहा था
4: बेबीस कारगिल कर रहा था आप कोलकाता में।
5: जी, और मेरी माँ ने मुझको 500 रुपए दिए थे और मुझे एक तरीके से उन्होंने भगाया था। चौरी चौरा एक ट्रेन है जो कानपुर से चलती है मऊ की तरफ, ये आयरनी है कि मैं चौरी चौरा एक्सप्रेस पर बैठ रहा हूँ, घर से भाग रहा हूँ
4: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे आजादी के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना वहां पर हुई है। जी
5: तो उस ट्रेन से ही मैं निकला हूँ पहली बार कलकत्ता के
4: मुझे
5: लिए।
4: तो लगता है पैसे की जरूरत में आपने टाकोरी नहीं क्रिएट किया वहां पर।
5: ये इम्फेसाइज आज मुझे याद आया, अभी आप कहीं गए थे काकोरी से संबंधित तो वो याद आ गया मुझे। तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आप सभी श्रोताओं का ध्यान वापस खींचना चाहूंगा कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए, कि मैंने कहा था कि इलाहाबाद में मेरा एक रिहर्सल हो रहा था जुनून को सेने का, जुनून को पालने का, जुनून को गतिशील करने का। अब जुनून को मिलेगी चुनौती कलकत्ता में, बहुत ही गहरी तरीके से, हर तरीके से चुनौती मिलने वाली है उसको। और कलकत्ता गया मैं, नॉन बंगाली आदमी, बांग्ला बिल्कुल नहीं आती थी मुझको, और वहां जाके मैंने 2-3 महीने में बांग्ला किसी न किसी तरह से कुछ कुछ बोलना और बड़े बड़े अक्षर लिखना कुछ शुरू किया। वहां पता चल गया था कि मेरी परीक्षा जो है वो बांग्ला मीडियम में ही होगी, इंट्रेंस की परीक्षा। तो मैं रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में अंततः मेरा एडमिशन हुआ, बहुत संघर्ष के बाद। मैंने खूब तैयारी की उसके लिए, मेरे पास कमरे नहीं थे, चूंकि नाटक का विषय पढ़ने गया था तो ऑडिशन भी होना है, ऑडिशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्टिंग का रिहर्सल करना है, तो जगह नहीं होता था। तो मैं पब्लिक पार्क में करता था, बड़े बड़े फ्लैटों के बीच में एक पार्क होता था उस सोसाइटी का, तो वहां जाके रिहर्सल करता था। लोग हंसते थे, उनको लगता था परफॉर्मेंस कर रहा, कुत्ते भौंकने लगते थे, पर मैं कंटिन्यू।
4: जी क्या बात है, क्या बात है। रंगमंच के संघर्ष में रेबीज आपके पीछे पड़ा हुआ था।
5: एडमिशन हुआ, ऑडिशन मैंने पास किया, रिटेन भी किसी

0: हिंदी में लिख दिया था, शेक्सपियर के नाटक के बारे में कुछ लिखना था मुझे, तो खैर एडमिशन हुआ। अब यहाँ से चीजें एडमिशन, रविंद्र भारती जाने का मतलब ये था मेरा कि अब मुझे कुछ नई चीजें मिलने वाली थी और वो मेरे लिए अकल्पनीय थी, जो जुनून को भी आकृति देने वाली थी। मुझे वहां पर बादल
1: जी क्या
0: सरकार जैसे लोगों का रंगमंच मिला, वहां प्रवीर
1: बात है,
0: गुहा जैसे लोगों का रंगमंच मिला, और मुझे जो चुनौती मिली ना वहां पर,
1: जी
0: चुनौती दार्शनिक चुनौती मिली, सैद्धांतिक चुनौती मिली, प्रैक्टिकल चुनौती नहीं, सैद्धांतिक और दार्शनिक चुनौती मिली। वो सवाल पैदा हुआ कि भाई मेरे जुनून के भीतर आखिर पुंज क्या है, वो शक्ति क्या है, वो सवाल क्या है जो मुझे इस जुनून की ओर ले जा रही है, मेरा रंगमंच क्या होगा, मेरे रंगमंच के दर्शक कौन होंगे, मेरा रंगमंच क्यों होगा, क्या केवल मात्र अभिनय कर लेना ही रंगमंच है, या केवल अभिनय कर लेना ही अभिनेता होना है। आप समझ रहे हैं श्रोताओं, मैं किधर इशारा कर रहा हूं कि एक अभिनेता का
1: जी
0: जो सामाजिक दायबद्धता है, एक अभिनेता की जो सामाजिक दृष्टि है, ये सवाल उस दिशा में खुलने लगे, ये चुनौती मिली मुझे। और इन चुनौतियों ने, वहां के रंगमंचीय एक्सपोजर ने पूरा का पूरा एक नया मीनार गढ़ना शुरू कर दिया, खोजबीन की ओर लेकर जाने लग गया, मैं अनुसंधान में
1: जी
0: जुटने लग गया कि दुनिया में आखिर रंगमंच के मायने क्या हैं, रंगमंच करने से अंततः होता क्या है, एक व्यक्ति के मन में क्या होता है और एक समाज में क्या होता है। तो इस तरह के कुछ सवाल आने लग गए और वहां से मेरा जो जुनून था धीरे धीरे उसको अब स्पष्ट भाषा मिलनी शुरू हुई कि असल में मेरा जो जुनून है रंगमंच का, वो जुनून है कि लोगों के भीतर आत्मचेतना को विकसित किया जाए, लोगों के
1: जी
0: भीतर उस आत्मचेतना से जुड़ी हुई जो सामाजिक चेतना की दायबद्धता है, उसका जो जुड़ाव है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उस ओर देखा जाए, मूव किया जाए। तो मेरे रंगमंच का पूरा प्रयोग बदल गया, अभिनेता और अभिनय दुनिया के सृष्टि के किसी भी रंगमंच का एक अभिन्न हिस्सा है। तो मेरे रंगमंच में भी अभिनेता है, बशर्ते अब
1: जी
0: सवाल अलग हैं। अब सवाल है उसके दार्शनिक पृष्ठभूमि पर, उसके व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर। तो मेरा आज का जो जुनून है, और उस जुनून को अगर मैं एक भाषा में अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा, तो वो ये है कि आत्म जागरण का रंगमंच कर रहा हूं, और उस आत्म जागरण से मैं ये चाहता हूं कि भारत जैसे धरा पर जब हम ये कहते हैं, या इस पूरी धरती पर जब हम ये कहते हैं अपदीपो भव, और जब हम कहते हैं
1: जी
0: वसुधैव कुटुंबकम, तो असल में मुझे
1: जी
0: लगता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच की जो धुरी है, इन दोनों को मिलाने की जो शक्ति है, असल में वही काम होना जरूरी है। और वहां काम होगा जब लोग आत्मिक रूप से सचेत होंगे, अपने अनुभूतियों के प्रति सचेत होंगे, अपनी अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत होंगे। तो हमारे रंगमंच का ये इस तरह से प्रक्रिया आरंभ होती है, और ये जुनून की इस हद तक हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं, खासकर मैं, कि मेरे इस परियोजना का अभिनेता कैसा होगा, मेरे इस विचार का अभिनेता कैसा होगा, क्या वो केवल शब्दों का जाल करेगा या उसके कुछ सामाजिक दायबद्धताएं होंगी, वो व्यक्ति कैसा होगा, तब वहां से ये लाइन शुरू होती है जब हम उसको, उस दर्शन को सिद्धांत में, और सिद्धांत को जब एक्शन में लेकर आते हैं, तब ये चीज पकड़ में आती है कि हमें एक ऐसे अभिनेता का निर्माण करना है, एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण होना है जो अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने भावनात्मक रूप से सर्वदा उपस्थित रहे, प्रतिक्षण प्रतिक्षण वो उपस्थित रहे, वो अनुभूति को एहसास कर पाए कि वो वर्तमान में मौजूद है ना।
1: जी
0: तो इसको अगर सहजता से और भी मैं सिंपली करने की कोशिश करूं, सिंप्लीफाई, तो वो इस तरह से है कि आप देखिए, कोई किसी पर आक्रोशित क्यों हो जाता है,
1: जी
0: क्योंकि अपने अनुभूति में, अपने इमोशन में इतना मुग्ध हो जाता है कि सामने वाला भी एक व्यक्ति है, या सामने भी इस सृष्टि का ही कोई अंश है, वो भी सोच समझ सकता है, कह सकता है। हम ये समझने की शक्ति खो देते हैं जब हम
1: जी
0: आक्रोशित होते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार भाई, क्योंकि ये जो

0: जुनून है आपका, ये जुनून क्या है? वो आपने बताया कि आप स्वर जागरण की यात्रा का रंगमंच जो है वो आपका जुनून है, लेकिन ये जुनून क्या सपना देखता है, ये क्या कर रहा है, और ये जुनून फिर आगे की यात्रा में आपको कहाँ लेकर गया, और इस जुनून ने आपसे क्या क्या करवाया?
1: जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। तो वही इस यात्रा में, इस पड़ाव में जुनून को जब भाषा मिलना शुरू हुआ, इस तरह से इसकी प्रक्रियाएं जब खुलनी शुरू हुई, तो मैंने अपना मार्ग जो है, मतलब अमिताभ बच्चन बनने का जो सपना रहा है, जो जुनून रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। पर उसके बरक्स शायद बहुत ही ऊंचा और बहुत ही गहरा एक जुनून प्रकट हो गया है जिसमें
0: जी
1: मैं जुटा हुआ हूँ। तो इस जुनून ने फिर एक और पड़ाव की ओर रुख किया, वो ये कि अगर मुझे ऐसे अभिनेताओं का निर्माण करना है तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना हो।
0: जी
1: तब फिर मैंने आखिरी 2013 में, तो उसके पहले भी मैं शिक्षा में काम कर रहा था, पर बहुत ही व्यवस्थित रूप से उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए, सामाजिक पहलुओं को समझने के लिए, शिक्षक कैसे बच्चों के साथ काम करते हैं, उसकी क्या चुनौती है, वहां पर शिक्षक बच्चों की संवेदनाओं को लेकर और अपनी संवेदनाओं को लेके, एक दूसरे की अनुभूतियों को लेकर कितना सचेत है, कितनी प्रक्रियाएं करता है, क्या करता है, तो इस तरह से मेरा साबका पढ़ना शुरू हुआ। तो रंगमंच की पृष्ठभूमि से मैंने रंगमंच को उठाया और उसको शिक्षा के रंगमंच के भीतर प्रवेश कराना आरंभ कर दिया, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा में नाट्य कला की एक भूमिका की ओर मैं बढ़ना आरंभ किया। और भी बहुत सारे लोग इसके पहले भी बढ़े हैं, शिक्षा में नाट्य कला को लेकर बहुत काम हुआ है दुनिया में, बहुत चीजें सोची समझी गई हैं, उसमें कुछ पहलू मैं अपने भी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा जुनून जो है वो अपनी जुनून वहीं का वहीं कांस्टेंट चल रहा है, उसकी रंग रूप, उसकी काया बदलती जा रही है। तो अब उसकी
0: जी
1: काया, अब रंगमंच और शिक्षा दोनों मिलके मेरे रंगमंच की काया बने हुए हैं। और
0: जी
1: इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स को ट्रेनिंग दिया कि नाट्य कला को जब हम शामिल करते हैं
0: जी
1: उसमें बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन के अनुभवों को लेकर आता है और वो अनुभवों को बदलने का अवसर पाता है, और अनुभवों को बदलने का जब अवसर पाता है तो वो नए अनुभवों के निर्माण के लिए प्रेरित होता है, यानी कि सृजन की दिशा में बढ़ता है। तो जब बच्चा सृजन की दिशा में बढ़ेगा तो मुझे लगता
0: जी
1: है कि वो स्वजागरण की यात्रा में बढ़ेगा, उसकी चेतना जागृत
0: जी
1: होगी ना। तो अनुभव का
0: जी
1: बदलना बड़ा जरूरी है। जब तक मेरा
0: जी
1: अनुभव नहीं बदलेगा मेरे पड़ोसी के साथ, तब तक मैं पड़ोसी को, मतलब अभी देखिए क्या विडंबना है कि जो पड़ोसी है वही आपका संरक्षक होना चाहिए, पर लोगों की सबसे बड़ी संकट ये हो गई है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही पड़ोसी बन पड़ा है
0: जी
1: ना। मतलब दुश्मन कहने का अभिप्राय कि मन मुटाव रहता है बहुत सारे मोहल्लों में, बहुत सारे लोगों को मैंने
0: जी
1: बहुत ही व्यवस्थित शोध परक नजरिए से देखने की कोशिश की है, तब मैं ये बात कह रहा हूँ, शोध प्रक्रियाओं के साथ, उसके रिजल्ट के साथ।
0: जी
1: तो जब तक अनुभव नहीं बदलेगा, जब तक अनुभव को बदलने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक स्वचेतना का विकास मेरे रंगमंच की भाषा में तनिक मुश्किल है। और इसीलिए भारतीय संवैधानिक शब्दों में अगर मैं कहूँ कि बंधुता जो शब्द है, बंधुता का जो अनुभव है, बंधुता की जो अनुभूति है, वो थ्योरी से उसका काम नहीं चल सकता है। जब तक मैं शरद जी के साथ बंधुता
0: जी
1: का अनुभव नहीं करूंगा, तब तक मैं मेरे किसी
0: जी
1: और व्यवहार में उसको रूपांतरित मैं कर ही नहीं सकता। ये हमारे
0: जी
1: मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं कि वो जो उसके अनुभव में है, जो उसके अनुभूति में है, वो उसी को ही कल्पना का आधार बनाता है और उसी पर ही वो अपने जगत का निर्माण करता है।
0: जी
1: तो रंगमंच की ये शक्ति जब शिक्षा में मिलती है, नाट्य कला की शक्ति जब शिक्षा में मिलती है, तब वहां पर बच्चे का जो व्यवहारिक अनुभव है उसको बदलने का अवसर उसको मिलता है और वो नया सृजन करता है। कहने का अभिप्राय
0: जी
1: ये है ठोस उदाहरणों में कि एक बच्चा जो है वो ये बोल रहा है कि फलाना मेरा जो क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, मैं उसके घर का रोटी नहीं खाऊंगा। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसके अनुभव में यही है, किन्हीं भी कारणों से उसके अनुभव में है। तो अब नाटक की और शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बच्चे के अनुभव को रोचक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से बदलने का अवसर कैसे दे। यानी कि नाट्य कला बच्चे को दोस्ती सीखने का अवसर कैसे प्रदान कर सक।
0: जी
1: तो मेरा जो वैश्विक दृष्टि बोलिए या मेरी जो वैश्विक आकांक्षा, महत्वाकांक्षा जो पनपी है मेरे जुनून के साथ, वो यही
0: जी
1: कि स्वचेतना का जगत बने, लोग एक दूसरे की अनुभूति को समझ सके, सामने वाले के कष्ट को समझ सके, सामने वाले के आक्रोश पर आक्रोशित ना होकर सामने वाले आक्रोश को शीतलता देने की शक्ति उत्पन्न कर सके रंगमंच के जरिए, रंगमंच को अनुभव करने के जरिए।
0: जी
1: क्योंकि इंसानी समाज में, दुनिया के किसी भी कोने का जो इंसान रहा है इतिहास में या अभी, उसके रंगमंच का एक विषय है, एक केंद्रीय विषय है। दुनिया के किसी भी कालखंड के रंगमंच का एक ही केंद्रीय विषय हो सकता है और है भी, वो ये है मानवीयता का संचार हो, जिसको
0: जी
1: अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में डीह्यूमेनाइजिंग प्रोसेस को, डीह्यूमेनाइजिंग एक्शंस को ह्यूमेनाइज करने की जरूरत। दुनिया का कोई भी नाटक किसी को कत्ल करने की प्रेरणा नहीं देता है, वो उस चक्र को समझने का अवसर देता है कि आखिर किसी के भीतर कोई द्वंद्व क्यों चल रहा है, उस द्वंद्व के मायने क्या हैं। और बहुत
0: जी
1: कम लोग हैं जो इस द्वंद्व से विजय पा लेते हैं, और
0: हाँ
1: बहुत बड़ी संख्या है इस विराट सृष्टि में जो
0: जी
1: द्वंद्व के साथ रहते हैं। जब मैं द्वंद्व कह रहा
0: बिल्कुल
1: हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं साधारण सी भाषा में, मेरे और
0: जी
1: आपके बीच में किसी चीज को पाने और खोने का द्वंद हो सकता है,
0: जी
1: पर वो केवल दो व्यक्ति के ही बीच में नहीं होता है, वो व्यक्ति के खुद के भीतर भी होता है। जैसे मैं
0: जी
1: शिक्षकों का उदाहरण देता हूँ बस समझने के लिए, क्योंकि शिक्षकों के साथ मेरा सबसे प्रोमिनेंट और गहरा अनुभव रहा है, अभी ताजा तरीन है इसीलिए उदाहरण आ रहा है। अब कोई भी रख सकते हैं, पर अभी मैं शिक्षक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ केवल उदाहरण को समझने। मान
0: जी
1: लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरा कर्म है मैं कर रहा हूँ। शिक्षक को अपना कर्म सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से करने की जरूरत है इस पूरे मानव सभ्यता में। खैर,
0: जी
1: तो मैं कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे शिक्षक के स्थान पर अब मुझे आरएएस की तैयारी करनी है, अब मुझे जरा प्रशासनिक व्यवस्था की ओर रुख करना है।
0: जी
1: ठीक है, तो अब शिक्षक ने कभी सोचा हुआ होगा यदि मैं शिक्षक बनूंगा तो भाई अब वो तो शिक्षक
0: जी
1: बन गए हैं अपने परिश्रम से।
0: जी
1: अब शिक्षक बनने के बाद फिर से एक यदि शुरू हो रहा है, मतलब फिर से एक इफ, अंग्रेजी का एक शब्द है आई और एफ, दोनों मिला देंगे तो इफ बोलते हैं, तो अब वो फिर से
0: जी
1: इफ शुरू हो रहा है, इफ आई विल बी अ एसडीएम इन दिस स्टेट, तो आप फिर से एक दिशा में बढ़ते हैं। तो शायद यही बहुत लोगों की, मतलब मानव की अपनी एक नियति रही है, इस नियति ने इंसान को बहुत कुछ दिया भी है, जंगल से मंगल तक का रास्ता भी इसी नियति ने ही दिया है ना, पर और भी बहुत कुछ इसके घाटे भी रहे हैं ना, इसके नुकसान भी रहे हैं, इसके फायदे भी रहे हैं। तो मैं जरा सा
0: राजकुमार
1: वो घाटा वाला जो पक्ष है।
0: पाबले, राजकुमार पाबले में तो जाके कविता है ना कि सर्प पंख चाहता है और पक्षी धरती पे चलना चाहता है, बल लेकिन सिर्फ एक बिल्ली है जो अपने शुद्ध रूप में है, जो अपनी चमकीली आंखों से अपने कॉन्फिडेंस से कुछ भी नहीं होना चाहती, वो जैसी है शुद्ध रूप में वैसे रहना चाहती है। तो पाबले
1: जी
0: नेरुदा अपनी कविता से
1: जी
0: इन्हीं तरह की आकांक्षाओं और मनुष्य की आकांक्षाओं के पे इशारा कर रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं।
1: जी जी तो नाटक का विषय वस्तु ही यही है, ये तंज, ये जो नहीं है, जो उपस्थित नहीं है, उसको उपस्थित कर लेने की जो जद्दोजहद है, व्यक्तिगत मेरे खुद के भीतर या दो लोगों के मध्य या दो समूहों के मध्य या दो देशों के मध्य या दो भूगोलों के मध्य, वही द्वंद्व है। और नाटक का, रंगमंच का मुख्य केंद्रीय विषय ही द्वंद्व है, और द्वंद्व में जब वो बुनता है तो वो यही बुनता है कि कैसे डिह्यूमेनाइजिंग स्थिति को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाए और उसको ह्यूमेनाइजेशन की ओर लिया जाया जाए। तो नाटक हमें ये नहीं सिखाता है हिंदी सिनेमा की तरह कि विलन का कत्ल कर दो, नाटक हमें ये भाषा देता है वो सुनने की जरूरत है, नाटक हमें, आप कट्टर से कट्टर नाटक ले लीजिए, मैं यूनान का एक नाटक का जिक्र करता हूँ, एंटीगनी। आप देखिए, वो राजसत्ता से, वो उसकी बेटी अपने पिता से, अपने चाचा से बहस करती है, उसके बरक्स खड़ी है, उसको अपना नुकसान करना पड़ता है, पर अंततः ये इस भाषा के साथ था, इस भाषा के लिए था कि यू हैव टू चेंज टू द विलन। जो भी विलन शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत ही सहज है, फट से समझ पाते हैं कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। नायक का पर्पज ये नहीं है कि वो हिंदी सिनेमा की तरह मोगैम्बो को बम से उड़ा दे, या उसके साथ हिंसक प्रवृत्ति के साथ उसके साथ हिंसक रिस्पॉन्ड करे, प्रतिक्रिया दे। नाटक अमानवीय स्थिति को भी मानवीय तरीके से सामने वाले को मानवीय बनाने की सिफारिश करती है। अब लगता है शरद भाई और मेरे इस वक्त मधुबन रेडियो के समस्त साथियों और श्रोताओं जो मुझे सुन रहे होंगे, अब मुझे लगता है कि सच में अभिनय की जो प्रक्रिया है वो खुद को जान लेने की एक प्रक्रिया है, खुद की अनुभूतियों के प्रति सचेत हो जाने की प्रक्रिया है। रंगमंच जो है उस व्यक्ति से समाज का और समाज से व्यक्ति के बीच का जो अंतर विरोध है उसको खोज लेने का और उसके मानवीय उपायों की तरफ बढ़ने का पूरा दारोमदार है। और सबसे बड़ी दुर्घटना जो है इसमें, मेरे श्रोताओं साथियों, सबसे बड़ी दुर्घटना जो है वो ये है, वैश्विक स्तर पर है, मैं ये आलोचना और समालोचना के चक्र में इस बिंदु को नहीं रखना चाहता हूँ, शायद ये उससे भी कहीं बहुत अहम एक स्थिति है। वो स्थिति ये है कि पूरी दुनिया में देखेंगे कि कलाएं हाशिए पर हैं। हाशिए पर क्यों है? बहुतेरी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, पर कम से कम एक बड़ा मुद्दा ये है, जैसा मुझे लगता है, कि इसमें लोगों को लगता है कि इसमें धन कमाने की, रोजगार पाने की उस तरह से प्रबल संभावना नहीं है जितनी की गणित में है, जितनी की विज्ञान में है। तो जो औपनिवेशिक जैसी कुछ शक्तियां हैं, रहती हैं, रही हैं, वो भी सीख रहे हैं, वो भी अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं, गांव में अनुभूति को ग्रहण करने की शक्ति है। और कल्पना करिए कि आप एक ऐसे बस में हैं जहां पर कोई किसी से लेना देना ही नहीं है, जहां पर कोई किसी की तरफ देख के, कोई किसी की तरफ कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। बगल का जो सहयात्री है वो बीमार है, उसको बगल वाले सीट पर बैठे एक व्यक्ति की मदद चाहिए, पर वो नहीं कर रहा, अनुभूति रहित सहयात्री है ये। तो हम चाहेंगे ऐसे देश दुनिया समाज को बनाना? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, दुनिया की कोई शक्ति नहीं चाहती है इस तरह से बनाए। पर वही इफ इफ का जो संकट है उसमें ये
0: तो
1: हो जा रहा है। तो
0: आपका जो जुनून है उसने शिक्षा की यात्रा में आपको क्या सिखाया, और आपने अपने रंगमंच से शिक्षा को कैसे कंट्रीब्यूट किया, क्या योगदान दिया आपने?
1: शिक्षा में खासकर किसी विषय को, मान लीजिए अगर हम बंधुता पढ़ा रहे हैं, मैं जिन विद्यालयों के साथ काम किया हूँ वो पब्लिक स्कूल्स हैं, मतलब राजकीय विद्यालय हैं दूर दराज के, तो
0: हाँ,
1: मान
0: जनता
1: लीजिए
0: के स्कूल है, जनता के टैक्स से चलने वाले
1: टैक्स से
0: स्कूल है,
1: चलने वाले स्कूल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और
0: और
1: उनको
0: जो अंतिम
1: जरूरत
0: व्यक्ति
1: भी
0: तक
1: है,
0: पहुंचते हैं, जो
1: बिल्कुल
0: देश के अंत्योदय में लगे हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंत्योदय समूह है वो, बिल्कुल। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है वही चीज जो मैंने अभी कही, उसी को मैं शिक्षक की दृष्टि से रखना चाहूंगा कि शिक्षकों को यहाँ तक लेकर आना, इस समझ पर और इसकी कार्यशीलता तक लेकर आना कि किसी विषय को, खासकर जिसमें मानवीय संपर्कों की बातचीत हो रही हो, उसको नाटक के जरिए कैसे पढ़ाया जा सकता है, उसको नाटक के जरिए बच्चे को एक सीखने वाला व्यक्ति कैसे बनाया जा सकता है। तो शिक्षकों को हमने राज्य भर में घूम घूम के प्रशिक्षण दिया है और सरकारों के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया है, और दूसरे आपके कर्नाटका जैसे राज्यों में भी हम लोग नजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सहायता से पहुंचा हूँ, वहां भी काम किया है हम लोगों ने। और तो एक बड़ा काम है ये, शिक्षा में जीवन देने की तरह। शिक्षा मतलब देखिए, अब मैं जब शिक्षा में जीवन की बात कह रहा हूं तो मैं एक बहुत ही प्रचलित विषय का जिक्र करना चाहूंगा। आप देखिए ना, गणित को देखिए, मैं गणित से भागा हुआ छात्र हूं, और मेरे जैसे हजारों करोड़ों छात्र हैं जो गणित से भागते। आपने भी सुना होगा कि यार बच्चे गणित से जल्दी भाग, क्यों भागते हैं भाई? क्योंकि हमारा शिक्षक प्रशिक्षक उस स्थिति में तैयार ही नहीं है, वो गणित की कलाबाजी नहीं समझ रहा है, वो गणित को महज सांख्यिक गतिविधि और उसको मानसिक कुश्ती की तरह समझ रहा है। गणित में एक कला है और उस कला को मैं कहता हूँ और आज मैं श्रोताओं से साझा करना चाहूंगा कि देखिए जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक उसका वस्तुगत और वस्तु उस जगत के साथ उसका संबंध ना बने। उदाहरण के तौर पर जब हम कहते हैं पेड़, तो हमारे भीतर संज्ञान बैठता है कि वो एक पेड़ है। जब हम जोड़ते हैं एक को किसी वस्तु के साथ, एक बोतल है, एक व्यक्ति है, तो हम क्या कर रहे हैं? एक चीज कर रहे हैं इसमें जो हमारी नजर नहीं जाती है। और मैं श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि ये मेरे जुनून का और मेरे बन रही पनप रही दृष्टि का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो मैं ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर बच्चे का जुड़ाव बनेगा कि वो एक पेड़ है, एक पेड़ के साथ जुड़ाव, आप समझ रहे हैं, आर्ट ऑफ एसोसिएशन इज अ मैथमेटिक्स। तो आर्ट ऑफ एसोसिएशन जो है ये बिल्कुल गणित के क्षेत्र से, गणित की एकेडमिया से गायब है। जब मैं ये करूंगा ना कि एक व्यक्ति है वो, तो मेरा एक जुड़ाव बनेगा, एक जुड़ाव है वो, महज एक वस्तु का नंबर नहीं है वो। और मैं ये निवेदन करूंगा कि काश हमने बचपन से लेके अभी तक गणित की कक्षाओं में जितनी बार भी एक पेड़ 10 पेड़ गिना हुआ है, उस तरह से अगर हमारा एसोसिएशन बना होता तो अब तक हजारों पेड़ तो ऐसे ही लग गए होते।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: तो
0: क्या बात
1: इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा में जीवन का अभिप्राय ये है कि वो केवल बातूनी नहीं है। शिक्षा अपने आप में एक जर्नी है। बच्चा आ रहा है शिक्षक के पास, क्या दुनिया का, सृष्टि का क्या मतलब, कितना सुनहरा आविष्कार है ये कि कोई दो लोग मिल रहे हैं, और दो लोग मिल रहे हैं इस मामले में कि दोनों कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या सुनहरा, मतलब एसोसिएशन का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है शरद भाई?
0: बिल्कुल सही।
1: तो शिक्षा में जीवन की बात मैं इस वजह से करना चाह रहा हूं, और मैं कोई नया बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपने जुनून को उसमें कुछ मेरे अनुभवों को जोड़कर एक उसकी और परिभाषा, उसकी और एक गहन प्रक्रिया गढ़ना चाह रहा हूँ। रूसो जैसे एक व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने पहले ही बहुत कुछ काम किया है। भारत जैसे देश में गांधी जी का पूरा काम रहा है, वो 3 H से हम लोग उनको कहते हैं, हैंड हार्ट और हेड, गांधी जी का पूरा प्रायोगिक काम रहा है। मैं खुद रविंद्र
0: जी
1: भारती विश्वविद्यालय से हूँ, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब का बहुत बड़ा काम रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि प्रयोग नहीं हुए हैं, शायद प्रयोग हुए हैं, इसी वजह से समीकरण अभी बने हुए हैं। मानवता में अभी भी संभावनाएं बची हुई हैं और बची ही रहेंगी जब तक कलाएं रहेंगी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। तो आपका जो जुनून है कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जैसे आपने बताया कि बंधुता का मूल्य है, रंगमंच के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सकता है, वो शायद आपका एक जुनून है। तो इसके बारे में
1: जी
0: क्या कहेंगे?
1: जी बिल्कुल। देखिए मूल्य जो है दीवार पे जब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं तो वो एक भाषा है, एक चित्रकला है, वो इन्हीं अक्षरों की, शब्दों की
0: जी, आकृति है।
1: एक आकृति है। शिक्षक में वो जागरण चाहिए या शिक्षक को वो जागृति चाहिए जिससे उसके सामने, उस आकृति के सामने खड़ा हुआ छात्र व्यक्ति उस आकृति को अपने भीतर प्रवेश कर ले और वो उस आकृति के भीतर प्रवेश हो जाए, मतलब इस तरह की चाहिए। मूल्य जो है बदलते हैं हमारे समय काल के अनुसार, पर अंततः मानव का मानव होना केंद्र में ही रहेगा ना। तो स्नेह को स्नेहशीलता से ही पढ़ाया जा सकता है। आप देखिए
0: बिल्कुल
1: एक एक कक्षा का उदाहरण मैं दूंगा जहां पर डाइवर्सिटी पर किसी खास कहीं स्कूल में बात हो रही है, और वहां पर डाइवर्सिटी पढ़ाते पढ़ाते शिक्षिका कह रही हैं किन्हीं कारणों से कि मैं तो इस तरह के लोगों को पसंद ही नहीं करते और तुम पीछे जाकर बैठ जाओ, तो उस कक्षा में डाइवर्सिटी कैसे समझ में आएगी? तब रंगमंच की जरूरत है, तब ऐसे प्रक्रियाओं की जरूरत है जहां पर बच्चे और शिक्षक दोनों मिल के डाइवर्सिटी को सीख, परिभाषा सीखने की दरकार नहीं, परिभाषाएं बहुत कुछ नहीं कर पाती, अंततः परिभाषाएं ठोस हो जाती हैं और परिभाषाएं बदलते हैं इंसान के जीवन में, परिभाषाएं बदलती ही रहती है, यही सत्य है।

0: भाषाओं को बदलना है, पर हम परिभाषाओं में ना फंस के बच्चे के अनुभव और उसकी अनुभूति को बदलने का कोई उपक्रम कर पा रहे हैं क्या? वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही मेरे शिक्षा और मेरे रंगमंच का केंद्रीय बिंदु है कि हम स्वचेतना के लिए बच्चों का अनुभव, शिक्षकों का अनुभव कैसे बदलें ताकि कक्षाएं तनिक और जीवनशील हो जाएं, ताकि हमारा मानवीय अनुभव तनिक और जीवनशील हो जाए।
1: जी,
0: बिल्कुल जी।
1: तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमें बंधुता का मूल्य सिखाना हो या पढ़ाना हो तो कौन से नाटक के माध्यम से वो सिखाया जा सकते हैं?
0: कई सारे नाटक हैं और नाटक को देखना, ग्रहण करना, दर्शक के रूप में पात्रों के साथ उस नाटक की विषय वस्तु के साथ यात्रा करना, आत्मसात करना, उससे भी बहुत ज्ञान मिलता है। बहुत चीजें उदाहरण स्वरूप आपको मिलते हैं, आंखों के सामने घटता हुआ दिखता है और आप सीखते भी हैं। कई बार कुछ चीजें बाद में भी समझ में आती हैं, पर उसका अपना एक जबरदस्त प्रभाव है। दूसरा कि बच्चे का क्या अनुभव है, मान लीजिए बंधुता जैसे विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 6 में अगर हम पढ़ा रहे हैं बंधुता को, तो शिक्षक की एक तो तैयारी होनी चाहिए कि बच्चे के आस पड़ोस में वो बंधुता जैसे विषय को खोज निकाले, बंधुता जैसे अनुभवों को वो खोज निकाले। तो बच्चे के अनुभव पर उस वक्त घटना को केंद्र में रखना और फिर आगे बातचीत करना, उस घटना का नाटकीयकरण करके। तो हम बने बनाए नाटकों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा, जो आपके कक्षा में जो बच्चे हैं 10, 15, 20, 30, 40 जो बच्चे हैं, उन बच्चों के भी अपने अनुभव हैं बंधुता को लेकर। उन अनुभवों को केंद्र में रखिए। उदाहरण के तौर पे कि 5 साल का बच्चा आपके परिवेश में या आपके घर में होगा, आपने देखा होगा कि वो अभिनय का खेल खेलता है, वो टीचर का खेल खेलता है, वो डॉक्टर मरीज का खेल खेलता है। बचपन में खेलता है ना, आप
1: जी
0: लोगों ने देखा होगा। तो अब आप
1: जी
0: लोग उसको, अब जो जाएंगे तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, वो तो करता क्या है, वो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम बनाता है उसमें। जो भी 3, 4, 5 बच्चे बच्चियां जो भी मिलके खेलते हैं, खैर अभी ये बहुत दुर्लभ होने वाला दौर शुरू हुआ है, अब बच्चे मिल ही नहीं पाते हैं कॉलोनीज में, पर जहां जहां पर भी ये होता रहा, हमारा बचपन तो अभी रहा है, उसमें ये अनुभूतियां स्मृतियां मौजूद है बहुत ही प्रोमिनेंसी में। आप देखेंगे कि अधिकतर बच्चों में झगड़ा होता है कि टीचर का रोल लेंगे वो, अधिकतर बच्चों में आपसी झगड़ा हो जाता है कि वो डॉक्टर का रोल लेंगे। मतलब उस घटना में जो बड़ा किरदार है, पुलिस का किरदार है, वो लेंगे। इसके बहुत सारे मायने हैं सामाजिक स्तर पे। बच्चों के पावर के अनुभवों को देखिए कैसे वो, हम उन खेलों को बहुत महत्व तो नहीं देते हैं, पर वो खेल मानवीयकरण में, सामाजिककरण में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। तो अब आप लोग उसको देखिएगा, जिस परिवेश में बच्चा पल बढ़ रहा है, वो 5-6 साल के बच्चे के नाटक का विषय वस्तु भी, उसके खेल का विषय वस्तु भी वही होगा। इसका मतलब ये है कि वो एक नैसर्गिक विकास की प्रक्रिया है खेल बच्चों के साथ। तो मैं
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: उदाहरण दे रहा था कि इसी खेल की क्षमता को टीचर को समझना है, और वो क्लास में बने बनाए नाटक के जरिए भी काम कर सकता है, और बच्चों के जो अपने अनुभव है बंधुता को लेकर, उनको भी वो खींच के ला सकता है। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण देता हूँ कक्षा के अनुरूप और भी जरा ठोस तरीके से, कि मान लीजिए शरद भाई कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं, और शरद भाई से टीचर ने कक्षा में सबसे हाथ उठाकर बोला कि तो बताइए कितने लोगों की मित्रता, किस किस तरह के समूह में है, किस किस तरह के दोस्तों में है, क्या किसी दोस्त से किसी बात पर मतभेद हुआ है, झगड़ा हुआ है, झगड़ा क्यों हुआ है, क्यों मतभेद हुआ है। तो चलिए एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो 5-5 का 4 ग्रुप बना देते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये लोग बातचीत करेंगे कि इनको कब कब दोस्तों में मनमुटाव हुआ है, तो उस पर एक नाटक का दृश्य बनाएंगे। ग्रुप नंबर 2 वहां क्या हुआ है, वो भी ऐसा एक दृश्य बनाएंगे। तो आप देखिए एक कक्षा में 4 नाटकों की घटनाएं दिख रही हैं आपको। अब आप उस पर
1: जी
0: सवाल जवाब करिए, किसी पात्र को पकड़ लीजिए, उसमें सवाल जवाब करिए कि भाई आपको डिसएग्रीमेंट हो सकता है, फिर आपने उस पर हिंसक प्रहार क्यों, या आपने बातचीत से उसको सुलझाया क्यों नहीं, आपके अंदर ऐसी कौन सी भावना जागृत हुई कि कोई अगर आपकी बात नहीं मानता है तो उसको हिंसात्मक रूप से प्रहार किया जा सकता है, उसको थप्पड़ मारा जा सकता है, उसको गिराया जा सकता है, ऐसा ख्याल कहाँ से आया, कैसे आया? तो देखिए ना, नाटक से हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, व्यक्ति के स्वयं के बिताए हुए अनुभवों में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अनुभव
1: जी
0: ही बदलना है ना, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो हम कक्षा में ये प्रक्रिया भी ले सकते हैं। अब देखिए इस कक्षा में बच्चे कितना रुझान से काम करेंगे, शिक्षक वहां पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक वहां पर एक सारथी की तरह खड़ा है, बंधुता सिखाने के लिए, बंधुता के
1: जी
0: मुद्दे को बंधुता से जोड़ने के लिए एक सारथी के रूप में खड़ा है। शिक्षक को एक सारथी की ही भूमिका लेनी होगी, और जब बच्चे बात नहीं माने तो वो महाभारत में जैसे अर्जुन को कृष्ण ने अपना एक रूप दिखाया था वैसे रूप दिखाना चाहिए, पर वो रूप दिखाने का मतलब मैं मारने पीटने धमकाने की बात नहीं कह रहा हूँ, रूप दिखाने का मतलब बच्चा अगर शिक्षक की बात नहीं सुन रहा है तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे को समग्रता में समझना आरंभ करे। तो वो समग्रता का जो रूप है शिक्षक को वो दिखाना चाहिए, यानी कि टीचर को जब बंधुता पढ़ाना है तो केवल बंधुता उसका विषय नहीं हो, उसके दो विषय हो, एक तो बंधुता विषय हो ही, दूसरा ये विषय हो कि मुझे बंधुता पढ़ाने के लिए क्या काम करना है, बंधुता जैसे विषय पर
1: जी
0: काम होने के लिए मुझे कक्षा का प्रबंधन कैसे करना है। अगर कोई बच्चा नहीं सुनेगा तो मैं उसको समग्रता को तक कैसे लेकर आऊंगा, कैसे उसको तैयार करूंगा कि वो सुनना शुरू करे,
1: जी
0: वो हिस्सा लेना शुरू करे। तो आपको बंधुता की
1: जी
0: रट नहीं लगानी है, आपको बंधुता पर काम करने के लिए माहौल भी बनाना है, तो दोनों काम करना है आप। और अगर आप शिक्षक हैं तो एक तीसरा काम भी करना पड़ेगा, वो ये कि आपको जांचना भी पड़ेगा, आपके पास वो क्षमता भी बनानी पड़ेगी कि बंधुता पर जो काम हुआ, बंधुता पर काम होने के लिए जो कक्षा का प्रबंधन किया आपने,
1: जी
0: ये कितना कारगर रहा, आपका प्रयोग, आपकी प्रक्रिया कितनी कारगर रही, उसको भी
1: जी
0: देखने की संजय दृष्टि आपको पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर,
1: जी
0: नहीं तो आप लकीर ही पीटते रहेंगे ना।
1: बिल्कुल
0: तो विषय वस्तु, और फिर विषय वस्तु पर काम कैसे होना है, और फिर उसका शैक्षणिक भाषा में अगर बात करूं तो असेसमेंट कैसे हो, ये तीनों का एक क्रम आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। और हो सकता है जब
1: जी
0: मैं तुरंत बोल रहा हूं तो ये नहीं कि तुरंत का तुरंत, आप एक यात्रा में शामिल होते हैं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं या बार बार भी मिलते
1: जी
0: हैं, जब पहली बार मिलते हैं ना तो हम केवल बात थोड़ी सुन रहे होते हैं सामने वाले की, उसको जज भी कर रहे होते हैं, उसकी बात भी सुन रहे हैं, उसको समझ भी रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, उसके भीतर भी प्रवेश कर रहे हैं, कितना एक्टिव प्रक्रिया है वो। तो शिक्षक को इस एक्टिव प्रक्रिया के साथ प्रतिदिन कक्षा में जाना है, ऐसा नहीं कि शरद भाई 3 महीने से कक्षा 6 में आ रहे हैं तो अब वो उत्सुकता नहीं है, नहीं, 3 महीने और पहला दिन जो होने वाला है उसमें भी शिक्षक को वो उत्सुकता रखनी होगी कि आज शरद जी किस तरह से उनके सामने पेश आएंगे या वो किस तरह से पेश आएंगे। तो इतना सृजनात्मक प्रक्रिया जो है रंगमंच प्रस्तावित करती है शिक्षा के लिए, और हम लोगों ने किया है इसको, शिक्षकों ने उपयोग में लिया है। मैं आपको बताऊं, एक शिक्षक ने तो खुलेआम एक भरी प्रशासनिक सभा में उन्होंने कहा कि रंगमंच का जब से उन्होंने उपयोग करना शुरू किया है तब से उनको ये समझ में आया है कि बच्चों को डांटने से क्या होता है और बच्चों के साथ मिलकर काम करने से क्या होता है, दोनों का उनको भेद बहुत ही स्पष्टता से पता चला। और उन्होंने कहा कि मुझसे कभी एक दो बार त्रुटियां हुई हैं, मैंने कई बार कुछ बच्चों को डांटा भी है बतौर शिक्षक, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरह से सारथी के रूप में काम करने पर दोनों के पक्ष में भलाई है, बच्चे सीख रहे होते हैं और हमारे लिए भी नई चुनौतियां मिलती हैं और उससे हम सृजनात्मक तरीके को खोज रहे होते हैं। खैर, संख्या बहुत कम है पर इतना विश्वास है, क्योंकि मानव के साथ ही संभावनाएं प्रबल हैं, वो बदलता है, वो बदलेगा, वो सुबह कभी आती नहीं है, मतलब वो आते आते ही आती है असल में। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि डू नॉट वेट फॉर सम डे, यू कैन क्रिएट दैट डे टूडे एंड नाउ एज वेल। जी शरद भाई।
1: बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, श्रोताओं के साथ आज इतनी लंबी बात, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और हम बात कर रहे थे राजकुमार भाई से। राजकुमार भाई के साथ हमने उनके जुनून के बारे में जाना, उनका जुनून रंगमंच का जुनून, और रंगमंच के जुनून के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव, जो सकारात्मक एक चित्रण उन्होंने आज रेडियो के माध्यम से, सदृश माध्यम के माध्यम से, रंगमंच जैसे दृश्य माध्यम को अपनी भाषा, अपनी वाणी और अपने शब्दों से उसका विवरण पेश किया, और बहुत सारे विवरण लम्हा लम्हा हमारे सामने सजीव होते गए, वो बनते गए, बिगड़ते गए, फिर बनते गए, फिर बिगड़ते गए। तो यही रेडियो के अदृश्य माध्यम का कमाल है कि हर श्रोता ने अपने चित्र को अपने तरीके से गढ़ा होगा, अपने रंगों से उसको सजाया होगा। इस बातचीत में समय कब गुजरा मालूम ही नहीं चला। और राजकुमार भाई, इस यात्रा में हम अगली बार कुछ और, एक बार हम चाहेंगे कि और अगली बार बातचीत करें, और अगली एपिसोड में हम चाहेंगे कि इस माध्यम में कुछ और उदाहरणों के साथ, सजीव उदाहरणों के साथ, कुछ केस स्टडीज के साथ, कुछ बदलावों के साथ और एक लंबी बातचीत करेंगे। आपका समय हम
0: जी
1: एक बार और हमारे श्रोताओं के लिए
0: जी
1: चाहेंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि हम कैसे रंगमंच ने कुछ केस स्टडीज के माध्यम से शिक्षा के जगत को बदला है, और आपके जुनून में आपने क्या खोया पाया है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस जुनून के साथ, आपके जुनून और हमारे जुनून ने आज एक साथ इस लंबी यात्रा को किया, और कुछ समय हमने, महत्वपूर्ण समय हमारे रेडियो के साथियों के लिए, रेडियो मधुबन के साथ हमने दिया, और शांतिवन से मैं शरद त्रिपाठी आप सभी का को आज के लिए एक प्रणाम कहता हूँ, और कहता हूँ कि फिर मुलाकात होगी अगली एपिसोड में ऐसे ही किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार,
0: जी,
1: शुभरात्रि।
0: शुक्रिया, नमस्ते, शुभ रात्रि।

0: का
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: क्रांतिकारी आंदोलन ने सत्याग्रह आंदोलन की जमीन तैयार की थी। क्रांतिकारियों के जज्बे ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। क्रांतिकारियों की लंबी फहरिस्त में एक नाम है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का। बंगाल के पन्ना जिले में जन्मे लाहिड़ी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शचीन्द्रनाथ सान्याल के क्रांतिकारी दल में शामिल हुए थे। बाद में उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बनारस जिले का संगठक नियुक्त किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया था। अशफाक उल्ला खां और शचीन्द्रनाथ बख्शी के साथ वे काकोरी स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए। योजना के अनुसार उन्होंने चेन खींची। डकैती तो हुई मगर दुर्भाग्यवश क्रांतिकारियों की खादी की चादर घटनास्थल पर ही छूट गई। लाहिड़ी अपने साथियों के साथ पकड़े गए। सरकारी खजाने को लूटने के आरोप में उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड के नाम से मुकदमा चलाया गया। जज ने बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह के साथ उन्हें फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनकर उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष किया। 17 दिसंबर 1927 की सुबह गोंडा जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बंगाल का एक अनमोल विलक्षण रत्न क्रांति के आसमान का सितारा बन गया, जिसका ध्येय था युगों युगों तक देशभक्तों का मार्ग प्रशस्त करना।
3: हाय, क्या बात है, मेरी हाय हेलो का जवाब ही नहीं। लगता है मुझसे अभी तक नाराज हो।
4: मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है।
3: यार आखिर क्यों नहीं करनी है?
4: तू जानता है जो मुसीबत में साथ छोड़ जाए ऐसा साथी किस काम का।
3: यार देख, मुझे समझने की कोशिश कर। अपन दो थे और वो 10 लोग थे, ऐसे में उनसे पंगा लेना मूर्खाई थी ना। इसलिए मैंने तुझे समझाया था कि चलो चलते हैं, पर तू अड़ गया कि तुझे जाना है तो जा, मैं किसी से डरता नहीं। आखिर मैंने वहां से चले जाना ही ठीक समझा, और मैंने ये सोचा कि मेरे वहां से हटने पर तू भी वहां से हट जाएगा।
4: दोस्त को मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग जाना ठीक लगा तुझे?
3: तू जानता है झगड़ा मुझे पसंद नहीं है।
4: तो क्या झगड़ा मुझे पसंद है? पर गलत बात तो गलत ही है, गलत बात का विरोध करना तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए था, पर तू साथ का मतलब क्या जाने।
3: अब छोड़ ना यार, मुंह फुला के बैठा अभी तक।
5: लो बेटा ये तुम्हारी चाय।
3: लाओ लाओ लाओ।
4: दादा
5: मैं बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। एक बात कहूँ बेटा?
3: क्या?
5: साथी का तो मतलब ही होता है साथ रहना। हर समय हर परिस्थिति में।
3: काका, चाहे ऐसा करने में जान पे बनाए, पर मेरी समझ में तो मुसीबत को टालने में ही समझदारी होती है।
5: लेकिन जब खुद मुसीबत मोल ली हो तो उसे टालना तो कायरता ही होगी, बहादुरी तो उससे लड़ने में ही है।
3: अच्छा,
5: तुमने काकोरी कांड को तो सुना है ना?
3: हाँ हाँ हाँ, काकोरी कांड यानी ट्रेन डकैती वाला किस्सा ना, वही ना?
4: हाँ दादा।
5: हाँ वही। पहली बात तो ये कि वो एक राजनैतिक डकैती थी, और दूसरी ये 10 क्रांतिकारी उस डकैती में शामिल थे।
3: अच्छा।
5: नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, उस दल के एक सदस्य थे राजेंद्रनाथ लाहिड़ी।
3: राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, ये नाम तो काका हमने पहली बार सुना है।
4: हाँ दादा,
5: यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काकोरी ट्रेन डकैती से पहले राजेंद्रनाथ कभी कोई डकैती में शामिल नहीं हुए।
3: अच्छा।
5: पर जब उन्हें काकोरी डकैती दल में शामिल किया तो उन्होंने पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई। तो बेटा साथी याने
3: साथी। समझ गया काका।
4: दादा, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के बारे में और कुछ बताइए ना, वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे?
3: हाँ दादा बताइए ना।
5: बेटा यूं समझो कि वे क्रांतिकारियों में एक कुशल संगठक थे।
3: अच्छा।
5: उनमें राजनैतिक सूझबूझ और साहस तो गजब का था। जो भी काम उनके हाथ आए वो पूरी सफलता के साथ उसे पूरा करते थे।
3: अच्छा।
5: अब बनारस में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनते समय की बात लो।
0: शांत हो जाइए। अरे भाई शांत हो जाइए। अरे मित्रों मैं कह रहा हूं कि शांत हो जाइए भाई। हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी एक शाखा हमारे नगर बनारस में स्थापित की है। इस शाखा के संगठक श्री जोगेश चंद चटर्जी जी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने एक अहम निर्णय लिया है जिसके बारे में श्री चटर्जी आप लोगों को बताएंगे। आइए चटर्जी जी।
6: मित्रों, अनुशीलन समिति ने जब अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में एक शाखा खोलने का विचार किया तो हमने बनारस नगर को चुना। इसके दो कारण थे। एक, बनारस में बंगाली समाज बहुलता में है। दूसरे, उत्तर प्रदेश में बनारस नगर क्रांतिकारियों का गढ़ है। हम जब यहाँ आए और अनुशीलन समिति ने जब अपना काम प्रारंभ किया, हमें पता चला कि यहाँ सचिंदर नाथ सन्याल की क्रांतिकारी पार्टी काफी समय से काम कर रही है। एक ही नगर में दो क्रांतिकारी संस्थाएं काम करें, ये हमें उचित नहीं लगा और सबकी सहमति से हमने दोनों संस्थाओं के एकीकरण का निर्णय लिया। तो मित्रों, आज से इस संयुक्त संस्था का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन होगा। मित्रों, एकीकरण की शर्तों के अनुसार बनारस जिले के प्रमुख संगठक यानी दादा की नियुक्ति श्री सन्याल जी ही करेंगे।
0: मित्रों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए बनारस जिले के प्रमुख संगठक श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी होंगे।

0: बेटा शचिंद्रनाथ सान्याल के नाम की इस घोषणा के बाद एक 22 वर्ष का साफ रंग और कसरती बदन का औसत कद और लड़कियों जैसी कोमलता वाला लड़का विनम्रता से सिर झुका हाथ जोड़ के खड़ा हुआ।
1: अच्छा,
0: काफी लोगों की आंखों से अविश्वास छलक रहा था। निरुत्साही लोगों के बीच श्री सान्याल ने लाहिड़ी का परिचय देते हुए बताया,
2: वैसे तो यहाँ के काफी कार्यकर्ता श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी से परिचित ही हैं, पर बंगाल से आए साथियों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजेंद्रनाथ जी मूल रूप से बंगाल के पवना जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म स्थान मोहनपुर गांव है। इनके पिता श्री क्षिति मोहन लाहिड़ी स्वयं एक प्रसिद्ध देशभक्त रहे हैं और बंग भंग आंदोलन में जेल जा चुके हैं। 9 वर्ष की आयु से ही राजेंद्रनाथ बनारस में रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते रहे हैं। जब ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे तभी से ये हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक बात और, एक अत्यंत उत्साही और कर्मठ कार्यकर्ता के अतिरिक्त श्री राजेंद्रनाथ एक साहित्यिक व्यक्तित्व भी हैं। आपको हाल ही में बंग साहित्य परिषद का सचिव चुना गया है और आपके लेख बंगवाणी शेख आदि पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। आप आजकल एक हस्तलिखित मासिक पत्र का अग्रदूत का संपादन भी कर रहे हैं।
0: जिले के दादा बनने के बाद सबसे पहले राजेंद्रनाथ ने सेंट्रल हिंदू स्कूल के एक विद्यार्थी राम नारायण पांडे को अपना पोस्ट बॉक्स बनाया।
3: पोस्ट बॉक्स यानी क्या?
0: पोस्ट बॉक्स यानी इनके द्वारा क्रांतिकारी लोग अपने पत्र मंगाते रहते थे।
3: अच्छा, अच्छा।
0: बेटा ये तरीका पुलिस की निगाह से बचने के लिए क्रांतिकारियों ने चुना था।
3: वाह,
0: यूं तो राजेंद्रनाथ अपने को एक कुशल संगठक साबित करते रहे पर वे खुद को ज्यादा दिन तक पुलिस की आंख से बचा नहीं पाए।
1: यानी वो जल्दी पकड़े गए?
0: 12 महीने के भीतर ही पकड़े जाने को जल्दी ही कह सकते हैं।
1: ये बात तो है।
0: कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में बम के कारखाने में बंगाल पुलिस ने 10 नवंबर 1925 को जो गिरफ्तारी की उन क्रांतिकारियों में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी भी एक थे।
3: अच्छा,
0: उन पे एक के बाद दूसरा मुकदमा चला।
1: एक साथ दो मुकदमे?
0: हाँ, एक बम बनाने का और दूसरा काकोरी ट्रेन डकैती का।
4: ऑर्डर ऑर्डर, सब शांत हो जाइए। वकील साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू करें।
5: योनर, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी एक बहुत खतरनाक मुलजिम है। ये एक एक्सपर्ट बम बनाने वाला तो है ही, खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार इसका प्लान पूरे यूपी में बम बनाने के कारखाने खोलने का होता था। इसे दक्षिणेश्वर बम कारखाने में मारे गए छापे के दौरान पकड़ा गया है ऑनर।
4: क्या मुलजिम को उस पे लगाए चार्ज कबूल है?
6: चार्ज कबूल है, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। घर में घुस आए आतताई को मार भगाने के लिए की गई कोई भी कार्रवाई को मैं गलत नहीं मानता।
4: तुमने चार्ज कबूल किया, तुम्हें 10 साल की कड़ी सजा दी जाती है।
5: योनर, अभी अभी खुफिया पुलिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है।
4: वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है बताएं?
5: योनर, मुलजिम राजेंद्रनाथ काकोरी ट्रेन डकैती में भी इन्वॉल्व रहा है। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली पैसेंजर में 60 बागी शाजापुर से सवार हुआ और ये राजेंद्रनाथ सचेंद्रनाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां के साथ काकोरी स्टेशन पे इस गाड़ी में सवार हुए। जब ट्रेन काकोरी स्टेशन से रवाना हुई तो कुछ डिस्टेंस के बाद ही इस राजेंद्र नाथ ने चैन पुलिंग करके गाड़ी को रोक दिया।
4: ओह, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, फिर क्या हुआ?
5: ट्रेन के रुकते ही सभी बागी ट्रेन से नीचे कूदे और फायर करने लगे। योनर गार्ड और ट्रेन के ड्राइवर को पेट के बल जमीन पर लेटने को वार्न किया और साथ ही ट्रेन के किसी भी पैसेंजर को बाहर ना निकलने से भी मना कर दिया।
4: फिर क्या होगा?
5: फिर योनर बागियों ने कैश बॉक्स को ट्रेन से नीचे गिरा के तोड़ा और सारा कैश लूट के भाग गए। योनर
4: इस केस में और कितनी गिरफ्तारी हुई?
5: योनर पुलिस ने इमीडिएट एक्शन करते हुए लगभग सभी बागी को अरेस्ट कर लिया था। केवल 4 लोग का अरेस्ट होना बाकी था, उसमें से डॉक्टर सचेंद्रनाथ बख्शी और अशफाकुल्ला खान अभी पिछले दिनों ही अरेस्ट हुआ है। अब मुलजिम राजेंद्र नाथ को अरेस्ट के बाद केवल एक बागी बचा है, उसका नाम है योनर चंद्रशेखर आजाद।
4: क्या मुलजिम को अपना गुनाह कबूल है?
6: मैंने पहले ही कहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मातृभूमि की मुक्ति के लिए किया गया कोई काम गुनाह कैसे हो सकता है?
4: काकोरी ट्रेन डकैती की ट्रायल के लिए मुलजिम को लखनऊ भेज दिया जाए।
0: लखनऊ में बेटा राजेंद्र नाथ को काकोरी कांड के दूसरे कैदियों से अलग रखा गया था।
3: अच्छा,
0: केवल अदालत की पेशी पर ही उन्हें दूसरे कैदियों के साथ ले जाया जाता था, वो भी पांव में बेड़ियां डाल के। जब भी क्रांतिकारी अदालत जाते, मस्ती में गीत गाते जाते, सबसे आगे होते राजेंद्र नाथ।

0: बंद करो ये गाना बजाना। जानते नहीं मेरा नाम सरदार बरबंद सिंह है, जिसका नाम सुनते ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, समझे? मेरे रहते हुए ये सब नहीं चलेगा।
1: इसीलिए तो हमारा कहना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है दिल में है।
0: और तुम लोग नहीं मानोगे हैं? लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हमारे बाजुओं में कितना दम है। ले

0: तुमने मेरा गला दबाया। ले अब देख मेरे पास मुंह में कितना दम है। संभाल अपना गला। बोल राम खोद।
1: सावधान, जो किसी और पुलिस वाले ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो हमारा ये मुक्का तना हुआ है। देख
2: जेल में रहते हुए राजेंद्रनाथ को दो ही शौक रहे।
3: क्या?
2: एक व्यायाम करना और दूसरा किताबें पढ़ना।
3: अरे वाह, जेल में रहकर व्यायाम? वे भी ये जानते हुए कि सजा में उन्हें मौत भी मिल सकती है।
2: तुमने ठीक सोचा बेटा। 6 अप्रैल 1927 को काकोरी कांड का जब फैसला सुनाया गया तो राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्रनाथ लाहिड़ी दोनों को फांसी की सजा मिली।
3: क्या?
2: राजेंद्रनाथ को तो पहले से ही इस निर्णय का

0: ही राजेंद्र नाथ ने अपने एक मित्र को एक पत्र लिखा कुछ इस तरह।
1: प्रिय जितेंद्र, काकोरी कांड का फैसला तो वही हुआ जो हमने सोचा था। तुमने अखबारों में पढ़ ही लिया होगा, फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील का भी कोई सुपरिणाम ना तो निकलना था ना ही निकला। कल ही मुझे ये समाचार मिला है कि प्रीव्यू काउंसिल ने भी हमारी अपील को अस्वीकार कर दिया है। सभी मित्रों ने हमारे जीवन को बचाने का बहुत प्रयत्न किया है, सभी यत्न विफल होने का अर्थ है देश को हमारे बलिदान की जरूरत है। जीवन क्या है? मृत्यु के दूसरे पहलू का ही नाम है, ऐसे ही मृत्यु भी जीवन का दूसरा पहलू है। फिर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत क्यों है? मृत्यु उतनी ही जरूरी है, उतनी ही अवश्यंभावी है जितना सूर्योदय। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। आजकल जेल में हम राम प्रसाद बिस्मिल की ये कविता गाते रहते हैं।

0: सभी को हमारा अंतिम नमस्कार। तुम्हारा राजेंद्र नाथ लाड़ी।
1: और 17 दिसंबर 1927 की सुबह गोंडा जेल में राजेंद्र नाथ को फांसी दी गई। फांसी के तख्ते तक खुशी खुशी जेलर के साथ आते देख के जज ने उनसे पूछा,
2: जेलर, आज मिस्टर लाइडी की दिनचर्या क्या थी?
3: यार, सुबह उठकर लहरी ने रोज की तरह हेवी एक्सरसाइज किया और फिर नहा धोकर एक घंटा प्रेयर किया।
2: ओ, मिस्टर लाइडी, तुमने भगवान का प्रेयर किया ये तो हम समझ सकते हैं। प्रेयर तो जरूरी है और मरते समय भगवान को याद करना बहुत ही जरूरी है, पर फांसी से पहले हैवी एक्सरसाइज करना, हम ये नहीं समझ सके।
0: जज साहब, व्यायाम करना मेरा रोज का नियम रहा है। मैं प्रतिदिन 500 दंड और 500 बैठकें लगाता हूँ। मैंने व्यायाम करने में कभी नागा नहीं की। फिर जीवन के आखिरी दिन मृत्यु के डर से मैं अपना नित्य नियम क्यों छोड़ता? फिर हम हिंदू लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं जज साहब।
2: मतलब
0: मैंने आखिरी दिन भी कड़ा व्यायाम इसलिए किया ताकि मैं तगड़ा ही जाऊं और जब मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं तगड़ा ही वापस आऊं ताकि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध फिर युद्ध कर सकूं।
1: एक मरने वाले के मुंह से ऐसा करारा जवाब सुन के अंग्रेज जज सहम के भौचक रह गए। फांसी के तख्ते पे खड़े होके राजेंद्र नाथ ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और देश पे शहीद हो गए।
4: सचमुच दादा, राजेंद्र नाथ लहरी की जीवन गाथा बड़ी रोमांचक थी।
5: दादा, एक बात तो बताइए, अभी अखबार में मैंने पढ़ा था कि काकोरी कांड के शहीदों का बलिदान दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाएगा, सो कैसे?
1: तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सच तो यही है कि काकोरी कांड में फांसी पाने वाले चारों क्रांतिकारियों को फांसी की तारीख 19 दिसंबर ही घोषित की गई थी, पर घोषित तारीख से 2 दिन पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी क्यों दी गई और कैसे दी गई आज तक कोई नहीं जान पाया।
4: कुछ भी हो दादा, शहीद राजेंद्र नाथ लहड़ी के बलिदान ने भारत की आजादी की नींव में एक मजबूत पत्थर जड़ दिया था।
1: हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे।
6: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणपति के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: दोस्तों, हर किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है और हर एक व्यक्ति अलग होता है। अलग अलग विचार, अलग अलग संकल्प, अलग अलग जीवन, लेकिन ये सभी चीजों से एक गुलदस्ता बन जाता है और एक ना मिले दूसरे से। हर किसी की विशेषताएं अलग होती है, तभी वो इंसान को यूनिक बनाते हैं। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कोई छोटी उम्र में ही बुजुर्ग हो जाते हैं और जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो उस उम्र में भी बच्चे बन करके रह जाते हैं, यानी कि मन से वो बहुत ही उमंग उत्साह से रहते हैं। तो ये भी एक जीवन का साधना है और इसे कहते हैं जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, आज स्वागत करते हैं आदरणीय राजयोगी रामश्लोक भाई जी को। जैसे आप सभी को पता है, जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में हम योगियों के साथ बातचीत करते हैं, उनकी जीवन की यात्रा को हम जानते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी मुख्यालय के एक वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय रामश्लोक भाई जी। भाई साहब, आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, ओम शांति
1: जी। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो लौकिक जीवन है, आपका बौर कहाँ जन्मे थे, उस समय का माहौल क्या था, आपकी जो लौकिक परिवार है उसके बारे में थोड़ा हमें परिचय दें।
2: बहुत अच्छा और खुशी की बात है। जीवन जीने की कला की सब्जेक्ट है जिसको सभी की अभी जरूरत है। तो हमारा शरीर का अभी तो स्पिरिचुअलिटी में, इसलिए आत्मा और शरीर दोनों के साथ हम बात करते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो शरीर का नाम बीके डॉक्टर राज ऋषि रामश्लोक भाई। हमारा जन्म झारखंड में हुआ, हजारीबाग। झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन झारखंड हजारीबाग, वहाँ से वहीं हम पढ़े। हम तो राजपूत फैमिली से हैं, हमारा नाम पूरा रामश्लोक सिंह। तो वहाँ हमारे परिवार से सारे बहुत रॉयल फैमिली में अपना खेती बाड़ी और ये सब चीज़ों को, कई गांव में अपना रियासत था। ठाकुर ठाकुर के नाम से जानते हैं कि राजपूतों ठाकुरों की एक अपनी मुस्तैदी होती है। तो वहीं हम थे और वहाँ से फिर कमाख्या नारायण सिंह का आर्यन स्कूल में हम वहाँ से पढ़ाई किए 7 तक। उसके बाद हम धनबाद गोमो में से हायर एजुकेशन किए और वहाँ से रांची यूनिवर्सिटी से हम ISC का डिग्री पास करके फिर हमने सोचा कि सोशल सेवा किया जाए। सबके दोनों प्रकार का है कि किसी चीज़ की कमी नहीं थे, धन दौलत के, हजारों चीज़ों के, गाय बैल बस हर चीज़ जो लौकिकता में होती है से संपन्न थे।
1: तो आप कितने भाई बहन थे?
2: हम लौकिक में 3 थे।
1: अच्छा।
2: हम सबसे छोटे, हमारे एक बड़े भाई थे और बड़ी बहन थी, लेकिन हम सोचते थे उनका तो मैरिज ये सब सारा हो गया और हमारा अधिक ध्यान पढ़ाई में रहता था।
1: अच्छा।
2: लेकिन हमारे सब ज्वाइंट फैमिली था, एक साथ 10-15-20 बच्चे एक साथ थे। हमारे फादर 5 भाई थे
1: जी,
2: सब ज्वाइंट एक ही साथ रहते थे। पहले ज्वाइंट फैमिली होता था तो उसमें रहना खाना पीना सारा एक साथ होता था, खेती बाड़ी सब चीज़ें। फिर हम पढ़ते पढ़ते पढ़ने में आज तक हम कभी 3rd division नहीं लाए। लाइफ में 1st, 2nd ऑलवेज। हम पढ़ते कम थे लेकिन मेमोरी का एक बहुत बड़ा वरदान था। हम भगवान को मानते नहीं थे लेकिन जानते थे कि कोई शक्ति है, कोई पावर है। हनुमान जी को देखकर हम बहुत खुश होते थे। हनुमान जी की इतना ताकत कहाँ है कि एक हाथ से गदा उठाए, पहाड़ उठाए, एक पाँव भी उठाए। यहाँ 2 टांग पे खड़े रहने से लोग थक जाते हैं
1: जी।
2: एक टांग में उठा कर कितनी ताकत। तो गांव में गुजरते थे तो हनुमान जी के मंदिर, तो हम वहाँ जा कितना टाइम तक तो हम देखते रहते थे, इतनी इसकी शक्ति का। तो हनुमान जी से बहुत हमको प्रेरणा मिलती थी। पढ़ने के इसका सारा तो कोई है नहीं कि इसका कोई चीज़ मांगे। और तो खेती बाड़ी का भी हमको बहुत अच्छी तरह नॉलेज, कई लोगों के हमको खेत में ले जाते थे अपना अंकल वगैरह। बचपन में हमारे फादर से ही छोड़ दिए थे, इसलिए हम करीब 4th-5th पढ़ते होंगे उसके बाद। तो सभी फैमिली से पढ़ाई, उसके बाद हम 1968-69 में हमने सोचा कि कौन सा ऐसे कार्य करें तो लगा मेडिकल करें और फ्री में सबको दवाई देंगे, सब करेंगे, गांव वालों के सेवा करेंगे, सोशल सर्विस। इसीलिए हम फिर अपना एडमिशन 1968-69 में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हम वहाँ लिए, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में वहाँ हमारा एडमिशन हुआ। और वहाँ हम 4 साल के DHA में डिग्री करके, और उसी समय जब वहाँ पढ़ते थे तो हम हमेशा एक कोई चीज़ ढूंढने का खोजी के, आई वांट टू रिसर्च, सब चीज़ की, हर चीज़ के जानने की जिज्ञासा रहती थी, चाहे राइट हो रॉन्ग हो क्या चीज़ वो बाद में निर्णय करते थे। तो इसी तरह से तो सारा शहर में हम जब आए तो सारा शहर में हम घूमते रहते थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस अड्डा हो, या कहाँ कौन क्या कैसे क्या करता है। तो एक दिन एक हमारा दोस्त था, वो हमको मिले और बोला कि अरे भाई कन्याकुमारी से कुछ कन्याएं आई है, वो ज्ञान सुनाती है। तो हम बोले कन्याकुमारी तो साउथ इंडिया में है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, वहाँ से आकर के बिहार में ज्ञान सुनावी, इनका इतना ताकत कैसी। तो हम बोले चलो देखें। तो हम 2-3 दोस्तों के साथ पहुँच गए वहाँ सेवा केंद्र पे, वहाँ लिखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। हमने उस भाई को ले, हम बोले रे भाई बुद्धू ये कन्याकुमारी थोड़ी है, तो ब्रह्मा कुमारी है। तो उसने बोला कि अरे भैया जब ब्रह्मा कुमारी कन्या, ये सब कन्याएं हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, ये ज्ञान सुनाती हैं, सरस्वती हैं, कन्याएं सब हैं, इसीलिए। तो हम बोले अच्छा। फिर उसके बाद लोग कोर्स करने के लिए, तो हम थे हमारे साथ दूसरे दोस्त, हमारे साथी हैं डॉक्टर बनारसी, तो हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, तो उसको ले आए। फिर हम तो कहाँ रनर थे घूमने वाले, हम तो चले गए वहाँ से नेपाल घूमने के लिए। 5 अगस्त को एडमिशन हुआ था, 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो नेपाल हमारे से नज़दीक था मुजफ्फरपुर से रक्सौल से सर। तो हम एक वीक उधर चले गए, एक वीक हम बोले बनारसी भाई आप जाके कोर्स करो। उसने 7 दिन कोर्स किया। हम जब लौट के आए बोले बनारसी भाई आपने क्या क्या बहनों ने दीदियों ने क्या सुनाया, बोला हमको समझ में नहीं आया। हम बोले अरे क्यों, तुम पढ़ा लिखा है बुद्धू थोड़े है। फिर तो बोला नहीं हमको एक बात समझ में नहीं आया, बताया क्या, बोला शिव शंकर 2 हैं। हम सोचने लगे कि शिव शंकर पहले 1 थे अभी 2 हो गए।
1: अच्छा।
2: हाँ, हम बोले कि तो भाई ये कहीं दूसरे देखा, ये शिव शंकर 2 कैसे हो गया, बोला मालूम नहीं उन्होंने कहा है। फिर बहुत सारी चीजें, खैर हम तो वेद शास्त्र के ऊपर बहुत स्टडी किया होता, हम 7वां क्लास में जब पढ़ते थे 8वां में, तो वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत हर एक चीज को पढ़ करके पूरा कर दिया। और सभी धर्मों में हम जाते रहते थे, मुस्लिम इस्लाम में जाकर के हम नमाज पढ़ना सीखा, पहला कलमा तैयब ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जब हम हाई स्कूल में गए तो हम क्रिश्चियनिटी क्रिश्चन स्कूल में, हमें बिशप रॉक किस में था, हम चर्च में जाने लगे, तो लोग बोले अरे तुम हिंदू बनेगा क्या, ये है मुसलमान बनेगा क्रिश्चियन बनेगा सब। फिर हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हम गुरुद्वारा में रहे 2 साल, वाहेगुरु एक माई जगत भी आए 3 चेले पर, हर धर्मों में सब जगह जाते सबको एक साथ। हम बोले भाई हमें कौन क्या बनेगा वो नहीं, हमको एक इंसान बनना है, इंसान तो बनने दो। बाकी दुनिया तीन इंसान है, इंसानियत नहीं है, लोग हैं। तो हमारे मोटो ही अलग था बचपन से, ही हमारा विचार ही। तो फिर वहाँ से तो उन लोगों ने कोर्स किया, हम कोर्स नहीं, हम डायरेक्ट जा करके जब पिता श्री ब्रह्मा शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाते हैं, तो हम बोले पता नहीं हम तो नास्तिक आदमी, हम भगवान को मानते नहीं थे, कोई कुछ होता था तो हम क्वेश्चन आंसर करने लगते थे, लेकिन यहाँ कोई क्या नहीं, हम खुद समझना चाहते थे क्या। तो ब्रह्मा को ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हम बोले ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या पढ़ाई होती है। फिर एक एग्जीबिशन लगा, लोगों ने हमको एग्जीबिशन दिखाया, बोले इसको समझाना है, कौन समझाएगा, तो कुछ चुप। हम बोले हम समझा देंगे, तो हम सर समझा करके रखते, लेकिन ब्रह्मा बाबा देखते थे कौन, हम बोले शायद इनका गुरु होगा क्या, ऐसे ताकि स्टडी नहीं किया था। फिर बहनों ने बताया कि ये शिव बाबा के माध्यम है, निराकार परमात्मा आकर साकार में कैसे करता है तू। फिर वहाँ कोर्स करने के बाद कहीं हमको फिर सुरेश हो जाएगा कि भगवान आता है, भगवान पढ़ाता है, भगवान के ढूंढने के लिए साधु संत ऋषि मुनि कितने वेद शास्त्र गीता रामायण भरा हुआ है, सारा हमारा भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति से बहता है। फिर वहाँ से माउंट आबू में हम आए, संदेशी दादी हमारी टीचर थी, संतम दादी और संदेशी दादी, उनके साथ हम आए, और दादा आनंद किशोर यहाँ आए। तो जो गुलजार दादी में उस समय बाबा अव्यक्त उसी समय हुए थे, बाबा अव्यक्त हुए 1969 जनवरी, हम आए ज्ञान में 5 अगस्त 1969।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो इसी से हम 70 में तो हम पहले आ गए थे, 69 में आकर के उसी समय ये ध्यान रहता था कि हम योग कैसे लगाएं, आंखें बंद करके कैसे लगाएं, इसी से हमको को राजयोग मेडिटेशन सीखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम योग में बहुत रुचि रखते थे, फिजिकल योग में हम मास्टर थे, इसीलिए ये स्पिरिचुअल योग है, आध्यात्मिक है आत्मा। फिर वहाँ आत्मा और परमात्मा का लेसन दिया गया। और जब माउंट आबू में आए तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा जैसे दृष्टि दिया गुलजार जी, तो हम ऐसे शरीर से डिटैच हो गए, हमको अनुभव हुआ, हम अनुभव के आधार से चले हैं। ज्ञान सुन के सुना के नहीं, हम अनुभव हैं एक्सपीरियंस, इसलिए हम अनुभव ही रथ हैं। तो वहाँ करके
1: तो जैसे आप माउंट आबू आए और आपको इस आध्यात्मिकता की अनुभूति हुई, जैसे कहते हैं कि अध्यात्म में शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा चैतन्य है जो इस शरीर को चलाती है, आपने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया?
2: अनुभव एकदम डिटैच हो गए कि शरीर, भले हम बैठे हैं, हम नीचे जमीन में बैठे थे पद्मासन में, लेकिन हमको दृष्टि लिए सर, इतना मन बुद्धि जैसे एकाग्र हुआ, जैसे लोग हठ योग में कहते हैं कि वो एकाग्रता में एकाग्र हुआ, तो लगा शरीर से हम डिटैच हो गए हैं, हम कहीं हवा में उड़ रहे। तो फिर हम 2 मिनट तक ऐसा अनुभव करते रहे, तो फिर हम टच किया जमीन को कि हम ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, ऐसे हिलाया, देखा तो देखा अलर्ट, फिर हम देह भान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस में। जब हम आत्मस्वरूप में थे कि आई एम डिटैच, आई एम ये प्योर एंड पावरफुल सोल, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का संतान हूँ, परमात्मा हमको शक्ति दे रहा है, उस सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्ट, जैसे कनेक्ट किया और ये डिटैच। लेकिन फिर हमको लगा कि हम कहीं उड़ तो नहीं रहे, कहीं कुछ के हो तो नहीं रहा है, फिर हम जमीन को टच किया, फिर जैसे आगे धरती पे, हम बोले ओहो, तो सॉल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस में तभी हमको अंतर पड़ा, और तब हमारा और जिज्ञासा बढ़ गई और उमंग उत्साह सारा सब चीजें
1: जी। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे धर्मों का भी स्टडी किया है आपके युवा काल में, और जब राजयोग मेडिटेशन के बारे में आपको पता चला तो आप न सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि अनुभव में आपने विश्वास रखा। तो जब ये पहली बार ये अनुभव किया, आपको लगा कि मैं इतने सालों से इतने सारे धर्मों का पढ़ाई कर रहा था और पूजा पाठ भी जो भी हर एक धर्म का होता है, फिर जब अध्यात्म में आए तो वो सभी चीजों का आपको तर्क वितर्क भी समझ में आया होगा?
2: नहीं, तर्क वितर्क नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो हमको पहले से थी, खाली ये था कि हमारा था कि व्हाट इज ट्रूथ,

0: भाई गॉड इज ट्रूथ, इसमें हमको मालूम था, पढ़ाया था बचपन से कि एक सत्य दुनिया में एक परमात्मा सत्य है, बाकी झूठी माया, झूठी काया, झूठा संसार सब रट रहे हैं, झाल बजा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में इसलिए हम सभी जगह जाते थे हर धर्मों के, व्हाट इज ट्रूथ, और सभी जगह एक ही चीज बताते हैं। जैसे हम मुस्लिम में, इसमें इस्लामिक में गए तो वहां भी बोला कि आदम को खुदा मत मानो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम, गॉड इज ए लाइट, वो सातवां आसमान रहने वाला है, या परवरदिगार खुदा सर्व आत्माओं का पिता है। वहां भी गए तो वही, सिख रिलीजन में गए तो वहां भी यही बताया, एक एमआई जगत भी आई, तीन चेले परवान, एक करतार, एक पंडार, एक वही दीवान, कि एक परमात्मा एक है, निराकार निरंजन निरंकारी, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो तीन देवताओं की रचना करता है, एक करतार, एक पंडार। अपना हिंदू रिलीजन में जो है सनातन में है, तो सनातन में यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वहाँ, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तीसरे एक अलग शक्ति है जिसको शिव बाबा कहते हैं शिव। क्रिश्चियनिटी में गया तो वो भी बोला कि गॉड इज वन, नो सो जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट इज नॉट ए गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, बट गॉड इज वन। फिर उस हमले बोला गॉड क्यों कहा, व्हाई यू टेल द गॉड, उसमें भी तीन शब्द था, जी ओ डी, जी मीन्स जनरेटर, स्थापना करने वाले ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑपरेटर टू टेक केयर विष्णु, एंड डी मीन्स डिस्ट्रॉयर, विनाश शंकर, बट डी ओ जी ओ डी गॉड, गॉड इज वन लाइट। तो सभी धर्मों का एक ही निचोड़ हमको मिला कि परमात्मा एक है, निराकार, ये पॉइंट ऑफ लाइट, वो ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिवान है, ही इज नॉट कम इन डेथ एंड बर्थ, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, बाकी जितनी आत्माएं हम लोग दे सारी हैं सब जन्म मरण में आते हैं, चाहे देवी देवता हैं, श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, राम लक्ष्मी नारायण, या जो भी धर्म, जितने धर्म पिताएं भी हैं, चाहे जैसे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, इब्राहिम हो, सभी हम सब चक्कर में आते रहते हैं, इसलिए सब चक्कर से छूटना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू लिबरेशन एंड फ्रूसन, मुक्ति, जीवन मुक्ति, मोक्ष। तो वो चीज हमको यहाँ मिल गया और बस हम बोले हमारी सारी यात्राएं पूरी हुई,
1: सर्च खत्म हो गई।
0: हाँ, वो मिल गया ना, तभी तो गीत गाते हैं पाना था, जब सारी चीजें सभी जगह एक ही जगह इशारा कर रहा है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो, यार पॉइंट ऑफ लाइट, और आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का नहीं। और कोई भी, हम इतना सारे संस्थाओं में इतना जगह गए, कहीं नहीं पूछा कि तुम्हारे कितने पिताजी, यहाँ आते ही हमारा प्रश्न यही, फार्म फिलअप करवाते थे कि आपके कितने पिता हैं, तो हम लोग बोले एक ही है, हम लोग भाई ये सबको एक होते हैं, तो उसे बताया गया नहीं सबको दो हैं, एक है शरीर का पिता जो देह का, देहदारी का है, जो आपके जाति धर्म का है, जो जिस रिलीजन का, कॉन्शियस का है, और दूसरा हम सभी आत्माओं के परमात्मा है, इसलिए सब जाते हैं टेम्पल में जाएंगे, तभी हम आतश्चय पिता तमें वो बंधु सखा, एक ही गीत गाते हैं, दो अर्थ में गॉड एंड मदर एंड फादर, हर एक जगह एक प्रार्थना, सारा तो एक निराकार का है। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छा लगा, और उसके बाद
1: तो फिर आपको ये ज्ञान समझ में आया और उसमें विश्वास बैठा, फिर आपने घर में भी तो शेयरिंग किए होंगे, फिर उन्होंने आपको सहमति दी थी ये चीजें फॉलो करने के लिए?
0: घर में शेयरिंग, बचपन से ही हम इतना हर चीज में एक्सपर्ट थे, चाहे कुश्ती हो, कराटे हो, खेल हो, हमको क्रिकेट नहीं खेलते थे, हॉकी वाले थे, सारा सब चीजें हमारा ये सब कुछ था ही हम लोग का डीएनए में, क्या राजपूत फैमिली से थे, वहाँ से होता है कि कंकर करना है, जीत करना है, हमको थोड़े मालूम है कि तो शरीर से जीतना या किसे, तो इसीलिए घर वाले नहीं थे स्टार्टिंग में, अच्छा कहीं करेक्टर में नंबर वन, आज तक कहीं भी कुछ ये सब चीजें, आजकल कितना लोग जाके कहीं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये क्या, कितना सारा तमो प्रधानता हो गया, उसमें बड़ी सात्विकता थी वैसे भी, और ये हम लोग गाँव से रहते थे, शहर में आए, शहर में वहाँ के सब वातावरण में, लेकिन किसी चीज के हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, हम संग के बल संभाल रखते थे, जैसा संग वैसा रंग, हम संग में रहते हुए हम डिटैच, कोई स्मोकिंग करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, कोई झगड़ा करने वाला है वो भी हमारा फ्रेंड, जो शांत वाला वो भी हुआ, दोनों हम डिटैच कैसे रखे, उसका बैलेंस, लव का भी बैलेंस, तो लव का भी बैलेंस दोनों।
1: So, आपको घर परिवार से कभी कोई विरोध नहीं हुआ?
0: नहीं, बाद में हुआ, जो फिर जब हम लोग चले और जब पक्का धारणाओं चलने लगते हैं, खान पान की शुद्धि, तो वहाँ वाले तो सब नन भेज खाते हैं, सब खाते हैं, हमको पहले अच्छा नहीं लगता था, उल्टी हो जाती थी, करते थे, लेकिन इसमें और भी स्ट्रांग हो गए, फिर प्यूरिटी के पवित्र काय की पढ़ाई, पवित्रता में होती है ब्रह्मचर्य में, तो इसीलिए लौकिक पढ़ाई भी होती है बचपन में, तो भी पवित्रता में काय बुद्धि भटकेगी नहीं, तो जो प्यूरिटी की बात आई है सब सारा सब चीजें, तो फिर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आपका शादी करना है नहीं करना है, हमले क्यों, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ रहते हुए भी घर परिवार में यही एक संस्था है सारे वर्ल्ड में, हमारे अब यहाँ इसमें 1969 से हैं, सारी दुनिया के हम चक्कर लगाए हुए हैं, सारे विश्व में कोई भी कोना हम छोड़ा नहीं। हर साल हम 2 महीने जाते थे, लंदन, अमेरिका, जर्मन, जापान, रशिया, पूरा। लेकिन हर एक जगह से एक ही चीज़ होता है कि यही हम देखते थे कि यही एक संस्था है जो ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय, ये प्यूरिटी में खान पान रहन सहन संकल्प आचार विचार मन वचन कर्म, ये चीज़ें जो है ये बड़ी यूनिक लगी और ये हमको बहुत पसंद आया और ये हमारे जैसे एक लाइफ का एक नेचुरल नेचर बन गया। तो इसी से अभी हम 79 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी साइकिलिंग करते हैं, अभी साइकिल से चलाते हैं, हम कोई भी तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हमेशा खुश रहिए, बीमारी होती नहीं है, लोग बुलाते हैं। जैसे कोई गेस्ट आया, कोई दिन 2-4 दिन रहेगा चला जाएगा, कोई बीमारी वो गेस्ट है और परमानेंट नहीं है, हम उनको परमानेंट रख देते हैं, ये हो गया वो गया, सोच सोच करके डिप्रेशन में इसमें उसमें दुखी हो करके बीमारी को बढ़ाते रहते हैं।
1: तो भाई जी, एक बात तो है कि आपका बचपन से वो चुस्ती फुर्ती बहुत स्ट्रांग है, और जैसे आपने कहा कि आप राजपूत फैमिली से है और शादी इन सभी चीजों का दबाव था, तो फिर समर्पित कैसे हो गए संस्था में आप?
0: समर्पित नहीं, जब हम हमेशा जब हमको कॉलेज में छुट्टियां होती थी तो हम लौकिक घर में बहुत कम जाते थे, हम माउंट आबू आते थे, उसमें पहाड़ियां हरियाली सब, माउंट आबू तो हिल स्टेशन था, तभी कंसेशन टिकट भी मिलता था 42 रुपीस का।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहली सारा ट्रेन में इस समय हिल स्टेशन के नाम, बाद में ये सब सारा हुआ ना, तो जब यहाँ आते थे तो यहाँ कोई भी सेवा मिलती थी तो यहाँ हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाशमणि जी, बाबा ब्रह्मा बाबा के बाद दादी प्रकाशमणि, तो वो हमारी बहुत, तो कोई भी कार्य देती थी हम थोड़े में तुरंत करके आ जाते थे, देखती रहती थी। तो दादी ने ऑफर किया कि आपको यहाँ रहना है, तो बोले नहीं दादी, हम अपना पढ़ाई पूरी करके हम डिग्री ले करके आएंगे, वैसे हम विचार से भी नहीं आएंगे, इसलिए हम जाते थे पढ़ाई करके एग्जाम दे करके और सब छुट्टियों में आ जाते थे। और फिर उसके बाद आए और 1971 से 1972 से हम फिर यहाँ डेडिकेटेड, और दादी जी ने हमको एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में रखा, आवास निवास में। नाउ आई एम डी 42 ईयर्स आवास निवास के, विदाउट कंप्यूटर, बिना इसके रहते हम 25-30 हज़ार लोगों के एकोमोडेशन कर, कैसे करता था गॉड नो, तो भगवान को हम जो नहीं मानने वाले लोग क्यों नहीं मानते हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि सभी ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। एवरीबॉडी बिलीव टू गॉड, वर्शिप टू गॉड, प्रे टू गॉड, बट हु इज गॉड, बोला आई डोंट नो, तो फिर किसका पूजा कर रहे हैं, जार मन्ने हैं। हम जितने ज्योतिर्लिंग में सारा स्थान सब धर्मों सब जगह हम इंजॉय करते जाते थे, लेकिन सब वही ढूंढते हैं आई डोंट नो। फिर परमात्मा आके खुद अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं निराकार हूँ, ज्योति, मेरा नाम शिव है, सदा शिव, शिव माने कल्याणकारी, उसका अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए उसका नाम चेंज नहीं होता है, बाकी हम आत्माएं बर्थ रीबर्थ जन्म मरण के चक्कर में तो हमारा नाम चेंज होता रहता है। ये सारी चीज़ें केवल फिलॉसफी नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है जो आज इतना वर्षों से हम उसको पालन कर रहे हैं।
1: तो फिर आप 72 में समर्पित हो गए दादी के कहने पर, आप आ गए थे, तो घर पे आपको छुट्टी मिल गई थी आसानी से?
0: घर वो तो हम हमारे पर कहा ना, लोगों को बहन जी कुछ को कहे या भाई या सुनने वाले श्रोता किसको को, आप अच्छे कार्य करेंगे ना तो 10 विघ्न बाधाएं आएंगे और उल्टा काम करेंगे ना तो और भी आपको सहयोगी मिल जाएंगे कोई स्मोकिंग करने वाला नहीं करेंगे, बोले पंडित बन गया, ड्रिंकिंग नहीं होता, और वो सब आएंगे बोला हाँ चलो एक और ग्राहक बढ़ गया, तो उसी तरह से घर वाले तो थोड़ी छुट्टी दे देंगे। तो ये है, तो जब मैरिज का बात आया तो हमारे जो छोटे कजन ब्रदर्स ये सब थे, एक जॉइंट फैमिली था, तो हमारे अंकल ने कहा कि तुम मैरिज नहीं करोगे तो ये लोग कैसे करेंगे, तो हमने बोला ठीक है हम जा रहे हैं माउंट आबू, हम 5 साल के बाद आएंगे, तब तक काफी इंतजार करना 4-5 साल, 4 ईयर्स के बाद फिर हम आके मैरिज कर लेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो जब हम 4 साल के बाद गए यहाँ, 5 साल तक तो हम कहीं गए नहीं, जैसे अपना योग में तपस्या में ध्यान में सेम हम बिजी थे, सब दुनिया उनको कहते थे आप लोग यहाँ आओ, परिवार वालों को फैमिली वाले को, वो कहते हमारे पास टाइम नहीं हम अपना बिजी हैं, तो हम बोले भाई आपको टाइम नहीं तो हमें भी टाइम नहीं ना, हम भी अपना बिजी हैं ईश्वरीय सेवा में और ये सारी चीज़ों में। तो फिर जब हम 5 साल के बाद गए तो देखे घर में सब बच्चे दौड़ रहे खोद रहे, हम लिए किसके बच्चे हैं, बोले वो छोटे भाई क्या है उस बहन के, हम बोले रे भाई आप लोग तो हमको ठगी कर दिया, हमने कहा था 4 साल इंतजार करो अब तो 2 साल भी इंतजार नहीं किया, कहते कैसे होगा। सभी की दुनिया भाई अपनी अपनी है, सभी अपना अपना कर्म है धर्म है, कोई किसके लिए रुकता नहीं है, खाली वो सोते वो गाड़ी आगे बढ़े, जैसे आप क्यू में जा रहे हैं, वो सोते ही गाड़ी आगे निकले तो हम साइड से निकाल लें अपना। तो उसी तरह हम जैसे इधर निकले एक तो हम बोले भाई आपने हमारा बात नहीं माना था, आपके बात हम क्यों सुने, हम भगवान की सुने का आपकी सुने। कहा कि यहाँ पवित्रता ही सच्चरित्रता है। यही एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहन जी, जहाँ सभी जो है ना खुशी की बात सुनाते हैं, दुखी का तो बात ही नहीं है, वो तो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। इसीलिए ये चीजें और ये जीवन यहाँ की और ये सब बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए अभी भी आज तक अभी देख
1: जी। तो भाई जी, आप तो जैसे आपने कहा कि 42 साल से आप अकोमोडेशन डिपार्टमेंट का संभालते हैं और 25-30 हज़ार लोगों का भी आप बिना कंप्यूटर का अकोमोडेशन करते हैं,
0: कागज में
1: कैसे याद रखते हैं चीजें आप?
0: यही तो लोग बहन, हर एक जगह लास्ट में काउंट सा पॉइंट आता है, डॉक्टर भी दवाई दे देगा, नहीं ठीक होगा कुछ होगा तो बोला भाई ऊपर वाले का छोड़ दो, परमात्मा के। जब सब ऊपर वाले ही छोड़ते हैं, करण कराउन तो ऊपर वाला, हम तो कार्य करने वाला है, हम तो करण हार है, कराउन हार है, तो कैसे मेमोरी हमारी पहले से बहुत फास्ट है। अभी भी जहाँ जहाँ गए, जैसे आपको हम पूरे 60 साल के रिकॉर्ड दे देंगे एक एक चीज की, इतना कंप्यूटर तो अभी।
1: आपको लगता है कि ये ध्यान के कारण आपकी मेमोरी इतनी
0: बहुत शार्प, वो तो शार्प हो गया। पहले मेमोरी थी लेकिन थोड़ा, जैसे आप कोई पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी लेके काटते, एक भाई एक पेड़ काट रहा है तो और बोला अरे भाई इसका शार्प करो, तेज होगा ना फड़ा कर। तो मेडिटेशन से, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन करना होता है, मन की एकाग्रता, एक परमात्मा से जब हम कनेक्ट करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मन बुद्धि के एकाग्र करते हैं, तो उसमें पावर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब पहले दो पावर आपके पास आएगी, दो शक्तियाँ, वो है निर्णय शक्ति और परख शक्ति, पावर ऑफ जजमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक सेकंड में आप जज कर लेंगे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, जजमेंट, ये पावर। तो इसी से, और जैसे इसको कंसंट्रेट करेगा तो दो शक्ति आती है, कैचिंग एंड टचिंग, परमात्मा को टच करेगा कि दिस राइट दिस रॉन्ग, देन हमारा एकाग्रता है। यहाँ मेन मेडिटेशन में कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है।
1: और कौन सी ऐसी बातें या सिद्धियां हैं जो आपने इस लंबे साल, जैसे एक लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से आप साधना कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी सिद्धियां आपने प्राप्त की है राजयोग के द्वारा?
0: बहुत सारी सिद्धियां का, जैसे आप एकाग्र करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे और एक ही संकल्प में कई टाइम तक, घंटों तक करेंगे और तपस्या करेंगे। अभी देखिए डेली हम 11 बजे रात को सोते हैं, 2 बजे रात को उठ जाते हैं, 2:30 बजे, 2:30 बजे से 5 बजे एकदम कंसंट्रेट होकर के एक लगन वो तपस्या में, योग में, ध्यान में, तो उसमें से सारी चीजें, तो उसमें से संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी। आपके संकल्प में इतना पाल, आज कोई चीज है तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कोई भी चीज देख करके लोग डर हो जाता है, भाई भी जिसको आप पैनिक कहते हैं कि ये बात है पैनिक होगा, घमासान करके उसका सारा पैनिक से, कितना लोगों को कोविड हुआ, 50% लोग तो पैनिक से, कि किया नहीं उसको हो गया, थोड़ा खांसी होता था, ये है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं, तो पैनिक से किसी चीज में उसके घबराने की इसका नहीं है। राजयोग मेडिटेशन में यह है साइलेंस, शांत, वेट एंड सी, देखिए उसके बाद क्या होगा, जो होना होगा वो तो होना ही है, लेकिन हम अपने स्थिति को, अपने मनसा, यहाँ इसलिए माइंड इतना परफेक्ट होता है, फिजिकल तो है, होता ही है, लेकिन फिजिकल पावरफुल माइंड इज प्रेजेंट इन पावरफुल बॉडी। सदा खुशी में रहिए, मेन चीज जो है ना खुशी। खुशी एक ऐसी गुण है जो 3 जगह काम करता है, सभी जगह एक ही जगह काम करेगा, लेकिन खुशी जैसा खजाना नहीं। खुशी में रहिए, बांटिए, दूसरे भी खुश हैं। खुशी जैसा खुराक नहीं, जो खाते हैं खुशी खुशी खुराक, खुशी जैसी जिंदगी। खुशहाली में रहेंगे, आधा बीमारी सब ऑटोमेटिक हटेगा। और खुशी के रहने की एक ही जगह है, वो है राजयोग का मेडिटेशन। तभी देखते हैं अभी भी इतना एज में, 79 में हम साइकिल चलते हैं, हमारा साइकिल 35 ईयर्स का साइकिल आदि प्रकाश हमने दी थी, जंप मार के चलते। अभी दो लोग मिले भाई बहने, बोला आप लगते नहीं इतना ऐसा, हम बोले हम सोचते नहीं कि हम लगते हैं, लोग सोच सोच करके बूढ़े हो जाते हैं और हम सोच सोच के जवान हो रहे हैं। यही राजयोग का मेडिटेशन।
1: बहुत सुंदर भाई जी, आपने मतलब बात बात में इतनी बातें कह दी कि आपको इस राजयोग साधना के कारण ये शारीरिक उम्र का असर नहीं होता है,
0: बिल्कुल नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: मन की संकल्प उनसे हल्के रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, और एकाग्रता की शक्ति इतनी है कि आप कोई भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं और याद
0: नहीं, उसका कैचिंग और टचिंग उसका पहले आएगा, इसका रिजल्ट क्या क्या है और कैसे, हमको पहले टच करता है, क्या हमारा इतना कंसंट्रेट रहता है परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से, निराकार से, ज्योति से, जो जिस धर्म वाले जिसको भी मानने, चाहे वो अल्लाह कहें, गॉड कहें, इसका अगर उनके साथ सही कनेक्शन है और सही पावर आ रहा है, जैसे आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया, सब चार्जिंग होकर आप ही उससे पावरफुल हो जाएगा। तो राजयोग मेडिटेशन ऑल्सो ये चार्जर है कि आत्मा की बैटरी आज डल हो गई है। सारी दुनिया भले तन है, मन है, धन है, दौलत है, बच्चे, बीवी, फिर भी लोग पजल है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है, लोड नहीं ले रहा है। और अगर चार्जर रहेगा, आपके पावरफुल चार्जिंग रहेगा, तो आप हमेशा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशहाल खुशहाली में रहेंगे।
1: थैंक यू सो मच भाई जी, आज आप रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए, और जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम के तहत आप अपनी योगी जीवन की अनुभवों को साझा करते हुए हम सभी को एक उदाहरण दिया कि मेडिटेशन या ध्यान या राजयोग
0: तो सब एक परमात्मा के संतान है, आत्मा एवं भाई भाई हैं। इसीलिए हमारे जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, आप इस तरह से अपनी मनोवृत्ति को शेष बनाइए, सबके लिए आत्मिक भाव रखिए, सबके भाई भाईचारा। तो नेचुरल लगा, नारा लगाने से जरूरत नहीं है कि मैं भाई भाई आत्मा आत्मा भाई भाई, फिर पीछे करो लड़ाई, इसकी जरूरत नहीं है। सबकी यही है राज्यों की पढ़ाई, ये सदा खुश रहो, खुशहाली में रहो, बांटिए। बहुत थैंक्स,
1: थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू। दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और ऐसे ही अनुभवों को फिर सुनेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: अभी बचे हैं दोपहर के 4, एक मिनट प्रभु की याद से मन में लाएं अच्छे विचार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज मैंने सवेरे ही कहा था कि आज लाइव कार्यक्रम रहेगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज हम सभी के मध्य बहुत दिनों के बाद दीदी उर्मिला जी जुड़े हैं, और दीदी जी को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है कि दीदी ने एमए इन इंग्लिश किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, और आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के साथ 1981 में जुड़ी और 1985 से समर्पित रूप से आप सेवाएं कर रहे हैं लगातार 41 वर्षों से। वर्तमान समय आप माउंट आबू में राजयोग शिक्षिका, संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका और सह संपादिका हैं आप त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के। तो बहुत सारे युवाओं को आप प्रेरित करते हैं देश के कोने कोने में तथा विदेशों में भी जाकर के आपने आध्यात्मिक यानी कि हमारे सनातन संस्कृति को जन जन तक आपने पहुँचाया। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम फिर से दीदी से अभी जुड़ चुके हैं और बात करेंगे हम समाने की शक्ति के बारे में, क्योंकि कल है गणेश पूजा। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हम गणेश जी को घर लेकर के आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका बड़ा पेट भी होता है, और कहते हैं कि वो सब बातें शायद समा लेते हैं या फिर लड्डू खा कर के बड़ा पेट है, ये हम दीदी जी से जानेंगे। और समाने की शक्ति और सामना करने की भी जो शक्ति है, पावर टू फेस भी है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है उसके बारे में हम जानेंगे, यानी कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर खास ये कार्यक्रम है जीवन रोशनी। उर्मिला दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी, आपने हमें याद किया।
0: जी दीदी, बहुत देर से याद किया इसलिए क्षमा चाहिए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि खास मौके पर आपके मार्गदर्शन हम सभी श्रोताओं तक पहुँचाएंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गणेश जी को प्रतीक माना जाता है और बुद्धि की देवता के रूप में, और इसके साथ साथ विघ्न विनाशक के रूप में, शिव जी के पुत्र के रूप में हम उन्हें जानते हैं, तो उनके अंदर पावर टू फेस सामना करने की शक्ति के साथ साथ समाने की शक्ति भी होता है, तो आप इसे कैसे डिफाइन करना चाहेंगे?
1: ओम शांति। हमारे एक वरिष्ठ भ्राता जी
0: जी
1: रमेश शाह, उन्होंने एक बार एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि गणेश जी का गणेश जी नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका नाम असल में गुणेश होना चाहिए। गुणेश मतलब गुणों का देवता
0: जी,
1: क्योंकि इनके हर एक्शन में कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति झलकती है
0: जी।
1: अभी जैसे अभी आपने पेट की बात की थी कि इतना बड़ा पेट है, समाने की शक्ति है। लड्डू खाते हैं तो हजम हो जाते हैं, पेट इतना बड़ा नहीं होता है
0: जी।
1: लेकिन वास्तव में तो ये सब कुछ अपने भीतर समाने की शक्ति का प्रतीक, और ये शक्ति बहुत बड़ी है
0: जी।
1: समाने की शक्ति की एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि आप बात को भीतर ले जाओ और भीतर ही भीतर घुटते रहो। एक्सप्लेनेशन ये है कि आप बात को भीतर ले जाओ और उसको ऐसी गहराई में दबा दो कि जब तक उसकी जरूरत ना हो तब तक आपको वो दिखाई ना दे
0: जी।
1: जैसे समुद्र में कितना सारा कचरा जाता है, समुद्र ना तो उसको ऊपर रखता ना दिखाई देता, समुद्र एकदम स्वच्छ अपना तल रखता है
0: जी।
1: तो इसी तरह हमारा फेस एकदम शाइनिंग हो, पॉजिटिव हो, मुस्कुराता हुआ हो, बेशक हमें हर बात का पता हो। कोई व्यक्ति है, हमें उसकी कमजोरी का पता है कि ये जो सामने से आ रहा है ना, इसमें ये कमजोरी है, लेकिन हमारे फेस में बिल्कुल ना दिखाई दे कि हमको इसकी कमजोरी का पता है, जिसको कहते हैं समाने की शक्ति, क्योंकि उस समय जरूरत ही नहीं है उस बात को उभारने की
0: जी।
1: हाँ, कभी हमें उसको कोई शिक्षा देनी है मीठी सी, मौके पे प्यार सी, तो वो एक मीठी गोली की तरह से हम बहुत प्यार से उसको वो चीज देंगे, उसको भी वो मीठी लगे, कड़वी ना लगे। कड़वी लगेगी तो फेंक देगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा
0: जी। तो उस

0: समय अपने मन में क्या चिंतन चलाना होगा जब उसको सामने देखते हुए पता होते हुए भी?
1: वो क्या है कि मन में ये चिंतन रहता है कि ये भी एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, और मुझे भगवान ने आज्ञा दी है कि सबके गुण देखो, किसी में 99 अवगुण हो तो एक गुण जरूर होता है। तो अगर मैं सचमुच बुद्धिमान हूँ तो मैं इसमें से कोई गुण ढूंढ के दिखाऊं, ये
0: जी
1: मेरे लिए चुनौती है। दुनिया कहती है कि इसमें बड़े अवगुण है, पर मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं कि मैं इसमें से गुण ढूंढूं और उस गुण का चिंतन करूं और उस गुण के आधार पर इसको अप्रिशिएट करके इसको आगे बढ़ाऊं।
0: जी बिल्कुल। तो इस चिंतन के साथ उस आत्मा से, उस व्यक्ति से हमें
1: हाँ,
0: मिलना है।
1: उसे मिलना है, बात करनी है, पास बिठाना है, जो भी है।
0: जी। और दीदी, गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, तो लेकिन जीवन में जब कोई विघ्न सामने आता है तो क्या हर बार वो विघ्न बाहर से हटेगा या फिर हमें उसके सामने खड़े होने की शक्ति भी अपने अंदर जगाना पड़ेगा?
1: क्या है कि विघ्न वैरायटी होती है, लेकिन किसी भी विघ्न को हम किसी भी स्थूल या भौतिक शक्ति से अगर हटाएंगे तो वो टेम्परेरी हटेगा, फिर वापस आ जाएगा। हमें या तो विघ्न को जंप मार के पार करना है, एक तरीका तो ये, जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ता है, पहाड़ों को क्रॉस कर जाता है, पहाड़ देखता ही रह जाता है, सोचता था मैं इसके आगे आऊंगा, उसकी मनसा ही पूरी नहीं हुई, बहुत बड़ा पेड़ है, हवाई जहाज उसके ऊपर से भी क्रॉस कर गए। या तो हमारे में ये वाली शक्ति हो। दूसरी ये शक्ति है कि हम अपना कोई एक्शन ना लें, लेकिन हमारे वाइब्रेशन, हमारे नयन, हमारी मुस्कान इतनी पॉजिटिव और इतनी पावरफुल हो कि सामने वाला सामने खड़ा ही ना रह सके, उसको लगे कि अरे मैं किसका विरोध कर रहा हूँ और क्यों विरोध कर रहा हूँ, इस विरोध का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो अपने आप ही हट जाए। और तीसरा तरीका ये है, ये सबसे अच्छा है, कि हर समय अगर हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं तो विघ्न आएगा ही नहीं, ये गारंटी है।
0: सबके लिए शुभकामनाएं। कैसे? अपने जो शत्रु भी है, मतलब जिसने जो किया
1: हाँ,
0: उसके लिए भी?
1: उसके लिए भी अगर हम अच्छा सोचते हैं, उसके लिए भी कहते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुम्हारे क्रम से मेरी बड़ी प्रोग्रेस हो गई, तुम्हारी निंदा से मैं बड़ी मजबूत हो गई, और तुम्हारे विघ्न डालने से मेरा आत्मबल बहुत बढ़ गया, तुम बहुत अच्छे हो, बेशक ऐसे दो चार कर्म और करो ताकि मैं और आगे बढ़ूं। हम उसको ऐसे वाइब्रेशन देते हैं ना, तो वो आता ही नहीं है सामने।
0: सही बात है। तो इस प्रकार से हम अपने स्मृति पटल पर ये सारे विचार चला सकते
1: चला
0: हैं।
1: सकती है।
0: जी। और गणेश चतुर्थी और पावर टू फेस, जैसे सामना करना है परिस्थितियों को, तो किस तरह से ये आध्यात्मिकता और मानवीय संबंध इसके साथ जुड़ी हुई है?
1: जब हम किसी भी चीज का सामना करते हैं तो हमको एक बात का ध्यान रखना है, व्यक्ति का सामना कभी भी नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो संसार की बहुमूल्य दौलत है, प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मैं उस व्यक्ति का कुछ नुकसान करता हूँ तो संसार का नुकसान होता है, चोट पहुंचाई तो भी नुकसान है, हर्ट किया उसको तो भी नुकसान है, और उसको छीना झपटी की तो भी संसार का ही नुकसान है, संसार की एक एसेट है वो, संसार का एक व्यक्ति है, तो फिर हम सामना कैसे करें? असल में हमको सामना करना उसके भीतर जो दुर्गुण है उसका।
0: जी।
1: अगर मैं कुछ बिगाड़ना ही चाहती हूँ तो उसके भीतर मौजूद दुर्गुण का बिगाड़ो। मेरे में इतनी सुख संपर्क शक्ति होनी चाहिए। अब जैसे मेरे सामने एक पेशेंट आया, मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं पेशेंट को कहूँ तुम्हारी आंख में दर्द है चलो आंख ही खत्म कर देते हैं, कान में दर्द है कान ही खत्म कर देते, मैंने बड़ा नुकसान कर दिया एक व्यक्ति का। मुझे तो आंख की बीमारी खत्म करनी है, कान की बीमारी खत्म करनी है, कान रहे तो वो व्यक्ति रहे, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी नेगेटिविटीज है जिनके कारण वो मुझे भी और किसी और को भी तंग करता होगा,
0: जी
1: तो मेरा फोकस उस नेगेटिविटी के ऊपर है, मुझे उसको खत्म करना है,
0: जी, ना कि व्यक्ति को दूर
1: ना
0: कर
1: कि
0: देना
1: व्यक्ति
0: है,
1: को,
0: उसको
1: हाँ,
0: गलत
1: ना
0: समझना
1: उससे
0: है।
1: घृणा करनी है, ना उसको दूर करना है, ना उसके कोई किसी से चुगली करनी है, ना किसी और का सहयोग लेकर के उसका कोई अहित करना है, क्योंकि मैं संसार का कल्याण करने वाली हूँ, अहित करने वाली नहीं, मुझे तो एक तिनका भी नहीं तोड़ना संसार का, अगर मैं एक फूल का पत्ता भी तोड़ती हूँ तो भी संसार का नुकसान है, तो मैं नुकसान करने नहीं आई हूँ, मैं इसका फायदा करने आई हूँ, और मनुष्य का तो मैं नुकसान कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक बहुत बहुमूल्य चीज है, परमात्मा की प्रकृति के बने संसार की, तो उसके भीतर कुछ जो नेगेटिविटी है मुझे उसको खत्म करना है। अब उसको खत्म करने के लिए अब आपको तरीके ढूंढने, आपको पहले तो ये देखना है कि आप इसको कैसे खत्म कर सकते हो, क्योंकि हर एक की बुराई एक तरीके से खत्म नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रही थी, बस में सफर कर रही थी। उस जमाने में अपनी गाड़ियाँ अपने पास नहीं होती थी, कहीं भी आना जाना बसों में होता था
0: जी।
1: मेरे आगे वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा था और बीड़ी या सिगरेट कुछ पी रहा था
0: जी।
1: तो जब बस चलती है ना तो आगे का धुआं पीछे आता है
0: जी,
1: और वो धुआं मेरे ऊपर आ रहा था पूरा, मैं पिछली सीट पे थी। मैंने बहुत प्यार से कहा, मैंने कहा भाई साहब ये धुआं ना मेरी तरफ आ रहा है, तो आप थोड़ा सा बंद कर सकते हैं? क्यों, मैं तो पीऊंगा। तो मैं चुप हो गई, बस मुझे तो कहना ही था, मानी या ना मानी। उसके बाद मैंने सोचा कि वाणी से कई बार ना व्यक्ति के अहंकार को चोट लगती है, क्योंकि और भी बस में बैठे लोग इसको देख रहे हैं, इसको लगा होगा कि बहन जी की बात मैंने मान ली तो लोग कहेंगे बड़ा कमजोर है, बहन जी ने कहा और मान लिया, तो इसके अहंकार को चोट लगी है। चलो इस पे ना सूक्ष्म संकल्पों का प्रयोग करते हैं। मैं पीछे बैठी बैठी सोचती रही, मैंने कहा बाबा ये आपका बच्चा है, धुएं से इसका भी नुकसान हो रहा है, मेरा तो हो ही रहा है, मेरे से ज्यादा तो इसका हो रहा है, तो इसको सद्बुद्धि मिले तो ये इसको त्याग करे। और बहुत सारी बस में और भी सवारियां हैं, बेशक बोली नहीं लेकिन बस में पॉल्यूशन तो फैल ही रहा है
0: जी,
1: तो इसको सद्बुद्धि मिले, इसका पुण्य का खाता जमा हो, ये भी तो एक अच्छी आत्मा है, परम धाम से आई तो बहुत अच्छी आत्मा थी
0: जी।
1: ऐसे में चिंतन करती रही करती रही, कुछ समय बीता और उसने जेब से बंडल भी निकाला, माचिस भी निकाली और मुझे दिखा के कहता देखो बहन जी मैं इनको बस बाहर फेंक रहा। तो उसने मुखवाली तो बीड़ी फेंकी फेंकी, वो बंडल और माचिस भी फेंक दी। तब मुझे लगा कि व्यक्ति के लिए हम अगर शुभ सोचते हैं तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, टाइम तो लगता है
0: जी।
1: एक तो होता है कि आपने थप्पड़ मारा और आदमी ने तुरंत काम कर दिया, लेकिन वो प्रभाव अच्छा नहीं है, उसके मन में आपके लिए घृणा आ जाती है, आपके नजदीक जीवन में वो कभी नहीं आएगा। लेकिन ये जो तरीका है इसमें आपने उसका दिल जीता है, आपने उसके दिल में अच्छाई को एक तरह से इंजेक्ट किया है और बुराई को बाहर निकाला है, और वो अपने आप इसके लिए तैयार हुआ है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, अब वो जीवन भर ये काम दोबारा नहीं करेगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, बुराई का सामना करो, बुरे व्यक्ति का नहीं। कहते हैं जेल में लिखा होता है पाप पाप को मारो, पापी को नहीं
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, पाप को मारो, पापी को पापी नहीं को। जी बहुत सुंदर बात है दीदी। दीदी अक्सर हम चाहते हैं कि जीवन में जो मुश्किलात हैं वो समाप्त हो जाए, लेकिन क्या वास्तविक शक्ति मुश्किल के समाप्त होने में है या फिर उसके रहते हुए भी शांत रहने में और मजबूत बनने में है?
1: हाँ, क्योंकि जीवन की मुश्किलातें कभी खत्म नहीं होती हैं, ये तो आप पक्का रख लो जब तक आप जिएंगे
0: जी।
1: आपकी अगर एक आंख ठीक हो गई तो दूसरी में दर्द हो जाएगा, अगर आपका एक बच्चा ठीक हो गया तो दूसरे की प्रॉब्लम आ जाएगी, इधर वाला पड़ोसी ठीक है तो इधर वाला कुछ खटर पटर कर देगा, और ऑफिस में सब कुछ ठीक है तो घर में कुछ हो जाएगा, एक रिश्तेदार ठीक है तो दूसरे रिश्तेदार में कुछ हो जाएगा, समस्याएं चलती रहेंगी। समस्याओं के चलते हुए जीना सीखो और खुश होकर के जीना सीखो। एक व्यक्ति था, एक महात्मा जी के पास गया, उसने कहा महात्मा जी मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, मैं क्या करूं, आप कोई तरीका बताओ ना समस्याएं खत्म हो जाए, मुझे रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, चैन नहीं मिलता। तो महात्मा जी ने कहा तुम पहले मेरा एक काम करो फिर मैं तुम्हारा करूँगा। तो क्या करना है? तो बोला कि एक बाड़ा है बहुत बड़ा, उसमें मेरे 100 ऊंट खड़े हुए
0: जी,
1: तो कुछ ऊंट बैठे हैं तो सबको बिठा दो और जब सारे बैठ जाएं तो आके सो जाना
0: जी।
1: तो व्यक्ति गया, जब गया तो 20 ऊंट बैठे हुए थे और बाकियों को नकेल पकड़ के बिठाने लगा, कच कच करके बिठाना पड़ता है ना ऊंट को थोड़ी आवाज करके, तो 20 में से 10 ऊंट खड़े हुए
0: जी।
1: अभी 10 बैठे नहीं थे, उससे पहले 10 खड़े हो गए। अब फिर उसने जोर लगाया कि किसी तरह से, तो अभी 15 बैठे तो वो पहले के 10 बैठे और खड़े हो गए, तो अभी तो 15 ही बैठे। फिर जोर लगाता रहा, कभी इधर से बिठाए कभी उधर से बिठाए, तो ले दे के सुबह तक केवल 40 ऊंट बैठे, सुबह हो गई, सोया नहीं
0: जी।
1: और महात्मा जी ने जब उसके सामने गया तो पूछा ऊँट बैठ के? बोला नहीं बैठा, सारी रात में लगा रहा। बोला समस्याएं भी ऐसी हैं, 2 को बिठाओगे 4 खड़ी हो जाएंगी, 4 को बिठाओगे 6 खड़ी हो जाएंगी। अगर तुम सारी समस्याएं बैठ जाएं फिर मैं चैन से सोऊं, ये इंतजार करोगे तो कभी नहीं सो सकोगे। समस्याओं को रहने दो, तुम चैन से सोना सीखो, जितनी तुमसे मैनेज होती है मैनेज करो, बाकियों को छोड़ दो, कुछ समस्याएं तुम्हारे मैनेज करने से होंगी, कुछ समस्याएं अप

0: तेज आंधी आ गई, तब तो आपको सामना करना है। सामना करने का मतलब है अपना बचाव करना है। अच्छा, कोई सांप बिच्छू आ गया, बचाव करना है, समाना थोड़े उस समय। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चलते हुए आप पे ताना मार दिया कि देखो कैसे घोड़े की तरह से उछलता हुआ जा रहा है, उस बात को आपको संभालना है
1: जी।
0: उस बात को आपको एक तरह से लेट गो कर देना है
1: जी।
0: उस बात को चित्त पे नहीं रखना है। करोड़ों मुख हैं, करोड़ों बातें, मैं किस किस को चित्त पे रखूं? मेरा चित्त इतना बड़ा है ही नहीं, काम की बातें रखूं कि फालतू बातें रखूं
1: जी।
0: तो कोई बात नहीं है, उसको मैं जैसा दिखा उसने बोल दिया, तो लेकिन मैं जो हूं वही हूं, उसके कहने से थोड़े मैं कुछ बन जाऊंगा। तो ये बात को आपको समझना है। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना ही बात आपके सामने आपके रास्ते में टेढ़ी बांकी गाड़ी चला रहा है, तो अब आप क्या करेंगे? अब उसका आप सामना नहीं कर सकते, तो गाड़ी पे टेढ़ा स्कूटर यूं ले जा रहा है, यूं ले जा रहा है, आपको किनारा पकड़ना है। आप समझ जाओ कि इसका बैलेंस नहीं है माइंड का
1: जी।
0: सामना करूंगी तो नुकसान मेरा होगा, मुझे किनारा पकड़ के जो पैसेंजर रोड पड़ा है मैं वहां से निकल जाऊं चुपचाप। तो अगर कोई ऐसा टेढ़ा बांका आदमी है तो किनारा करने में कल्याण है। सामना मत करो, मैं कोई कम हूं क्या? मैं भी तुमको देख लूंगा, आपको
1: तो ओवर स्पीड के कारण खुद एक्सीडेंट हो सकता है,
0: आपका नुकसान हो जाएगा
1: जी। तो इस तरीके से आप परख सकते हैं डेली लाइफ में कहाँ पर आपको फेस करना है
0: और कहाँ पे आपको संभालना
1: है जी। दीदी, जैसे विघ्नहर्ता हमारे बप्पा हैं, गणपति जी हैं, हम पूजा करते हैं तो हम उनसे ये सब सीखते हैं, भगवान से सीख के अपने गुण अपने अंदर धारण करनी होती है। तो देवी देवताएं जो दिखाया गया है कि वो भी युद्ध कर रहे थे असुरों से, दानवों से, तो उसके लिए भी साहस की जरूरत पड़ती होगी, धैर्यता की जरूरत पड़ती होगी। तो साहस का मतलब क्या, डर का बिल्कुल नहीं होना है या फिर डर के बावजूद भी सही कदम उठाना, इसको साहस कहते हैं?
0: देखो, साहस का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक दृढ़ संकल्प और प्लस आत्मविश्वास कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और मैं किनारे खड़ा देख रहा हूँ, तो मेरे में एक तो ये आत्मविश्वास है कि मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ, मैं डूब नहीं सकता
1: जी।
0: और दूसरा मेरे में ये साहस है, मेरे में हिम्मत है कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं इसको पकड़ करके अगर कंधे पे भी लादना पड़े, पेट पे बिठा तो मैं इसको बिठा के ला सकता हूँ। मेरे में शारीरिक मजबूती भी है, मेरे पास अच्छी तैराकी भी है, और प्लस मेरे भीतर एक दया और एक परोपकार का भाव भी है, कल्याण का भाव भी है, डूबते को बचाना ये मेरा कर्तव्य है। ये सारी भावनाएं मिक्स होती हैं, हिम्मत भी है, कौशल भी है, कल्याण की भावना भी है, तब वो साहस पैदा होता है। मान लो मैं तैराक हूं ही नहीं
1: जी।
0: साहस नहीं पैदा होगा। मान लो मेरे में दया भावना नहीं है, मरता है तो मरने दो, तो भी मैं वो काम नहीं करूंगी। मान लो मैं बहुत किसी जमाने में तैराक थी और अब बहुत शारीरिक रूप से कमजोर हूं, तो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। तो साहस के लिए कई चीजें चाहिए, युक्ति भी चाहिए, कौशल भी चाहिए, दृढ़ संकल्प भी चाहिए, और एक ऊंचा लक्ष्य भी चाहिए। जैसे मुझे एक राक्षस को मारना है, तो क्यों मारना है? क्योंकि वो कईयों को खा रहा है, रोज उसको एक आदमी चाहिए खाने के लिए। रोज एक आदमी 365 दिन के 365 आदमी मरे, इससे अच्छा ये एक ही ना मर जाए
1: जी।
0: तो मेरे सामने एक ऊंचा लक्ष्य है, तो उस ऊंचे लक्ष्य के कारण मैं उस राक्षस को मारने को तैयार हुई हूँ। अगर आप स्थूल रूप में भी राक्षस मारने की बात सोचें, तो मेरे अंदर साहस है, मेरे अंदर युक्ति भी है, मुझे उसकी कमजोरी का पता है, तो मैं उस युक्ति को, उसकी कमजोरी को ध्यान में रख करके और उससे भिड़ जाती हूँ और मान लो उसको मार देती
1: हूँ,
0: तो ये मेरा साहस है। लेकिन साहस के साथ एक शब्द है दुस्साहस
1: जी। ओके जी।
0: तो दुस्साहस क्या होता है? कोई काम करने का मेरे अंदर दृढ़ संकल्प भी है, उमंग भी है और मेरे में ताकत भी है, लेकिन वो कर्म गलत है। जैसे चार लड़के आपस में बात कर रहे हैं कि आज ना अपन रात को 12 बजे जो मॉल है ना इसमें घुसेंगे और कुछ ना कुछ तो सामान लेके आएंगे, तो उनमें से एक लड़का अलग खड़ा।

0: कहता है मैं नहीं जाऊंगा। तो ये चारों कहते हैं क्यों भाई तेरे में इतना भी साहस नहीं है, क्या तू इतना डरपोक है? वो कहता है मेरे में साहस तो है पर मेरे में दुस्साहस नहीं
1: जी,
0: क्योंकि ये दुस्साहस का काम चोरी करना। अच्छा मान लीजिए क्लास के दो स्टूडेंट कहते हैं कि अभी जब टीचर आएगा ना तो उस टीचर का ना एक नाम निकाला है, वो उसके सामने बोलेंगे, बोलते हुए निकलेंगे, वो सुनेगा। एक कहता है मैं नहीं बोलूंगा। वो पूछते हैं क्यों तुम टीचर से इतना डरते हो? हम तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरते। वो कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ लेकिन मैं ये दुस्साहस नहीं करूंगा, आखिर तो मेरा गुरु है पूजनीय है
1: जी।
0: तो मैं ये दुस्साहस नहीं करना चाहता। तो अगर वो काम नैतिकता के विरुद्ध है, अगर मैं फिर भी उसे करती हूँ तो वो दुस्साहस है, वो साहस नहीं है। साहस वो तब तक है जब तक वो कर्म नैतिक
1: जी। तो इससे परख के हमें डिसाइड करना
0: है। हाँ, अपने साहस को तब
1: यूज करना है जी, बिल्कुल। और इसके साथ साथ कई बार हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जैसे दोस्तों के प्रेशर में आकर के, फेल्यूर या फिर रिजेक्शन के डर से, और फिर लोगों की ओपिनियन का डर, ईगो के कारण भी हम रुक जाते हैं। तो उस समय अपने इस करेज, साहस को कैसे फिर एक्टिवेट करें, अपने आप को अपना सोमान कैसे याद दिलाएं?
0: हाँ, पहले मुझे एक घटना ये याद आ गई कि आज ही मैं एक समाचार सुन रही थी। दिल्ली में कोई प्रोफेसर था जो गाना बजाना करता था, और उसके घर के नीचे कुछ लोग 7-8 बैठ के शराब वराब पी रहे थे और हल्ला मचा रहे थे। तो जो नीचे आया और उसने बोला कि भाई तुम यहाँ हल्ला मत मचाओ, ऊपर पढ़ने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आठों ही उसको मारने लग पड़े और पीट पीट के उसको मार ही दिया
1: जी।
0: ये कल की खबर है। अब ये आठों लड़के, क्योंकि कोई 19 साल का था, 20 साल का था, 22 का था, शरीर ताकत तो थी लेकिन, और वो प्रोफेसर तो थोड़ा एज वाला था। अब इनके इस क्रम को हम साहस का क्रम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें तो पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगी। साहसी व्यक्ति की तो महिमा होती है, कई लोग आग में जलते व्यक्ति को अंदर जाके बचा के ले आते हैं
1: जी।
0: आपने देखा होगा कई बार कई लोग कोई फिसल करके गिर गया, उसको तुरंत उठा लेते हैं, हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं। ये साहस का कर्म है, तो बचाने वाला कर्म साहस का माना जाएगा, मारने वाला। हाँ, अगर आप दुश्मन को मार रहे हो बॉर्डर के ऊपर, चार दुश्मन आपके सामने और आप अकेले हो, अकेले ने चारों को मार गिराया, तब वो साहस माना जाएगा, क्योंकि आप देश की रक्षा कर रहे हो। लेकिन आप देश के ही नागरिक को, जो आपको एक अच्छी बात सिखा रहा है, और फिर आप अपने अहंकार, अपनी इंद्रियों की गुलामी, उसके कारण अगर किसी का नुकसान करते हो, तो वो साहस नहीं माना जाता। अभी आपने कहा कि साहस के लिए वो मनोबल या स्वमान कैसे पैदा करें। एक तो हमारे ना कुछ संस्कार होते हैं जन्मजात, जो हमें मोटिवेट करते हैं। मान लो हमने अपने पिता को ऐसे करते देखा, मान लो हमने अपने दादा के बारे में ऐसी स्टोरी सुनी है, तो हमारे खून में वो चीज होती है। बाकी कोई करे या ना करे, लेकिन मैं जरूर करूँगा, ये मन में आता है। दूसरा, अगर हमने कुछ ऐसा पॉजिटिव साहित्य पढ़ा होता है
1: जी,
0: और उस समय कोई घटना याद आ जाती है कि अमुक समाज सेवी ने उसको कैसे बचाया था, या अमुक देशभक्त ने कैसे किसी को बचाया था, तो वो घटना भी हमें मोटिवेट करती है
1: जी।
0: और कई बार अगर हम ऐसे चिंतनशील, जो मतलब जब हमारे सामने सिचुएशन नहीं है, पर तब भी हम मन में चिंतन कर रहे होते हैं कि देखो इस जीवन की वैल्यू क्या है, इस जीवन की वैल्यू यही है कि हम किसी के काम आए। अगर हम किसी के काम ही नहीं आए तो ये तो पत्थर ही है, पत्थर किसके काम आता है, पड़ा रहता है। तो अगर हमारा चिंतन श्रेष्ठ है, तो उस समय उस चिंतन की बदौलत भी हम अकेले भी उस क्रम में कूद जाते हैं
1: जी।
0: अगर ये चीजें नहीं है तो फिर हम किसी के बहकावे में भी आ जाते हैं, देखा देखी किसी बाकी भाग गए तो मैं भी भाग जाऊं, फिर हम ये भी कर लेते हैं
1: जी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जैसे दीदी ने कहा, तो आप अच्छे साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों की स्टोरीज पे ध्यान दीजिए, ताकि आपके
0: अंदर साहस पैदा
1: हो। यस जी। दीदी, क्या अपनी गलती स्वीकार करना, किसी को माफी मांगना, या जरूरत पड़ने पर ना कहना भी हिम्मत का हिस्सा है?
0: बहुत बड़ी हिम्मत का हिस्सा है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है
1: जी,
0: कि मैं एक स्कूल में गई तो वहाँ एक बहन थी जो ब्रह्मा कुमारीज की स्टूडेंट नहीं थी पर जुड़ी हुई थी
1: जी।
0: तो हमें देखते ही हमारे पास आ गई, दीदी दीदी, तो उसका मुंह देख के हमको लगा थोड़ी उदास है। हमने कहा भाई क्या हुआ? तो उसने कहा दीदी बात ये है कि आज मैं स्कूल में 10 मिनट लेट आई
1: जी।
0: और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि तुम 10 मिनट लेट आई, तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सख्त लहजे में बोला, तो मुझे रोना आ गया
1: जी।
0: तो मैं तब से अभी तक रो ही रही थी। अभी जब आप आए तो आपको देख करके मैं आपके पास आ गई
1: जी।
0: तो हमने उसको तो थोड़ा उस समय तो प्यार दिया, पुचकारा, कोई बात नहीं है, कल से तुम टाइम पे आना, ऐसे ऐसे। पर बाद में मेरा चिंतन चला कि एक तो हमने गलती की और ऊपर से हम रोए, वो तो डबल गलती हो गई
1: जी।
0: अगर हम गलती करते हैं तो हमको कहना चाहिए कि सर आपने मेरा ध्यान खिंचवाया, कल से मैं 5 मिनट पहले आऊँगी, मैं आपकी बड़ी आभारी, जो हमारा ध्यान खिंचवाता है उसके लिए तो हम थैंकफुल होते हैं।
1: राइट।
0: और अगर हम रोते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो आगे से मुझे कुछ मत कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मैं चाहे गलत करूं या कुछ भी करूं पर मुझे कहना मत
1: जी,
0: छुई मुई। तो वो व्यक्ति तो आधारित है, कोई मुझे पुचकारे, कोई मुझे प्यार दे, मेरे आंसू पहुंचे, मुझे धैर्य बंधाए। तो मैंने मन में सोचा ये 25 साल की हो गई है, लेकिन रोने का काम तो 2 साल का बच्चा भी कर लेता है
1: जी।
0: तो इसने अभी तक वही सीखा, तो 25 साल में और क्या सीखा
1: जी। सही बात है। तो जब भी हम रोए तो इस कहानी को हम याद करें।
0: तो इसलिए रोना बहादुरी नहीं है, आंसू पोंछना बहादुरी है।
1: सही बात।
0: रोने वालों की तो लंबी लाइन, हम भी उसमें लग गए तो आंसू कौन पोंछे।
1: अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है,
0: एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, रियलाइज करना, और सामने वाले को थैंक्स देना कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज मेरी जिंदगी की एक कमी निकाल दी, जैसे कांटा निकाल दिया, आगे से मैं कभी भी लेट नहीं हूँ।
1: राइट।
0: ये बहुत जरूरी,
1: मतलब अपने नजरिया परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। ये सब घिसा पीटा चीजें,
0: रोना धोना, शिकायत करना, हमारा प्रिंसिपल बड़ा सख्त है, पता है डांट मार दी, अरे तुम टाइम पे नहीं आओगे, टीचर होगे तो बच्चे टाइम पे कैसे आए,
1: तो कंप्लेंट्स नहीं।
0: हाँ, कंप्लेंट्स नहीं करनी
1: जी। दीदी, नो कहना कई बार डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कहाँ नो करना है और कैसे करना है?
0: भाई मैं अपने जीवन का आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ
1: जी।
0: जिन दिनों मैं कॉलेज में थी तो मेरी एक सखी थी, बड़ी अच्छी प्यारी पक्की सखी थी, गली सामने उसका घर, ए गली में, बीच में सड़क जाती थी
1: जी।
0: संस्कार तो ऑपोजिट थे एक दूसरे के, मैं ज्ञान में चलती थी, सिंपल थी, वो बड़े घर की, बड़े अमीर घर की थी, तो पैसे वाली थी, बैग में भी पैसे पड़े रहते थे, तो प्यार बहुत था, कोऑपरेटिव थे एक दूसरे के। उसके दिल की बात वो मुझे ही आके सुनाती थी, मैं उससे 1-2 साल बड़ी और 1-2 क्लास आगे थी
1: जी।
0: तो पहले हम क्या करते थे कि कॉलेज जाते थे तो टिफिन नहीं लेके जाते थे, केले खाते थे
1: जी।
0: 50 पैसे में उस जमाने में 4 केले आते थे बड़े बड़े
1: जी।
0: 2 केले वो खाती थी, 2 में हमारा पेट भर जाता था
1: जी।
0: फिर उसने कहा नहीं अपन टिफिन लेके आया करेंगे, तो ठीक है फाइनल हो गया, टिफिन लेके आई, वो मैं भी लेके आई, दोनों ने खोला, लोन में बैठे रिसेस में, मैंने पूछा तुम क्या लेके आई हो, मैंने झांक के देखा, समझ में नहीं आया वो क्या लेके आई, और उसने देखा तो मेरा तो पराठा था और आलू की सब्जी थी, तो मैंने कही क्या चीज़ है, कुछ नहीं लग रही है, बोलिए ना अंडे का कुछ बनाओ। मैं बोली अरे तू अंडे खाती है, मुझे तो आज पता ही नहीं था तू अंडे खाती है, तो तू मेरे पास मत बैठ। कहती है क्यों? मैंने कहा देख हवा तेरे अंडे को छू के फिर मेरे पराठे को छूएगी। तो मैं तो नहीं बैठूंगी। तो बोली मैं तो तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैं तेरे को छोड़ के जाऊंगी। तो मैं उठ के ना दूर एक पेड़ था उसके नीचे जाके बैठ गई, शांति से, ज्ञान में थी मैं तब
1: जी,
0: बाबा के याद में मैंने खाया, और फिर टिफिन धुलाई करके फिर मैं आई, तो मुझे कहती है ना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है कि तू उठ के चली गई। तो मैंने कहा दोनों में से एक चीज चुन ले, चाहे अंडा चाहे मैं, कौन प्रिय? अंडा प्रिय है तो मैं कभी पास नहीं बैठूंगी, मैं प्रिय हूँ तो अंडा नहीं लाएगी। बोले मैं अंडा छोड़ दूंगी। मैं कहा ठीक है, तो कल से हम साथ साथ बैठे, अंडा छोड़ दिया। तो ये ना कहने की आप में ताकत होनी चाहिए, जो चीज़ मेरे अनुकूल नहीं है मुझे नहीं चाहिए, चाहे मेरी फास्ट फ्रेंड है चाहे कोई भी हो, अंडे के साथ मेरा समझौता जीवन में कभी हो ही नहीं सकता
1: जी।
0: तो जब मेरी दृढ़ता होगी तो वो व्यक्ति झुकेगा, और अगर मैं झुक गई तो वो तो और ज़्यादा अकड़ेगा, आज अंडा लाएगी कल नॉनवेज भी लाएगी
1: जी। बिल्कुल। तो इस प्रकार से
0: अपने उसूलों पे दृढ़ रहिए, जिंदगी उसूल का नाम है, जिंदगी कोई लीज लीजी चीज थोड़ी है
1: जी।
0: कि आप इधर लुढ़क गए उधर लुढ़क गए,
1: दृढ़ता। हाँ, धारणाओं पे दृढ़ता जी। तो हम सिर्फ फेस्टिवल्स में भगवान को, देवी देवताओं को याद नहीं करते, लेकिन उनके गुणों को समझ के अपने अंदर धारण करने की बात है।
0: बिल्कुल। अब आप देखिए ना, देवी देवताओं के सामने भी कैसी कैसी बातें हैं, ये दुर्गा मैया बैठी हुई है, राक्षस आता है, कहता है तू मेरे महल की रानी बन जा, मैं तेरे को जेवर दूंगा, मैं तेरे को सैकड़ों दासियां दूंगा, तुम ये हथियार क्यों लेके बैठी हुई हो। वो अपने लक्ष्य पे दृढ़ है, उसे ना महल चाहिए, ना दासियां चाहिए, ना सोना जेवर चाहिए, ना 36 प्रकार का व्यंजन चाहिए। उसको चाहिए नैतिकता की स्थापना
1: जी,
0: उसको चाहिए असुरों का संहार। तो वो किसी प्रलोभन में नहीं आती, अपनी लक्ष्य पे दृढ़ और वो असुरों का संहार करती है। अगर वो लिजलिजी हो, छुई मुई हो, तो एक मिनट में उनके पंजे में आ जाएगी, फिर वो करे क्या की मानवता के लिए
1: जी।
0: तो देवताओं के जीवन में आप देखोगे, श्री कृष्ण जी गेंद चली गई यमुना में, बच्चे कहते हैं गेंद चाहिए गेंद चाहिए। अब वो साहसी है और पता है इसमें कालिया नाग है, उसके कारण सारा यमुना का जल जहरीला हो गया, गांव वाले इस पानी को यूज नहीं कर सकते, कालिया नाग को मारना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो वो एक नैतिक उद्देश्य को लेकर के यमुना जी में प्रवेश करता है
1: जी,
0: और अपने साहस के कारण उसको मारता भी है और वो मुक्त होती है जहर से। तो मान लीजिए हमने स्टोरी को सिर्फ सुना, सुना अच्छी बात है ना, सुनने वालों से तो सुनने वाले भी अच्छे हैं, पर अगर मैं ऐसा साहस अपने जीवन में पैदा करूं कि मेरा इष्ट श्री कृष्ण अगर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती
1: जी,
0: तो तब हम कहेंगे कि हमने कृष्ण जी को इष्ट सही तरीके से माना है, दुर्गा जी को इष्ट सही तरीके से माना है
1: जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए गणेश चतुर्थी के दौरान आप अपने इष्ट के लिए क्या करना चाहते हैं, उनसे क्या सीख रहे हैं, वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। और दीदी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लगातार मान लीजिए क्रिटिसिज्म कर रहा है या हम अपोजिशन फेस कर रहे हैं और उस समय अपने जो कॉन्फिडेंस है, साहस है, धैर्यता है, उसे कैसे बना के रखें।
0: कई लोग हमारी क्रिटिसिज्म अपने स्वार्थ के कारण करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में दो लोग हैं, वो व्यक्ति मेरी क्रिटिसिज्म करता है कि कल को इसकी प्रमोशन ना हो, या तो ये थोड़ा सा डाउन आ जाए, या तो ये लेट आए, या तो कोई गलती करे, या तो अपना काम करना बंद कर दे ताकि इसकी शिकायत हो और इसकी जगह मेरी प्रमोशन हो जाए। ये स्वार्थ होता है कई बार। घरों में भी कई लोग ऐसे स्वार्थी होते, इसको जो चीज़ मिल रही है वो मुझे मिल जाए, और हमारे कई बार वो प्रूफ बना लेते हैं कि देखो ये गलती कर रहा है, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद गलती प्रूफ नहीं होता है, उसके भी जीवन में बहुत गलतियाँ होती हैं और मैंने भी वो गलतियाँ नोट कर रखी, लेकिन मैं उसकी तरह चीप नहीं हूँ कि मैं उसकी भी गलती जगह जगह उड़ाऊँ या मैं उसका वीडियो बनाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, उचित समय की प्रतीक्षा करती हूँ। ठीक है, ये जो करता है इसको करने दो, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम में एक्यूरेट हूँ, मैं अपनी हर चीज़ में एक्यूरेट हूँ, और ये एक मेरे धैर्य की परीक्षा है। तो मैं उतावली नहीं बनूंगी, मैं बदला नहीं लूंगी, प्रतिशोध नहीं लूंगी, इस वाले आचरण को फॉलो नहीं करूंगी, ये मेरा गुरु थोड़े है जो मैं इसको फॉलो करूँ। मेरे गुरु तो मेरे उसूल है, या मेरे से और बहुत बड़े लोग हैं जिनसे मैंने अच्छी बातें सीखी, तो उन्होंने मुझे यही सिखाया कि किसी की चीप हरकत से ना तो इरिटेट हो, ना अपनी हिम्मत छोड़ो, और ना ही अपने लक्ष्य से डामाडोल हो, और ना ही उस व्यक्ति से बदला लो
1: जी।
0: उचित समय की प्रतीक्षा करो धैर्य से, और उसके लिए शुभावना रखो
1: जी,
0: ये भटका हुआ इंसान है, इसके लिए शुभावना रखो, एक समय आएगा वो जरूर बदलेगा, हो ही नहीं सकता कि वो ना बदले। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी से रुकिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी डिस्गाइस में भेजी हो। ये जो व्यक्ति है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है।
1: राइट,
0: जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि हमारे यहाँ एक रामलोचन भाई था
1: जी,
0: तो रामलोचन भाई जब ज्ञान में चला कलकत्ता में, तो उसके बाद दिल्ली में आया
1: जी।
0: दिल्ली में एक जगह इसकी नौकरी लगी, अब ऑफिसर का ऑफिस था उसमें इसको थोड़ा बहुत कुछ काम, तो ये बाबा का पक्का बच्चा था, और जैसे ही 10:30 बजते थे जहां भी होता था योग में बैठ जाता था
1: जी।
0: तो कुछ लोगों ने कहा चलो इसकी शिकायत करते हैं, इसको निकलवा देते हैं, किसी और को नौकरी मिल जाएगी। तो अफसर को बता दिया कि आपने किस बाबा को रख लिया है, तो जब देखो ध्यान में बैठा रहता है, काम धाम क्या करेगा। बोला अच्छा ऐसा है, कब कब ध्यान में बैठता है। बोला आज आप आ जाना 10:30 बजे, आपको दिखाएंगे। 10:30 बजे वो कुछ काम कर रहा था और ऐसे ध्यान में बैठ गया
1: जी,
0: और अफसर ने देख लिया। तो अफसर ने उसको बुलाया, तुम क्या कर रहे थे? बोला देखो जी, इस ऑफिस के बड़े आप हो, हम आपको सलाम करते हैं ना, दुनिया का बड़ा परमात्मा है, तो दिन में 3-4 बार उसको भी हम सलाम करते हैं, 10:30 बजे, 12 बजे, 5 बजे, तो उसको सलाम करने का टाइम था, मैं तो उसको सलाम करने गया था, 2 ही मिनट का टाइम होता है, सलाम करके मैं वापस आ गया। तो बोला ये तुम कैसे सलाम करते हो? तो थोड़ा ज्ञान सुनाया, पर तो ऑफिसर ने क्या कहा, तू वहाँ की नौकरी छोड़ के ना तू मेरी पर्सनल सेवा में आ जा, उसकी प्रमोशन कर दी। लोगों ने तो सोचा था इसको नौकरी से हटवा देंगे
1: जी।
0: पर हो गई उसकी प्रमोशन
1: जी।
0: तो कई बार क्रिटिसिज्म गुप्त रूप में आपकी उन्नति का साधन बन जाते।
1: तो इसीलिए आप
0: घबराइए मत,
1: घबराइए मत, धैर्य रखिए। और उस
0: अगर वो क्रिटिसिज्म राइट है, क्रिटिसिज्म जैसे मान लीजिए मेरा ऑफिस में आने का टाइम 10 बजे का है, मैं रोज 10:30 बजे आती हूँ, तो मुझे बदलना पड़ेगा क्योंकि मैं गलत
1: हूँ।
0: लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मेरी स्वार्थवश शिकायत हो रही है, तो फिर मुझे मस्त रहना है, निश्चिंत रहना
1: जी। अगर जो बार बार अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, उससे मैं अपने आप से कैसे बात करेंगे? क्योंकि धैर्य तो बनाए रखना है, पर अपनी स्थिति रखना
0: हाँ, धैर्य स्थिति के साथ रखना है। धैर्य को अगर हमने खो दिया, हमारे चेहरे पे शिकन आ गई, तो वो खुश हो जाएंगे कि देखो हमने इसको हिला दिया, हमारी जीत हो गई। तो धैर्य ऐसे रखना है बहन जी कि जीवन में पेपर तो आते ही है, एक बात तो ये भी मेरा पेपर है, दूसरी बात बोया हुआ बीज उगता है। हो सकता है मैंने पिछले जन्म में किसी को ऐसे किया होगा, वो बीज उग गया, जितने दिन मैंने किया उतने दिन करके वो फल भोग करके मेरी मुक्ति हो जाएगी। तीसरी बात, मालूम नहीं कब कौन शरीर छोड़ दे, क्या पता है क्रिटिसिज्म करने वाला कल सुबह उठे ना उठे, तो कोई बात नहीं, सहन करने में क्या जाता है
1: जी।
0: चौथी बात, क्या पता मैं रहूं ना रहूं, तो क्या जाता है सहन करने, कुछ भी स्थाई नहीं है यहाँ। सूर्य उगता है, दोपहर होती है, सांझ हो जाती है, तो जीवन में कोई भी बात स्थाई नहीं है, ना महिमा स्थाई है, ना ग्लानी स्थाई, तो फिर मैं क्यों भाईगा।
1: सही बात है, तो अपने आप से ऐसे बातें करनी है। दीदी हम अगर धैर्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होता है, तो सबसे पहले धैर्य क्यों टूट जाता है? धैर्य रखने और चुपचाप सब कुछ सहन करने में क्या अंतर है?
0: चलो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ
1: जी।
0: धैर्य मानव की पहचान है, धैर्य टूटना मतलब मानव जाति से डाउन आ जाना। एक किसान बीज बोता है, कितना धैर्य रखता है
1: जी।
0: एक माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, कितना धैर्य रखती है कि एक दिन ये 20 साल का बड़ा होगा, जब वो जन्मा तब तो बिल्कुल छोटा सा है, पर उसको धैर्य है, ये तो नहीं कहती है कि दिन में 20 साल का हो जाए, हर रोज कितनी मेहनत करती है, पेड़ को सींचने वाला कितनी मेहनत करता है, किसी बीमार की सेवा करने वाला कितना धैर्य रखता है, नहीं नहीं इसका घाव ठीक होगा, मुझे रोज दवा लगानी, धैर्य से सारे काम होते हैं
1: जी।
0: एक बार एक बंदर आदमी के बगीचे में घुस गया और उसने बहुत सारे आम तोड़ लिए, तो आदमी ने उसको बहुत पीटा
1: जी।
0: तो बंदर ने अपने सरदार से जाके शिकायत की कि आदमी ने मुझे बहुत मारा, तो बंदर ने कहा आज से आदमी के बगीचे में जाना बंद, हम अपना बगीचा लगाएंगे। तो जंगल के सारे बंदरों को इकट्ठा किया और सबको काम दिया सरदार ने, एक एक गड्ढा खोदो, तो जंगल में तो फ्री जगह पड़ी होती है, एक एक बंदर ने अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा गड्ढा खोद लिया। फिर बोला पेड़ों के नीचे जो आम की गुठलियां पड़ी वो चुनके लाओ, सब चुनके ले आए, बोला एक एक गड्ढे में एक एक गुठली डालो और जो पेड़ों के नीचे मिट्टी खाद वाली मिट्टी पड़ी है वो उठा उठा करके गुठली के ऊपर डालो
1: जी,
0: वो काम भी कर दिया। फिर बोला नदी से पानी लेके आओ, अब इसमें पानी डालो
1: जी।
0: और एक गड्ढे का मालिक एक बंदर
1: जी,
0: उसमें पेड़ उगेगा, उसी को देखभाल करनी है, उसी को इसकी खाद निकालनी है, उसी को पानी डालना है, और फिर जब फल लगेंगे तो वो वही खाएगा, आदमी के बगीचे में जाने की जरूरत ही नहीं। तो बंदर बैठ गए, सुबह हो गई कुछ नहीं निकला गड्ढे में से, अगली शाम हो गई कुछ नहीं निकला, अगली सुबह हो गई, बोला हमारे साथ धोखा हुआ है, अरे हमारी तो गुठली भी गई, कम से कम हम गुठली को तोड़ के उसकी गिरी तो खा लेते। तो सारे बंदरों ने फटाफट वो गुठली निकाली, गिरी निकाली, खा गए और फिर भाग गए
1: जी।
0: आज तक बंदर बगीचा नहीं लगा पाए
1: जी।
0: बंदरों को कोई काम नहीं है
1: जी।
0: स्कूल उनको नहीं जाना, सिलेंडर उनको नहीं भरवाना, बिजली बिल उनको नहीं देना, किसी की ब्याह शादी में नहीं जाना, गर्मी सर्दी के कपड़े नहीं बनवाना, खाली घूमते जंगल खाली पड़ा है, पानी भी है, खाद भी है, गुठली भी है, क्यों नहीं लगा पाते, सिर्फ एक ही चीज नहीं है,
1: धैर्य।
0: और आदमी में धैर्य। मैं उस दिन दिल्ली में थी तो गाड़ी में बैठी थी तो ड्राइवर बैठा था, भयंकर भीड़ थी। कहते हैं दीदी ड्राइवर में कुछ और हो या ना हो, धैर्य बहुत होना चाहिए। मैंने कहा तुमने 16 आने की बात कही है,
1: सही बात है।
0: अगर धैर्य नहीं होगा ना, वो रोज गाड़ी ठोकेगा, और धैर्य होगा तो इतना धीरे धीरे निकालेगा, कभी उसकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और एक्सीडेंट होते ही तब जब धैर्य नहीं होता,
1: तो जीवन भी वैसा ही है।
0: जीवन भी वैसा ही
1: एक्सीडेंट तब होगी अगर धैर्य नहीं होगा तो। जी दीदी, जैसे आपने बंदर की बात कही और परिणाम तुरंत नहीं मिलता, पेशेंस बनाए रखने चाहिए, तो इसके लिए मन को ट्रेन कैसे किया जा सके कि धैर्यता रखो?
0: हाँ, क्योंकि मन बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, मन को तुरंत चाहिए। और आज के जमाने में तो जल्दबाजी इतनी है, बात मत पूछो, क्योंकि साइंस ने दिखा दिया बटन दबाओ चीज हाजिर, तो वो व्यक्ति भी सोचता है मैं संकल्प करूं और चीज हाजिर हो जाए। फिर हम कहानियां सुनते हैं, भारत में तो एक परी थी, उसने कहा कि तुम इस कागज को ऐसे मोड़ दो तो तुम्हारी सब चीजें, तो हम कहानियां सुन सुन के भी हम थोड़े से ऐसी हो गई कि शायद चीजें फटाफट हाजिर हो जाती, लेकिन वो कहानियों की बात अलग है, साइंस की बात अलग है, रियल जिंदगी की बात अलग है। तो हमको ये देखना है कि रोज के जीवन में कितनी चीजें बटन दबाते ही नहीं होती हैं। रोटी को आप पहले आटा गूंथते हो, तवे पे डालते हो, पलटते हो, फिर फूलती है, टाइम तो लगता है ना। चावल चूल्हे पे रखते हो, धीरे धीरे पकते हैं, अगर आपने तेज आंच कर दी तो जल जाएंगे पर पकेंगे नहीं। सब्जी भी ऐसे ही होती है, कपड़े भी ऐसे ही धीरे धीरे धुलते हैं, कोई भी काम, झाड़ू भी ऐसे धीरे धीरे लगती है। अगर आप मकान को पेंट करवा रहे हो तो ब्रश से धीरे धीरे करते हो, ऐसे थोड़े है कि पूरा कनस्तर दीवारों पे उलेंड दिया और पेंटिंग हो गई, ऐसे कभी नहीं होता है। तो जीवन की कितने खाना खाते हो, चबा चबा के एक एक टुकड़ा खाते हो, ऐसे थोड़े है कि पूरी रोटी निकल जाती हो, नुकसान हो जाए। तो जीवन की हर क्रियाएं धीरे धीरे पेशेंस के साथ।
1: जी, तो ऐसे हम बात कर सकते हैं अपने आप से,
0: आपसे
1: दीदी ने जैसे कहा कि एक साथ अगर खाना पूरा खा ले तो भी तबीयत खराब, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, धीरे धीरे चीजें करनी है।
0: धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल
1: दिए। जी बिल्कुल, तो रिश्तों में जो सामने वाला अगर हमारी बात नहीं समझ रहा है, तुरंत रिएक्शन देने की बजाय जैसे आपने कहा कि पेशेंस को बना के रखना है, तो पेशेंस का अर्थ है इंतज़ार करना, इंतज़ार के दौरान अपनी इनर स्टेबिलिटी को बना के रखना। तो इनर स्टेबिलिटी को बना के रखने के लिए, क्योंकि इंसान है और मन जैसे भटकता है तो बार बार उस इंसान के बारे में सोचना, उस स्मृतियों में जाना, या अगर धोखा दिया है या किसी ने चीटिंग किया है तो उन बातों के ऊपर मन चला जाता है। तो कैसे अपनी इनर स्टेबिलिटी को बना के रखें?
0: जाता है मन तो बार बार जाता है। देखो कल मैं क्लास कराने गई तो एक इंदौर की बहन आई हुई थी, उसने कहा कि मेरा पति 2.5 महीने मैं उसके साथ रही, पर वो तो बिल्कुल ही राक्षस आदमी था, मारपीट बहुत करता था, मैं उसको छोड़ के आ गई, छोड़ के तो आ गई हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन बार बार मेरा मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उसको कहा कि देखो व्यक्ति चलते चलते ठोकर खाता है, गिर जाता है, तो गिरने के बाद क्या करता है, फिर खड़ा होकर के दौड़ता है। अगर वो वहीं खड़ा होकर कहता रहा इस पत्थर ने मुझे ठोकर क्यों मारी, इसने ठोकर क्यों मारी, तो उसकी तो गति ही रुक जाएगी। ठोकर लग गई, लग जाती है, जीवन है, गलतियां हम भी कर देते हैं, दूसरे भी, हिसाब किताब भी होती है। लेकिन गिरना बुराई नहीं है, पर गिर के उठना अगर हम छोड़ देते हैं तो वो बुराई।
1: जी,
0: गिर के उठो और फिर दौड़ो, अभी जिंदगी बहुत शेष है, क्योंकि तो आयु 20-22 साल थी बहन की, डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट
1: जी,
0: और अपनी जॉब भी करती है। मैंने कहा तुम तो अपने पांव पे खड़ी हुई हो, तो तुमको बार बार उस बात को याद करने की क्या आवश्यकता है, जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। लेकिन व्यक्ति आगे तब बढ़ता है जब आगे उसको कुछ सार्थक कर्म दिखाई देता है।
1: जी,
0: अगर वो किसी सार्थक लक्ष्य को नहीं लिए हुए ना, तो फिर पीछे मुड़ता है। एक कोरबा की बहन आई थी हमारे पास
1: जी,
0: 50 साल की उम्र में डॉक्टर पति ने उसको तलाक दे दिया। 50 साल की उम्र कोई तलाक देने की होती है? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो भी जॉब कर रहे थे, मतलब बड़े हो गए थे
1: जी।
0: तो मैंने पूछा क्यों दिया, बोला हॉस्पिटल में कोई नर्स थी, उसने इनको बहला लिया, फुसला लिया, इनका पैसा देखा और तलाक हो गया। तो मेरी तलाक के बाद मैं ना तो दुखी हुई ना रोई, ठीक है जाओ। और मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य लिया, इधर एमपी में और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं आदिवासी एरिया
1: जी।
0: तो बोली, मैंने अपने बच्चों को कहा, बेटा तुम जॉब कर रहे हो, दोनों भाई बहन घर संभालो, मैं आदिवासियों की सेवा में जा रही हूँ। तो कुछ महिलाओं को हमने ग्रुप बनाया
1: जी।
0: और हम आदिवासी बस्तर एरिया में एक बिल्कुल इंटीरियर जगह में गए, वहाँ की जो महिलाएं थी उनको पढ़ना सिखाया, सिलाई सिखाई, और जब प्रसूति होती थी तो वो कुछ और ही तरीके से प्रसूति करवाते थे, बड़ा तकलीफ दे तरीका था, तो वो भी इजी तरीके से बच्चे के जन्म के टाइम कुछ करना होता है तो वो भी सिखाया। तो ये सब मैं करती रही, कई समय बीत गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा सा नमक उनको दे जाते थे, बदले में शहद ले जाते थे। हमने उनको बताया शहद बहुत महंगा है, नमक के बदले शहद मत दो
1: जी।
0: तो ऐसे करके उनका जीवन स्तर उठाया, तो गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंची और फिर राष्ट्रपति ने हमको पुरस्कार दिया। तो अगर मैं वहां बैठी रोती रहती तो क्या होता,
1: राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं
0: मिलता। हमारी पूरी टीम को मिला, वो मधुबन आई, पूरी उसने स्टोरी सुनाई। तो बोली, उस जगह का हमने नाम रखा अबूझमाड़, जहां मैंने काम किया
1: जी।
0: अबूझमाड़ मतलब जिसको कोई पूछता ही नहीं था, जिसकी कोई जान पहचान ही नहीं थी
1: जी।
0: और वो एक लक्ष्य पूरा करके उस जगह का मैं फिर घर आई। घर आई तब तक वो जो नर्स थी उसने पति को छोड़ दिया था
1: जी।
0: तो वो फिर आया भटकता हुआ कि मुझे रख लो। तो मैंने बच्चों को कहा, भाई तुम्हारा बाप है रखो। तो उसको हमने फिर जगह दे दी, बैठक में ठीक है रहो, पहले जैसा तो अभी नहीं रहेगा संबंध, लेकिन दो रोटी मिलती रही। वो तो चली गई सब कुछ लेकर के, पैसा वैसा जो भी कुछ
1: जी।
0: तो जिस व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है, समाज की सेवा करूं, दूसरों के दुख दूर करूं, वो अपना दुख भूल जाता है। नहीं तो वो बैठा बस बार बार, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भाई सोचने से क्या होगा। कहीं जीवन को अच्छे लक्ष्य में नियोजित करो ना
1: जी। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करिए, और यूनिवर्स हो या भगवान, जिनके ऊपर भी आप विश्वास करते हैं, वो आपके लिए ज़रूर दूसरा रास्ता खोल के रखे होंगे जी। तो दीदी, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर पावर टू फेस और समाना और धैर्यता, इन सभी चीज़ों को हमें अपनाना है, इसके साथ साथ करेज भी चाहिए। एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर कोई वर्क प्लेस में या घर पे कोई बार बार ना हमारे कंधे पर बंदूक चला रहा है, हमें प्रोवोक कर रहा है कि आपको गुस्सा आए या आपके द्वारा किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो उस समय हमें कैसे जवाब देना है, कैसे फेस करना है उस परिस्थिति?
0: हर राष्ट्र में एक संत हुए
1: जी,
0: नामदेव जी, शायद नामदेव जी उनका नाम।
1: हाँ जी, नामदेव जी।
0: तो कुछ लोगों ने कहा कि नामदेव को गुस्सा नहीं आता, पर इनको गुस्सा दिलाना है। तो एक दिन वो जो एंटी पार्टी था उनके पास एक गरीब आदमी आया, बोला मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैसा चाहिए। बोला, पैसा हम तेरे को भरपूर देंगे, तू नामदेव को गुस्सा दिलवा दे
1: जी।
0: तो बोला ठीक है। तो था ब्राह्मण, सुबह सुबह गया नामदेव के पास, खाना खाना है, खाना खाना है। नामदेव ने कहा, आ जा भैया बैठ जाओ, सबका स्वागत करते थे। बिठाया, पत्नी ने खाना परोसा। अब हुआ क्या कि पत्नी खाना परोसने के लिए ऐसे झुकी तो वो आदमी कूद करके पत्नी की पीठ पे बैठ गया, क्योंकि उसको तो गुस्सा दिलाना था। तो जैसे ही वो पीठ पे बैठा, पत्नी ने उसको ऐसे पीछे से संभाल लिया जैसे बच्चे को संभालते, और नामदेव भी पास में ही बैठा था। तो नामदेव ने कहा, देखो गिरिजा, कि नाम गिरिजा था या कुछ था, इसको गिरने मत देना। बोला, हाँ जैसे मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ ना, ऐसे संभालूंगी, गिरने नहीं दूंगी। गुस्सा फिर भी नहीं आया। तो उस आदमी को तो आखिरी तरीका अपनाने पर भी गुस्सा नहीं आया। तो उसने फिर माफ़ी मांगी, बोला असली बात ये है कि मुझे पैसा चाहिए था, और उन्होंने ये शर्त रखी थी, तब मैंने ये तकनीक अपनाई कि जब पत्नी की पीठ पे बैठूंगा तो गुस्सा आएगा, तो बहुत ही बेहुदी हरकत है, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आया। तब नामदेव ने कहा कि तुम उनको जाकर के बोल देना कि नामदेव को गुस्सा आया था, ताकि तेरे को पैसे मिल जाए
1: जी। तो ये है जीवन की महानता है।
0: हाँ।
1: और इसके साथ साथ गुस्सा कैसे ना आए, कैसे हम रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें, वो कला सीखने की बात है। दीदी, लगता है कि फ्यूचर तो अनसर्टेनिटी है ना, तो धैर्यता रख के क्या होगा, और पेशेंस रख के, मतलब धैर्यता रख के क्या होगा? अगर सामने वाला ने आज हमें कुछ बोला, इंसल्ट किया है, तो ईंट के जवाब तो पत्थर देना, पत्थर से देना चाहिए, क्या कहेंगे?
0: देखिए, मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज मेरी मानवता, मेरे गुण और मेरी आंतरिक शांति है
1: जी।
0: अगर मैंने इनको ही बेच दिया तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? तो सामने वाला तो बेच के खड़ा हुआ है, और मेरे लिए ये चीजें बड़ी अमूल्य हैं। तो बेशक मुझे सहन करना पड़े, झुकना पड़े, लेकिन मुझे अपनी इन चीजों को बचा के रखना है, अपनी मानवता को, अपने मूल्यों को, अपनी आंतरिक स्टेबिलिटी को। और फ्यूचर अनसर्टन नहीं है, जिसका आज अच्छा है उसका कल भी अच्छा होगा
1: जी,
0: क्योंकि कल आज की ही परछाई है।
1: तो इसलिए आज को अच्छा करना,
0: आज को अच्छा करना है, आज को मुझे बिगाड़ना नहीं है। आज बिगड़ गया तो कल भी बिगड़ेगा,
1: कल या फिर कोई भी जन्म हो सकता है। इसलिए इस जन्म में और आज,
0: आज आज को मुझे मूल्यों के आधार पे, मानवता के आधार पे, अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पे अच्छे से जीना है
1: जी। तो दीदी, राजयोग मेडिटेशन भी क्या हमारे सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, साहस, धैर्यता, इसको बढ़ाने में सहायक है?
0: हाँ, बहुत सहायक है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम इसमें अंतर्मुखी होकर के सबसे पहले अपने आप की चेकिंग करते हैं। दूसरे ने क्या किया वो बात बाद में है, पहले मैं अपने को देखूं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, और क्या मेरी सोच ठीक है। अगर यही सोच लोगों को दिख जाए तो वो लोग मुझे किस श्रेणी में रखेंगे? तो मेडिटेशन अंदर शक्ति पैदा करता है, पॉजिटिव सोच देता है, बात को उलझाना नहीं लेकिन बात का समाधान करना है, इसके ऊपर हमारा फोकस करवाता है। अगर मैं उलझाने लगूं, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से मान लो हम देते हैं, तो वो तो और ज्यादा उलझ गई, पीढ़ियों की दुश्मनी हो गई। अब उसमें मेरा बेटा, आपका बेटा इन्वॉल्व हो जाएगा, मेरी अगली पीढ़ी, आपकी पीढ़ी इन्वॉल्व हो जाएगी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको यहीं स्टॉप करना है। कीचड़ उछाला, आपने उछाला, मैंने उछाला, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुझे लंबी नहीं करनी है, मुझे उसको स्टॉप करना है। तो मेडिटेशन कहता है स्टॉप, स्टॉप करो और मित्रता का हाथ बढ़ाओ।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है, परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास है, तभी मेडिटेशन होता है। और हमको अच्छाई में विश्वास है, अच्छाई जीतेगी
1: जी।
0: मेडिटेशन कहता है भले थोड़ा टाइम लगेगा पर जीतेगी अच्छाई।
1: बिल्कुल। तो इस विश्वास के साथ अपने जीवन को निखारने की कोशिश करेंगे। और दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सिखाया और गाइड किया।
0: सभी भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, और इस गणेश चतुर्थी पे कुछ नवीनता करें, ऐसी हमारी शुभकामना है, क्योंकि सदा की तरह मनाते आएंगे तो वही पाएंगे जो हमेशा पाते आए। लेकिन इस बार कुछ नवीनता करना, गणेश जी का कोई ना कोई गुण अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प अवश्य कर
1: जी। तो श्रोताओं, दीदी जी का यहीं पर धन्यवाद करते हैं। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सभी के साथ दीदी उर्मिला जी थे, और आज के कार्यक्रम से आपने क्या सीखा या क्या अच्छा लगा, या आप क्या करने वाले हैं? हर परिस्थिति में आप नहीं डरेंगे या साहस रखेंगे, धैर्य रखेंगे? तो इस प्रकार से अगर आपके मन में कोई संकल्प है तो आप हमें 9414151415 पर भेज सकते हैं। तो आप अपने इनर पावर को बिल्कुल कमज़ोर करने नहीं दीजिएगा, और जब जब अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को डाउन महसूस कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आप बार बार सुन सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।

0: रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, काफी लंबे अरसे के बाद हाजिर हूं आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार अब ये मौका मिला है कि आप सबसे रूबरू हुआ जाए और एक शानदार कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत किया जाए। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो हम हर बार कोशिश करते हैं कि अलग अलग पर्सनलिटीज को, अलग अलग सिचुएशंस को आप सबके सामने ले करके आते हैं इस हमराही प्रोग्राम के माध्यम से, और ऐसी ही कोशिश हमारी आज भी होने वाली है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आप सबको ये प्रोग्राम पसंद जरूर आएगा। बाकी तो आप सबकी प्रतिक्रियाएं बताएंगी। और अब कोशिश ये भी रहेगी कि अगर हमें हमारे मेहमान मिलते रहेंगे तो प्रोग्राम रेगुलर होता रहेगा। खैर, आप सब जानते हैं श्रोताओं, हमराही प्रोग्राम एक ऐसा विशेष प्रोग्राम है जिसको सिर्फ ये सोच करके प्रस्तुत किया गया था कि एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में परिवार का, सोसाइटी का या उसके आसपास के माहौल का क्या रोल होता है, और वो किस तरह अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हो ये रहा है कि जॉब मिलना शायद उतना मुश्किल नहीं रहा, लेकिन जीवन साथी की तलाश और उसमें भी एक भरोसेमंद लाइफ पार्टनर को पाना, ये तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है और एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की जिंदगी में तो ये होता ही होता है। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं और किस तरह से न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आज के हमारे मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं। इनकी जिंदगी के 25 साल शायद किसी और कहानी को कहते हों और बाद के 25 साल हो सकता है किसी और कहानी को कहते हों, लेकिन सवाल वही है कि किसी भी सिचुएशन में इंसान को रुकना नहीं चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए मोटिवेटेड भी रहना चाहिए और उसके लिए मेहनत भी करते रहना चाहिए। तो चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद आप सब सोच रहे होंगे कि आज हम किन से मिलवाने वाले हैं। श्रोताओं, एक बार फिर आप सबका हमराही प्रोग्राम में स्वागत है और आज हमारे मेहमान हैं इस कार्यक्रम में प्रोफेसर चिराग मित्तल सर और एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका मित्तल मैम। तो चिराग सर और मोनिका मैम, आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
2: थैंक यू।
0: मैं चाहूंगा सबसे पहले चिराग सर, आप हमारे सुनने वालों को जरा अपने बारे में बताएं।
2: जी, संदीप त्रिवेदी जी का नमस्कार और रेडियो मधुबन का थैंक्स कि उन्होंने हमें आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका दिया। मैं प्रोफेसर चिराग मित्तल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मोना, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, दिल्ली NCR। एक साल से कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 और शेयर ट्रेडर।
0: जी, क्या बात है सर। तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं सर कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है।
2: मैं संदीप जी रेटिनोसिस पिगमेंटोसा ब्लाइंड हूँ।
0: ओके।
2: तो जब पैदा हुआ तो बहुत रेटिनस में काफी छोटा डैमेज था जो एज के साथ बढ़ता गया, और बाय एज ऑफ अराउंड 30 आई गॉट ऑलमोस्ट 100% ब्लाइंड।
0: ओके, 30 साल की उम्र में आप पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गए।
2: जी।
0: ओके। तो आरपी का तो सर सुना है कि मतलब कोई इलाज है नहीं शायद, इसके बारे में आपने कितना कुछ पता किया सर, या आपकी फैमिली ने क्या कुछ जाना समझा?
2: दिल्ली में एम्स, मूलचंद से लेके साउथ में एलवी प्रसाद से लेके USA के डॉक्टर्स, काफी जगह ट्रीटमेंट करवा लिया। लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स है, जो टेस्ट हो सकते थे सारे करवा लिए। एक ही सवाल बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि बस 5 साल में इलाज आ जाएगा। 5 के 50 साल तो मेरी जिंदगी के ही हो गए, आज तक कोई इलाज आया नहीं है, और डॉक्टर्स का जवाब अब तक सेम है, आई डोंट नो।
0: जी, थोड़ा सा सर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि आप बेसिकली मतलब कहाँ से हैं।
2: इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। मेरे मदर फादर दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, पापा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मामे स्कूल के प्रिंसिपल, दोनों ही क्लासरूम के असिस्टेंट ऑफिसर्स थे। और मेरा बचपन की आप बात करें तो मेरा बचपन एक राजकुमार की जिंदगी से कम नहीं था।
0: वाह,
2: मुगला शहर
0: ग्रेट।
2: में, डब्बवाली, फतेहाबाद वगैरह में जब पापा जब क्लास वन एग्जीक्यूटिव एक्सिन होते थे, तो क्योंकि मैं लिटिल ब्रांड हुआ हूँ तो उस टाइम पर मैं बाइक कार वगैरह भी चला लिया करता था छोटे होते।
0: अच्छा।
2: तो उस टाइम पर अपना साथ में गन्स, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स,
0: क्या
2: जो
0: बात
2: मुझे
0: है।
2: अपने पिक्चर हॉल में अपना शो सेटअप करवा लिया, किसी फार्म हाउस से कुछ भी उठा लिया। सो समथिंग लाइक दैट, पूरा का पूरा उस टाइम पे प्रिंस की तरह लाइफ थी। और मेरे डबवाली स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब थे श्री रणवीर सिंह, वो कहते थे कि चिराग, योर फादर हैज मेड यू इन ए वेरी गुड पोजिशन, बट टू मेंटेन दिस पोजिशन यू विल हैव टू वर्क हार्ड।
0: राइट, बिल्कुल सही कहा सर उन्होंने कि उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी। तो सर, जब इतनी अच्छी पोजीशन थी तो मतलब जो थोड़े दबंगई टाइप जो माहौल होता है उसमें भी कभी पड़े आप या नहीं, उससे दूर ही रहे?
2: हाँ ठीक है, वो थोड़ा सा हो जाता है, यू आर राइट। उसको स्कूल में एक दो बार कान खींचा, स्टेज पे बुलाया गया था करने के लिए,
0: जी
2: क्योंकि असर आ ही जाता है वो सब करने में।
0: जी जी जी जी
2: बट इसका
0: बहुत।
2: कह लीजिए कि कुछ कह लीजिए कि ज़्यादा उस ग्रुप के अंदर में ज़्यादा गया नहीं। हालांकि मैं अपने टाइम में टाइकोंडो चैम्पियन रहा था ब्लू स्ट्रिप के अंदर में, कराटे वगैरह करने का तो ये शौक हमेशा रखता था।
0: जी,
2: बट ठीक है, जो भगवान करता अच्छे के लिए करता है हमेशा।
0: जो गवर्नमेंट जॉब मिला आपको पहला, वो किस एज में मिला?
2: 2016, 40।
0: 40 की एज में। जनरली इस एज में आते आते लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं या मेहनत करना कम कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि आपने अपने आप को इतना मोटिवेटेड कैसे रखा और आखिरकार जो एक अच्छे से अच्छी पोस्ट होती है उसको हासिल किया।
2: उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोनिका मोना को जाता है जो मेरे साथ बैठी हुई है।
0: बहुत
2: क्योंकि
0: बढ़िया। तो फिर तो इस पे चर्चा फिर आगे करेंगे जरूर।
2: क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस टाइम पे तो जैसे फादर साहब ने मेरा बिजनेस सेटअप करवा दिया था, साइबर कैफे
0: जी।
2: और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कोचिंग का। और जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह लाइन गई तो मोनिका ने बताया कि फैमिली के पास कुछ रिसोर्सेज भी थे। बिजनेस फेल होने के बाद कुछ सालों के बाद में जब बिजनेस चले शुरू हो गई, वो कह रहे थे कि आप कुछ और बिजनेस सेटअप कर लो। पर उन्होंने बताया, मुझे समझाया कि बिजनेस सेटअप करोगे पहले की तरह ये वाले फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी बिजनेस कर चुका था, 8-10 बिजनेस मैं कर चुका हूँ, साइबर कैफे, वीडियो गेम, शेयर ट्रेडिंग का टर्मिनल, एम्ट इंडिया का मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोचिंग सेंटर, इंग्लिश कोचिंग सेंटर्स, और उसके अलावा भी कई तरह के जो काफ़ी सारे काफ़ी टाइम चलाए हुए बिजनेसेस। तो मोना ने समझाया कि आप, मोना ने मेरी कमजोरियों को नहीं क्षमताओं को पहचाना है, कैपेबिलिटीज को पहचाना। उसने कहा कि आप में टैलेंट है, आप क्वालिफाई कर सकते हो जॉब्स को, ब्लेंड होने के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ट्राई करो। और योर एफर्ट एंड कोऑपरेशन, रिजर्वेशन की एज रहते रहते सरकारी गाड़ी में सवार हो गया और
0: क्या बात
2: दिल्ली।
0: है, बहुत जबरदस्त सर। बहुत मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चूंकि अब मोनिका मैम का जिक्र चला है तो हमारे श्रोताओं को अब मोनिका मैम से भी मिलवा देते हैं। जी मैम, एक बार फिर आपका स्वागत, और जरा आप भी अपनी जर्नी और अपने बारे में बताइए प्लीज।
1: धन्यवाद सर। जैसा कि बताया, मैं चिराग की वाइफ मोनिका हूँ, और जब मेरी शादी के लिए ये आई थी मुझे देखने के लिए, तो मुझे पता था कि आरपी है और थोड़ा सा आईज विजन में प्रॉब्लम है। बट तब भी जब ये बात इज लाइक हमारे क्या होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है लाइक लड़की का, कि
0: अच्छा।
1: इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तब मैंने रियलाइज किया कि बहुत टैलेंटेड है।
0: अरे वाह, उन
1: हाँ,
0: क्वेश्चंस को पूछते ही आप समझ गए।
1: तभी मैंने समझ लिया था। एंड तो मैंने कहा शादी करनी है तो यही करनी है मुझे,
0: अच्छा।
1: तो तब मुझे लग गया था। और तब साइबर कैफे था इनका, अच्छा तब भी बहुत 2001 की बात है, तब कंप्यूटर्स आए थे हमारे यहाँ नेट, तो तब लगा कि हाँ ये बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो बहुत अच्छा सा रन कर रहे हैं। और 10 साल के बाद धीरे धीरे नेट हर घर में आने लगा, इंटरनेट, फिर
0: राइट
1: बिजनेस बंद होने लगा। तब
0: जी।
1: मैंने देखा कि इनका इंटरेस्ट पॉलिटिकल्स में बहुत ज़्यादा है, आईक्यू बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम दूसरा बिजनेस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, 24 आवर आप किसी भी बिजनेस में दोगे और उसके बाद आप उसके अंदर एड ऑन करते चले जाओगे, लेकिन जहाँ हो वहीं की वहीं रहोगे। तो आप
0: जी
1: इससे अच्छा 24 आवर स्टडी में दो और कोई अच्छी पोस्ट लो। अब इसमें भी ट्विस्ट है सर, जब मैं
0: जी
1: छोटी थी तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उनके पापा SBI बैंक के अंदर मैनेजर थे। तो मेरा ड्रीम था कि मेरी शादी किसी SBI मैनेजर से हो, बिकॉज उनको एंट्री
0: मैनेजर
1: फी हो मिलती है घूमने के लिए।
0: जी
1: तो मेरा ये था कि SBI वाले बड़े अच्छे क्रीमी लोग होते हैं। शादी के बाद मैंने इनसे कहा कि आप बैंक की तैयारी कीजिए और 100% आप उसमें निकलेंगे और SBI बैंक के ही एग्जाम्स देने आपको।
0: अच्छा
1: तो छोट भगवान ने उसमें इनका रिजल्ट आया, पास हुए, असिस्टेंट मैनेजर लग गए सर। दूसरा
0: जी।
1: ट्विस्ट ये कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की शादी से पहले प्रोफेसर थी सर।
0: अरे क्या बात है
1: तो मुझे हुआ कि ये इतने पॉलिटिकल की इनको नॉलेज है, न्यूज वगैरह जितनी भी चैनल्स देखते थे इनको हर चीज की नॉलेज थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप प्रोफेसर के लिए भी एग्जाम्स दो, नेट क्वालिफाइड कर रहे हैं आप और आप प्रोफेसर लग जाएंगे। सर वो एग्जाम भी दिया, SDET, CTET, NET, सारे एग्जाम से क्लियर करते चले गए सर। मैं बुक्स रिकॉर्ड करती थी, ये पढ़ते थे और ये मार्क्स लेते चले गए। जो सपने मैंने देखे ना सर, वो
0: जी
1: सब इन्होंने पूरे किए सर।
0: गजब, बहुत ग्रेट मैम। लेकिन अब वो आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग थी तो फिर मैडम पढ़ते नहीं तो करते भी क्या इसीलिए तो नहीं, वो स्वीट हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी मतलब इतने हम्बल कैसे हैं आप, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
1: सॉरी सर, अंबल तो आप भी बहुत हैं सर, हमारी
0: नहीं,
1: नेचर ही होता है सर। ये तो अपना अपना नजरिया होता है देखने का
0: मुझे
1: सर।
0: एक्चुअली बड़ा, जब भी मैं नई फैमिलीज के साथ मैम इंटरेक्शन करता हूँ तो आप दोनों से तो मेरी मुलाकात हुए हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और मुझे थोड़ा ये था कि मैं ये प्रोग्राम कर भी पाऊंगा कि नहीं, 1 घंटा बिता पाऊंगा कि नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं मजा आएगा बात करेंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर तो मैम आप थोड़ा सा बताएं, आप भी हरियाणा से हैं या कहीं और से हैं?
1: सर मैं राजस्थान से हूँ, जहानाबाद
0: क्या
1: साइड से।
0: बात है, गजब मैम, हम भी राजस्थान से
1: क्या बात है
0: हैं
1: सर, राजस्थान में कहाँ से सर?
0: मैं अजमेर में हूँ।
1: क्या बात है सर, तभी तो राजस्थान वाली होते ही बहुत मीठी है ना सर।
0: ये जो रेडियो चैनल है ये भी राजस्थान में है, रेडियो मधुबन, माउंट आबू में, आपने नाम सुना ही होगा और गए भी होंगे शायद।
1: राइट
0: जी
1: सर,
2: आप बागड़ी में ही बात कर सकते हैं,
1: मारवाड़ी में सर।
2: मारवाड़ी में,
0: मारवाड़ी। लेकिन
2: मुझे तो
0: राजस्थान
2: सिर्फ एक
0: और
2: लाइन
0: धन से
2: सिखाई
0: मिलता ये
2: थी।
0: है ना सर कि अपने यहाँ तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो खैर, तो राजस्थान में कहाँ से हैं मैम? श्री
1: सर गंगानगर से।
0: गंगानगर, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए मैम कि पॉलिटिकल साइंस से आप तो पहुंच गए, ये जो प्राइवेट सेक्टर है MD बन गए आप, और
1: यस
0: सर जो है कैफे चलाते चलाते पॉलिटिकल साइंस की तरफ चले गए, तो ये इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या?
1: तो कहानी तो ये है कि पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था
0: जी
1: और चिराग कर रही थी BCom, BBA,
2: जी
1: MBA कर रही थी BBA के बाद। तो मैंने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे हैं और मुझे था कि ये उसमें क्रैक कर जाएंगे, नेट क्वालिफाई करना इतना इजी नहीं है विद JRF।
0: जी मैम।
1: तो इन्होंने वो क्लियर किया। तो ऐसी करनी बनी कि मैंने जब इनसे कहा कि आप पॉलिटिकल में कीजिए, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। उसके लिए वापस से 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BA, MA, ये सब इनको करनी पड़ी सर, BEd, MEd, सब कुछ।
0: ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो लोग करते नहीं है इतना, तो छोड़ देते हैं लोग तो। जी मैम।
1: इनकी डेडिकेशन इतनी जबरदस्त थी सर, सुबह 4 बजे उठते और 8 बजे तक अपनी स्टडी करते, 8 बजे शॉप पर जाते सर, रात को 10 बजे वापस आते। सिर्फ सुबह के जो 4 घंटे होते थे उसके अंदर इन्होंने अपना 100% दिया। जो भी
0: वेरी
1: आते
0: नाइस
1: हैं अपनी मेहनत से हैं सर, मतलब
0: जी।
1: मेरे तो सिर्फ सपने थे। कहते हैं ना बच्चों के साथ माँ बाप अपने सपने पूरे करते हैं, बट मेरे तो हस्बैंड ने ही ये सपना पूरा कर दिया। तो
0: क्या बात है मैम,
1: बच्चे अपना करें ना करें, मेरी लाइफ सेट है सर।
0: आप दोनों तो मेड फॉर ईच अदर ही हो रहे हैं
1: और इसमें टेस्ट है सर, ये सब सपने मेरे छोटे होते के थे। बड़े होने के बाद मैंने कहा कि देखो ये सब बचपन के सपने थे, आपने पूरे कर दिए, आप बड़ी हो गई हो, सपने भी बड़े हो गए हैं, आइए इसका एग्जाम दीजिए आप सर। वो भी दिया इन्होंने, वो भी क्लियर किया सर।
0: ग्रेट,
1: पर वो
0: क्या
1: था कि
0: बात है।
1: पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा थी, तो किसी ने सजेस्ट किया हमारे अंकल की प्रोफेसर की जॉब ठीक है, इसमें ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, और एक टाइम 2 बजे के बाद तुम फ्री हो जाओगे, अपनी फैमिली को टाइम दोगे, तो ये प्रोफेसर की जॉब रखो। तो
0: जी
1: फिर
0: मैम,
1: ये हमने SBI भी छोड़ दिया, IAS वाला भी छोड़ के सिर्फ प्रोफेसर पे फोकस किया है नहीं। फिर
0: और भी कोई मैम सपना बचाए?
1: अभी सपना, सर आप सच बताऊं तो एक सपना और था बचपन का, वो भी
0: जी
1: देखो, वो भी ये था
0: जी
1: कि फॉरेन ट्रिप अगर मुझे लगाना है तो मैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड जाऊंगी सर, और कहीं नहीं।
0: क्या बात है, ग्रेट
1: चिराग जी ने
0: जी।
1: मुझे कहा कि थाईलैंड चलो, मॉरिशियस चलो, और अपने आसपास के
0: चलो
1: जितने भी हैं
0: सिंगापुर
1: यहाँ पे चलो। मैंने कहा नहीं, स्विट्जरलैंड। कहते ठीक है। फिर जो फॉरेन ट्रिप लगा उसमें सबसे पहले मैंने स्विट्जरलैंड पे ही पैर रखा सर, वो सपना
0: वाह,
1: भी इन्होंने पूरा किया सर मेरा।
0: मतलब लगभग सारे सपने हो गए पूरे।
1: सर एक सपना और था, गाड़ी चलाना सीखना, वो भी चिराग ने सिखाई मुझे, आप बिलीव
0: क्या
1: नहीं
0: बात
1: करोगे। 1 साल की गुड़िया थी हमारी, गोद में लेती थी मैं,
0: जी,
1: चिराग को कम दिखाई देता था बट फिर भी मैनेज करके, और एक खाली
0: करके
1: ग्राउंड में
0: आपको
1: ले जाते थे गाड़ी को, वहां मुझे दे
0: जी
1: देते थे, और मुझे
0: जी
1: लगता था डर कि अगर ये गाड़ी कहीं लगी तो पापा क्या बोलेंगे।
0: बिल्कुल
1: हम
0: सही है मैम,
1: पापा से छुप कर गाड़ी सीखते थे सर। तो
0: वाह
1: पापा को बताया चिराग ने कि मैंने मोना को गाड़ी सिखा दिया, अब आप देख लो, फाइनल टेस्ट देना है तो दे दो। तब उन्होंने देखा, कहते ये कब सीखा, कहते मैं शॉप पे आता था, सिखा दी इनको गाड़ी, और सर आज
0: जी जी
1: गाड़ी इतनी बढ़िया चलाती हूँ, टच वुड कभी किसी के साथ भी नहीं लगी मेरी गाड़ी।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत खूब, बहुत खूब,
1: तो
0: बहुत खूब मैम,
1: सारे सपने सर चिराग जी ने पूरे किए सारे।
0: ग्रेट। मतलब क्या कहें, ये तो एक ऐसा बहुत रेयर इस तरह की सिचुएशन मिलती है, लेकिन वाकई में ईश्वर की बहुत कृपा है आप दोनों पर, ये अच्छा लग रहा है देख करके। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही रेडियो मधुबन पर, और उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद भी आ रहा होगा। आज हम चिराग जी और मोना जी से, यानी मोनिका मैम से बातें कर रहे हैं। चिराग सर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं, और मोनिका मैम एक कंपनी में जिसका नाम है ईकॉम स्ट्रीट इन्फो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। सही कहा मैंने मैम?
1: यस सर, नोएडा बेस्ड कंपनी है
0: जी,
1: और इसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ।
0: चलिए तो अब शुरू करते हैं बातचीत मैम, कि ये दिव्य दृष्टि कैसे मिल गई आपको, कि आपने चिराग जी को जब पहली बार मिलने आए तो परख लिया, पहचान लिया, पढ़ लिया कि भाई ये बंदा तो कुछ करेगा आगे चल करके। कि और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है कि उस समय आपको ब्लाइंडनेस के बारे में इन जनरल कितना नॉलेज था?
1: सर अब क्या बताऊं सर, ये कहानियां भी ऐसी ऐसी लाइफ में जो आप सोचते हो ना वो हो जाता है आपके साथ, और स्पेशली मेरे साथ ऐसा हुआ है।

0: लाइफ के अंदर वो ऑटोमेटिकली वो चीज मुझे मिल गई। और जब आप ये बोल रहे हो कि आपका क्वेश्चन क्या था सर?
1: आपको ब्लाइंडनेस के बारे में कितना अंदाजा था जब चिराग जी का रिश्ता आपके सामने आया? क्योंकि रिश्ते जाहिर है और भी आए होंगे, या हो सकता है तैयारी चल रही होगी, तो आपको कितना नॉलेज था? आपने कभी कुछ खुद से सोचा कि यार कहीं ऐसा नहीं है कि अभी तो चलो अच्छा खासा विजन है, बाद में क्या होगा, या कुछ भी, मतलब आपको आइडिया था क्या?
0: सर इतना आइडिया था कि विजन थोड़ा सा ठीक नहीं है, जो स्पेक्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा है। इससे ज्यादा इतना आइडिया नहीं था कि आगे जाके इतना हो जाएगा, ये कैसे ऐसा हो जाएगा। पर ये था कि शायद इलाज आ जाएगा 2 साल में 3 साल में तो ठीक हो, जैसा चिराग ने बताया कि डॉक्टर्स कहते रहे थे 2 साल 3 साल में ठीक हो जाएगा।
1: हम
0: कभी
1: समझ रहे हैं 25 साल पहले की उन भावनाओं को फील कर रहे हैं, और थोड़ा सा मुझे लगा आप इमोशनल भी हो रहे हैं शायद, लेकिन खैर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज।
0: बट सर कभी इनकी ब्लाइंडनेस को लेकर इतना फील नहीं हुआ कि ये दिखाई नहीं दे रहा है या काम नहीं कर पाते हैं। इन्होंने अपनी इस चीज को कमजोरी कभी नहीं माना सर। हमने हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में ही लिया कि चलो जो भी हुआ है, लेकिन हमें दूसरी चीज हमेशा दी है भगवान ने। एक चीज ली है तो दूसरी दी है। तो इनका जो ब्रेन है ना सर, वो आज नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा सही है, जो देख पाते हैं उनसे ज्यादा इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया सर। मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ सर।
1: बहुत अच्छे मैम। और जब सर का रिश्ता आया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था मैम? उनको भी तो पता होगा ये सब।
0: हाँ उनको भी पता था, बट ऐसा इतनी वीक नहीं थी ना सर उस वक्त इनकी आईज। तो
1: नहीं,
0: ये था
1: आज मैं
0: कि
1: ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा मैम प्लीज आप अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, आज हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनको बहुत अच्छा विजन है मैम, उनकी मतलब यूं समझिए कि एक आंख बिल्कुल सही है, एक आंख थोड़ी सी खराब हो सकता है वो, उन तक को भी, और जॉब की तो खैर बात मत करिए, जॉब तो बहुत अच्छा है ही मान लीजिए, फिर भी उनको जब वो रिश्ता लेकर के जाते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि यार ये ब्लाइंडनेस आड़े आ जाती है हमारे। तो उस केस में आपके यहां भी तो ये कुछ अवेयरनेस इस बारे में थी या नहीं? कुछ भी ऐसा सोचा नहीं आप लोगों ने, सब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं मैम।
0: एक्चुअल में सर देखो, मम्मी पापा का उस वक्त आप भी जानते होंगे 25 साल पहले इतनी क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं होती थी
1: नहीं होती थी जी मैम,
0: लड़की के साथ, राइट।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम।
0: और जो रिश्ता आया था वो मेरी कजन मौसी थी, यानी कि मेरी मम्मी की कजन सिस्टर थी वो,
1: जी,
0: और चिराग की चाची लगती थी वो। तो
1: अच्छा
0: उन
1: जी।
0: हमारी फैमिली के अंदर ही ये रिश्ता हुआ था। उन लोगों में आपस में क्या बात हुई सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है,
1: जी
0: बट उन्होंने ये था पूछा था कि तुम ठीक हो, खुश हो इस रिश्ते से? तो मैंने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज बहुत एजुकेटेड है पूरी फैमिली। एक्चुअली में एजुकेटेड थी, जैसे हम कहते हैं ना सर, रिश्ता सिर्फ एक पर्सन से नहीं होता, पूरे खानदान से होता है, पूरी फैमिली से होता है सर।
1: से होता है ये, बहुत सही कहा मैम आपने, बहुत सही कहा जी।
0: तो इनकी मम्मी पापा, इनकी दोनों सिस्टर, सबका नेचर बहुत ही, आज भी मैं कहती हूँ कि वो जबरदस्त था। और मैं जब मेरे फादर इन लॉ थे, मदर इन लॉ थे, तब भी मैं उनको कहा करती थी, इवन कोई भी रिलेटिव घर पे आता था, मैं हमेशा कहती थी कि शायद मैं भगवान में एक टाइम गलती निकाल सकती हूँ, लेकिन अपनी फादर इन लॉ मदर इन लॉ में नहीं निकाल सकती सर। वो मेरे लिए
1: क्या
0: लेवल पे थे सर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब मैम।
0: और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया सर कि जो मैंने, मतलब हम लोगों ने ये रिश्ता लिया है या यहाँ शादी की है ना सर, 1% भी पछतावा नहीं है। और शायद ऐसा घर परिवार बहुत ही किस्मत से मिलता है सर। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। मैं गंगानगर से थी, राजस्थान में आपको पता है इतना नहीं होता हमारे यहाँ लड़कियों पे, पर इन्होंने
1: जी
0: मुझे
1: जी
0: इस लेवल पे पहुंचाया, कभी सोचा ही नहीं कि ये हमारी बहू है। एक बेटी से भी ज्यादा दर्जा दिया सर हर चीज में। तो फैमिली से हुए सर ये जो शादी हुई है, पर्सन से नहीं हुई सर।
1: बहुत खूब, बहुत खूब मैम। ये जॉब आप पहले से करते थे या ये भी शादी के बाद ही शुरू हुई आपकी जॉब?
0: ये शादी के बाद ही सर, हम दोनों ने एक साथ ही जो भी किया अपनी ग्रोथ एक साथ किया सर। बहुत चीजों में चिराग ने मेरी हेल्प की है, बीएड एमएड करना, हम लोग एक साथ एक कॉलेज में जाते थे, लोग हमें हस्बैंड वाइफ कहते ही नहीं थे, कहते तुम तो फ्रेंड्स लगते हो, लगते ही नहीं हो कि तुम हस्बैंड वाइफ हो। हमारी नोक झोंक सब कुछ ऐसे होती थी जैसे फ्रेंड्स में होती है सर। एक साथ
1: जी
0: बैठना, एग्जाम्स देना, मतलब टोटल हम लोगों ने एक साथ ग्रोथ की है। और आज बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं सर, मेरी ट्विंस बेटियां हैं और बेटा है, और ट्विंस लड़कियों ने यूएस में फ्लोरिडा से एमएस कर रही है सर वो दोनों।
1: क्या बात है मैम,

0: ग्रेट, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। और सच में ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप दोनों को, आपकी फैमिली को यूं ही मिलती रहे। ये जो कंपनी है ये आप ही ने स्टार्ट की थी मैम? अच्छा,
1: सर ये की थी हमारे फादर इन लॉ ने रिटायरमेंट के बाद से।
0: ओके। तो बेसिकली थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए हम चिराग जी के पास जाएं उनसे पहले, कि इस कंपनी का कामकाज क्या रहता है, आप करते क्या है दरअसल?
1: सर ये IT कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। हम लोग
0: ओके
1: सॉफ्टवेयर बनाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन सर।
0: अच्छा, एंड्रॉयड, आईफोन सबके लिए?
1: हाँ यस सर, सबके लिए
0: ओके।
1: वेबसाइट
0: आपने
1: बनाना ये सब करते हैं सर।
0: भी डेवलपमेंट सीखा है मैम या सब बाकी लोग करते हैं
1: बाकी
0: डेवलपर्स
1: टीम
0: ही?
1: रखी हुई है सर हमने, तो
0: ओके ओके
1: 30 से 50 लोगों की टीम है सर। कुछ US के अंदर भी है, US बेस्ड भी है कंपनी। US से ही हमारे क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली, इंडियन क्लाइंट्स नहीं आते सर।
0: तो चिराग जी के लिए भी कुछ बनाया मैम एपी
1: इस साले चिराग जी का ये सर ऑर्डर करेंगे सब बन जाएगा।
2: मैं राष्ट्रपति
0: नहीं, इनके लिए कोई स्पेशल कोई ऐप?
1: नहीं ऐसा अभी रिक्वायरमेंट नहीं आई चिराग जी को।
0: पूरी कंपनी है चिराग जी
2: मैं
0: के पास।
2: प्रेजेंट हूँ अवार्ड देने के लिए। राइट
0: हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरी कंपनी है चिराग जी के पास।
1: सर,
2: पोस्ट बनाई है मेरे प्रेजेंट।
0: चलिए, तो मैं पूछ रहा था सर कि जब शादी की बात चलने लगी घर परिवार में, तो क्या डिस्कशन मतलब रहते थे? ये कभी डिस्कशन में था पॉइंट ब्लाइंडनेस वाला, या एज अ नॉर्मल जैसे आपने कहा राजकुमारों की तरह रहे हैं तो फिर मतलब वैसे ही सब कुछ चल रहा था?
2: ऑब्वियसली बात है, जब कभी
0: जी
2: कोई चीज लेने में दिक्कत आई नहीं आज तक, तो लड़की लेने में कहां से आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: बिल्कुल। अच्छा, फैमिली में कोई भी डिस्कशन इस तरह का नहीं हुआ?
1: नहीं सर, चिराग ओनली 23 के थे और मैं 22 की थी सर,
0: जी मैम।
1: तो बचपन में ही होगी। चिराग तो फन फन में बस देखने आए थे कि फर्स्ट टाइम चिराग का था लड़की देखने आने का, और फर्स्ट टाइम ही मेरा था सर। हम
0: जी
1: लोग
0: मैम।
1: ने सेकंड का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था। चिराग को ये था कि मैं जाऊंगा, लड़की पसंद आएगी तो ठीक, नहीं तो मैं रिजेक्ट करके आ जाऊंगा।
0: पहली बार में ही दोनों को दोनों पसंद आ गए।
1: यस सर,
2: जस्ट
0: यस
2: कहते ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन।
0: बिल्कुल सही कहा सर। ये वाकई वाकई में मतलब लगता है आप दोनों को और इस तरह की जोड़ियों को देखकर के ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सच कहा है कहने वाले ने। जी तो चिराग सर, आपका क्या ओपिनियन था मैम से मिलने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद? बेसिकली फिर इंटरव्यू में मतलब मार्क्स वार्क्स कितने दिए आपने?
2: इंटरव्यू पे
0: अच्छा
2: देखिए 3 राउंड्स हुए, एक के बाद एक अलग अलग ड्रेसेस में आई मोनिका, ठीक है, अलग अलग रूम में बिठाया किया, और काफी सारी पॉलिटिक्स से लेके जनरल लाइफ वगैरह सबके बारे में बातें हुई। अपनी डिजीज के बारे में बताया कि मुझे रेटिनोपैथी पिगमेंटोसा है, कि इस वक्त आगे डिजीज बढ़ेगी। अभी घर में बाहर थोड़ी दिक्कत आती है, घर पे अपने घर में और अपने काम करने में कोई इशू नहीं है।
0: जी
2: उस टाइम तक यही था। हमने कहा कि ठीक है, बाद में हम हाना का फैसला बाद में करेंगे, चार करने का टाइम रखते हैं। ट्रे गैप ऑफ अराउंड सलाह मशुरा के बाद में दोनों हम दोनों ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए पेरेंट्स को।
0: और शादी कितने महीनों में हो गई?
2: 7 जनवरी को शायद देखा था ना, और 15 अप्रैल को शादी हुई।
0: ओके ओके 2001।
2: यस
0: ग्रेट, बहुत खूब। तो चिराग सर फिर मतलब वही बात आती है बार बार, मतलब कि मैम को तो ये उम्मीद थी कि आप कर लेंगे, लेकिन आपको खुद को भी क्या उम्मीद थी कि आप ये सब अचीव कर लेंगे? गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना लगभग 38-40 की एज में, एक मतलब स्टूडेंट की तरह एग्जाम देने जाना, और फिर उसके बाद भी कॉलेज एजुकेशन का भी एग्जाम आपने क्लियर किया और नेट सेट सब कुछ, मतलब ये आपने खुद को कैसे समझाया?
2: देखिए, लाइफ में अलग अलग फेजेज आते हैं। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि रिजर्वेशन होती है हमारे लिए, दो चैलेंज के लिए। जब मैं 2010 के अराउंड में ब्लाइंड हो गया, तब इसका क्रेडिट मोनिका को जाता है। मोनिका पापा के साथ बैंक में गई थी, वहाँ पे मांडवी को देखा जो OBC में एज ए PO काम कर रही थी,
0: बिल्कुल, मांडवी गर्ग,
2: मांडवी गर्ग। यस यस,
0: बिल्कुल।
2: तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी एक ब्लाइंड लड़की से मिली हूँ जो बैंक में लगी हुई है, आप उससे मिल कर आओ। तो मैंने उससे टाइम लिया, उनके रेफरेंस से की मिल के आई थी। तो मैंने मुझे कहा ठीक है, आप घर पे आके मिल लो। हम दोनों अर्बन स्टेट में रहते थे हिसार में, तो उसके घर जाके मिला। उसने मुझे गाइड किया, सारा बताया, और एक हमारे मदनलाल गोयल साहब हैं जो उस टाइम पर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके पास रेफर
0: जी।
2: किया। तो उन्होंने कहा कि आप एमए दोबारा से पढ़ाई शुरू करो, तो उन्होंने फिर एमए में पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई दोबारा शुरू करो। तो और मानवी ने मुझे गाइड किया एनएबी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, जॉब सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में, नेसेसरी कॉन्टैक्ट्स दिए, टेक्निकल होल्डिंग दी, जो मुझे थोड़ा हेल्प की कराने में। आई एम ग्रेटफुल टू दर। और उसके बाद मैं पापा को बताया कि आप इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाओ। और फिर 2010 में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पापा ने बनवाया, पढ़ाई दोबारा शुरू की आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ 11 ईयर्स। 99 में मैंने IMS गाजियाबाद, जो देश के नंबर 2 कॉलेजेस में आता है, वहाँ से BBA किया था। और उसके बाद में IMT गाजियाबाद, जो देश के टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस में आता है, वहाँ से PGDBM किया था। तो एक लॉन्ग गैप ऑफ 11 ईयर्स आई स्टडीड, पढ़ाई अगेन अपने, जैसे उन्होंने बताया कि सुबह साइबर कैफे था, सुबह 4 बजे उठ के अपना डेस्कटॉप से पढ़ाई करना, और उसके बाद में 12 घंटे दुकानदारी करनी, और फिर रात को आके बेहोश होके सो जाना। 2010 में हम लोग देश के 3 कोनों में घूमने गए थे, मैं और मोना। उसके बाद से फिर दोबारा पढ़ाई का इतना जोर चला, 5 साल तक हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। फिर
0: वाह,
2: 2015
0: बहुत।
2: 16 में हमारी फिर SBI में जब जॉब लगी, उसके बाद से तो फिर नो टर्निंग बैक फॉर आवर टूर। वो मोना ही बताया कि कहाँ कहाँ घूमने गए हैं 2010 में, और उसके बाद में, और कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं।
1: सर, हमने 12 ज्योतिर्लिंग, 4 उत्तराखंड के 4 धाम और इंडिया के 4 धाम सर, 51 शक्तिपीठ, पंच केदार, पंच प्रयाग, पंच कैलाश सर, ये सब फिर हमने किए।
0: मैं हैरान हो रहा हूँ मैम, सच बता रहा हूँ मैं। फैमिली भी साथ साथ चल रही है, इधर बच्चे भी छोटे, और अपनी आप दोनों की जो फैमिलीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लस एजुकेशन भी, और जो अचीव करना है वो भी, और अपनी अपनी जॉब को भी मैनेज करना, तो ये सब, और ये जो घूमना फिरना वाला तो एक और नया एंगल, तो ये सब कैसे
1: यस
0: कर लिया आप लोगों ने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैम।
2: बिल्कुल।
1: और सर, अभी रिसेंटली हम लोग लद्दाख से आए थे। अब इसमें भी आपको एक ट्विस्ट बताती हूँ सर। हम फर्स्ट टाइम केदारनाथ गए थे 2021-22 में, आफ्टर कोरोना।
0: यस मैम।
1: तो जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग एक पैकेज में गए थे सर। तो उसके अंदर था केदारनाथ में सिर्फ विजिट करने और दर्शन करने और वापस आने। तो वहाँ जैसे ही मैं पहुंची तो मेरा मन था कि मैं रात को वहां पे नाइट स्टे हो और रात की आरती देखूं, और स्नोफॉल हो जाए बहुत ज्यादा कि हमें वहां रुकना पड़ जाए। सर, 2 बजे हमें कहा, कॉल आई कि अब वापस चलना है आप लोगों को, और ये 2:15 बजे बहुत हैवी स्नोफॉल होने स्टार्ट होगी सर। और ऐसा हुआ कि हमारा वहां जाना बंद, कैंसिल हो गया कि अब जा नहीं सकते हैं, सब बंद हो गया और यहाँ रात को रुकना पड़ेगा। और हम वहां रुके और रात को आरती देखी सर। नेक्स्ट
0: आपका मैंने
1: सर,
0: डायरेक्ट कनेक्शन है लग रहा है भगवान
1: वही तो
0: से।
1: मैं बोल रही ना सर, जो जो मैंने सोचा वो हुआ सर। और उसके बाद नेक्स्ट डे मोदी जी आए सर वहां पे, ठीक है।
0: जी।
1: और उन वो जस्ट हमारी होटल की विंडो के बाहर से हमें दिखाई दे रहे थे, तो
0: क्या बात है।
1: वो अच्छे से हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा गई सर केदारनाथ, तो वहां जैसे गई तो मैं गई, सारा अली खान हमेशा आती रहती है यहाँ पे केदारनाथ में और अमरनाथ वगैरह में, तो इस बार मुझे सारा अली खान को देखना है सर। आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो मैं मतलब मंदिर से बाहर निकल रही थी और वो एंटर कर रही थी सर, जस्ट
0: और एक
1: एकदम पास से क्रॉस होकर गई। मैं उसको देख नहीं पाई, अलग बात है, बट वो मेरे बिल्कुल पास से क्रॉस होकर अंदर गई मंदिर में सर। अब इसमें उसको देखा नहीं, वो क्रॉस कर गई, पर ठीक है, ये सपना भी महादेव ने पूरा किया सर। अब भी हम 28 तारीख राखी वाले दिन हम वापस आ रहे थे सर, लेह लद्दाख। शक्तिपीठ है लेह में, एक शक्तिपीठ है अगर आपने सुना हो तो, उसके दर्शन
0: जी
1: करके हम वापस आ रहे थे सर।
0: जी
1: एयरपोर्ट पे सर मुझे सारा अली खान मिली सर, सिर्फ वो और मैं, हम दो ही थे आमने सामने, और मैं उसको पहचान नहीं पाई। मुझे लगा सारा है नहीं है। उसके पास गई, मैंने पूछा आप सारा अली खान हो, कहती नहीं। मैंने कहा नहीं आप हो, बस एक सेल्फी चाहिए आपके साथ, महादेव ने उस वक्त आधा अधूरा मिलाया था आपसे और आज पूरा मिलाया सर। सारा अली खान का गया, इत्तफाक नहीं है, ये ऊपर से कॉल है, बस आप ही का आना एक है कि हाँ जो मैंने सोचा वो आज पूरा किया उन्होंने 3 साल बाद। फिर सर चिराग के साथ सेल्फी ली सर हम दोनों ने, सारा
0: क्या
1: ली
0: बात
1: हम दोनों
0: है,
1: के साथ।
0: क्या
1: तो सर जो जो जैसा जैसा सोचे है ना सर लाइफ में, वो सब प्रिपेयर प्री प्लान था सर, वो आज तक होता चला जा रहा है सर। और अब देखिए सर, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी एक ड्रीम था बहुत पहले कि कोई हमारा इंटरव्यू ले सर।
0: अरे गजब, क्या बात है। मैंने तो मतलब
1: सब ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं।
0: गजब। मैं मेरी तो चिराग सर से बात हुई 1 मिनट 2 मिनट की मुश्किल से। मैंने सर को ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर एक प्रोग्राम करते हैं आपके साथ। अच्छा थोड़ा वो भी रहता है ना, पता नहीं लोग कन्विंस होंगे नहीं होंगे, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन बताइए आप कि आपका कभी ये ड्रीम था, और हमको, हम तो ऐसे ड्रीम को ढूंढते ही हैं, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढते ही हैं कि जो इतने
1: नहीं
0: इतने मतलब सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में।
1: सर, 10 साल लगे सर ये ड्रीम पूरा होने में, हमारा तो बहुत पहले से ड्रीम
0: अच्छा लग रहा है मुझे, और यही हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम लोगों को ये समझा सकें कि जिंदगी का अंत कहीं पर है ही नहीं, बस हमें पहचानने की जरूरत है। वो दरवाजा आपके से जो सामने है, जो शायद नजर भी नहीं आ रहा है, उसको देखना भी है और उसको खोल के आगे बढ़ना भी है।
1: और सर, खुशी खुशी लाइफ को जीना भी है,
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही, बिल्कुल
1: आपके
0: सही।
1: हाथ में है कि आप लाइफ को किस डायरेक्शन में किस तरीके से जीते हो सर।
0: तो मोना मैम सच बताएं मैम, जब पता चला, घर में खबर मिली, न्यूज मिली कि चिराग की जितनी भी रोशनी थी वो पूरी तरह से डिटीरियोरेट हो गई है, उस दिन को थोड़ा सा याद कीजिए मैम। उस दिन क्या माहौल था, क्या मन में चल रहा था उस दिन? पहले से क्या प्रिपेयर्ड थे या फिर संभाल लिया खुद को?
1: तो ये एक्चुअली में इनकी आईज अब बहुत स्लो स्लो गई है ना सर।
0: नहीं, एकदम से जिस दिन, अब आज जैसे टॉकिंग सॉफ्टवेयर की यूज करने की जरूरत पड़ती है सर को ना, लेकिन एक जमाना था जब सर अपनी आंखों से फोन और लैपटॉप और कंप्यूटर सब एक्सेस कर रहे थे।
1: नहीं सर, वो एक्चुअली भी ये फोन आया ही बहुत लेट है ना सर, तब तक तो विजन चली गई थी ना सर, तो ये स्टार्ट तब तक तो कीपैड का फोन था तो
0: लेकिन भाई
1: इतना।
0: जान, जब आपकी शादी हुई तब तक तो सर को ठीक ठाक दिखता था, अच्छा खासा दिखता था। लेकिन एक दिन तो आया होगा ना, 2005 6 7 8 कभी तो आया होगा, जिस दिन पूरी तरह से पता चला कि नहीं अभी हो गया, तो
1: सर,
0: उस दिन कैसे संभाला आपने खुद को मैम?
1: ये आपको ऐसा लग रहा है सर, बट हम लोग अपनी फैमिली में और इन सब चीजों में इतना बिजी थे ना सर, वही बोलते ना, कभी इस चीज को हमने नेगेटिव लिया ही नहीं सर।
0: नहीं, सवाल नेगेटिविटी का नहीं है मैम, सवाल है कि एक ऐसी चीज जो एक हम एक उम्मीद रखते हैं ना, चलो यार जितनी है उतनी ही रह जाए, भगवान करे जितनी रोशनी है उतनी तो रहेगी। और खासकर आप जबकि एक अलग बैकग्राउंड से आए थे, और आपके लिए ये ज्यादा थोड़ा सा था ना कि भाई इतनी भी रह जाएगी तो बहुत है। एक होता ही ना, हम लोग अच्छे की उम्मीद तो करते ही है ना मैम हमेशा से, उस लिहाज से हम ये पूछ रहे हैं।
1: फैमिली का तो मुझे आइडिया नहीं है सर, अपना खुद का है कि ये उम्मीद थी कि डॉक्टर्स ने कहा है 2 साल बाद विजन आ जाएगी, तो
0: एग्जैक्टली वही
1: एक बार लगा कि अब क्या होगा, कि कैसे करेंगे मैनेज, नहीं दिखाई देता तो आगे बच्चे भी हैं सब कुछ है तो कैसे होगा सब कुछ, तो थोड़ा टाइम आई थिंक अब उतना याद भी नहीं है कि एक बार तो फील हुआ सब कुछ। पापा मम्मी एक्चुअली में फैमिली पूरी साथ में थी ना, तो
0: जी मैम,
1: मम्मी से भी डिस्कस हुआ, तो बस ये था कि ठीक है सब कुछ अच्छा होगा, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है, बट एक उम्मीद जो होती है ना, कहते हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाती है, डॉक्टर्स के आप चक्कर काट रहे हो सब कुछ कर रहे हो, फिर वो आपका माइंड तैयार होने लग जाते हैं सब चीजों के लिए।
0: जी मैम,
1: वो ही था कि डॉक्टर्स पे घूमते घूमते ऑटोमेटिक माइंड सेट होता चला गया सर, फिर लाइफ को अलग डायरेक्शन देनी थी तो वो देनी स्टार्ट कर दी थी सर।
0: बहुत खूब
1: बच्चों
0: मैम,
1: को
0: बहुत।
1: भी पहली बार जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तब उनको भी लगा कि हमारे पापा दूसरों के पापा से थोड़ी डिफरेंट हैं। मैंने बच्चों सेक्टर में पूछा कि तुम्हें जब पापा का पता लगा तो तुम्हें कैसा लगा, क्योंकि हमने तो कभी बताया नहीं, बच्चे अपने आप ही देखेंगे जो भी देखेंगे,
0: बिल्कुल सही है मैम।
1: तो कहते हमें भी एक बार लगा, बहुत छोटे होंगे LKG UKG वगैरह में, तो कहते मामा एक बार हमें लगा था कि जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा बड़े आराम से चल रहे हैं, हमारे पापा को हमें बताना पड़ रहा है कि इधर नहीं इधर से चलो, तब हमें पहली बार लगा कि पापा को दिखाई नहीं देता, तो अब बच्चे थे तो बच्चों के मन में बस ये चीज आई, उसके बाद बच्चों ने बहुत केयर करनी स्टार्ट कर दी, इवन अपने लगा बहुत छोटी एज से 1st क्लास से बच्चों ने, तो आज तक बच्चे अपने पापा की बहुत ज्यादा केयर करते हैं सर, मुझसे भी ज्यादा।
0: क्या बात है, बहुत खूब मैम। बहुत जबरदस्त। कभी कोई शिकायत रही मैम इन 25 सालों में किसी से भी, लाइफ से या ऊपर वाले से, या कोई रिग्रेट रहा मैम?
1: सर मैंने तो थैंक्स ही कहा है ऊपर वाले को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे सारे सपने चिराग शायद आइज नहीं है इस वजह से ही पूरे कर पाए, मे भी ऐसा भी हो सकता है सर, बट उन्होंने सारे सपने पूरे किए सर हमने, तो मुझे कभी रिग्रेट फील ही नहीं हुआ सर। और मैं तो थैंक्स करती हूँ कि जितना भी जो कुछ भी आज मैं हूँ या जो भी मुझे मिला है वो सिर्फ चिराग की वजह से मिला है सर।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो चिराग सर
2: जी,
0: आपने बताया आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर तो खैर हैं ही हैं, तो फैमिली के अलावा, फैमिली में तो आपके जलवे हमको पता चली गए मैडम के माध्यम से, लेकिन अपनी कॉलेज में कैसे आप सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं? और एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होने के बाद तो और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं।
2: देखिए जी, टेक्नोलॉजी ने लाइफ हमारे लिए काफी आसान कर दी है,
0: खासतौर
2: पे ये चैट जीपीटी, क्लाउड एआई वगैरह आने से एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, डेस्कटॉप के ऊपर में व्हाट्सएप एक्सेसिबिलिटी, जीमेल्स, एक्सेल, इनसे काफी ज्यादा काफी इजी हो जाता है। सारे ईमेल्स को पढ़ना, उनके लिए अलग अलग लेटर्स बनाने, ड्राफ्ट सर्कुलर्स, ऑफिस ऑर्डर्स बनाने, और जितने भी अब पहले हमारे लिए इश्यूज आते थे कि जो पीडीएफ्स या ओसीआर्स में होते थे नहीं पढ़ पाते थे, अब हम उनको भी अलग अलग एआई के माध्यम से सर्कुलर्स को पढ़ पाते हैं, उनका समराइज कर पाते हैं, उनके हिसाब से उनको अपने हम लिख पाते हैं, तो काफी कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत कंफर्टेबली एक साल से सारा चलना, मल्टीटास्किंग में मीटिंग्स लेना करना, सभी के परफॉर्मेंसेस का हिसाब रखना, टास्क देना, उनका रिपोर्ट लेना करना, और हो जाता है, इजिली हो जाता है। आजकल मैनेजमेंट की लाइन में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ब्लाइंड व्यक्ति को कोई दिक्कत है नहीं एज ए कैरियर, तो ब्लाइंड लोगों के लिए मैनेजमेंट का फील्ड सही है, जिससे मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमारे विजुअल चैलेंज साथी उसमें जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते
0: हैं। हिम्मत हार गए हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा उनको भी गाइड कीजिए।
2: देखिए, एक हमारे फैमिली में है स्वामी रामदेव जी, मेरे परिवार समूह उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो उनके पास एक माँ आई छोटे बच्चे को लेके कि बता जी इसके सिर पे हाथ रख, बाबा जी ने कहा उससे क्या हो, तो बाबा तो लेडी ने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, तो बाबा जी ने कहा कि इसे बोलो प्राणायाम करे, कपालभाति करे, उससे ठीक होगा, मेरे हाथ रखने से नहीं हो, तो वही खुद के मरे बगैर स्वर नहीं मिलता।
0: मोटिवेशन
2: हम कितना भी दे सकते हैं लोगों को, लेकिन चलना तो इंसान को खुद ही पड़ेगा। कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, जितनी हो सकता है सभी की हेल्प करता हूँ, बुक्स देता हूँ, अलग अलग लैपटॉप्स भी देता हूँ, दान भी करता हूँ, गाइडेंस भी करता हूँ, कोई सफल हो जाता है, कोई नहीं भी हो पाता उनके अंदर में से, क्योंकि जो इंटरनल मोटिवेशन है आगे बढ़ने की जिद, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के पिता कहते हैं अरिस्टोटल को, जो सारे ज्ञान अरिस्तो पर जाते हैं, तो उसने कंसेप्ट दिया था यूडोमिया, फाइनल कॉज या पर्पस, जो कार्य करने का, जब तक आपका यूडोमिया क्लियर नहीं है, पर्पस उद्देश्य क्लियर नहीं है, लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कब तक करना चाहते हो, तब तक लाइफ में आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। उसी चीज को आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स ने अपना शिव खेड़ा ले लें, जिन्होंने अपना गोल दिया हुआ है, सेट योर टारगेट, प्लान, एक्ट एंड गेट, आजकल जो नए यूट्यूबर्स मोटिवेशन आए हैं उन्होंने इसका नाम दिया प्लेसिबो कंसेप्ट दिया है इसको, कि आप सोचो उसे कर लो, ट्रेड्स सीक्रेट का नाम दिया है, रहस्य मोटिवेशन जो लगते हैं, सारे के सारे अरिस्टोटल फिलोसफी से ही निकले हैं सारे मोटिवेशन कंसेप्ट। हम तो ये चीज मानते हैं उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं कि फोकस ऑन फोर डीज, डी पहला डी आपका डिजायर, बर्निंग डिजायर क्या होना चाहिए, ये सबसे पहला है, क्या मुझे लाइफ में इस तारीख तक ये चीज करनी है, विजुलाइज करनी लाइफ को चीज को, देन डायरेक्शन, उसके लिए प्लान बनाए, देन डेडिकेशन यानी कि समर्पण करें, और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डी है इसके लिए डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड दैट कम्स विद पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, कि अपना टारगेट बनाए, क्योंकि जब मैं बताता हूँ कि जब 2010 से लेके 15 तक, जैसे मैंने बताया 5 साल हमने कठोर तपस्या की है पढ़ाई के लिए और करने के लिए, सुबह 4 बजे से लेके 5 साल तक कठिन तपस्या की है, उस टाइम पे मेरी कंप्यूटर में एक एक्सेल रिपोर्ट आती थी, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया करता था कि आज मैंने ये करना है, ये करना है, और लिखा था उसके अंदर में कि ये शिवखेड़ा की बुक पढ़ के, जीत आपकी, नई दिल्ली से मंगवाई,
0: जीत आपकी,
2: वो किताब, उसी से मुझे प्रेरणा मिली, मोटिवेशन पढ़ने के लिए मिली। और मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ अपने मित्र चलन साथियों को कि, और सभी को भी कि वो किताब जरूर कंटेस्ट करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मान लेता था कि ये टारगेट पूरा हुआ तो अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा, टारगेट अगर पूरा नहीं हो पाया तो अपने आपको पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट हो सकती थी 10 उठक बैठक लगाऊं, एक्सरसाइज करूं, खाना कम खाऊं, दो टाइम दो दो दिन दो घंटे मोबाइल को दूर रखूं, अलग अलग तरह से पनिशमेंट्स अपने आपको दें और अचीव कर लूं तो रिवार्ड। तो ये डिसिप्लिन, तो ये जब तक आप 4 डिज नए लाइफ में नहीं अपनाएंगे, हर एक व्यक्ति के लिए डिजायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तब तक
0: क्या बात,
2: गोल को पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये पालोगे तो मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन दीजिए।
0: बिल्कुल सही कहा। तो सर सोसाइटी के प्रोग्राम्स में भी जाते हैं घूमने फिरने के अलावा मैम के साथ, या नहीं जा पाते हैं?
2: हाँ,
0: ब्लाइंड फील्ड के प्रोग्राम्स होते हैं।
2: ब्लाइंड समाज के प्रोग्राम्स में तो अभी का आपका ही प्रोग्राम होगा जिसमें हम जाएंगे पहली बार मुंबई में।
0: ये हमारी खुशकिस्मती होगी। चलिए, तो बहुत बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप दोनों की जर्नी के लिए बयान करने के लिए, लेकिन मजा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो चिराग सर, अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या क्या मन में आता है? मतलब आज तो सब कुछ है लाइफ में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह गया हो। अब आप जब अपने आप को देखते हैं, अपनी जर्नी को देखते हैं, तो क्या महसूस होता है?
2: मैं ये देखता हूँ कि मेरी लाइफ के 11 साल वेस्ट हुए इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से।
0: राइट।
2: पढ़ाई के बाद में मुझे, जबकि हम मम्मी प्रिंसिपल स्कूल के अंदर में, हमारे रिश्तेदार सभी, कोई सेंट्रल बैंक में मौसाजी मैनेजर, कोई बाकी मामा जी अलग अलग कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल प्रोफेसर, पापा इतनी बड़ी पोस्ट पे, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर का मिला जुलना। जब हम लोगों को नहीं पता था कि ब्लाइंड लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या रिजर्वेशन होती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और आम इंसान को कैसे पता हो।
0: तो सही है सर,
2: मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सफरिंग हुई वो रुको ना हो।
0: बहुत सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यही एक जरिया होता है सर, इस तरह से जब आपको लोग सुनते हैं या आगे भी सुनेंगे तो ऐसे ही सीखने को मिलता है। तो सर आपको अभी तक लगा कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर कि यार ब्लाइंडनेस की वजह से मैं इस चीज में पीछे रह गया?
2: वो तो अनगिनत जगह पर है, झूठ नहीं
0: अच्छा।
2: बोलूंगा कि हम ये कह लें कि जी बिल्कुल हम सब कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा है वैसा है, नो डिपोर्शन। जो असलियत है वो असलियत है यही है कि ब्लाइंड व्यक्ति को लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। हम किसी को पहचान नहीं सकते, इंडिविजुअली चल फिर नहीं सकते, बहुत सारे काम जो लोग कर सकते हैं उनकी तरह से नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर साइट्स हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, रास्ते हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, लोगों का दृष्टिकोण हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है, रिश्तेदारों का एटीट्यूड हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता समाज के अंदर में। सो चैलेंजेस बहुत हैं और हमें हर काम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि वी आर कैपेबल। और एक ही स्टेज आती है जब इंसान प्रूव करके थक जाता है कि व्हाई टू प्रूव एंड टू हूम टू प्रूव, किसलिए प्रूव करें कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वे हमारे अपनी पूरी जिंदगी लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं बिता सकते। जो इंटरनल खुशी होती है वो चाहती है कि औरों को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लाइफ अच्छे से बीत सके, हमारे लिए अपने व्हाट्स इनफ फॉर अस, ये फाइंड करें कि हमारे लिए क्या इनफ है, क्या अच्छा है, वो फाइंड करें और लाइफ को और मीनिंगफुल और प्लेजेंटली कैसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं। यूं हम लोगों को खुश करने के लिए, प्रूव करने के लिए ये काम कर रहे हैं, वो काम करने करेंगे, फिर तो हम कोलू की बेल की तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे पूरी जिंदगी में। उस चीज में रेट रेस में मैं नहीं पड़ा। जब मैं छोटा था तो मेरे दीदी ने एक घोड़े की फोटो लगाई हुई थी रूम के अंदर पोस्टर
0: जी,
2: का भागता हुआ घोड़ा और एक पैर उसको मुड़ा हुआ था, और टैगलाइन लिखी हुई थी ईच मस्ट फाइंड हिज ओन रोड। हमें अपना लाइफ, अपने रास्ता खुद फाइंड करना है, खुद देखना है,
0: खुद देखना है। बिल्कुल,
2: औरों की तरह है तो लोग तो पता नहीं क्या काम करते हैं दोस्तों का, हम औरों की रीस करेंगे तो फिर तो रीस ही करते रह जाएंगे।
0: बिल्कुल सही है,
2: दैट्स इट, लाइफ एंजॉय करें, अच्छे से जिए, सभी के लिए कहूंगा।
0: बहुत जबरदस्त सर, एक बात छोटी सी, मतलब मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाह रहा हूँ कि 7 जनवरी से 15 अप्रैल तक का जो टाइम था 2001 में, उस दौरान बातें वगैरह होती थी आप लोगों की?
2: मोबाइल तो थे नहीं, अमानी जी तब तक लॉन्च किया नहीं था अपना फोन।
0: बिल्कुल,
2: वो सिर्फ तो मूवी आई थी एक उस तरह से ₹180 का बिल, ₹200 का बिल, ₹300 का बिल,
0: दीपक और आरती
2: तो बस वही एसडीपीसी वाले को बिल पे किया करते थे,
1: ₹10,000 का बिल आया,
2: ₹10,000 का फोन का बिल आता था, शूट हुआ करते थे।
0: ये 2001 की बातें सोता हूँ, 10,000 का बिल और केवल 3 महीनों में।
1: एवरी मंथ था,
2: महीने का है।
0: अच्छा महीने का, ओ माय गॉड।
1: तो सर वो लेटर्स बहुत आया करते थे, कैसेट्स रिकॉर्ड होकर आया करती थी सर।
0: अच्छा क्या बात है,
1: ना दिन का पता था ना रात का पता था सर।
0: माय गॉड, सब कुछ ही मतलब होता था, सारे ही। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप और ट्विटर नहीं था तो मतलब कुछ होता ही नहीं था, सब कुछ होता था।
1: एक से एक सॉन्ग आया करते थे सर रिकॉर्ड होकर कैसेट्स में, और ये रानी भी टाइम लगता था।
0: कौन से कविताएं भी आती थी कभी, शेरो शायरियां वगैरह भी आती थी कि नहीं?
1: वो सर लिखी हुई आती थी लेटर्स में।
0: अच्छा लिखी हुई आती थी,
1: सब टाइप करके भेजते थे सर लैपटॉप से।
2: indiapost.com
1: indiapost.com से।
0: क्या बात है, गजब, बहुत जबरदस्त। चलिए तो अब आप दोनों से बात करते करते तो कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला हमको तो, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तो मैं 2-3 घंटे और बातें कर सकता हूँ आप दोनों से।
1: सर अभी तो बहुत कहानियां हैं, वाकई में पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी सर हमारी।
0: बातें नहीं खत्म होंगी, कोई नहीं, मुंबई में बाकी की कहानियां मुंबई में सुनेंगे आप दोनों से।
1: यस सर।
0: एक कुछ ऐसी छोटी छोटी मस्ती भरी बातें आप दोनों से कर लेते हैं कि दोनों में जब कभी कुछ हो जाता है ये है गड़बड़ तो सॉरी कौन बोलता है पहले?
2: देखिए, आई एम द बॉस ऑफ माय हाउस।
0: अच्छा।
2: एंड आई हैव माय वाइफ्स परमिशन टू से सो।
0: जी।
2: वाइफ इज ऑलवेज राइट।
0: अच्छा। तो इसका मतलब आप बोलते हैं।
2: अपना मुंह से कैसे कह सकते हैं।
1: सर कोई भी बात हो जाए, चाहे गलती मेरी हो ना हो, बस मैं भी इनसे एक ही बात बोलती हूँ, आपको याद है ना मैं कौन हूँ, आपकी वाइफ। मेरी गलती कभी हो ही नहीं सकती, तो आप क्यों उम्मीद करते हो?
0: बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ रॉन्ग देन अप्लाई रूल फर्स्ट।
1: यस।
0: अच्छा तो कहीं अगर जाना हो घूमने तो किसकी जगह को अप्रूवल मिलता है, जो फाइनल कौन करता है कहाँ जाना ये आप दोनों में से?
1: एक्चुअली ये होता है कि टिकट्स बुक सब कुछ बुक, बस ये बताया जाता है कि आपको 8 तारीख को वहां चलना है मेरे साथ।
0: क्या बात है, जवाब मिल गया मतलब मुझे।
1: इनके कॉलेज का सब पूछ लेती हूँ कि कब छुट्टियां आ रही है, क्या प्लानिंग है, कैसे हैं। अभी 9 सितंबर का इनका बर्थडे आ रहा है सर, तो हमने ये कहा इनसे कि 9 को हम वृंदावन चलते हैं, प्रेमानंद जी से मिलकर आते हैं और आपका बर्थडे वही सेलिब्रेट करते हैं। तो सारी प्लानिंग होगी सर, बस इनसे इतना बताना था कि वो चलना है, अब आप अपना मैनेज कर लेना सर। कहते हैं ओके ठीक है।
0: सही है, चलिए तो सर को एडवांस में बर्थडे के लिए ढेर सारी विशेस, और आप लोग ऐसे घूमते फिरते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाते रहें। मैम ये बताइए कि आपके बनाई हुई कौन सी डिश सर को सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सर दाल बाटी चूरमा।
0: अरे वाह क्या बात है, राजस्थानी सूरमा।
1: राजस्थानी सूरमा सर,
2: और कटे की सब्जी झरने वाली।
0: ओके। अच्छा मैम ये बताइए कि मूवीज का शौक है कि नहीं सर को?
1: सर को मूवीज का बहुत शौक है सर, हमने बहुत शादी के बाद हर हफ्ते एक मूवी देखी है सर हमने।
0: अब तक सर को सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है आप बताओ?
1: अच्छा मैं बताऊं सर, इनको सबसे अच्छी लगती है शोले, शोले के हर इनको पसंद है सर, जबरदस्त लगती है वो मूवी। और इनकी फेवरेट हीरोइन है रवीना टंडन सर।
0: ओहो ओहो मरा टिप टिप बरसा पानी है। क्या बात है, ग्रेट। तो चिराग सर आप भी बता दीजिए, इंडिया में अभी कौन सी ऐसी जगह है जो मैम नहीं गई हैं और उनको जाने की बहुत इच्छा है?
2: शक्तिपीठ का चल रहा है, काफी सारे शक्तिपीठ हम कवर कर चुके हैं, कुछ शक्तिपीठ रह गए हैं, अभी मुंबई आ रहे हैं तो उसके बाद देखते हैं कि अगर पॉसिबल नासिक भी कवर कर लेंगे और शक्तिपीठ।
0: अच्छा सब जगह जाने का इरादा है आपका?
1: ऑल इंडिया सर।
0: ऑल इंडिया, क्या बात है, ग्रेट।
2: फिर कामाख्या मंदिर आसाम वहां पर भी जाना है। काफी जगह, लंबी लिस्ट।
0: अच्छा लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी ऐसी जो जिसके लिए ये कहा जा रहा हो कि बस कहीं और जाएं या ना जाएं, यहाँ जरूर चलना है सबसे पहले?
2: फिलहाल तो बरसाना जाएंगे।
0: अच्छा बरसाना, ओके ठीक है. और मैम का फेवरेट कलर, मैम का फेवरेट कलर.
2: कलर आजकल नजर तो आते नहीं, फिर भी जहां तक मुझे याद पड़ता है तो फेवरेट कलर ब्लैक तो रहा नहीं, मैरून, मैरून टाइप में काफी पसंद करते थे कपड़े. वही रहो.
0: सही सही कह रहे हैं.
1: यस सर, राइट.
0: चलिए मतलब सर को याद तो है अभी, देखिए आपकी पसंद के बारे में. चलिए बहुत खूब बहुत खूब. चिराग सर, अगर एक सेंटेंस में मैम के बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे?
2: सिर्फ इतना कि मोना यू आर ग्रेट, यू हैव मेड माई लाइफ, एंड तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं हो, मेरी सलाहकार हो, फ्रेंड हो, और तुमने ही मेरे लाइफ को काफ़ी अच्छा बनाया है. अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कहीं अंधेरों में खो चुका होता. तुमने मुझे मेरी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से पहचाना, मोटिवेट किया, गाइड किया, और लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. तो थैंक्स कहना भी बहुत छोटी चीज होगी, मेरे पास
0: सही
2: अल्फाज नहीं
0: सही
2: है कहने के लिए.
0: बहुत बहुत खूब बहुत खूब. मोना मैम, अब आप भी कुछ कह दीजिए. एक सेंटेंस में अगर सर की लाइफ को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे?
1: ठीक है सर. अब सर की लाइफ को तो मैं कुछ लाइंस कहना चाहूंगी सर उनके लिए.
0: जरूर जरूर जरूर जरूर.
1: एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए. एक शुक्रिया जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए. एक शुक्रिया जिंदगी में आने के लिए.
0: वाह वाह वाह, क्या बात है,
1: करसता
0: बहुत.
1: रहेंगे हम जन्मों जन्मों तक. एक शुक्रिया
0: हाँ
1: प्यार को इतने प्यार से निभाने के लिए.
0: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह वाह. तो श्रोता हूँ, बहुत बहुत बहुत जबरदस्त. उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा, तो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा 9414151415 पर. और चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप दोनों क्या मैसेज देंगे?
1: मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी निराश नहीं होना, उसमें भी उम्मीद की रोशनी जरूर देखना. और भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है. हमेशा आगे बढ़ते रहो अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ.
0: और चिराग सर, आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: सिंपल, खुश रहो, अपने ध्यान समस्याओं की जगह अपॉर्चुनिटीज पे लगाओ. सेट योर टारगेट, प्लान, एक्ट एंड गेट.
0: बहुत खूब बहुत जबरदस्त. तो श्रोता हूं, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमेशा की तरह. चिराग सर और मोनिका मैम, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए.
2: थैंक यू. थैंक्स
1: थैंक यू.
2: फॉर.
1: धन्यवाद सर.
0: श्रोताओं, रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें और हमराही प्रोग्राम का इंतजार करते रहें.

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी पर न जाने कितनी शायरियां लिखी गई, न जाने कितने गीत बने, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और सच में ये ना जाना कई बार मल्टीपल इमोशंस को ले आता है, और आज हम उन्हीं इमोशंस के बारे में थोड़ा और गहराई से जानने वाले, यानी खुद को बेहतर पहचानने वाले। और उसके लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी है, और समय प्रति समय हमें बहुत मदद करते रहते हैं। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू, बहुत बहुत खुशी हो रही है श्री जी से, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, हमारे श्रोताओं से मुखातिब होकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
2: क्या हुआ, क्या हुआ,
3: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
0: ये क्या होने वाला है, इसके साथ भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, इसीलिए गाने बनते रहते हैं, और तब भी ये सवाल सवाल ही रहता है कि क्या हुआ। और इन्हीं इमोशंस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दीदी आपने इमोशंस आइडेंटिफाई करने के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि सही इमोशन कैसे आइडेंटिफाई करें, फिर आपने ये भी बताया था कि किस तरीके से उसका एक मीटर होता है, एक मतलब किस लेवल पे है वो इमोशन, वो भी समझे तो टैकल करने में मदद मिलती है। अब एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है, किसी किसी को ये लगता है कि मेरे अंदर एक सर्टेन इमोशन है ही नहीं, जैसे किसी किसी को लगता है मैं इतना कुछ देख चुका जीवन में कि संवेदना बची ही नहीं है, देयर इज नो कंपैशन। तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के बाद कोई इमोशन, एक इमोशन ऐसा हो जो उसके अंदर बिल्कुल मर गया हो या खत्म हो गया हो या हो ही नहीं?
1: ऐसा तो नहीं होता है। इसके पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म वो सिस्टम है जिस चीज का माइंड को स्ट्रेस होता है, जिस बात से माइंड को तकलीफ होती है या थ्रेट महसूस होता है, उससे डाइवर्ट करने के लिए माइंड कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है माइंड का, जिस बात से, जिस इमोशंस से आपको बहुत दुख दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है, उससे डाइवर्ट करने के लिए उस चीज के प्रति इम्यून बना देता है। और वो इम्यून बनना, लोग समझते हैं कि वो भावना ही नहीं है मुझ में। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी अगर हम बार बार लेंगे तो वो हम उसके लिए एंटीबायोटिक एक समय आता है कि हमारे शरीर में वो काम करना बंद कर देंगे। उसी तरह से जब इमोशनल ओवरवेल्म होते हैं, हम किसी इमोशन से हम बार बार हर्ट होते जाते हैं, तब हमारा माइंड अपने डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम से हमें उससे डाइवर्ट करने के लिए उसमें इम्यून कर देता है कि बस अब इस इमोशन का एक्सपीरियंस करना ही।
0: तो यानी वो ऐसा है नहीं कि आपके अंदर वो नहीं है, किसी किसी को लगता है कि नहीं है, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो सर्टेन आप इम्यून जैसे आप उससे हो गए, पर उसके एग्जिस्ट नहीं करता आपके अंदर, ये ना समझे इसको, वो इमोशन है ही नहीं, ऐसा नहीं इस कह सकते या समझ सकते। श्रीनिधि जी आपसे मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक कई बार ये भी प्रश्न आता है कि मेरे अंदर ये इमोशन इतना ज्यादा है कि बाकी उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं या वो मुझे इमोशन कंट्रोल कर देता है। किसी को लगता है कि मेरे अंदर मतलब इतना ज्यादा प्यार है या इतना ज्यादा जेलसी है कि वो कंट्रोल कर लेती है जैसे, और कोई इमोशन फील ही नहीं करने देती, भले कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, पर दया नहीं आ रही है, इतना ज्यादा उसके प्रति वो घृणा है या जेलसी है कि वो इमोशन ओवरपावर कर लेता है। तो क्या उस समय कैसे मतलब आप इमोशंस को देखते हैं?
3: एक तो ये चीज रिकॉग्नाइज करने वाली है कि ऐसा हम लोगों के साथ होता है, और सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कुछ चीजों के लिए इम्यून हो जाते हैं। मैं इसके लिए एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं। पहली बार जब कोई व्यक्ति खून देखता है तो बहुत सारे लोगों को एक स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस होता है कि किसी व्यक्ति का खून बह रहा है, फिर हम इसको कैसे रोके, क्या करें, समझ ऐसे ही भावनात्मक रूप से आप एक प्रेशर महसूस करते हैं, आप खून देखते हुए आपको वो एक अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ एंजाइटी आपके डेवलप होती है, आप एंक्शियस होते हैं कैसे कैसे हो गया, इसको हम कैसे रोके, इत्यादि सवाल मन में चलते रहते हैं। अब क्लिनिशियन की बात करें, एक नर्स की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, और वो लोग जब हर दिन इन एंड आउट लोगों के घाव को, लोगों के इंजरीज को देखते रहते हैं, तो उनके अंदर वो एंजाइटी अब उत्पन्न ही नहीं होती।
0: ओके।
3: क्योंकि उन्होंने उन घटनाओं को बहुत बार देख लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संवेदनशील नहीं है या वो आपके दर्द के प्रति उनकी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं, अपितु वो जो नेगेटिव उतार चढ़ाव होना चाहिए था, भावों में उद्वेग होना चाहिए था, वो नहीं होता।
0: Okay.
3: तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने आप को इन इमोशंस के लिए इतना एक्सपोज किया हुआ है, आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप समझते चलते हैं कि हाँ, इन चीजों में मुझे एंक्शियस होने की जरूरत नहीं, उद्विग्न होने की जरूरत नहीं इत्यादि। और जो बात आप कह रहे हैं उस बात पर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी चीज से इतना ज्यादा परेशान हो गया होता है या उन भावनाओं को महसूस कर चुका होता है, तो उसके अंदर एक प्रकार की भावना शून्यता आने लगती है, वो उन चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। अक्सर हम लोग एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देते हैं, सिंपैथी की बात कही जाती है, ऐसी घटनाएं जहां पर देखकर लगता है ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए था इनके साथ, हे भगवान ये कैसे हो गया, ओहो हो ये तो बहुत गलत हुआ, ये हम सिंपैथेटिक होके कोई चीजें कह देते हैं बहुत बार। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम कहते हैं वो है एम्पैथी। एम्पैथी भी हम क्लिनिकल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत बार सिंपैथी का अर्थ ये होता है कि हम किसी की संवेदनाओं को समझने के लिए हम अपने आप को उनके शूज में डालने लगते हैं, उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करने लगते हैं, हम रेजोनेट करने लगते हैं उनके पेन के साथ, फील दर्द उनको हो रहा होता है और हम भी उनके साथ उसी पेन को रेडिएट कर रहे होते हैं, और सिंपैथेटिक होने का अर्थ कभी कभार हम ऐसा समझ लेते हैं। इसलिए एक और स्टैंडर्ड शब्द यूज किया जाता है और क्लिनिकल एरियाज में हमसे और कस्टम सर्विस में हम इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सिंपैथी नहीं रखता, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ बट मैं आपके दर्द को खुद महसूस नहीं करना चाहता।
0: Okay.
3: मैं भी आपके साथ उस दर्द के फीलिंग्स को रेडिएट नहीं करता, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, सिचुएशंस को समझ रहा हूँ और उसको मैं पॉजिटिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए एम्पैथेटिक तरीके से उस चीज को देखता, ये एम्पैथी है। और आप जो बात कह रहे थे वो एक और प्रकार की पैथी है जिसे हम एपैथी कहते हैं, जिसे मतलब मैं आपके ऊपर क्या हो रहा है इससे मेरे ऊपर जू तक नहीं रहेंगे, हाँ सर ही नहीं पड़ता। अक्सर हिंदी में हम ये चीज कहते हैं, कहावत के रूप में भी लोग कह देते हैं, ऐसे ही मुहावरों के रूप में भी इस्तेमाल होता है, लोग कह देते हैं जो हर दिन मर रहा है उसके लिए रोए कौन। तो बार बार आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को शुष्क बना लेते हैं, आप उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं दिखाना चाहते, और ये भी चीज होता है और ये चीज समझने की जरूरत है। और क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है, मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर गाइड कर पाएंगे और हमारे कुछ श्रोता इस बात को समझकर खुद ही देखना चाहेंगे कि हमें एपैथी रखनी चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए या सिंपैथी।
0: जरूर ये चीज कल्पना जी से जानना चाहेंगे, तीनों शब्दों में से क्या।
1: बिल्कुल श्री जी बहुत सही बात कर रहे थे कि जैसे मैं हूँ काउंसिलर हूँ
0: जी,
1: मुझे क्या रखना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए। अगर मैं सिंपैथी रखती गई तो लोग जो दुख दर्द लेकर आ रहे हैं वो शायद मुझे अफेक्ट करें, लेकिन एम्पैथी रखती हूँ तो मैं अफेक्ट किए बिना, अपने आप को अफेक्टेड किए बिना उनको हेल्प कर पाती हूँ। तो एम्पैथी में एक डिटैचमेंट होती है, दूसरे के दर्द को हम समझते हैं बट महसूस नहीं करते। महसूस करने का मतलब उनके हाथ में कितना पेन हो रहा होगा, उनको मन में कितनी उलझन होगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है, बट वो सेम चीज मैं महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनको हैंड होल्डिंग करना है, उनको मुझे मदद करनी है। अगर मैं भी महसूस, कोई मेरे सामने बैठ कर रो रहा है और मैं भी रोना शुरू कर दूं तो कौन किसको हेल्प करेगा।
0: सही बात है,
1: सही बात है ना। तो ये श्री जी समझाने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को समझते समय, जब आपका रोल, समझो माता पिता है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, अगर माता पिता अफेक्टेड हो जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, तो वो कैसे हेल्प कर पाएंगे बच्चों को। मेरे सामने ऐसे कई माता पिता आते हैं जो वास्तव में डरे हुए होते हैं अपने बच्चों की फेलियर से, परंतु वो बच्चों को कहते, कोई बात नहीं बेटा, इस बार फेल हो गए, अगली बार तुम जरूर पास हो जाओगे या अचीव कर लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बट जब अंदर से मैं उनको पूछती हूँ कि आपने ऐसा कहा तो आपको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, तो कहा नहीं, हम अफेक्टेड हुए लेकिन हमने बताया नहीं, दिखाया नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा घबरा जाए।
0: ऐसा कई बार माता पिता करते ही हैं, क्योंकि वो दर्द समझते हैं और हमसे ज्यादा बेहतर कई बार समझते हैं, लेकिन वो उठा नहीं पाएंगे, जैसा आपने कहा, हेल्प नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में अदरवाइज। तो दीदी, एम्पैथी कहाँ आती है यहाँ पे? जैसे एम्पैथी की बात हुई, इसके बाद एक और जो शब्द आता है, ये इसका अगर थोड़ा सा मीनिंग आप बताएं।
1: एम्पैथी आप हर रोज इस चीज को यूज करते हैं एक्चुअली, पर हमें नाम देने नहीं आता है। तो ये चीज सिंपथी एम्पथी से ऊपर, एम्पथी को जो हम कहते हैं कि बीच का है, कि जैसे पर्सनालिटीज को जब हम देखते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं
0: जी,
1: कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, अपने एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को बहुत ओपनली शो करते हैं, और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को इतना शो नहीं करते हैं
0: जी,
1: या कम बोलते हैं। तो उसके बीच में एक पर्सनालिटी टाइप होता है, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट।
0: ओके,
1: मतलब दोनों का बैलेंस रखकर चलने वाले, जहां जरूरत है वहां चुप रहने वाले, जहां जरूरत है वहां एक्सप्रेस करने वाले, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट। तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम बीच में चले, मॉडरेट रहे, है ना,
0: मॉडरेशन, बैलेंस कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसा आपने कहा थी, बहुत बार हम करते हैं मगर हम उसका नाम नहीं जानते, तो हम उसे कह नहीं पाते कि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये महसूस कर रहे हैं। तो एक और सवाल है मेरा यहाँ पर कि आपने बताया एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, आप एक रेटिंग सिस्टम की भी हमने बात की थी इमोशन की, यूजुअली वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कई बार ये माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं अपने इमोशंस को लेके, लड़कियां ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत रो रहे हैं या बहुत परेशान है, तो समझ में आता है कि हाँ, इसकी रेटिंग शायद 8 पे होगी या 9 पे होगी या 7 पे होगी उस इमोशन की जो फील कर रहे हैं। पर वहीं पे मान लीजिए एक लड़का है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो सीधे खड़ा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है लेकिन वो सीधे खड़ा है, तो उसमें वो किस अनुसार उसको रेट करे? या सामने वाले को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर किस लेवल तक वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
1: राइट, इसको हम एक शब्द से समझ सकते हैं, उसको कहते हैं रेजिलियंस। हर एक की जो टॉलरेंस की, सहन करने की शक्ति होती है, वो अलग अलग होती है। कुछ लोग थोड़ा सा कट जाए, थोड़ा सा लग जाए, बहुत ज्यादा उसको फील करते हैं और शो करते हैं, बट कुछ लोग उसे सहन कर जाते हैं, उनकी सहन करने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है। तो वैसे ही हमारे जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं या इमोशनल मैच्योरिटी है, वो हर किसी के अलग अलग लेवल पर हो सकती है। किसी को किसी बात के लिए हर्ट हो सकता है, उसी बात को दूसरा व्यक्ति बोल सकता है, तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर उस चीज के प्रति हमारा नजरिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस और उसका एम्प्लॉय, अगर बॉस ने डांटा तो एम्प्लॉय को फील होगा ना, जरूर
0: जी,
1: जरूर होगा, मैं तो ठीक था, मैंने तो ठीक किया था, फिर भी डांटा। जब वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के पास जाता है और बोलता है कि देखो, आज मुझे बॉस ने बिना वजह डांट लिया, तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कहेगा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो सबको डांटते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता है वो सबको डांटते हैं, और तुम्हें बिना वजह नहीं डांटा होगा, कोई कारण होगा, उनके माइंड में कोई ऐसी बात चल रही होगी, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी इसलिए आपको डांटा होगा। और फिर वो दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि अरे घर में नहीं क्या माँ बाप अपने डांटते हैं, यहाँ बॉस भी वैसे ही है, उनको भी वैसे ही लो, उनकी डांट का कोई मतलब नहीं होता है, वो मन में नहीं रखते। जब ऐसी समझ मिलती है तो वही डांट उसको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों की जो इमोशनल मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, किसी चीज को देखने का नजरिया है, वो अलग अलग होने की वजह से प्रतिक्रिया, इमोशनल एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक ही माँ बाप के दो या चार बच्चे होते हैं। एक बच्चा रिबेलियस हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा है या एक बार मारा है, इसलिए वो रिबेलियस हो जाता है और वो प्रतिकार करने लगता है माँ बाप को। लेकिन दूसरा बच्चा कहता है अरे माँ बाप है, उन्होंने जन्म दिया है, हमारी अच्छाई के लिए तो उन्होंने मारा होगा ना, तो वो उसे पॉजिटिवली लेता है। तो ये हर एक की क्या मैं कहें, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है
0: जी।
1: सो हमें इसमें लेना क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स सामने रखने का एक ही पर्पस है कि अगर हमें इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंचना है तो हमें रिस्पॉन्स करते समय रिएक्टिव नहीं होना है, लेकिन प्रोएक्टिव होके पॉजिटिवली उस चीज के दूसरे साइड को देखते हुए उसे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं। रिएक्शन का मतलब है आपने किया, रिफ्लेक्स में मैंने भी कर दिया, नहीं। प्रोएक्टिव का मतलब अच्छा आपने मुझे ये कहा, ओके इसका एक्सप्लेनेशन ये है और इस वजह से ऐसा हुआ, सो मैंने उसका जवाब दे दिया और मैं पीसफुल रही। तो ये है इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल। अच्छा एपथी की बात मैं अभी और कहूंगी, एपथी मैंने कंप्लीट नहीं किया है बट आगे आप पूछ सकते हैं।
0: तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो आपने बताया दीदी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है सेम सिचुएशन में। अगर एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है, इफेक्ट दोनों बराबर हो रहे हैं लेकिन एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक रो ले रहा है, आंखों से आंसू ला दे रहा है, पेन 8 नंबर पे है मे बी उसका, दूसरे वाला का भी 8 नंबर पे है पर वो आंखों में आंसू नहीं ला पा रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो दोनों में से क्या इमोशन को बेटर हैंडल कर

0: हर एक का अपने अपने इमोशंस को हैंडल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बट साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो सही जगह पर सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की खुद को ट्रेनिंग देना, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है।
1: ओके, आशिंद्री जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं एग्री करता हूँ कल्पना जी की इस बात से कि हर व्यक्ति उसी अमाउंट ऑफ स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकता है, और कल्पना जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये शब्द का उपयोग किया कि हम रिएक्ट नहीं करें, और मैं समझता हूँ रेस्पॉन्ड एक बहुत ही सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, हम हिंदी भाषा में शायद मैं इसको सही तरीके से तर्जुमा ना कर पाऊं, क्रिया के लिए प्रतिक्रिया कर देना, रिएक्ट कर देना हो सकता है, बट रिस्पॉन्ड करने का अर्थ ये है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया पे नहीं आते, आप बीच में सोच समझ करके रिस्पॉन्ड करने के लिए सोच सकते हैं। और जैसा कल्पना जी कह रहे थे कि हाँ हो सकता है मेरे लिए ये जो दर्द आज मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा दर्द ना हो, चीज को मैं बेहतर हैंडल कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं उस प्रकार के दर्द को अनुभव कर चुका हूँ पहले, कि मैं उस चीज को पहले हैंडल कर चुका हूँ, आज उसी प्रकार के सिचुएशन शायद जैसे आप कह रहे थे कि ये 10 में से 8 नंबर का ये दर्द का माप है और वो माप अभी वापस मेरे पास है, बट क्योंकि मैंने 9, 10 में से 9 डिग्री तक का पेन झेला हुआ है तो शायद मैं इस 8 के लिए इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा या उस तरीके से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, या फिर मैं बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना समझ पा रहा हूँ। और एक व्यक्ति जो पहली बार लाइफ के उस सिचुएशन में है, उस प्रकार के दर्द को महसूस कर रहा है, तो वो सकम्ब करेगा, उसके लिए रोना या उस दर्द को सहन नहीं कर पाना, चिल्लाना या अलग अलग तरीके से वो उस दर्द को प्रकट करने की जो तैयारियां कर रहा है या वो जो चीजें प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दे रही हैं, वो हो सकते हैं वो अलग हों। और जैसे कल्पना जी कह रहे थे, मैं इस बात से 100% वाबस्ता हूँ कि हर एक इंसान अलग है, मेरी दर्द को सहन करने की क्षमता अलग हो सकती है, और मैं सिर्फ दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपका मजाक उड़ाए समझ ले, कई लोग होते हैं वो उस मजाक को भी मजाक में ले लेते हैं, वो अपने ऊपर भी मजाक करना जानते हैं, और कई लोग होते हैं उनको अगर किसी ने उनके लिए कुछ भी कह दिया, आज ये कह दिया कि ओहो क्या कपड़े पहन के आए हो, कहां से आए हो, इसी प्लेनेट से हो क्या, इतना भी अगर कोई कह दे तो उनका पूरा दिन का मूड खराब हो जाता है, वो शायद आधे दिन की छुट्टी लेके वापस घर चले जाए। और कई लोग ऐसे होंगे वो बोले अरे कपड़े से क्या लेना देना, मेरे काम से मतलब रखना तुम, ये भी कहने वाले लोग हो सकते हैं। चीज वही है मगर उस चीज के प्रति हमारी संवेदनाएं कैसी हो सकती हैं उसमें अंतर है, और इस यूनिकनेस को समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का एक जेनेटिक बिल्ड, जैसे कल्पना जी पहले भी कह रहे थे कि जिस तरीके से परवरिश हमारी हुई है, जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, हमारी शारीरिक मानसिक संरचनाएं जैसी हुई हैं, वो सब कुछ इन चीजों पर असर करती हैं, और इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि सब लोगों को उसी एक पैमाने से नापा जाए।
1: बिल्कुल, और ये बड़ी सुंदर सी बात है, इसलिए हर एक को अपने को समझना जरूरी है, एक कैटेगरी में सबको बांधा नहीं जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता, भावनाओं में भी यही बात है।
2: और कल्पना जी इस बात से एग्री करेंगी कि जब वो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते साइकोलॉजी में जब लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं उनके पास, काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो वो हर मरीज को एक इंडिविजुअल की तरह देखती हैं, वो शायद ऐसा नहीं देखती होंगी कि पहले जैसा मरीज जैसा ये क्यों नहीं है, ऐसा वो नहीं सोचते, वो हर
1: सेम सिचुएशन में हो लेकिन
2: सेम सिचुएशन में क्यों ना हो।
1: बहुत सुंदर बात है, और मुझे लगता है बहुत कुछ जानना है मुझे आप दोनों से, क्योंकि आज हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, बच्चों में देखते हैं कि एक इमोशन इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, संभाल नहीं पाते, गलत स्टेप भी ले लेते हैं, तो वहां कैसे इमोशंस को हम बैलेंस कर रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी जानेंगे, एपैथी क्या है और उसको उसके बारे में भी जानेंगे, और इस तरह से अपनी भावनाओं को और बेहतर समझने का हम प्रयास करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि इस एपिसोड में हमें यहीं तक का समय मिल रहा है, इजाज़त लेने का समय आ रहा है, तो अंत में कल्पना जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, खुद को बेहतर समझ सकें, एक मोमेंट निकाल

0: सके, तो उसमें क्या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें जो हमें हेल्प करे?
1: जी बिल्कुल। सो मैं अनुरोध करूंगी अपने श्रोताओं से कि वो जहां कहीं भी हैं केवल 2 मिनट के लिए समय दे अपने आप को और रिलैक्स होकर किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाए। गहरी और लंबी सांसें ले, अपने सांसों को भीतर जाते हुए बाहर आते हुए अच्छी तरह से महसूस करें, अपने आप से जुड़ाव महसूस करें। हर सांस के साथ स्वयं को फील करें, थोड़ा सा भीतर जाते हुए महसूस करें कि इस समय मेरे विचार क्या है और मेरी भावनाएं किस तरह की है। अब जब मुझे पता चला है कि मेरे विचार ये है और मेरी ये भावना है, तो मैं थोड़ा सा उन्हें टर्न करूंगा या करूंगी पॉजिटिविटी की तरफ, उस फ्लो को मैं ले जाऊंगी कुछ विचारों के साथ। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने मन में विचार दोहराएं कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। इस विचार को मन में 3 बार दोहराए, मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जैसे ही मन इस बात को मानने लगेगा, मुझे खुशी का अनुभव भीतर से होने लगेगा, मेरी भावनाएं खुशी का अनुभव करने लगेगी, संतुष्टता का अनुभव, शक्ति का अनुभव। गहरी और लंबी, और अपने आप से वादा करें, मैं अपने विचार और अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास सतत करता रहूंगा। मेरे विचार, मेरी भावनाएं समझने के साथ साथ मैं दूसरों के विचार और उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करूंगा। मैं लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करूंगा। गहरी और लंबी सांस ले और मन में विचार करें, मैं सुनूंगा, समझूंगा और औरों को सम्मान भी दूंगा। फिर से एक बार अपने आप को याद दिलाए, मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, शक्तिशाली हूं। इन विचारों को बीच बीच में दोहराते रहे, अपनी भावनाओं को महसूस करते रहे। धन्यवाद।
0: मुझे लगता है ये जो आपने विचार दिए, इन्हें हम दीवार पर कहीं लगा भी सकते हैं लिखकर, ताकि वो बार बार हमें याद आते रहें और वो अनुभव हम बार बार करते रहें जीवन में, क्योंकि एक बार से नहीं होगा, प्रयास लगातार करना होगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने दोनों एक्सपर्ट्स को करते हैं हम धन्यवाद कि हमें आपने गाइड किया और बहुत सिंपल तरीके से जो हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और किस प्रकार से अपने आप को अलग समझना है, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, ये भी हमने समझा आज। तो इसी के साथ जिंदगी को कहते हैं कि लव यू जिंदगी, और मिलेंगे लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में फिर से एक बार दूसरे सवाल और जवाबों के साथ। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। दोस्तों, जब भी वंदे मातरम सुनते हैं तो लगता है मानो मिट्टी की खुशबू सांसों में उतरकर हमें अपना कर्तव्य याद दिलाती है। जिस देश में वंदे मातरम गाया जाता है वहां हार नहीं सिर्फ इतिहास लिखा जाता है। आज की कहानी भी इसी गीत से शुरू होती है, एक ऐसा गीत जिसने एक पीढ़ी को जगाया और दूसरी को जोड़ दिया। आप सुन रहे हैं 107.8 FM, रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो आइए इतिहास के पन्नों में वापस चलते हैं, जहां एक दादा अपने पोते को वंदे मातरम और भारत की एकता की कहानी सुनाने वाला है।
1: बेटा राजीव, कहां गए थे?
2: स्कूल गया था दादाजी।
1: अच्छा, इधर आओ बेटे, बैठो मेरे पास।
2: जी दादाजी, बोलिए।
1: तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझसे पूछा था कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान क्यों नहीं बना? आज तुम्हें इसका जवाब एक कहानी के रूप में सुनाता हूं। ये कहानी सिर्फ एक गीत की नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा और संघर्ष की है।
2: हाँ दादाजी, सुनाइए।
1: आज से बहुत साल पहले जब मैं और मेरे साथी युवा थे, तब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस समय लोगों के दिलों में एक चिंगारी थी जिसे एक गीत ने आग का रूप दे दिया। वो गीत था वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था।
2: ये कब की बात है दादाजी?
1: ये 1896 की बात है, जब मैं बहुत छोटा था। उस साल कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। वहां महान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने मधुर स्वर में पहली बार कांग्रेस के मंच से ये गीत गाया। उस समय ये गीत केवल एक सुंदर रचना थी, लेकिन इसने हमारे दिलों में राष्ट्रवाद की एक नई भावना जगा दी। लेकिन बेटे, इस गीत की असली ताकत तब सामने आई जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ।
2: फिर क्या हुआ दादाजी?
1: अंग्रेजों ने हमारे बंगाल को बांटने की कोशिश की। उस समय पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। सड़कों पर लाखों लोग उतर आए और हर जुबान पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। ये नारा सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि आजादी के लिए एक युद्ध घोष बन गया था। और पता है, कांग्रेस के गरम दल के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने इस नारे को अपना मुख्य हथियार बना लिया।
2: लेकिन दादाजी, इस बीच कोई परेशानी नहीं आई?
1: इस गीत ने हमें एक किया, लेकिन यहीं से कुछ परेशानियां भी शुरू हुई। उस समय हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कुछ मुस्लिम भाइयों को इस गीत के कुछ हिस्सों पर आपत्ति थी।
2: कैसी आपत्ति?
1: उन्हें लगता था कि गीत में भारत माता को देवी के रूप में चित्रित करना उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है। वे भारत से प्यार करते थे, लेकिन इस तरह की पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं कर सकते थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता था। हमें सभी समुदायों को साथ लेकर चलना था। हम नहीं चाहते थे कि आजादी की लड़ाई में कोई दरार आए। बापू हमेशा कहते थे, हमारी लड़ाई अहिंसा की है और सबसे बड़ी हिंसा दिलों को तोड़ना है।

0: जब देश आजाद हुआ तो एक सवाल हमारे सामने था, हमारा राष्ट्रगान क्या होगा। एक तरफ वंदे मातरम था जिसने इतने सालों तक हमें प्रेरणा दी थी, दूसरी तरफ टैगोर का जनगणमन था जो हर भारतीय हर समुदाय के लिए था।
1: फिर कैसे फैसला हुआ?
0: जनगणमन में किसी भी तरह का धार्मिक संदर्भ नहीं था, वो भारत की विविधता और एकता का प्रतीक था। हमने बहुत सोचा विचारा, हमें लगा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत जरूर रहेगा क्योंकि इसने हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में हमें जनगणमन को चुनना चाहिए ताकि हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे गर्व के साथ गा सके।

इसीलिए 24 जनवरी 1950 को जनगणमन हमारा राष्ट्रगान बना और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

तो मेरे प्यारे बच्चे, वंदे मातरम और कांग्रेस का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें एक गीत ने क्रांति को जन्म दिया और फिर देश की एकता को बनाए रखने के लिए उस गीत को सर्वोच्च सम्मान देते हुए राष्ट्र के दिल में एक अलग जगह दी गई। यही हमारी समझदारी, हमारी दूरदृष्टि और हमारे देश को एक रखने की कोशिश की कहानी है।

0: दादाजी, मैंने सुना था कि वंदे मातरम के बनाने के बाद भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उसकी कहानी सुनाई है ना?
1: अच्छा, चलो आपको आज मैं वंदे मातरम की कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1870 के दशक में, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अपना प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ लिख रहे थे। ये उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ और इसमें वंदे मातरम गीत शामिल था। ये गीत भारत माता की स्तुति में लिखा गया था और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ दबे हुए राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया था। शुरुआती दौर में ये गीत एक धार्मिक भजन की तरह था, लेकिन जल्द ही इसने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया। बंकिम चंद्र ने इसे अपनी कलम से क्रांति का हथियार बनाया और ये गीत बंगाल के कोने कोने में फैल गया।
0: वाह दादाजी, हमारी राष्ट्रगीत की कहानी कितनी अनोखी थी।
1: हमारे कांग्रेस और राष्ट्रगीत के बीच एक प्यार और तकरार का रिश्ता था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर वंदे मातरम की पहली गूंज सुनाई दी। उस समय कांग्रेस एक नरमपंथी संगठन था और उसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से अधिकार प्राप्त करना था। इस गीत को राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक माना गया, लेकिन इसे लेकर कोई बड़ी बहस नहीं हुई।
0: तो फिर तकरार किस बात का था?
1: 1905 का बंगाल विभाजन का समय, ये वो मोड़ था जिसने वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत से एक राष्ट्रीय आंदोलन का नारा बना दिया। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित करने की घोषणा की तो विरोध में सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। वंदे मातरम का नारा हर जुबान पर था।
2: वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: ये नारा ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती बन गया और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की।
0: वो सब तो समझा, लेकिन कांग्रेस के साथ वंदे मातरम का मतभेद कैसे?
1: 1905 के अधिवेशन में वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के अंदर ही मतभेद उभरने लगे। कुछ मुस्लिम नेताओं को इस गीत के मूर्ति पूजा वाले अंशों पर आपत्ति थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है। उनके लिए भारत माता की देवी के रूप में स्तुति स्वीकार्य नहीं थी।
0: लेकिन दादाजी, यह तो सच नहीं है। यह गीत तो भारत का मिट्टी पर लिखी गई थी, जिसे हम माँ बोलकर संबोधित करते हैं।
1: हाँ, आपने सही कहा है, मगर 1920 के दशक में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। वंदे मातरम इस आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा रहा, लेकिन मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम संगठनों की आपत्तियां भी बढ़ने लगी थी। उनका तर्क था कि ये गीत हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक है और सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
0: दादाजी, यह तो समझ में आता है कि मुस्लिम समुदाय को पट्टी हो सकती थी, लेकिन क्या हम इस गीत के महत्व को सिर्फ इसलिए नकार देंगे कि यह एक समुदाय को पसंद नहीं है? क्या कोई और रास्ता नहीं था?
1: रास्ता था बेटा, और यही वो मुश्किल फैसला था जो हमें लेना पड़ा। 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के पहले दो छंदों को ही स्वीकार किया, जिनमें केवल मातृभूमि की स्तुति थी। बाकी के छंदों को हटा दिया गया ताकि मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। लेकिन ये हल भी सभी को संतुष्ट नहीं कर पाया। जिन्ना जैसे नेता इसे पूरी तरह से हटाने पड़ रहे थे।
0: तो फिर हमारा राष्ट्रगान जनगण मन कैसे बना?
1: 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे। उनके सम्मान में एक गीत की रचना करने के लिए कहा गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन के रूप में की। कांग्रेस ने इस गीत को 1937 में वंदे मातरम के साथ ही स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इसमें किसी भी धर्म या समुदाय की कोई विशिष्ट स्तुति नहीं थी। ये भारत की विविधता और एकता का प्रतीक था।
0: लेकिन क्या जनगण मन पर कोई आपत्ति नहीं थी?
1: थी बेटा, कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया चापलूसी वाला गीत कहा।
3: अरे, ये गीत तो जॉर्ज पंचम के चापलूसी में लिखा गया है, कोई राष्ट्रगान नहीं है।
1: लेकिन टैगोर ने इस आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह गीत भारत के भाग्य विधाता और जनता के नायक के सम्मान में लिखा गया है, न कि किसी राजा के। यह आरोप निराधार था और आखिरकार जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया गया।
0: तो दादाजी, दोनों गीतों में क्या अंतर है?
1: जनगण मन भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है, जो सभी समुदायों को एक साथ जोड़ता है। वंदे मातरम हमारी मातृभूमि भारत माता की स्तुति करता है। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारी पहचान और प्रेरणा का स्रोत बना। हालांकि आज भी कुछ लोग इस बात पर बहस करते हैं कि राष्ट्रगान वंदे मातरम होना चाहिए था, लेकिन जनगण मन को चुनकर हमने सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान किया।
0: मुझे लगता है कि यह एक अच्छा फैसला था। यह बताता है कि हम सभी के साथ मिलकर ही एक नया भारत बना सकते हैं।
1: बिल्कुल मेरे बच्चे, यही भारत की असली आत्मा है। ये हमें सिखाता है कि हम भले ही अलग हों, लेकिन एक ही देश के नागरिक हैं। यही वजह है कि आज हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं।
3: दादाजी की बातों ने राजीव के मन में इतिहास की एक नई तस्वीर बना दी थी। वो चुपचाप बैठा अपने दादा के ज्ञान की गहराई को महसूस कर रहा था। तभी दूर कहीं लाउडस्पीकर पर एक पुराना गीत बजने लगा।

0: दादाजी ये कौन सा गाना है?
1: ये वो गाना है जो हमारे बचपन में हर घर में बजता था, देशभक्ति से ओतप्रोत, जिसने हमें सिखाया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं।
0: दादाजी क्या आप जानते हैं, आज हमें यह सब इतिहास में पढ़ाया जाता है, पर उस समय के लोगों ने इसे महसूस किया था, हर एक फैसला, हर एक की।
1: हाँ बेटा, इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता, वो तो उन लोगों के जज्बातों, उनकी उम्मीदों और उनके बलिदानों की कहानी है जो उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखे थे।
0: तो फिर हमारा असली कर्तव्य क्या है?
1: हमारा कर्तव्य है इस विरासत को संभालना, जो आजादी हमें मिली है उसका सम्मान करना। ये मत भूलो कि हर सुबह की पहली किरण के साथ हम एक नया भारत बनाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक होकर अपने देश को आगे बढ़ाएं।
2: ये बात सुनकर राजीव की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रहा था, बल्कि अपने दादा के माध्यम से भारत की आत्मा को समझ रहा था। सूरज की अंतिम किरणें दीवार से छन कर आ रही थी। दादा और पोते की परछाइयां एक दूसरे से मिल गई, जैसे दो अलग अलग पीढ़ियां एक ही ध्येय से जुड़ गई हो।
0: धन्यवाद दादाजी, आज आपने मुझे सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, बल्कि एक नई सोच दी है।
1: मेरा काम तो बस इतना ही था बेटा, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है।
0: जी दादाजी।
2: इस प्रकार वंदे मातरम और कांग्रेस का रिश्ता एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है, जो राष्ट्रवाद के शुरुआती जोश से लेकर आजादी के बाद के समावेशी भारत के निर्माण तक फैली हुई है। ये गीत आज भी भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। वंदे मातरम और कांग्रेस का रिश्ता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समय के साथ बदलता रहा है। ये रिश्ता कई चरणों से होकर गुजरा, जिसमें गीत का उत्थान, उसका राष्ट्रीय नारा बनना और फिर विवादों के कारण उसका राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाना शामिल है।
0: दादाजी एक और कहानी सुनाई है ना?
1: आज नहीं बेटा, आज बहुत देर हो चुकी है, कभी और सुनाऊंगा।
2: दोस्तों, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बसता, वो तो हमारी सांसों में, हमारी मिट्टी में, हमारे गीतों में धड़कता है। आज नेहरू जी और राजीव की बातचीत ने हमें याद दिलाया कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, वो हमारी आजादी की धड़कन है और जन गण मन हमारी एकता की पहचान। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, पर जो नहीं बदलता वो है हमारा देश और उस देश के लिए हमारा प्रेम। इसी भावना के साथ आज की यात्रा यहीं खत्म होती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अध्याय और एक नई प्रेरणा के साथ, क्योंकि कहानी चाहे किसी भी युग की हो, संदेश हमेशा एक ही होता है, देश सर्वप्रथम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, सिर्फ 107.8 FM रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी, गर्व से कहते रहिए, वंदे मातरम।

0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: गणपति बाप्पा मोरिया,
1: मंगल मूर्ति मोरिया,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार,
0: एक दो तीन चार,
1: गणपति तेरी जय जयकार।
2: गुणाधिपति विद्यापति रिद्धि सिद्धि के नायक पधार रहे हैं, आइए बड़े उमंग से गणेश जी का स्वागत करें। गणेश उत्सव के महान पर्व को सभी मिलकर मनाते हैं और अपनी संस्कृति का संवर्धन करते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM के सभी सुनने वालों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रगति का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपका पास पहुंचाने के लिए उपस्थित हैं स्टूडियो में ही। तो पर्यावरण एनवायरमेंट का बारे में हर एपिसोड में कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर जब स्टूडियो में ही हमारा जो मेहमान का है, चाहे हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सजाग रहते हैं, वो आए हैं भोपाल राम पुरे जी, उनको स्वागत करेंगे रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। और खास दूर से आज आकर्षित होकर स्टूडियो में पहुंचे, तो उनको स्वागत करते, सर आपका स्वागत करते, वेलकम करते हैं। आज का विषय तो बहुत शानदार होगा और अति जानकारियां का साथ हम आज आपका पास पहुंच रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका, वेलकम, आपका इंट्रोडक्शन प्लीज।
2: सर नमस्कार। सर
1: नमस्कार।
2: पर्यावरण पर प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की परिणति और उसका जो एक्सप्रेशन है
1: जी,
2: वो रेडियो मधुबन के माध्यम से बीके पवित्र भाई हम तक पहुंचते हैं। तो आप सभी से प्रेरित होकर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहा है, वहां पर हमारा पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है
1: जी।
2: क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी उसी को प्रतिफलित करते हैं। शारीरिक स्वस्थता के साथ में फिर वही राजयोग और वही संकल्प के साथ पूरे विश्व में शांति के माहौल को बनाता है। आज इस कार्यक्रम पर अपनी बात आप समझ सबके साथ में समझ के साथ साझा करेंगे, उसका जो मुख्य विषय है वो हरित ग्रह प्रभाव रहेगा
1: जी। हरित ग्रह प्रभाव
2: जी सर, कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको सामान्य तौर पे कहा जाता है,
1: सभी को पता है।
2: जी हाँ जी हाँ। तो ये किस तरह से मानव को प्रभावित करता है, यानी कि मानव के स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, ये बात इसके अंदर हम आपके माध्यम से समझने और बीके पवित्र भाई के साथ में पवित्र विचारों के साथ में समझाने का प्रयास करें।
1: क्या बात
2: सर, जैसा कि मानसरोवर में हमने प्रभाव देखा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अपने आम आप में विश्व शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास है, उनके मुख्यालय का मानसरोवर एक भाग है। वास्तव में ये नाम लेते ही हमारे दिमाग में भी कहीं न कहीं अंतः वातावरण बन जाता है। मान सरोवर मानस में शांति को लाने वाला है और अंदर से आह्लादित करने वाला होता है। अगर हम ध्यान देवें उस पर, अगर हम ध्यान करें, अगर संकल्प करें और चारों ओर के वातावरण को देखें, तो वास्तव में वातावरण में बैठ करके वातावरण की बात करना ये अपने आप में अद्भुत है सर। अब यहाँ पर हरितिमा ऐसी है चारों तरफ, जिसकी कल्पना अगर आप आंखें बंद करके उस शांत भाव से उसको महसूस करें, तो आपके अंदर शांति का जो सागर है वो हिलोरे लेने लगता है।
1: क्या बात, सही है।
2: आसपास के वातावरण में राजयोग के द्वारा होने वाले विभिन्न सम्मेलन, सभी मुख्य भवनों में सम्मेलन हो रहे हैं और संकल्पित होकर के सभी अपने अपने तरीके से राजयोग सीख रहे हैं। तो सर, इस हरितिमा में राजयोग को सीखने का या जीवन को जीने का, और यहाँ से जो आसपास के जितने भी लोग हैं या जो भी इसको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को, उनको समझाने का एक अलग ही आनंद यहाँ पर महसूस किया जा सकता। अब हम मुख्य विषय पर बात करें, ये जो हरित ग्रह प्रभाव है
1: जी जी,
2: यह एक गैसीय प्रभाव है। बिल्कुल सर, गैसीय प्रभाव है, गैसेज का इफेक्ट है सर। इसमें ऐसा होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें,
1: सुबह शाम दोपहर में हमेशा उसका किरण,
2: बिल्कुल सर यही बात। अब वही बात आपने कही ना, सुबह दोपहर शाम
1: तीनों टाइम तो उसका तो रेज का
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर ये तो रात को भी रहती है। वास्तव में इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा
1: जी जी,
2: पूरी तरह से समझाने का प्रयास। रात को ऐसे रहती है कि पृथ्वी तो घूमती रहती है ना, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य भी ब्रह्मांड में घूमता है।
1: क्या बात, हम लोग सोचते थे सूर्य स्थिर है।
2: नहीं सर, नहीं, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं इसलिए इस बात को भी ढंग से रखना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है,
1: जी जी ब्रह्मांड,
2: ब्रह्मांड के अंदर लाखों सूर्य है, लाखों तारे हैं, और ये जो सूर्य है जो हमारे इस सौर मंडल का मालिक है सर, कोई एक सूर्य है। अब ब्रह्मांड की विशालता की तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन विषय आया तो बात समझाना जरूरी है कि सूर्य भी गति करता है, लेकिन अब हमारा जो ग्रह है, हमारा जो सौर मंडल है जिसमें सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, ये सारे के सारे ग्रह उसके चारों ओर सौर मंडल में परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। अब सूर्य से जो प्रकाश आता है सर, उसी से हमारा जीवन बनता है। जहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ हैं वहाँ पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश,
1: पर्यावरण,
2: ये सब मिल करके पर्यावरण बनाते हैं।
1: पर्यावरण का भाषा भी ऐसे हम जानते हैं, पर्यावरण का अर्थ ही हमारा चारों ओर का,
2: चारों ओर का आवरण, आवरण, बिल्कुल सर,
1: जिसमें सजीव भी है और निर्जीव भी,
2: सभी है, सभी कुछ है,
1: जीव जंतु।
2: और हम तो उसको अब नए तरीके से सोचते हैं, तब अंत है पर्यावरण की बात में यहाँ पर पहली बार कहना शुरू किया है।
1: जी जी जी,
2: क्योंकि पूरे दिन रात मैं तो पर्यावरण के बारे में सोचता हूँ आपके साथ, कि अंत है पर्यावरण भी हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाए, संकल्पित हो जाए।
1: हम तो बाहर,
2: बाहर बाहर वाला, बाहर वाला पर्यावरण है जिसकी बात कर, खूब ज्ञान पड़ा है,
1: अंतःकरण जो बाहर, उसमें हम पिछले
2: दोनों उसमें, हाँ दोनों पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत है अंदर आ जाएगा कि हमको इसके लिए काम करना है, तो बाहर तो है ही, तो उस पर खूब सारा ज्ञान है, सरकारें बांट रही है,
1: शक्ति जो है सोचने का, जो
2: जी
1: आता है सोच आपका,
2: बिल्कुल वही सोच आएगी, वो तभी जाकर के आप उस कार्य के लिए प्रेरित हो जाएंगे जैसा आपने हमको प्रेरित किया।
1: जी जी,
2: हम और आप इतने वर्ष से इसमें लगे, ये क्या है सर, ये अंतः पर्यावरण ही है, उसको आप अंतः चेतना कह दो।
1: तो जीव जंतु आया ना उसमें ही, हमारा चेतना
2: उसी में तो आएगा, इसीलिए तो आप भाग भाग पर सामुदायिक सेवा के लिए जाते हो, रेडियो मधुबन पर संगीत, मधुर संगीत सुना करके उस वातावरण को मधुर कर देते हो, उस वातावरण को
1: परमात्मा
2: मुरली सुना देते हो, परमात्मा की आवाज सुना देते हो, विभिन्न माध्यम से म्यूजिक के द्वारा उस वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास, तरंगित करने का प्रयास,
1: तो ये पर्यावरण के लिए का,
2: ये तो पर्यावरण ही है।
1: अच्छा, मैंने शुद्ध पर्यावरण,
2: बिल्कुल सर, शुद्ध, शुद्ध संगीत में और शुद्ध पर्यावरण आप

0: जिसको
1: डायरेक्टली नहीं तो सहयोग ऐसे जो हम कर
0: सीधा सीधा हाँ, वो इसलिए आप प्रेरित कर
1: पर्यावरण का अर्थ सही मायने में
0: सही मायने में बाहरी के साथ में अंतर
1: संरक्षण कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, आप इसकी प्रिजर्वेशन की बहुत बड़ी ताकत लगा रहे हैं सर। इसके साथ ही आपने मुझे भी भ्रमण कराया विभिन्न स्कूलों का, सब स्कूलों में क्या पाया आप जानते ही हो। तो वहाँ भी उसको तरंगित करने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, मतलब आपकी पर्यावरण के प्रति सोच, उनकी अंदर की चेतना भी जगानी है, तब जाकर के उस पर काम होगा।
1: बाह्य और अंतर
0: दोनों पर काम होने पर ही हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो सर जो हरित ग्रह प्रभाव है, मूल प्रश्न पर आवे,
1: जैसे सूरज का
0: सूरज वही सौर मंडल से
1: किरणें
0: आती है, तो वो सर जहाँ पर प्रकाश, पानी, उपयुक्त धरातल, पृथ्वी, जल, तेज, उपयुक्त वायु, शुद्ध वायु, आकाश, ये सब मिल करके जीव को उत्पन्न करने की या जीव के जीवन की, जीव के विकास की, उसके सर्वाइवल की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। साहब ये हजारों वर्षों पहले बहुत शुद्ध विशुद्ध पर्यावरण था, और अब पर्यावरण में
1: कुछ ना कमी आई है,
0: रोग भी बढ़े हैं इस पर, इसलिए रोज इसकी चिंतन हम करते हैं। उसका वजह यही है, चिंता करने की बात नहीं, उस पर चिंतन कीजिए, उस पर चलिए, उसको बचाने का छोटा छोटा छोटा छोटा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से यह पर्यावरण तरंगित हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और आपको इतना कुछ देगा कि उसमें आप खुशी से सराबोर हो जाएंगे। अब रही बात, अब हरित ग्रह प्रभाव जो हमारा पड़ रहा है वो किस तरह से हमारे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इस पर चर्चा करते हैं।
1: सही बात।
0: सूर्य से आने वाली किरणें, सुबह किरणें कितनी माइल्ड या सॉफ्ट या आनंददायी लगती है,
1: छोटा बच्चा जैसे प्यारा लगता है,
0: और दोपहर को तेज धूप जैसा ऋतु के अनुसार, और सायं को ढलती हुई किरणें,
1: सबका अलग अलग महसूस का
0: अलग अलग प्रभाव है सर।
1: हम सब
0: सबका अलग अलग प्रभाव है सर।
1: सुबह में तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, मैंने छाया का जरूरत नहीं, सुबह का बच्चा जैसे हो
0: तो सर वो सर अब देखिए स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक भी है,
1: सर्दी का टाइम में
0: बिल्कुल
1: उसके लिए तरसते हैं,
0: बिल्कुल तरसते हैं लोग,
1: और बाहर
0: ताकत मिलती है सर
1: बाहर में।
0: अरे गर्मी में आप बाहर निकल जाओ ग्रीष्म काल में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में, तो आपको ये चीज सहज ही समझ में आ जाएगी कि ये इसका संतुलन कितना हमारे लिए सहन
1: नहीं कर, 10 बजे तक सहन नहीं कर,
0: सहन नहीं कर पाता।
1: अभी 12 बजे तक हम रहेंगे सर्दी का टाइम में, कुछ
0: तो सर
1: ऋतु अनुसार उसका भी प्रकोप होता है, और खासकर कभी कभी ठंडी का टाइम में, सर्दी का टाइम में भी सहन नहीं कर पाता।
0: बिल्कुल सर ये होता है,
1: अभी 2 दिन पहले हम लोग गए थे, सहन नहीं हो पाया 12 बजे,
0: बिल्कुल
1: सर्दी का मौसम।
0: तो सर ये संतुलन आवश्यक है, और ये संतुलन होगा तभी जा करके हम हमारे सभी कार्य, विकास के कार्य वगैरह सभी सुचारू रूप से कर पाएंगे। अब सर
1: ये तो है जो भी बोल रहे,
0: किरणें आती है सुबह
1: जी,
0: वो सर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी है, सूरज की किरण है सुबह एक निश्चित समय तक या थोड़े समय तक जब वो माइल्ड रहता है तब तक आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है, विटामिन डी भी मिलता है। तो सर
1: अरे बहुत सारा चर्म रोग जो होता है ना,
0: बिल्कुल उससे ठीक होता है। अब सर इसी पर हम बात,
1: घाव फोड़ होता है,
0: बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात,
1: खोला में कोई बैंडेज वगैरह नहीं करते, इसे खोला छोड़ते धूप में बढ़ते तो
0: बिल्कुल सर वो ठीक हो जाएगा सर। ये चीजें सर जब अपन कई बार आध्यात्मिक अपन कई बार बात करते तीर्थों की, सर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
1: जी
0: ध्यान करना, साधना करना, तीर्थ के जल से नहाना, सर वो जल वहाँ शुद्ध है इसलिए वो तीर्थ,
1: और भावना भी शुद्ध रहता है,
0: सर भावना भी शुद्ध है,
1: वहाँ जो जाते तीर्थ पर ऐसे अशुद्ध विचार कोई ज्यादा नहीं
0: सर,
1: और भावना आपका शुद्ध होगा ना
0: जी,
1: कहीं भी जाएगा आपका भावना से वो अमृत बन जाएगा सर।
0: बस तो वो सर पर्यावरण में दुगना फायदा करेगा,
1: और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। आप जब पॉजिटिव भावना, मैंने देखा है पॉजिटिव भावना लेकर कहीं जाए
0: जी हाँ,
1: और प्रकृति जो 5 तत्व है
0: जी जी
1: वो भी आप पहचानता है,
0: पॉजिटिव
1: भावना लेकर
0: बस बस बस,
1: और वो अपना रूप को,
0: तो सर वहाँ पर रोग मुक्ति तीर्थों पर अधिकांश देखी गई है,
1: वो तो है जैसे गंगा जल में जाते हैं
0: जी जी जी,
1: कोई भी तीर्थ
0: पर वहाँ सर गंदगी करेंगे तब तो नुकसान ही, वही बात जैसे गंगा जी को साफ करने का अभियान अब छेड़ना पड़ा,
1: क्या जरूरत,
0: नर्मदा सफाई अभियान अभी छेड़ना पड़ा,
1: कारण
0: और कारण की व्यक्ति सर वहाँ जाता है लेकिन वो पॉलिथीन वही इधर उधर डाल देता है, कचरा इधर उधर डाल देता है, तो वो नियत स्थान पर नियत समय पर डालेंगे तब जाकर के हम सरकारों का भी सहयोग कर पाएंगे, नहीं तो वो चीज कितना नुकसान के, आपको भी नुकसान होगा दूसरों को भी नुकसान आप कर रहे हैं
1: जी।
0: तो जो हरित ग्रह प्रभाव है सर, यहाँ पर मुख्य सोचने की बात यह कि वो गर्मी को बढ़ाता है,
1: गर्मी को बढ़ाता
0: है, टेम्परेचर को, ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है सर? कि वो जब टेम्परेचर को, जब उसकी जो तरंग दैर्ध्य के हिसाब से जो किरणें अंदर घुस जाती है, हमारे वातावरण में आती है, वो पृथ्वी पर टकराने के बाद सर वापस जाती है ना, वहां पर जो ये हरित गैसीय जो आवरण जो बनता है
1: जी,
0: वो गर्म उनको कितना रोकता है, वो उनको रोक लेता है। और वो सर एक सीमा तक तो ठीक है, अभी तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर जो टेम्परेचर आप बढ़ने की बात कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। हमारी स्किन वगैरह पर जो फायदा करता है वो ही नुकसान कर जाएगा। तो इसके लिए हमको सावधान होने की बात है। तो ये जो सर वापस जाने वाली तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं, वो सर इस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड का।
1: कार्बन डाइऑक्साइड
0: मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड इस पर ज्यादा प्रभाव डालती है। अब सर इसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवरण है,
1: आवरण
0: उसका जो आवरण बना हुआ है, या अन्य गैसें भी है जिसमें जिस चीज का प्रभाव है, मैं उसका परसेंटेज भी आपको बताऊंगा। तो वो जो आवरण का जो प्रभाव है सर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण 76% तक उसका प्रभाव रहता है उस पर।
1: 76
0: टोटल में से, जैसे 100% अगर कोई चीज है तो 76% दुष्प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। CH4 का जो प्रभाव है वो 16% है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 6% है, और जो जितनी फ्लुओरिनेटेड जो गैसेज हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो 2% होता है। 2% मीन्स ये भी बहुत बड़ा सा प्रभाव माना जा सकता है। सर आपसे मैं इसमें बात करूं तो सबसे ज्यादा काम इस पर जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नॉर्वे सर सबसे ज्यादा काम कर रहा है इसके अंदर।
1: ओके
0: सर, नॉर्वे में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको महासागर के तली में स्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत काम हो रहा है सर, उसको स्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जर्मनी में सर बहुत बड़ा काम हुआ है। ये कुछ देश है बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, या उसका कोई साइंटिफिक उपयोग किया जा सके कहीं और, या फिर उसको डंप किया जा सके। इस तरह करके जो तरीके हैं वो बहुत अपनाए जा रहे हैं। तो हम सबको भी इसके लिए सावधान होकर के इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। अब सर ये सर मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था कि ये कैसे कैसे सर इफेक्ट करती है, ये परसेंटेज बताया। अब सर ये कितने वर्ष तक एस्टैब्लिश रहती है, ये चीज बता रहा हूँ। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, आज जितनी निकल गई उसका, हाँ वो कितने वर्ष बाद खत्म होगा भाई? जैसे आज निकली, आज वाली वो इतने वर्ष बाद, फिर जो कल निकलेगी वो फिर आगे इतने वर्ष तक, मतलब रहेगी तो सस्टेन ही, लेकिन आप उसका कितना कम प्रभाव दुष्प्रभाव कर पाते हैं उसके लिए सोचने वाली बात है। इसमें सर ये है कि आपका जो CH4 है वो सर लगभग 12 वर्ष तक निवास करता है। सर ये सारे साइंटिफिक आंकड़े हैं सर, जो वैज्ञानिक जितने भी जर्नल निकलते हैं उसके अंदर से, 12 वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है। मतलब 12 वर्ष के बाद वो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन वो 12 वर्ष रहेगा। कल से निकला वो फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष, मतलब तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा। और फिर जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा।
1: इसका अंत नहीं,
0: इसका अंत नहीं, तो इस
1: डेली जन्म हो रहा है,
0: वो कितना, हाँ, वो कितना नुकसान करेगा। तो उसी क्रम में दूसरे भी समझना,
1: जैसे तो
0: जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सर 100 वर्ष तक निवास कर, मतलब आज जो निकली सर आज जो निकली उसको अगर वृक्षारोपण के जरिए नियंत्रित नहीं किया, या मशीनों से आपके व्हीकल के धुएं को कम नहीं किया गया,
1: तो मानव समाज के,
0: तो 100 साल तक रहता है आज का प्रभाव, 100 साल तक रहेगा। जैसे इस समय जो हुआ है प्रदूषण वो 100 साल रहेगा, दूसरे घंटे हुआ वो 100 साल रहेगा,
1: एक दिन में तो कितने घंटा होता
0: है। हाँ, सर इसमें टनों निकलती है, उसके आंकड़े भी मैं आपको बाद में देने का प्रयास करूंगा। और यही सर हमको प्रेरित किया है कि हम इसके लिए थोड़ा लोगों को सचेत करें, थोड़ा जागरूक करें वहां जाकर के, ताकि भाई तुम थोड़ा लंबे समय तक अपने आप को बचा पाओ, या फिर जब तक बचो तब तक अच्छा काम करो। आप बीमारियों से ग्रसित तो ना जियो, आप सुखी शांत और आनंद में जीवन तो जियो।
1: कितना बड़ा विषय है,
0: इसलिए सर
1: हमें कितना जागरूक होना चाहिए। हमें कैसे लग रहा, आप जैसे पूरा
0: जी जी जी जी
1: इसको अनुभव किए, भाई करो कुछ, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा कल। बचाओ, बचाओ के
0: करो, खुद के लिए करो सर, खुद के लिए करो,
1: खुद भी कर रहे हैं उसका साथ साथ हम खुद के लिए, हमारा समाज भी है ना हमारा साथ, तो उसको भी देखना है ना।
0: सभी आप सर यही बात, समाज ऐसे बनेगा, आप स्वयं क्या करेंगे, मैं स्वयं क्या करूंगा, वो स्वयं क्या करेंगे, तो ये तो समाज बन गया है ना सर। तो समाज खुद का काम समाज करेगा तब सर सरकार है उसमें कुछ कर पाएगी, नहीं तो फिर सरकार क्या करेगी सर।
1: सही बात
0: सर। तो सरकार के सहयोग के लिए स्वयं को अपने आप को बदल करके इसमें काम करना होगा। सरकार ने तो सर पर्यावरण मंत्रालय बना दिया।

0: के संबंध में
1: संबंधित करता है
0: पर्यावरण के संबंध में।
1: सुनेंगे अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल खासकर पर्यावरण स्पेशल में आज हरित ग्रह प्रभाव के बारे में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमें खुशी लग रहा है इस तरह कम्युनिटी से कोई आकर हमारा रेडियो मधुबन को सजाएंगे कितना खुशी का बात। क्योंकि सरकार का जो मंशा है कम्युनिटी एंगेजमेंट सही में आज देखने को मिल रहा है जो 12-13 साल से रेडियो मधुबन आसपास गांव अंचल में घूमता है उसका परिणाम धीरे धीरे समझ कर आ रहे हैं समझदार बन के और रेडियो में अपना आवाज को सुना रहे हैं ये बहुत खुशी का बात है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे हैं, खासकर एनवायरनमेंट पर्यावरण का विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारा साथ इसको सजाने के लिए हमेशा की तरफ आज भी उपस्थित है स्टूडियो में। आज हम कम्युनिटी आउटरीच में नहीं पहुंचे, आज हम स्टूडियो में ही उनको बुलाए और स्टूडियो से ही आपको आपका बात को हमारा बात को आप सब तक रूबरू कराने के लिए तो सर को पुनः स्वागत करते हैं। ब्रेक का बाद तो सर, खासकर हम पिछला लिंक में इसी लिंक में हम सुनाए थे एक मास एक उपवास, मास तो जानते
1: महीना
0: और उपवास मतलब
1: आराम
0: देना है और कुछ खाना में निर्जल उपवास कहते हैं,
1: गजब गजब।
0: और जब कोई त्योहार
1: आता है बहुत फायदा
0: उपवास होता है,
1: बहुत
0: तो उसमें पर्यावरण को, ये तो मनुष्य को फायदा होता है खुद को, लेकिन उसमें पर्यावरण को क्या फायदा होगा?
1: जी जी
0: सर, आप ही
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब सर बात से बात निकली है
0: जी,
1: तो सर एक मास एक उपवास, सर ये इतनी बड़ी थीम है पर्यावरण की रक्षा के लिए जिसका कोई सानी नहीं। अपन सोचेंगे कि ये तो सामान्य बात बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, पर सर इस पर जो अभियान सरकार ने चलाया है अभी उसका उद्घाटन परसों ही भारत सरकार के द्वारा किया गया है,
0: 12 दिसंबर 2025
1: को इसका उद्घाटन हुआ है सर। उसमें सर ये एक मास एक उपवास इतना बड़ी थीम मुझे लगी सर, कहने में सबको पता है सरल सी चीज है,
0: करते भी है उपवास,
1: करते भी है, लेकिन क्यों करें ये वाली बात उसमें सामने आ गई सर। उसमें पर्यावरण मंत्रालय से अपने जो मंत्री हैं
0: राजस्थान का ना
1: भूपेंद्र यादव, सेंट्रल का सेंट्रल भूपेंद्र यादव जी ने उन्होंने कहा, मतलब बहुत ही गजब की बात उन्होंने कही कि शरीर का जो जो वजन बढ़ता है उसको कम करने के लिए उपवास आवश्यक है, यानी कि जो जो वजन बढ़ता है शरीर में बीमारियां बढ़ती रहती है और आपका जो अंदर का जो पर्यावरण का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है।
0: जैसे
1: आप जब अस्वस्थ हो जाते हैं और अस्वस्थ हो गए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो
0: सकता है, बेचैन होगा पर्यावरण का, उसका वाइब्रेशन जाएगा भाई, जो भी आपके पास आएंगे पशु पक्षी होता है धूप में आपको अच्छा नहीं लगेगा,
1: नेगेटिव
0: जाएगा
1: बस, तो फिर नेगेटिव बस, तो फिर आपका जो है आपकी सोच ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो फिर आप क्या कर पाएंगे। तो सर एक मास में एक उपवास वाली जो थीम है उन्होंने योग के साथ में इसको करने का कहा, जिसमें शारीरिक योग की बात उन लोगों ने कही, तो आध्यात्मिक योग तो है ही, आध्यात्मिक होगा तभी शारीरिक योग होगा। बाद में सर उसमें डॉक्टर सरीन जो एशिया के लीवर ट्रांसप्लांट और पाचन के सबसे जबरदस्त विशेषज्ञ है पूरे एशिया के बड़े डॉक्टर्स में, उन्होंने कहा कि आप जितना उपवास करेंगे उतना ही शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपका बिना किसी दवाई के ही ट्रीटमेंट हो जाएगा।
0: इसलिए डॉक्टर लोग कभी कोई कहते भाई आपका आहार पर थोड़ा हल्का लो, कम लो,
1: नियंत्रण करो आहार पर नियंत्रण करो। तो सर उन्होंने ये कहते हुए कहा कि छोटे बच्चे जो है ना सर, अभी आजकल के क्या करते हैं हम लोग, छोटे बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाते, छह महीने तक छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाना आवश्यक है ये उन्होंने बताया। अगर आप 6 महीने तक बच्चे को, छोटे बच्चे को माँ का दूध, अति आवश्यक कोई कारण हो जाए वो एक बात अलग है, लेकिन उसको जब माँ का दूध पिलाएंगे तो उसमें इम्यूनिटी उसकी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि वो आगे जा करके बीमार नहीं होगा, उसका जो आंतरिक पर्यावरण इतना बढ़िया हो जाएगा कि वो बीमार होने की स्थितियां उसकी बहुत कम होगी, नहीं तो वो मोटा हो जाएगा।
0: चैलेंज का बात है,
1: ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर,
0: कि पहले से लोग का 6 महीने तक माँ का दूध नहीं पिलाना है, उसका तो सबका मन है माताओं का,
1: लोग तो ये कहते हैं जबकि वो कह रहे हैं कि उनको माँ का दूध ही पिलाना है। कोई अन्यथा कारण हो जाए जैसे कोई बीमार है माँ और वो एक अलग बात होती है, वो डॉक्टर की सलाह, लेकिन 99% मतलब 100% ही बच्चे को जब आप माँ का दूध देंगे तो 6 महीने तक उसको देंगे और उसके बाद में उसकी जो भोजन प्रणाली है वो भी व्यवस्थित रहेंगे, वो मोटा नहीं होगा, तो मोटापे से उसके शरीर में उसका लीवर फैटी हो जाएगा, उसके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएंगे, तो भाई वो क्या बीमार हो जाएगा तो फिर वो क्या आगे बढ़ेगा, क्या सोचेगा, क्या उसका विकास होगा, क्या आप पढ़ा लेंगे, क्या लिखा लेंगे। तो सर ये पर्यावरण को सबसे जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है, तो यहाँ पर अगर आप और हम सब भी संकल्पित हो जाए 1 महीने में 1 दिन का उपवास, ये मशीन भी सर 2400 घंटे चलती है शरीर, तो इसको कभी कभार आराम करवा दे,
0: ओवरहीलिंग करने के लिए,
1: ओवरहीलिंग करने के लिए इसको आराम करवा दे। उस तरह पूरे दिन आप शिथिल होकर के आनंद के साथ में आध्यात्मिक चिंतन करें।
0: शुरू शुरू में जब भी कोई संक्रांति होता है, अमावस्या होता है, तो
1: जी जी जी
0: माताएं उपवास करते
1: हैं। सर इनके संस्कार में है, इनकी संस्कृति में है,
0: कम खाते भोजन भी एक टाइम करते हैं, कोई कोई पूरा दिन
1: जैसा भी उपवास करे। सर आप अगर 7 दिन के बाद, आप 15 दिन के बाद नियमित अंतराल पर महीने में
0: प्रभाव पड़ेगा
1: उसका, निश्चित रूप से उसके शरीर पर, उसके माइंड पर, उसके सोचने पर, उसके अंतः चिंतन पर, सब पर प्रभाव पड़ेगा। और वो सर कितना भोजन बचा देगा।
0: तो अरे जो अंतर में जो इंजन हमारा है, जो भी इस पकाने के लिए पचाने के लिए जो
1: जी जी,
0: उनको लगेगा चलो आज तो मुझे रेस्ट मिला, कोई आया नहीं कुछ,
1: इतना रेस्ट कभी कभार उसको भी
0: रेस्ट।
1: तो सर
0: वो जंत्र भी अपना ओवरन जो भी कचरा था वो निकल,
1: वो भी निकल जाएगा,
0: उसको तो खाने के लिए चाहिए तो चलाएगा तो खराब निकल जाएगा गंदगी।
1: तो सर
0: ये भी ऐसा पॉइंट,
1: सर लीवर के लिए सबसे जबरदस्त उपाय है सर
0: उपवास,
1: क्योंकि सर उपवास होगा तब क्या होगा। सर वो डॉक्टर ये बता रहे थे कि जो ग्लूकोज आपका इकट्ठा हो गया है बॉडी के अंदर, फैट जो आपका इकट्ठा हो गया है बॉडी के अंदर, वो सर जब उपवास होगा तब बॉडी उसी को कंज्यूम करती है।
0: इसमें हम लोग जनरल देखते हैं आसपास का भाषा में
1: जी,
0: माताओं का उम्र ज्यादा बढ़ता रहता है और भाई लोग का
1: ठीक
0: कम उम्र में शरीर छोड़ देते,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उपवास का जो माता है जितना
1: सर,
0: और खान पीन को थोड़ा कंट्रोल करते हैं
1: जी जी,
0: है ना सर।
1: तो ये सर यही सबसे बड़ा फायदा है।
0: भाई लोग का देखिए, मैंने देखा स्वामी स्त्री रहते हैं,
1: बिल्कुल सर,
0: बुढ़ा बुढ़ी जो होते हैं
1: जी जी जी,
0: ओल्ड एज जो होते हैं, तो कम लोग जो बूढ़ी पहले जाते हैं शरीर छोड़ते हैं, बुढ़ा बाद में जाते, लेकिन अधिकांश लोग पहले मर्द जो मेल छोटा है,
1: तो होता है बस फिर अगर आप ये बताते हैं तो इसका मतलब
0: कारण भी है, मैंने देखा
1: कारण
0: है, सोच और उपवास
1: बड़ा कारण है सर। वो सोच से शांत रहते हैं
0: तो एक मास में एक उपवास जो सर, इसका सार्थक तो
1: बिल्कुल सर, बहुत
0: सभी को
1: जबरदस्त जबरदस्त अंतर लाएगा मानव जीवन के कल्याण के लिए,
0: तो
1: बहुत उपयोगी।
0: ब्राह्मण लोग जो होते हैं सर
1: जी जी जी,
0: वो लोग तो उपवास कराते हैं, करते भी, अरे सभी को कराने के लिए तत्पर, अरे सरकार ने दे दिया भाई करना ही है।
1: और सर उपवास कैसा करना चाहिए वो फिर देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उपवास में इधर का खा लिया उधर का खा लिया उसको पेट को खाली छोड़ना पड़ेगा,
0: नहीं वो तो निर्जल उपवास है
1: भाई, सजल भले ही कर लो लेकिन कम से कम उपवास में उपवास ही होना, ऐसा नहीं कि ये तल के वो खा लिया वो खा लिया,
0: चावल का गेहूं का नहीं खाएंगे
1: बस, तो उसमें
0: खा सकते
1: सर निश्चित, पर कुछ भी नहीं खाना है तब जाकर के सर उस उपवास का सही प्रभाव उसकी सोच पर हो जाएगा, और सर वही सोच आपके पर्यावरण भारी पर्यावरण को
0: याद
1: सुंदर, बिल्कुल सर वो प्रभु को याद करेंगे
0: उसमें याद रहता है।
1: तो सर ये पुरानी जो परंपरा है, पुरानी जो संस्कृति है, को वापस ले आइए ना।
0: जैसे शिवरात्रि जो आता है उसमें उपवास रहते हैं
1: जी हाँ,
0: होली में कोई कोई उपवास रहते हैं,
1: बिल्कुल
0: गुरुवार जो होता है लक्ष्मी का
1: सर, जब जब ऋतु का संक्रमण होता है उस समय उपवास अति आवश्यक है, तो शरीर उसको अपने आप ही एडजस्ट कर देता है, छोटा मोटा इंटॉक्सिकेशन जो होता है वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, तो ये तो सब जगह बहुत ही आवश्यक है सर।
0: जड़ चीज हम गाड़ी को भी ओवरलोडिंग करते हैं,
1: बिल्कुल सर,
0: हमेशा चलता तो रोकते हैं,
1: उसकी भी ओवरलोडिंग
0: चाहिए,
1: उसको भी तो रेस्ट चाहिए,
0: कोई भी कंटिन्यू चलेगा तो उसकी हालत क्या होगी।
1: तो सर इसको
0: हम तो कंटिन्यू करते रहते उसको जब, और नहीं वो काम नहीं हुआ तो दूसरे काम दे देते उस
1: पर, नहीं खाना वो नहीं देना
0: सर, खाना खाते हैं और काम पर मिल गया उससे ज्यादा।
1: तो सर ये कितना बड़ा सुप्रभाव लाएगा, बहुत बड़ी चीज है सर, सामान्य चीज आप और हम सब कहेंगे हमको तो पता ही था, अरे पता ही था पर पता काम तो करे तो होगा ना, पता तो है ही है, ज्ञान तो भरा पड़ा है, उसके लिए संकल्पित हो जाइए ना, एक सिस्टम में ले आइए ना उसको,
0: कब उसको चोट लगे तब उसको जागृत होता है सर, ऐसे हाँ कुछ तो नहीं कभी होगा नहीं हाँ, हम जैसे उसको भाई देखो ऐसे क्या ना ऐसे भोगना पड़ता है,
1: तो
0: अगर आधे सर जो
1: बड़ा तब तब जाकर के ये बात समझ में आएगी कि अपने को ये करना बहुत,
0: हम तो नेग्लेक्ट कर दे, आपने बताया
1: जी जी,
0: ये तो होना चाहिए, एक बार उपवास करना चाहिए,
1: होना चाहिए सर, फिक्स करेंगे तभी होगा, एक महीने में एक दिन करना है या कैसे करना है,
0: फिर 15 दिन में करिए दो बार,
1: हाँ, वो
0: महीने में दो बार,
1: जैसे वो एक अलग बात है, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए सर, शरीर बॉडी सभी को आराम मिलेगा, उसमें जो इंटॉक्सिकेशन से जो फैले हुए हैं शरीर के अंदर जो जमा हुआ है डिपॉजिट, उसको वो बॉडी अपने आप ही कंज्यूम कर लेगा, तो आप निरोगी,
0: इससे इंडायरेक्टली पर्यावरण का साथ हम सहयोग,
1: बिल्कुल सर, अपन सर इंडायरेक्ट या डायरेक्ट भी सहयोग कर रहे हैं,
0: दिन जितना हम 5-6 सर
1: अब सर बात कर ले, भारत की जनसंख्या 160 करोड़
0: जी जी,
1: दुनिया की
0: 6-7 अरब
1: ठीक है, एक एक टाइम का उपवास अगर महीने में एक व्यक्ति करता है
0: तो कितना अनाज पानी
1: कितना फायदा कितना
0: सब बच सके।
1: सर सोचने से ये चीज समझ में आती है कि कितना फायदा है,
0: मैंने
1: पर फायदे के लिए नहीं, शरीर के फायदे के। सर आप रोग मुक्त हो रहे हैं इसके लिए, तो सर क्या आप पर्यावरण में सहयोग नहीं दे रहे?
0: ये भी सहयोग है,
1: बहुत बड़ा सहयोग है सर। और प्रतिदिन बचेगा सर, सर सर
0: लेकिन
1: सर प्रतिदिन बचेगा ना,
0: सिर्फ पानी को बचा दिन से एक ड्रॉप वो बदल नहीं, लेकिन तो खाना खा रहे हैं
1: इसको भी बचाइए,
0: उसमें कितना खर्च होता है,
1: कितना खर्च
0: एक गेहूँ आएगा कितना मेहनत,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: खेती जो कास्कर भाई हमारा दे रहे हैं
1: कितनी मेहनत करते हैं,
0: वो हमारे पास आता है रोटी बन के कितना मेहनत कितना लोग उसमें,
1: तो फिर
0: तो उसको हम बिना डालते जा रहे हैं,
1: डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार उसको लिया जाए तो वो
0: ज्यादा
1: रूप से
0: पर्यावरण
1: बहुत बहुत बड़ा फायदा।
0: और बचत भी
1: खूब जबरदस्त,
0: बचत मींस प्रोडक्शन सर।
1: सर मैं ये बता
0: रहा हूँ, भले नहीं कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम भले नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अनावश्यक लाइट को बंद किए,
1: ये भी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सर पर्यावरण को बहुत बड़ा संरक्षण है। लाइट का बटन बंद करना ये बहुत बड़ा संरक्षण है। अब लाइट को बचा रहे हैं, मतलब जिस सर जहाँ से लाइट आ रही है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है, तो उसको
0: एक यूनिट में कितना पैसा खर्च होता
1: है, कितना पैसा,
0: अब एक यूनिट बचत करते हैं उतना पैसा आप इनडायरेक्ट दे रहे हैं,
1: बिल्कुल आप इनडायरेक्ट उनको दे रहे हैं, तो ये तो सर कितनी बड़ी चीज, कितना पर्यावरण पर आप काम कर रहे हैं। तो छोटा छोटा करके अगर आप अभ्यास करेंगे, आपकी कार्य करेंगे, पर्यावरण की तरफ पॉजिटिव सोचेंगे, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा सहयोग कर जाएंगे।
0: सही बात, लेकिन ये ठान लेंगे दृढ़ता से करेंगे तब होगा,
1: सोचना तो पड़ेगा,
0: बोलने तो सभी बोलते हैं।
1: देखो सर बोल तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि करें, हम स्कूलों तक गए थे कि लोग करें उसको समझें तब जा करके होगा। पास होकर के 100 में से 100 नंबर लाना तो सामान्य चीज है,
0: कैसे भी करके
1: आ जाएंगे,
0: हो जाएंगे
1: फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन सर उसको व्यवहार में लाना है,
0: उसमें ही चैलेंज
1: सर, उसमें बहुत बड़ी बात है सर,
0: लालच मेहनत सब चीज उसमें आ जाता है।
1: तो एक बात मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं सरकारी सेवा में था तब मैं भी नहीं कर पा रहा था,
0: क्योंकि आपका जो दायरा है इतना तक रुकना है।
1: तो सर ये सरकार के सभी अधिकारियों की स्थिति बन रही है, करना तो चाहते हैं
0: कर नहीं पाते
1: क्योंकि काम इतना होता है,
0: क्या क्या करें जो प्राइवेट उसको करते हैं।
1: तो सर जब अंतः चेतना होगी तो वो भी करेगा,
0: क्योंकि सिस्टम में आपका जमा हो रहा है,
1: करेगा वो, तो इसलिए ज्ञान के साथ में करना होगा तो निश्चित कर लेगा, उसमें अगर दृढ़ निश्चय की बात आ गई, उसमें संकल्प आ गया, तो वो उस काम को किसी न किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके देने का प्रयास करेगा, तो वो हो जाएगा।
0: हुआ ही पड़ा है
1: सर, सिर्फ हुआ ही पड़ा है। तो सर इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है
0: जी,
1: वो सर 115 वर्ष तक सस्टेन कर जाती है वातावरण के अंदर। अब आप देखिए वो कितना बड़ा पॉल्यूशन का कारण बनेगी, और जो आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से वो 270 इयर्स तक ये उसमें सस्टेन कर जाते हैं सर। ओवरऑल इससे सर ग्लोबल वार्मिंग होकर के ग्लेशियर पिघलते हैं,
0: समुद्र का भी विनाश नहीं, अंत नहीं,
1: समझिए ना, हम यही समझाना चाह रहे थे, उसका पोल्यूशन जो कितना जबरदस्त हो जाएगा,
0: गहरा सांस लेना पड़ता है
1: इतना पोल्यूशन है। अब आप समझ रहे हैं, तभी तो ये बात,
0: फिर भी प्रकृति हमें कितना जिंदा रखने के लिए कितना कोशिश कर रही है,
1: प्रकृति कितना प्रयास कर रही है, प्रभु कितना प्रकृति के माध्यम से अपने को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं।
0: नहीं तो कब से धारा से निकल जाते
1: सर। एक और निवेदन कि उनकी प्रेरणा से जो जो आध्यात्मिक संस्थान, जो जो एनजीओ इसके लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो जो देश काम कर रहे हैं सर, वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं साहब, तब जाकर के संभव है, नहीं तो पृथ्वी पर सारा सिस्टम आज ही गड़बड़ा जाए। तो इस भयावहता को देखते हुए हमको पर्यावरण के
0: थोड़ा सा अटेंशन
1: संरक्षण के लिए हमको ध्यान देना होगा, और थोड़े थोड़े स्टेप ही आपके बहुत बड़े हो जाएंगे, छोटा छोटा, आप जहाँ शुरू हो, जहाँ खड़े हो वहीं से शुरू कर दीजिए, जैसे आपने जहाँ से हमको मिले वहीं से शुरू किया, ये चीज हो रही है, जहाँ है वहीं खेत में बैठो, जहाँ हो वहीं से चल पड़ो, जहाँ देखो वहीं पर उस चीज को कंट्रोल कर लो, उसके लिए सहयोग कर लो, तो मेरे ख्याल से प्रकृति आपको बहुत कुछ लुटा देगी, आप पर आशीर्वाद की बारिश कर देगी,
0: वहाँ पसारे आपको इंतजार कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: देने के लिए तय, क्योंकि आप उनका मालिक है, आज वो मालिक हो गया जिसका चलता आज भोगना पड़ता, क्योंकि आप मालिक जैसे नहीं रहे,
1: आप मालिक जैसे नहीं रहे, इसलिए फिर
0: वो मालिक बने गए, और दिखाई दे रहा,
1: बिल्कुल
0: कोरोना का ले लो, अभी अनावश्यक जहाँ बारिश सीजन नहीं वो बारिश हो रहा है,
1: बारिश हो रहा है सर,
0: इसे
1: इस बार सर जो बादल फटने की कितनी घटनाएं हुई आपके भारत के अंदर, हिमाचल में कितनी, कैसी हुई पंजाब में, कैसी हुई?
0: तो सर ये वैसे हम दहन किए लूटे हैं,
1: सर उसका रिटर्न तो मिलने, आपने जो किया है उसको
0: कर्म का सिद्धांत है।
1: तो सर हम सभी इसके लिए जिम्मेदार है, वो करने वाले ही नहीं, आप भी उनको समझा नहीं पा रहे, तो यहाँ पर हम भी जिम्मेदार है भाई, जो जानता है वो तो समझाए।
0: मैं नहीं जानता, तुम तो जानता, तुम क्यों बताया नहीं मुझे?
1: ये बात है, इसलिए सर ये बताना आपकी हमारी जिम्मेदारी, और ये कौन करेगा, हम करेंगे। हाँ तब जा करके ये सब कुछ संभव,
0: दौड़ दौड़ कर आ जाते आप
1: सर, आपने ये मौका दिया है तो सर इस बात को जन जन तक पहुँचाने का एक छोटा कार्य तो करें।
0: सर जो अति आवश्यकता है,
1: जी हाँ जी हाँ,
0: मेरा जब आता है ना, मेरा परिवार, मेरा एनवायरमेंट, मेरा समाज है,
1: मेरा है,
0: मेरा जो आता है ना सर, उसमें धूप छाया दूध नहीं दिखाई देता, मैं उसको बचाना है, मेरे को बचाना है,
1: बचना है,
0: मेरा परिवार है, मेरा पर्यावरण है,
1: जी मेरी दुनिया है,
0: मेरी दुनिया है और मैं उसमें,
1: मेरा
0: मेरा
1: मेरा ईश्वर है,
0: और एक प्यार सर,
1: जी प्यार के साथ,
0: प्यार से कर रहे आप
1: जी,
0: आपको जबरदस्त नहीं,
1: नहीं सर
0: जबरदस्त किसको नहीं कर सकते
1: सर, जबरदस्त
0: यहाँ से प्यार है, रेडियो मधुबन के साथ आपको प्यार है,
1: प्यार है,
0: और पर्यावरण के साथ प्यार है,
1: बस
0: मेरा पर्यावरण, पर्यावरण के साथ मेरा प्यार है,
1: मेरा प्यार है, बस मैं पर्यावरण की बात ही कर लो, ये मेरी पूजा है, ये मेरा भगवान है, इसकी बात ही कर लो, मैं इसमें दो बात नहीं डाल दो कैसे भी करके, अध्ययन करके, जी हाँ,
0: तो मेरा और प्यारा
1: जी,
0: और मीठा है,
1: बिल्कुल मीठा,
0: मिठास, मीठा परिवार, मीठा समाज,
1: बिल्कुल मिठास,
0: मिठास मतलब मधुर,
1: मधुर,
0: तो हमें भी खुशी मिलेगा और हमारा पर्यावरण हमें खुशी
1: देगा,
0: देगा, मेरा पर्यावरण मीठे पर्यावरण,
1: जी हाँ मीठा पर्यावरण,
0: और प्यारा लगता है, इसलिए हम लग पड़े,
1: जी हाँ, कभी खुशियों की बरसात
0: बरसात, हमें
1: बरसात खुशियों की बरसात,
0: क्योंकि पर्यावरण भी हमारा दोस्त है, मित्र है, परिवार है,
1: बिल्कुल सर,
0: तो इसलिए हमें खुशी मिलता है, और जैसे भोपाल राम जी जैसे वर्णविद एक्सपर्ट पहुँच गए, तो हमें तो और चार चंद लग गया, तो जाते क्या कहना चाहेंगे सर, जो आज का मूल जो हम लोग डिस्कशन किए उसमें क्या सार में क्या लेना चाहिए, हम क्या लेंगे और आप क्या लेंगे?
1: सर इसका सार तो यही है, अब आप सब जानते हैं कि हम क्या कहेंगे वह भी आप जानते हैं, लेकिन हम हमारे मुंह से कहते हैं कि ये हम जितना भी प्रदूषण का कारण जहां भी बनते हैं, गैसों को लेकर के या अन्य प्रकारों को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, जहां हम प्रदूषण का कारण बनते हैं, वो कारण कम कर दे और वहां पर जागरूकता फैलाए और आत्मचिंतन करें,
0: क्या बात,
1: राजयोग के माध्यम से करें,
0: तो चिंतन में विवेकवान, जिसको
1: विवेकवान होकर के हर
0: राज्य को
1: विवेकवान होकर के कार्य करें,
0: मैं क्या कर रहा हूँ
1: बस,
0: और उससे किसको दुख तो नहीं पहुँचे,
1: बस बस बस बस, और आपने स्वयं अगर कर दिया वो
0: जंतु,
1: आपने स्वयं कर दिया और एक पवित्र भाई से करवा दिया काम, या एक पवित्र भाई ने मुझसे करवा दिया काम, तो वो काम कारवा बन जाएगा, चल पड़ेगा, चल पड़ेगा, चल पड़ेगा, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली,
0: एक से तो शुरू होता है ना सर,
1: एक से ही शुरू होगा, एक से ही शुरू
0: होगा,
1: एक से ही शुरू,
0: एक तो हम और आप एक ही,
1: बस बस बस, चलता रहेगा, चलता रहेगा,
0: अच्छा लगा मुझे,
1: छोटा प्रयास,
0: छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा कोशिश हमारा, जैसे हम हर बार आपको एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा चिड़िया का जो कोशिश था, ट्राई किया,
1: बिल्कुल, तो उसमें
0: नाम
1: उसका सहयोग होगा, सहयोग,
0: सेतुबंध में जैसे हम अपना
1: जी
0: राम को सेतुबंध में मदद किया था, छोटा सा,
1: जी हाँ जी हाँ, तो सर वो एक गिलहरी वाली कहानी भी है,
0: वही तो,
1: वो गिलहरी रेत में यूं उलट पलट के वहाँ सागर पे जा, तो वो सर अब आप और हम समझते हैं कि पर हमारा भी इतना छोटा, उससे भी छोटा ही प्रयास है, तो वो वैसा ही करते रहे,
0: तो लाएगा रंग नहीं लाएगा
1: फूल खिलेंगे,
0: तो वो तो आप प्रभु, तो आपका प्रकृति आपको तो शाबाश देगा,
1: आशीर्वाद दे ही रहा
0: है, और दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, हमें यहीं पर दीजिए इजाजत, गोपाल राम पुरोहित जी जो कि हमारा पर्यावरणविद पूरा एक्सपर्ट है, और इस कार्यक्रम को उनका दिल से देने के लिए कोशिश करते, और हमें खुशी लगता है इससे मिलते, तो हमें भी खुशी मिलते, तो हमारा श्रोता मित्र भी इसको बहुत सुंदर से,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद, हम दोनों को दीजिए इजाजत, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे, और किसी बात को लेकर सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, और खासकर पर्यावरण स्पेशल, एनवायरमेंट स्पेशल प्रोग्राम,
1: थैंक यू।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। मधुबन अनप्लग्ड यानी कि संगीत का वो सफर, यानी कि शेर व शायरी, क्रिएटिविटी और पंक्तियों का सफर। जी हाँ, जब एक गाना बनता है तो शब्द मोतियों की तरह पिरोए जाते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन कहने का अंदाज इतना अलग होता है कि वो दिल में घर कर जाते हैं। और ऐसी ही कुछ बातें, ऐसी ही कुछ पंक्तियां, ऐसी ही कुछ लाइंस आज आपको मिलेंगी कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में। और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे समक्ष है एक ऐसी अतिथि, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने लेखन जगत में अपना नाम ही नहीं कमाया बल्कि ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया जो प्रेरणा का स्रोत है। जी हाँ, हमारे समक्ष है डॉक्टर अलका अग्रवाल सिकतिया जी, जिन्होंने बीएससी की, फिर अंग्रेजी में भी उन्होंने पढ़ाई करी, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट रही, पीएचडी की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। उनका शोध रहा हरिशंकर परसाई पर, लघु शोध और प्रबंधन शोध उन्होंने किया। कई प्रकाशन उनके नाम हैं, वैसे तो हम कुछ के नाम आपको जरूर लेकर सुनाते हैं, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, अदृश्य, मेरी तेरी, सबकी, मीरा कूल, व्यंग संग्रह है ये। कई पत्र पत्रिकाएं भी उनकी प्रकाशित हुई और इसके साथ साथ उन्होंने लेखन क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर फिल्म फेस्टिवल सम्मान हो, दुष्यंत सम्मान हो, रचनाकार आयोग द्वारा बिस्मिल्ला खां पुरस्कार हो, ऐसे कई अवार्ड भी उन्हें प्राप्त है। वैसे तो उनके करियर की लंबी व्याख्या है, लेकिन चलिए पहले उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में और जाने का आज अवसर हमें मिलेगा। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है अलका जी।
1: जी बहुत बहुत आभार, और ये मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि आज ब्रह्मा कुमारी के रेडियो मधुबन में मुझे ये अवसर मिला है। और बचपन से हम सुनते आए हैं और मैं 90s में एक बार यहाँ पर आई भी थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय बहुत से, हम जो मनुष्य होते हैं, जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत से जिज्ञासाएं थी, तो मैं लगातार प्रश्न पूछती जा रही थी क्योंकि उस समय छोटी भी थी थोड़ी सी। तो वो जो दीदी थे तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि आपके भीतर इतनी जिज्ञासा है, आप कहाँ रहती? मैंने बताया मुंबई, बॉम्बे, तब तो बॉम्बे था
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर पर जाइएगा, और कुछ ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर कई बार परेशान भी हो जाते हैं, तो वो कुछ कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिज्ञासा और परेशानी दोनों थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं, मेरे कदम उठ गए आपके जो मलाड में सेंटर है वहाँ उठ गए।
0: ओके।
1: और वहाँ पर फिर मुझे बहुत से प्रश्नों का उत्तर भी मिला और मेरे मन की परेशानियों का समाधान भी हुआ था। तो मैं लगातार कई बार गई, लेकिन फिर बहुत सी बातें होती कि अगर आपने परिवार चुना है तो कुछ प्रायोरिटीज हो जाती हैं कि वी कांट गो अगेंस्ट दैट। तो ठीक है, मतलब फिर मैं गई नहीं, लेकिन हाँ, मैं जो आपके सिस्टर बीके शिवानी जी हैं, उनको तो सुनना किसको अच्छा नहीं लगता
0: जी, जी।
1: तो बहुत बार जब हम कहीं अटकते हैं ना, तो हम जब उन सुनने लगते हैं तो हमको बहुत से प्रश्नों का समाधान मिल जाता है
0: जी।
1: और अभी शिव बाबा ने, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम है, फिर से उन्होंने बुलाया, और यहाँ पर भी जो आपका आर्ट एंड कल्चर का ये जो 3 दिन का पूरा कॉन्फ्रेंस होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो उसमें क्योंकि विषय इतना अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको समाज को बचाना है, देश को बचाना है और विश्व को बचाना है, तो परिवार को बचाना सबसे अधिक आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो विषय था, और मेरा विषय था संस्कृति, संस्कार और परिवार के मूल्यों के संवर्धन की कला, तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मुझे ये लगता है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और जो दूसरे देश के लोग हैं वो हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो खैर, ये तो मैंने बताया कि स्पीकर यहाँ आई थी, लेकिन आज आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
0: वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में, लेकिन मैंने आपकी बहुत सुंदर प्रोफाइल जो पढ़ी उसमें आप ये भी लिखा था कि आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग की।
1: सॉरी,
0: आप फाउंडर हैं क्रिएटिव राइटिंग।
1: जी जी, हाँ।
0: जी, तो अगर उसके बारे में कुछ बताएं।
1: जी जरूर। क्रिएटिव राइटिंग देखिए क्या होता है, जो लेखक होता है ना, नजर और नजरिए का फर्क होता है। अब सामने ये पेड़ दिख रहा है मुझे, है ना, मैं भी देख रही हूँ, कोई और भी देख रहा है, किसी को सिर्फ लगेगा कि उसमें पत्तियां हैं, लेकिन एक जो लेखक होता है उसमें अलग दृष्टिकोण से देखता है। एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है. तो बहुत से लोग कोविड में खास तौर पर बहुत, क्योंकि कोविड में लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे थे, अंतर यात्रा कर रहे थे. और कई लोग जब बहुत परेशान थे तो कई लोगों ने हमसे संपर्क किया
2: जी.
1: मेरे साथ में दिनेश शाकुल जी हैं, जो चंद्रगुप्त बनते थे चाणक्य सीरियल में और काफी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत नॉलेजेबल हैं
2: जी.
1: तो कई लोगों ने हमसे कहा कि लिखा कैसे जाता है, हम लिख तो रहे हैं. तो फिर हमने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो शुरुआत करी. और उसमें हमने कहा कि जो कविता क्या होती है, कविता में अलग अलग भाव होते हैं, नाद होता है और उसमें किस तरह से आप उसको लिखते हैं. तो फिर हमने ये काफी सारी पूरा सिलेबस बनाया था. 5 मॉड्यूल्स थे, उसके 5 मॉड्यूल्स में हमने वो सिलेबस बनाया था.
2: अच्छा.
1: और उसमें हम उनको वो पूरी क्लासेस लेते थे और उसके बाद उनको हम होमवर्क देते थे. तो कई लोगों ने उसमें बहुत अच्छी कविताएं लिखना सीखा. और क्योंकि मैं महिला काव्य मंच है, अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके फाउंडर है नरेश नाथ जी, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र मकाम का अध्यक्ष बनाया. तो उसमें बहुत सी महिलाएं जुड़ी. और उसमें आरुषि जी क्या है कि मन से मंच तक.
2: अच्छा.
1: है ना
2: जी.
1: तो ये जो आपने कहा क्रिएटिव राइटिंग और मन से मंच तक, तो मन में बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना. आप अनुभूति को जब अभिव्यक्ति में ढाल देते हैं, उसको उतार देते हैं कागज के कैनवास पर, तो वो कविता, कहानी, गजल कुछ भी बन जाती है
2: जी.
1: तो इसी तरीके से जब बहुत सी महिलाएं आई जिनको लिखना नहीं आता था और वो केवल कुछ भी या तो किसी की पढ़ देती थी, फिर हमने उनको थोड़ा सा और गाइड किया. तो इस तरह से जो क्रिएशन, क्योंकि देखिए कलाकार तो क्रिएशन करता है.
2: बिल्कुल.
1: और यहाँ पर एक चीज मैंने बड़ी अच्छी सुनी कि कलाकार यानी जो कल को आकार देता है.
2: क्या बात है.
1: तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो हम ये नहीं कहते कि हम सचमुच पूरा कल को आकार दे सकते हैं, एक चेतना जरूर पैदा कर सकते हैं. तो एक क्रिएटिव राइटिंग के क्रिएशन कैसे था, राइटिंग तो है लेकिन क्रिएशन क्रिएटिव कैसी हो, रचनात्मकता कैसे आए उसमें, तो ये जो है हमने पूरा मॉड्यूल बनाए हैं और उसको लेकर के हमने पूरी कविता के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग की. इसी तरह से कहानी पर भी हम मॉड्यूल बना रहे थे लेकिन किसी कारण से छूट गया. क्योंकि मैं कहती हूँ कहानी एक घटना से नहीं होती. जैसे जब हम छोटे थे, मैं बहुत छोटी उम्र से लिख रही हूँ, पहले तो मैं बता दूँ 6-7 साल के लिए जब से मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया था. उसके रीजंस भी हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी.
2: बिल्कुल. खैर जानना चाहेंगे.
1: तो क्या होता है ना कि जैसे मैंने एक घटना कहीं देखी, दूसरी घटना कहीं देखी, तीसरी घटना कहीं देखी, तो हम जब सबको सिंक्रोनाइज करते हैं, क्योंकि जो रचनात्मकता होती है, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग होती है, वो रिपोर्टिंग नहीं होती है.
2: बिल्कुल.
1: उसमें आप यथार्थ के साथ में कल्पना का भी उसमें सम्मिश्रण रहता है.
2: बिल्कुल.
1: तो ये जो होता है, ये तो क्रिएटिव राइटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड और उसमें ये वाली बात है. और एक बात बहुत आवश्यक है कि क्रिएटिव राइटिंग कोई मशीनी तो वो होती नहीं. उसमें आपको भावनाओं में जब तक पगी नहीं हो ना, तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है. तो मुझे लगता है कि हर जो रचनाकार है उसके अंदर भावनाएं तो होनी चाहिए और वो अपने दुख के साथ दूसरे के दुख को भी उसी तरह से अनुभव कर सके,
2: संवेदनशील
1: कर सके. बिल्कुल. तो क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और जिंदगी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, तो उस जिंदगी को जब आप रचनात्मकता में ढालते हैं, वो क्रिएटिव राइटिंग.
2: क्या बात है. कितनी सुंदर डेफिनेशन दी है आपने.
1: थैंक यू.
2: आपने फिल्मों के लिए लिखा है, आप रेडियो की बात करें या फिर कविताओं की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, कहानी, मतलब बहुत बहुत कुछ लिखा है आपने. आपके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं. कुछ एक किसी प्रकाशन के बारे में आप जरूर बताएं. जैसे मान लीजिए, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल लगा, मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो इसके पीछे का क्या कहानी है, ये कैसे लिखा या क्या, उसके बारे में कुछ
1: मैं बताती हूँ. एक तो आपने रेडियो की बात की, उस पर फिर मैं मुर्दे पे आऊंगी. तो रेडियो लेखन के लिए मैं आपको बताऊँ की, क्योंकि जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, तो एक बार किसी ने कहा की बम्बई के में संयुक्त परिवारों पर आप कुछ एक लिखो.
2: अच्छा.
1: तो मुझे किसी ने चैलेंज किया कि आपको बॉम्बे में संयुक्त परिवार मिलने वाले ही नहीं है. लेकिन बोलते हैं ना, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ. और मुझे तो करना था. आप मानेंगे नहीं आरुषि, जब मैं जब ढूंढने लग गई, 13 परिवार की जगह मुझे इतने परिवार मिलते चले गए. और वो मैं आज भी गूज़बम्प्स आते हैं मुझे जब मैं वो अनुभव शेयर करती हूँ. तो जिनके भी परिवार में गई, तो क्या होता है ना कि जैसे एक जगह अगर जब इकट्ठा होता जाता है पानी तो सड़ने लगता है, इसी तरह से ना परिवारों में भी कई कई बार कुछ भावनाओं में एक दूसरे से क्लैशेस होने लगते हैं. तो लेकिन जब मैं उनसे मिली, और एक परिवार अंधेरी का मैं आपको बताती हूँ, दुबे परिवार था, तो वहाँ बड़े भाई भाभी ने ही उनके पूरे मतलब छोटे भाई बहनों को बड़ा किया था और बहुत अच्छे से सारा कुछ उनका किया था. तो जब हमने ये किया, तो वो लोग लिटरली रोने लग गए और मुझे गले लगा लिया और उनने कहा कि जैसे एक विरेचन होता है ना जिसको कैथासिस कहते हैं, एरिस्टोटल ने जो दिया था कि उनने कहा हमारे अंदर की सारी जो गलत भावनाएं आने लगी थी वो सब खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से एक हमने जो काम किया, तो रेडियो लेखन में ये एक अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। और ये रापा सीरियल अवार्ड होता है, रापा यानी जो टेलीविजन और दूरदर्शन में जो बेस्ट होता है, तो उसको बेस्ट रापा सीरियल अवार्ड भी मिला था।
2: क्या बात है
1: जी,
2: क्या बात।
1: अब आपने मुझसे मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, तो आपको जैसे शीर्षक बहुत अच्छा लगा, तो दरअसल ये एक मेरे एक दोस्त हैं, तो वो पहले फिल्मों में एक्टिंग करते थे, वो बिहार में कहीं रहते हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी कहानी पढ़ के उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि मुझे बहुत अपनी अपनी सी वो कहानी लगी, बहुत मैं कनेक्ट हुआ हूँ उससे, तो फिर उनसे बातचीत होने लग गई। तो जो क्योंकि बॉम्बे में तो बॉलीवुड और बॉम्बे की लाइफ, तो बॉम्बे या तो मतलब ऐसे कहते गरीब से गरीब को भी भूखा नहीं सुलाता, अमीर से अमीर को भी। तो बॉम्बे एक ऐसी मिस्ट्री है कि जिसको हर कोई हल करना भी चाहता है, जिसमें जाकर फंस भी जाता है। तो ये हुआ कि वो रवि नाम है उनका, तो उनसे मेरी फिर अच्छी बातचीत होने लग गई। और वो फिल्मों में सीरियल्स में सब स्ट्रगल कर रहे थे, फिल्मों में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, बन गए तो बन गए, नहीं तो बहुत खत्म भी हो जाते। खैर तो वो जो बताते थे, फिर उनकी कविता थी मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, और तो इस तरीके से तो वो फिर बाद में उनसे ही, क्योंकि उनकी लाइफ थी तो वो स्ट्रगल करते हुए दो दोस्तों की कहानी है। फिर अंत में ये होता है कि जो दो दोस्त हैं, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को संभालता है, फिर दूसरा दोस्त जब परेशान होता है तो ये संभालता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो कुछ ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है और रूम से चला जाता है। उस समय पेजर हुआ करते थे जब मैंने ये कहानी लिखी थी, तो पेजर पर ये कबीर जो है पहला वाला दोस्त, वो आदित्य को मैसेज करता है कि मुर्दे इतिहास नहीं लिखते, इतिहास वो लिखते हैं जो धारा के विरुद्ध चलकर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो अब मैं ये शीर्षक कैसे है, देखिए कई लोग कहते हैं मुर्दे, मतलब तुम्हारे शीर्षक मुझे समझ नहीं आए, जो समझ सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए कि जो जीते जी मर जाएगा वो तो मुर्दा हो गया ना, और जीते जी जिसके अंदर जिजीविषा है, एक संघर्ष की कामना है, तो वो कभी मुर्दा नहीं हो सकता।
2: बिल्कुल,
1: इतिहास उनका ही लिखा जा सकता है,
2: और हार नहीं मानता
1: है ना, उसका इतिहास तो कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ये बात है, और यही मैं अपने जिंदगी में भी कहती हूँ कि हार कभी मत मानो, है ना, जैसे वो है ना कि हार के आगे जीत है, तो यही वाली बात है कि अपने आप को हारने नहीं दो। और खास करके यहाँ आने के बाद इस डिवाइन में कि मतलब जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं और अपने असत्य को पहचानते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं हार तो कहीं है ही नहीं। तो कुछ इसी तरीके से कि इतिहास आप लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में अपने आप को एक हमेशा कर्मठ बना के रखिए।
2: जी बिल्कुल, ये जब कभी कभी बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं तो उसको जीवित रखना बहुत जरूरी होता है, जो हमारे अंदर की आग है, जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं। मैं एक और प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप कई, आपने उपन्यास भी लिखे, कई कहानी संग्रह हैं, तो कहानियां लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई इंटरेस्टेड है, कोई युवा है जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ टिप्स दें, कुछ ऐसी बातें जो मदद करें, जैसा आपने कहा ना अनुभूति को अभिव्यक्ति मिलाने के लिए, आपकी ओर से कुछ ऐसे,
1: मतलब आपका प्रश्न है कि कौन सी बातें कहानी लिखने में मदद कर।
2: जी जी जी,
1: हमारा जो मैका है वो कटनी एमपी में है, और वहाँ एक फार्म हाउस है हमारा। तो मेरे पापा जो थे उन्होंने पूरी अपना सारा एकदम रात से लाइफ छोड़ के, उनको फार्मिंग बहुत पसंद आई, तो वो हम मतलब 400 एकड़ जमीन थी, बंगला था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो गांव की लड़कियां आया करती थी उनसे हमारी दोस्ती हो जाती थी, और वो लड़कियों को देख करके ना मेरे जहन मतलब वो अंकित होती चली गई। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में कहानी भी लिखनी शुरू कर दी थी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक शिवरात्रि नाम की लड़की थी, हाँ उसका नाम ही शिवरात्रि था, और आज भी मुझे वो वैसे की वैसे याद है, एकदम लंबी छरहरी सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में अंकित हो गई, है ना। इसी तरह से हमारे यहाँ पर एक गाल बाबा थे, तो उनकी बेटी का नाम था अमसा, था अमसा। अब आप बोलेंगे अमसा कोई नाम होता है ना, है ना। अब वो उसका रीजन क्या था कि मेरी दीदी ने उनकी बेटी का नाम रखा था अंशा।
2: अच्छा।
1: अब अंशा तो वो नहीं बोल सकते थे तो अमसा बोलते थे, तो एक कैरेक्टर मेरी अमसा बनी, एक कैरेक्टर मेरी शिवरतिया बनी, और फिर उनकी कहानी दूसरों कहीं से आए, जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि कटनी की हूँ मैं, तो कटनी में ना चूने के भट्टे बहुत होते हैं, तो चूने के भट्टों में जो लोग काम करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ उनको टीबी बहुत हो जाती है, तो वो जो सारी जो चीजें थी वो, उसके बाद में रेलवे लाइन पर जैसे गरीब लोग हैं वो कोयले बिन रहे हैं, कोयले के जो वैन निकलती ना कोयले गिरते हैं, तो वो कोयले बिनते बिनते ट्रेन से कट जाते हैं, कई बार उनको नहीं पता चलता था। तो ये जो मेरा जो एकदम मासूम सा मन था, ये बहुत मुझे परेशान करती थी ये चीजें, और वो फिर सब मेरी कहानी में ना, मतलब एक चीज वहां में जैसे बताया ना, एक घटना ये, एक घटना वो, तो ये जैसे कि जो मतलब मेरी कहानी में अमसा जो है वो गांव से शहर आती है, फिर वो इस तरह से उसकी और वो अमसा से मिलती है ये जो राइटर है, और वो चूने भट्टे के वहां जाती है, तो वो बोलती है कि दीदी हम ना कक्का भाई, क्योंकि मैं वहां की तो मुझे भाषा भी आती, दीदी हम कब ना चूने के भट्टे में काम करीबे। तो वो फिर वो बोलती, लेकिन जब दूसरी बार जाती तो देखती कि वो अमसा खांस रही है बुरी तरीके से, तो वो बोलती कि तुमको क्या हो गया, तब वो कहती कि दीदी हम कहे थे ना कि हम अम्मा वाला काम कभी ना करेंगे, लेकिन हमारे घर में खाने को नहीं बचा, दद्दा भूखे मर रहे हैं, दीदी भूखी मर रही, तो क्या करें, काम तो करवे को पड़ा था। तो वो सारी जो चीजें थी, तो वो मतलब वो मैंने वो भाषा वहां की, क्योंकि बचपन में उनके बीच में जाते थे। तो ये ना जो लेखक होता है ना वो बहुत ज्यादा ग्रहणशील होता है, और उसका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होता है, और संवेदनाएं कहीं, और उस पर जो संवेदनाएं होती है ना, तो कहते हैं ना जैसे कि हीरे पॉलिश कर दिया है, तराशती है संवेदनाएं, इस तरह से कहानियां हमारी बनती हैं। जैसे आपसे ही मैं बात कर रही हूँ, अब आपकी स्माइल पर ही मैं कुछ कविता लिख दूंगी। तो ये तो देखिए क्या होता है कि नजर की बात है,
2: नजर नजरिया जो आपने कहा,
1: बिल्कुल हाँ।
2: जैसा आपने कहा था कि आपने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसी कहानियां थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, या फिर क्या कोई ऐसा क्षण था जिसने आपको इंस्पायर किया, या कहां से लिखने की शुरुआत इतनी कम उम्र में कैसे हुई?
1: क्या हुआ था ऋषि जी के बचपन में, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, अक्सर मैं साक्षात्कार में ये बात तो आती कि लोग पूछते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया, क्या किसी ने, जैसे आपने पूछा क्या किसी ने इंस्पायर किया या कोई ऐसा क्षण आया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। तो मतलब हम लोग पांच बहन थे, और मैंने अपना बहुत, दीदी लोगों ने मेरा नाम जल्दी लिखा दिया था, तो मैं मम्मी पापा फार्म हाउस में रहते थे, तो मैं दीदी लोग के साथ यहाँ रहती थी, और मैं बहुत छोटी सी थी, तो मेरी दीदी जो थी सबसे बड़ी, वो खुद 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी, और वो मेरे लिए माँ समान थी कि मम्मी फार्म हाउस पे रहते थे मम्मी पापा। तो उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे डांस वगैरह, हम लोग का पिक्चर हॉल हुआ करता था, तो डांस वगैरह करती थी, तो उनने कहा कि इसको डांस सिखाया जाएगा, तब तो लिखने जैसा कुछ सोचा भी नहीं था, मैंने नहीं सोचा ही नहीं था, मतलब 5-6 साल की बच्ची क्या सोचेगी ना उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पिक्चर हॉल से आती थी, फिर वो लाइट लगा के फिर गा के अंदर, तो बोले करती क्या अंदर ये, तो दीदी लोग ने देखा तो इसको डांस सिखाया जाएगा, और वो ही गा के सिखाते थे मुझे, क्योंकि क्लासेस नहीं थी, कथक बेस है लेकिन मेरे डांस का। तो खैर फिर वो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई, 19वें साल के पहले ही, मतलब कहते हैं डाउरी डेथ थी उनकी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब आज भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी बात करते हुए मेरे आंखों में। तो उनसे जो छोटी दीदी थी उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है ना याद करके लिखा करो, और डांस, शशि दीदी नाम था शशि, तो उनने कहा कि शशि को मतलब उनका मन था कि तुम डांस करो, तो मेरी जो प्रभा दीदी वगैरह थी उन्होंने मुझे लगा था डांस, तो मतलब मैंने कई सारे डांस में भी अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार बहुत सारे जीते हुए हैं, सरस्वती माँ की कृपा है जो उन्होंने मुझे कला दे करके भेजा, और मैं कहती हूँ लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा, अब बोलती हूँ क्योंकि तब तो मालूम नहीं था मुझे। तो मैं जो भी मन में कुछ भी आता था पेंसिल से लिखती जाती थी उसको, फिर धीरे धीरे 3 एज की जब हुई तब तक मैं कहानियां लिखने लगी थी जी। तो उस टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पब्लिकेशन था सारिका, धर्मयुग अगर आपने सुना होगा, सारिका, ये दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन हुआ करते थे, तो सारिका में मेरी पहली कहानी छपी नवांकुर विशेषांक में। उसके बाद तमाम जगहों से पत्र आने लग गए, और बात और मंगाई जाने लग गई कहानियां, और मतलब उस समय मुझे बहुत सेलिब्रिटी बन गई, इतने सारे लेटर्स के बीच में छोटी सी अलका बैठी हुई पत्र पढ़ रही है सारे, खैर फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया आकाशवाणी जबलपुर, और फिर तमाम जगह, फिर बॉम्बे भी गई, तो मेरे साथ में अच्छा ये हुआ क्योंकि मेरे पति वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन वो मेरे लेखन को बहुत पसंद करते रहे हमेशा से, तो उन्होंने कहा कि तुम लिखना बंद मत करो, और मुझे कुछ वहां पर जनसत्ता में सब रंग उनका आता था, तो शादी के बाद भी मेरा लेखन कभी ना रुका नहीं। तो यही वाली बात है कि आप दुख से या तो अपने आप

0: एक बैग घर पे अटैची भर के रहती थी। तो मेरे जीवन का जब कोई चैप्टर लिखा जाएगा या जब मैं फ्यूचर में मेरी ऑटोबायोग्राफी बनेगी, उसमें सबसे बढ़िया पेजेस जो रहेंगे वो शिक्षा के रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वो जरिया है जिसके वजह से आप समाज की निर्मित या नव निर्माण आप कर सकते हो। फिर से इसकी भी कहानी है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि भाई शिक्षा में ये इट वॉज नॉट रिटन इन माई पर्सनल गोल बुक कि मैं शिक्षा में आऊंगा या ऐसा कुछ काम करूंगा। जैसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन से धक्के मार के उतारा गया, निकाल दिया गया, तो नेगेटिव जो धारणा रहती है, एक तो रहता है रिवेंजफुल एटीट्यूड या अभी के अभी मैं जवाब दे दूं इनका। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? तभी के तभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने वहां से एक लेसन लिया, जैसे मुझे यहां पर नेगेटिवली इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, मैं मेरे देश के लोगों को गुलामगिरी से मुक्त करूंगा। तो ऐसे मेरे जीवन में जब मेरी शादी हुई और मुझे मेरा जो बेटा, बड़ा बेटा एक स्कूल में पढ़ता था और वहां पर मैंने वहां का जो माहौल देखा, मुझे लगा कि इतने एडोलसेंस एज में बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। वो एक बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई, मैंने कहा इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हम देखते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या फिर उसमें आप कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस, बहुत जोर से बारिश गिर रही थी बाहर, मैंने कहा क्या किया जाए। तो मेरे अंदर के अंदर आत्मा से मुझे आवाज आई कि शिक्षा में काम करने की जरूरत है, आप शिक्षा में काम करिए। उस आवाज को मैंने नहीं दबाया, उसको और उसकी जो अग्नि है प्रज्वलित की और मैंने मेरी एक डायरी निकाल के लिखना चालू किया कि आज के दौर में समाज में किस तरह के स्कूल की जरूरत है। इसमें सबसे पहले मैंने कुछ बातें लिखी, मैंने कहा इसमें नॉन कंपैरिजन एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए। जब देखते हैं कि एक क्लास में 30-40 बच्चे पढ़ते तो कंपैरिजन होती है, तो बच्चों को कंपैरिजन पसंद नहीं है। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, तो मैंने कहा कंपैरिजन नहीं चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए, ये जैसे है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो उमलती हुई कली है, आप जितना उनको प्यार से प्रेम से पढ़ाएंगे उतना वो फुल बेहतरीन बनने वाला है, तो हम उन पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। तीसरा, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस हम लाएंगे, मतलब आप देखिए हर घर में बच्चों के पीछे माता पिता ऐसे डंडा लेके पढ़ते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो सिर्फ पढ़ाई करके बोलने से बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो खुद होके पढ़ाई करने लगेंगे। और चौथा चीज हमने इंट्रोड्यूस की हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का बेस हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हर कोई मैथ में ठीक अच्छे नहीं है, हर कोई लैंग्वेज में अच्छे नहीं है, कोई म्यूजिक स्मार्ट है, कोई स्पोर्ट्स स्मार्ट है, कोई किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, तो जिसमें जो चीज अच्छी है उसको वो चीज पढ़ने में आप प्रमोट करो। तो ये सारी अवधारणाएं हमने किताब इस पर लिखी और इसमें दो डिवाइड किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन अलग है और प्राइमरी अलग है, मतलब 3 से 6 साल का जो टाइम है ये अलग है। तो प्री स्कूल का अलग हमने एक सिलेबस डिजाइन किया और प्राइमरी का एक अलग डिजाइन किया, जो गवर्नमेंट के तरफ से नॉमिनेटेड सिलेबस रहता है। प्री स्कूल के लिए गवर्नमेंट का ऐसा कोई वो नहीं है बॉदरेशन, आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने मोंटेसरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज से लगभग 11 वर्ष पहले हमने जो वर्धा में पहली प्री स्कूल इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें नो स्कूल बैग और नो होमवर्क। एक बच्चा जब स्कूल में आता था वो सिर्फ अपना टिफिन लेके आता था और बाकी सारी की सारी शिक्षाएं हम लोग स्कूल में करते थे। और मुझे याद है कि सबसे पहले वर्धा में लोगों ने मुझे कहा था कि आपके स्कूल में होमवर्क नहीं है, किताबें नहीं है, फिर भी शिक्षा कैसी होगी? तो उसका जवाब मैंने दिया कि आप एक साल आप हम पर ट्रस्ट करके देखिए। और दूसरे वर्ष से मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वो इतना बढ़िया मिला, 10 एडमिशन की मल्टीपल एडमिशंस, और आज हम लोग वर्धा में टोटल 5 स्कूल चला रहे, जिसमें 4 प्री स्कूल है और एक बड़ी स्कूल है CBSE, जिसमें 1st to 12th तक के बच्चे पढ़ रहे।
1: ये बात तो अच्छा है कि आपको

0: प्रेरणा मिली शिक्षा के जगत में काम करने की, लेकिन जब स्कूल में किताबें नहीं लेके आते हैं तो बच्चे पढ़ते क्या है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति में जब शिक्षाएं होती थी, आपको क्या लगता है तब के बच्चे किताबें लेके आते थे क्या?
0: बात तो सही है।
1: अरे हमारे देश में हमने जीरो दिया वर्ल्ड को हमारे ऋषि मुनियों ने,
0: यस।
1: क्वांटम फिजिक्स दिया हमारे ऋषि मुनियों ने,
0: यस।
1: हवाई जहाज दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। अब हुआ ये कि यहाँ से हमारी चीजें पाश्चिमात्य देश में चली गई और उन्होंने उसको ब्यूटीफुली पैकिंग करके हमारे सामने पेश की, और 150 वर्ष हमारे देश में जो अंग्रेजों का राज चला उसमें हम लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया पूरा। तो हमारी गुरुकुल पद्धति पर जो अंग्रेजों ने सबसे पहले ये जो खत्म कर दिया, उनको पता था कि आप भारतीय लोगों पर कभी राज नहीं कर सकते जब तक आप इनकी शिक्षा पद्धति नहीं चलाएंगे। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि तब भारतवर्ष में 118,000 गुरुकुल थे, मतलब जितने गांव थे उतने गुरुकुल थे। और इस गुरुकुल में क्या नहीं पढ़ाया जाता था? एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मतलब ये एटॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, क्या नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे शरीर के भीतर जितने सारे केंद्र बिंदु है, मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान और सहस्त्रार तक, ये सारा इनके माध्यम से, योग के माध्यम से उनको ये सारा पढ़ाया जाता था। मेडिटेशन का आधार लिया जाता था। धन्वंतरी शास्त्र जो है, हमारे सुश्रुत जो है सबसे पहले सर्जन होकर गए, सर्जरी के वो सबसे बड़े मास्टर थे। तो ये सारी पद्धतियां तब, तो तब कोई किताबें नहीं थी।
0: सही बात।
1: तब किताबें नहीं थी, तब शब्द से उनको ज्ञान दिया जाता था, स्पर्श से सिखाया जाता था। तो हमने यही चीज इंट्रोड्यूस की स्कूल में, और ये चीज मुझे बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने सेंसोरियल वे से बच्चों को पढ़ाया। अब सेंसोरियल में कितने सेंसेस है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस है। तो शब्द से हम पढ़ाते, सेंसोरियल मतलब स्मेल से हम लोग, हमारे पास स्मेलिंग की एक्टिविटीज है, टच की एक्टिविटी है। अब एक बच्चे को जब सैंड पेपर पे आप ए पढ़ाते हो, ए पढ़ाते हो दो उंगली के माध्यम से, दिस इज ए, तो ये जो दो उंगली से जो बच्चा ट्रेसिंग पेपर पे ए करता है ना, लाइफ टाइम उसके दिमाग में मेमोरी प्रिंट हो जाती है। ऐसे हम लोग उनको स्मॉल ए टू सेड पढ़ाते हैं, और ऐसे हम लोग उनको कर्सिव भी पढ़ाते हैं, ये सैंड पेपर पे पढ़ाते हैं। तो ये सेंसोरियल ऑर्गन जो है ना, ये सबसे बड़े कारीगर साबित होते हैं। और अध्यात्म भी यहाँ कहा गया है कि अगर आपने आपके कर्मेंद्रियों पर अगर काबू कर लिया तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सेंसोरियल के थ्रू एजुकेशन देंगे तो वो बच्चा कल का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा और प्रबुद्ध भी बनेगा। हर क्षेत्र में उसकी एक वैल्यू रहेगी, और वो जहां पर जो काम करेगा उसका इनर नॉलेज रहेगा।
0: जी सर, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बातें तो मॉन्टेसरी स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा आता है उस समय ये सभी चीजें मीनिंगफुल रहता है और समझ सकते हैं कि ये बेसिक एजुकेशन जो हम उसको दे रहे हैं वो सिर्फ रट करके आगे बढ़ने की बात नहीं, लेकिन वो सेंसेस के द्वारा समझ के करने की बात है। लेकिन क्या जब बच्चा बड़ा होता है, जब 12वीं कक्षा तक पढ़ता है आपके स्कूल में, तब भी यही बिना किताबों का होता है, या फिर उस समय तो फिर आप, वो जर्नी कैसी है?
1: ये भी अगेन इट्स अ वेरी माइलस्टोन क्वेश्चन। देखिए, 3 से 6 साल का जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें चॉक्स भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, किताब भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट। अब देखिए, जितने भी गवर्नमेंट के सिलेबस है वो फर्स्ट से चालू होते हैं। अब फर्स्ट से चालू होता है उसका फॉर्मल एजुकेशन। तो हम लोगों ने स्कूल में ऐसा सिस्टम बनाया कि सारे उनके अलग अलग ये बनाए कबर्ड्स, जहां पर उनका सारे बुक्स रखते हैं हम लोग। किताबें साल में एक बार स्कूल में लेकर आ जाते हैं, प्रॉपरली उनका नेम और उनका सारा किताब पर लिखा जाता है और एक जगह उनके रखे जाते हैं। डेली उनके पास में हम लोग सिर्फ 2 बुक्स देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली है कि आप बच्चों का स्कूल बैग का जो वेट
0: है
1: कम करिए। इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए दीदी, पिछले कई सालों में बच्चों को, अभी जो सीनियर बन रहे, सर्वाइकल के प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पॉन्डिलेसिस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस हैवी स्कूल बैग। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसका जीआर भी निकाला है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोगों ने जेन्युइनली उसको इम्प्लीमेंट किया, स्कूल में सारे बुक्स रखे और एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसमें लैंग्वेज भी हो, साइंस भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े और हफ्ते में 2 दिन बुक्स घर पे जाए। पेरेंट्स को भी हम लोग फर्स्ट डे पेरेंट्स मीटिंग लेके अब समझाते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका ये है। दूसरी बात, किसी विधि को जब आप क्लासरूम में समझाते हो तो वो विधि बच्चे भूल सकते हैं, लेकिन यही विधि जब वो करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, अगर मैंने आपको चाय की विधि कैसे करना ये अगर थ्योरी में लिख कर दिया और वही आपको कहा कि चाय ऐसी बनती है, तो प्रैक्टिकल करने के बाद आप चाय बनाना कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमारे बच्चों को ये बात पता नहीं कि हम एक जमाने में हम लोग चूल्हे पे खाना पकाते थे
0: जी।
1: हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को, दीदी बच्चों को हमने सलाद कटिंग से लेके रॉ फूड क्या होता है, फिर त्योहारों के साथ में जैसे राखी आती है उसके साथ में हमारा क्या सिलेबस है, पोला आता है उसके साथ में क्या है, दिवाली है तो उसके साथ में क्या है, इसका पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल बनाया। लैंग्वेज में एक लेसन है जैसे बकरी की शादी, हिंदी का लेसन है एक्चुअल। उस दिन बकरी की शादी होती है स्कूल में।
0: अच्छा।
1: बच्चे लोग मस्त कपड़े पहन के आते हैं, मिठाइयां लाते हैं, शादी लगाते हैं और उसके बाद सेकंड डे उस टॉपिक पर उनकी टेस्ट होती है, ओरल एंड रिटन।
0: ओके।
1: दीदी आप सुन के हैरान रहेंगे, बच्चे लोग इतने बढ़िया तरीके से लिखते हैं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ये वातावरण हमने स्कूल में बनाया, ये जानकर आप हैरान होंगे कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं अभी। और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। असली शिक्षा जो चालू होती है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं जिसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, वो होता है 7th स्टैंडर्ड। बस वहां से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चालू, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे हम लोग कभी नहीं छोड़ते, एक्सपीरियंस देके ही पढ़ाते।
0: तो फिर 7वीं कक्षा के बाद स्कूल में बुक्स लेके जाते हैं।
1: अभी हम लोगों का स्कूल जो है वो नर्सरी से चालू हुआ था, अभी हम लोग नेचुरली 6th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए।
0: Okay.
1: अभी हर साल एक एक क्लास ऐड होती जाएगा।
0: आपने जो कहा कि वो 12वीं कक्षा तक आपका
1: परमिशन गवर्नमेंट की 12th तक आ गई है।
0: Okay.
1: लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हैं नेचुरली एक एक क्लास
0: अपग्रेड करते जा रहे हैं।
1: जी।
0: Okay. Very nice. Wonderful, sir. So, जिस तरीके से आपने ये शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया है, तो कहाँ से आपने ये आइडिया लिया कि हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए? और जब आप एक कन्वेंशन स्कूल से एक अलग तरीके से हटके पढ़ाते हैं, तो फिर पेरेंट्स की सपोर्ट कैसे रही, समाज में आपके लिए सपोर्ट कितना मिला और कहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरीके से सामना करना नहीं पड़ा?
1: नहीं, आप देखिए, आप किसी के बच्चे को जब आप इस तरह से पढ़ाते हैं तो हमको समाज से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला
0: जी।
1: और कुछ स्कूलों ने फिर हमको फॉलो करना भी चालू किया कि इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ तक सवाल है, पेरेंट्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यस इसी डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपने एक सवाल मुझे पूछा कि भाई आपने ये कहाँ से किया, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग सिर्फ रूटीन्स पर चलते हैं या जिस तरीके से सारी बातें चल रही है उसी बातों पर हम लोग कदम रख के आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने एक एक स्टैंडर्ड में R&D की हमारी खुद की, एक एक सब्जेक्ट की R&D की, ये टॉपिक बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे में कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ बातें की, वो मैं बताना चाहता हूँ।
0: जी जी जी।
1: वो बात में सबसे पहले नंबर की बात है कि हम लोगों ने एक थिंक टैंक का कल्चर इंट्रोड्यूस किया टीचर्स के लिए, और एक स्कूल में हमारा एक जर्नल रखा है जिसमें डेली टीचर को एक क्रिएटिव आइडिया नोट डाउन करना है सब्जेक्ट को लेके। अब उसका असर यह हुआ कि 250 डेज में 250 आइडियाज आ गए हमारे पास
0: जी।
1: दूसरा, एवरी टीचर को साल में 2 एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज उनकी सब्जेक्ट की कंपलसरी बनाना हमारे स्कूल में मैंडेटरी है, और वो उन्होंने अपना रिसर्च करके सबमिट करने विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वो आना चालू हो गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मॉड्यूल है स्कूल का वो हर साल अपग्रेड होता गया और हर साल नई नई एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज आती गई सब्जेक्ट्स को लेके और नया नया आते गया, और इससे हमारा सिलेबस बहुत अच्छे प्रॉपरली डिजाइन।
0: मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसी सिलेबस को कैसे आप एक्सपीरियंशियल तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आए, घर जाने के बाद उनको होमवर्क के बोझ से फिर वो पढ़ाई के प्रति जो रुचि है या रुझान है उसमें कमजोरी ना कम ना हो, उसके ऊपर आपने ये बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जब आप एजुकेशन फील्ड में हैं और आज के समय में भारत में देखा जाए तो एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, तो इस चीज का बैलेंस कैसे करते हैं आप?
1: ये देखिए, संसाधन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। बीच में कोरोना भी आ गया था और उस वक्त लोगों के पास में पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले स्कूल किसने ओपन करना चाहिए और किसने नहीं ओपन करना चाहिए, यह सवाल आना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता, ये वो पवित्र काम है विद्यादान का। ऐसा माना गया है कि तीन जो क्षेत्र है वो स्वयं परमात्मा ने बनाए, जिसमें पहला है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को एंजल्स ऑफ गॉड कहा गया है, कि जब किसी पेशेंट को बीमारी आती है तो बोलते कि अब भगवान, तो आप भगवान, आप ही हो सब कुछ। दूसरा जुडिशरी, जब कोई न्यायाधीश के कुर्सी पे बैठ जाता है तो उनको भी हम भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि पहले उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी कि भाई न्याय देवता है, तो वो भी जो प्रोफेशन है वो गॉड्स का प्रोफेशन है। और तीसरा शिक्षा का, क्योंकि एक पीढ़ी को अगर गलत दिशा में पढ़ाया जाए, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं कि जी। अगर आप टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी चलाने वाले में फॉल्ट है तो दो तीन लोगों की जान जा सकती है। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो और उसको अच्छे से फोर व्हीलर नहीं चला रहे तो चार लोगों की, पांच लोगों की लाइफ खतरे में है। अगर आप हवाई जहाज चला रहे हो तो 300 लोगों की जान खतरे में है। और अगर आप एक टीचर हो और वो भी अगर आपके भीतर वो टीचर को पढ़ाने की अगर खूबियां नहीं है और बच्चों को आपने रॉन्ग वे में पढ़ाया तो पीढ़ियों का नुकसान हो सकता है, पीढ़ियों का,
0: देश का भविष्य भी।
1: इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने उनकी किताब में लिखी ये बात, सिर्फ और सिर्फ उच्च जिनके भीतर प्रतिभा है ऐसे ही व्यक्तियों ने टीचर बनना चाहिए। और दूसरी वे में अगर ये बात मैं आपको कहूं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारधारा, उच्च मानसिकता और आध्यात्मिकता के, जिन्होंने अपने जीवन का मूल्य आध्यात्मिकता के ऊपर पूरी विचारधाराएं बनाई, ऐसे लोगों ने स्कूल का निर्माण करना चाहिए। स्कूल ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और ऐसे स्कूलों से जो बच्चे बाहर निकलते वो आप देखेंगे कि वो भविष्य खतरे में है। वो बच्चों को सिर्फ यांत्रिकी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो अंदर से नर्चर्ड नहीं है। इसलिए शिक्षा का पूर्ण आधार जो है वो विद्यालय होता है, और विद्यालय जो होना चाहिए वो आत्म संशोधन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, जहां पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बच्चों को तैयार करना चाहिए। और एक शिक्षक पूर्ण रूपे न वहां पर समर्पित भाव से, ना कि सैलरी के लिए, ना कि धन के लिए, समर्पित भाव से। और ऐसे चीजों पर हमने बहुत काम किया, मैंने खुद अभी तक हजारों वर्कशॉप की टीचर्स पर जी। अगर मैं सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग पे बात करूं तो मैं पूरा दिन बात कर सकता एक अध्यापक कैसे होना चाहिए, एक टीचर कैसे होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए
0: जी।
1: तो मेरा ऐसा मानना है इसमें संतुलन होना चाहिए, जितना आपको लगता है उतना फीस लीजिए, जितना खर्चा उतना खर्चा कीजिए, आपके टीचर्स को भी अच्छे से तनख्वाह दीजिए और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाइए।
0: बहुत सुंदर सर। तो अभी हम कार्यक्रम की अंत की ओर पहुंचे हैं, हम एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, एक रैपिड राउंड जहां पे जो एक शब्द के सवाल है उसका भी हम एक शब्द या फिर एक वाक्य में आप उस चीज का जवाब दें। सेवा क्या है?
1: समर्पण, आत्मसमर्पण, पूर्ण रूपे
0: जी। भारत क्या है?
1: संस्कृति
0: जी। बहुत सुंदर। शिक्षा क्या है?
1: शिक्षा की परिभाषा मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ
0: जी।
1: एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन।
0: वंडरफुल, बहुत सुंदर। पेरेंट्स का रोल क्या है?
1: गाइड। एक पेरेंट अपने बच्चों को अगर गाइड करते रहेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक गंतव्य तक पहुंच जाएगा।
0: जी।
1: डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ।
0: जी। विद्यालय।
1: आत्म संशोधन का केंद्र। हु एम आई, मैं कौन हूँ।
0: जी, बहुत सुंदर। समीर शिंदे जी कौन है?
1: आई बिलीव ऑन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है टू क्रिएट एक्टिविटी। आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग फॉर द सोसाइटी, इन वन लाइन।
0: बहुत सुंदर सर, आपकी इतनी जीवन की उपलब्धियां और इतनी व्यस्ततम समय से आपने बहुत अमूल्य समय लेकर के आज यहाँ पर आए हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ने का आपने एक प्रयास किया है, तो शिक्षा का, अध्यात्म का, विद्यालय का क्या कनेक्शन है?
1: बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन है। शिक्षा, अध्यात्म और विद्यालय, तो ये ट्रायंगल आपने बनाया। दूसरा ट्रायंगल हमने भी बनाया, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट।
0: जी।
1: तो शिक्षा का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा।
0: जी।
1: जितनी बार उसको पढ़ाएंगे उतनी बार उसके जीवन का अंधकार नष्ट होगा। अध्यात्म का मतलब है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है।
0: जी।
1: और विद्यालय का रोल जो है इन सब बातों का संतुलन बनाए रखना। ये तीनों बिंदु अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कनेक्टिंग डॉट बन सकता है।
0: जी।
1: जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को बनाया, वैसे ही जैसे अब्दुल कलाम जी ने उनके नारायण मूर्ति जो शिक्षक थे चौथी कक्षा में, जैसे एक राष्ट्रपति को बनाया, वैसे हर स्कूल से एक देश का राष्ट्रपति निकल सकता है, एक देश का पंत प्रधान निकल सकता है, एक देश का सरपंच निकल सकता है और एक देश का समाज सेवक निकल सकता है। तो तीनों के केंद्र बिंदु, उसके जीवन में समन्वय संतुलन अगर साधना हो तो ये कनेक्टिंग डॉट करना ही होगा। और इसमें सबसे ज्यादा आज के दौर में दो चीजें बताना चाहूंगा मैं, बच्चे का स्पिरिचुअल क्वेश्चन पावरफुल होना चाहिए और बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन पावरफुल होना चाहिए।
0: जी।
1: बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाए।
0: बहुत सुंदर सर। व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ते हैं?
1: हमारे भारत में विदेश से लोग आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए।
0: सही बात है।
1: और आज ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमने हमारे देश की संस्कृति को और अध्यात्म कैसे पकड़ के रखना चाहिए। उन लोगों ने हमारे यहाँ पर अगर पीएचडी की और हु एम आई को भी देखा, आत्म साक्षात्कार भी किया। मैंने अपने आप को ये सब करते वक्त एक ही चीज देखी कि जब हम किसी के सामने आते हैं तो हमारा ओरा बात करता है, ना कि आपकी जब मुख से आप बात करते हैं। और आपका ओरा तब बनता है जब आप गहरी ध्यान में डुबकी लगाकर बाहर आते हैं, और वो गहरा ध्यान तब लग सकता है जब आप ईश्वर के साथ में कनेक्शन बनाते हैं। क्योंकि परापश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के चार प्रकार जो है, जिसमें परावाणी ईश्वर की वाणी बोली गई। परावाणी में इंसान का शब्द नहीं चलता है, वैखरी से कंठ से वो बात करता है, लेकिन परा की जो वाणी है वो ईश्वर की है। तो परावाणी प्राप्त करना है आपको, ईश्वर के साथ में कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। तो ऐसा कहा गया है कि पावर ऑफ एसोसिएशन, आप जैसा एसोसिएशन करेंगे वैसे आप बनते जाते हो। अगर आप निरंतर ईश्वर के साथ सानिध्य बना के रखते हो तो धीरे धीरे धीरे वो ईश्वर तुमको समहाउ किसी ना किसी से मिलाते रहेगा, किसी ना किसी से ज्ञान देता रहेगा, और कभी कभी वो डायरेक्टली आपसे बात भी करेगा। वो जो बात करता है वो वाइब्रेशन से बात करता है, और उसकी अनुभूति मैंने ली है। और शिक्षा में मैंने जो भी आज काम किए हैं वो किसी कॉपी नहीं की है, परमात्मा ने मुझे जो भी उसके बारे में ज्ञान देते थे वैसा वैसा मैं करते गया। तो इन शॉर्ट, विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते, ईश्वर से संबंध बना के रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट।
0: बहुत सुंदर सर, इसी मैसेज के साथ आज के इस कार्यक्रम को भी हम यहाँ पे विराम करते हैं। आप इतने बहुमूल्य समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप सुन रहे थे समीर शिंदे जी को। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं और यूनिवर्सल पीस एम्बेसडर भी हैं। ऐसे बहुत सारे उपलब्धियों के धनी समीर शिंदे जी को आपने अभी तक सुना है। तो ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: गणपति बप्पा,
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
0: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
2: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
3: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए, उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण। मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्ष उल्लास के साथ।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार डॉक्टर प्रीति जयकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीति, कैसे हैं आप?
5: बिल्कुल ठीक, नमस्ते रमेश जी, ओम शांति। अर्चना जी को, कल्पेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथ दूसरी बार हूँ शो पे, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक ये आपका एक सिग्नेचर लाइन है, वो सुन के आपकी वो आपका एक स्माइल है साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आई थिंक एक ही शो है जो मैंने आई थिंक इतने एपिसोड्स देखे हैं, और कोई एक आपका गेस्ट सेम नहीं है, हर एक का अलग। आई थिंक अर्चना हैज बीन वेरी वेरी वेरी गुड एट गेटिंग सच गुड स्पीकर्स। तो एक एक आपके सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स, इट इज सो डाइवर्स, एंड डाइवर्सिटी में उनका पैशन इतना आगे आता है, इट इज रियली वेरी यूनिक। तो उसके लिए बहुत बधाई,
4: थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर प्रीति के स्वागत में आज हमारे साथ कल्पेश जी जुड़े हैं, एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
6: नमस्कार
4: जी भी है, नमस्ते नमस्ते कल्पेश, मैं चाहूंगा स्वागत पेश कीजिए।

0: थैंक यू,
1: थैंक यू
0: आई होप
1: थैंक
0: यू
1: यू।
0: लाइक इट।
1: या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने नाइट किया, थैंक सो मच, बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल काम। तो आइए मैं फिर से अभी डॉक्टर प्रीति जी को जोड़ना चाहूंगा आप सभी के साथ में। आज हम लोग जिस विषय को लेकर बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन चीज है, जैसे कि थायराइड के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर प्रीति जी से। तो प्रीति जी, मैं चाहूंगा कि थायराइड ये क्या है, इसके बारे में बताइए।
2: रमेश जी, अपना बेसिकली अभी क्या है कि वी हैव टेकन, अभी इंग्लिश में बोलते हैं कि वी हैव टेकन आवर बॉडी आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। अपना हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, पैर काम कर रहे हैं, तो वी फील दैट एवरीथिंग इज ओके। लेकिन ये ऐसा है कि इसको सब कंट्रोल या बैलेंस में लाने के लिए हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हम हिंदी में उसको अंतःस्राव ग्रंथि बोलते हैं, जो गले के निचले हिस्से में रहता है, जिसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अभी मैंने मेरा ट्रेनिंग सब बंबई में किया है, सर्जरी के बाद 2 साल टाटा में फेलोशिप किया था हेड नेक में। अभी ये हेड नेक डिपार्टमेंट में काफी पेशेंट जो है थायराइड के पेशेंट आते थे कैंसर के, और वो काफी लेट स्टेज में आते थे, उनके सर्जरीज जो है जो जल्दी अगर आते थे तो लेस कॉम्प्लिकेशन लेस साइड इफेक्ट से हम ट्रीट कर सकते थे, लेकिन काफी लेट आते थे। तो तभी भी ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ जब मैं टाटा छोड़ा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जागरूकता अभी भी थायराइड के लिए काफी कम है। तो आपके ये शो में जितना हमें हमारे पास टाइम है, ग्लैंड तो ग्लैंड का ऐसे वो ग्रंथि का काम समझाना बहुत मुश्किल है लेमेंस टर्म में, लेकिन अपना जो बॉडी का संतुलन है, हर एक कोशिका हर एक ऑर्गन को जो कंट्रोल करता है बैलेंस लाता है वो ये ग्लैंड है। अभी अगर आप अडल्ट मेल को ले या आप यूजुअल हेल्थी मेल को ले जिसका वजन अगर 60 किलो का है, तो क्या आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्लैंड का वजन कितना हो सकता है? जस्ट अ वाइल्ड गेस, कितना हो सकता है? ये 25 to 30 grams का ग्लैंड है सिर्फ। आप सोचिए 60 किलो हेल्थी अडल्ट मेल में 25 से 30 ग्राम का 2 इंच का एक छोटा ग्लैंड जो है ये नीचे अपने गले के नीचे हिस्से में रहता है, और जो हमारी सांस की नली है उससे वो चिपका हुआ रहता है, और तितली के शेप का बोलते हैं हम। इसलिए मैंने इसका एक्चुअली शील्ड करके इसका जो टॉपिक दिया है वो जैसे ढाल बोलते हैं वैसे इसका चिपका हुआ रहता है। नॉर्मली आप में हमें ये दिखता नहीं है, लेकिन इसका जो कंट्रोल अपने बॉडी पे है, आपका सोना, आपका उठना, आपका जो स्किन का टेक्सचर है, आपका आवाज है, आपका जो एनर्जी है, आपका जैसे आप इतने प्यार से लोगों को ग्रीट करते हैं, आपका वो सिग्नेचर लाइन, आपका पैशन एनर्जी, सब का जो मेन कंट्रोल है वो ये ग्लैंड करता है। एक ही ग्लैंड नहीं है अपने बॉडी में, अपने पास बहुत सारे ग्रंथियां हैं, लेकिन ये दूसरे ग्रंथि आप लेके जैसे पैनक्रियाज है, उसका ज्यादा कंट्रोल रहता है शुगर पे। आपका डायबिटीज और पैनक्रियाज से आपको डेफिनेटली उसकी उसकी थोड़ा कुछ मालूम रहेगा। लेडीज में ओवरीज रहती है, जेंट्स में टेस्टीज रहती है, ब्रेन में 2-3 ग्लैंड्स रहते हैं, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, लेकिन सबका एक एक जो हार्मोन रहता है उसका फंक्शन लिमिटेड रहता है कि आगे पैंक्रियाज है वो शुगर पे कंट्रोल करे, या ओवरीज का जो हार्मोन्स है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कंट्रोल करे। तो ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो पूरे शरीर में हर कोशिका सर से लेके पैर तक, अपने चमड़ी से लेके आंखों तक, अपने मूड से सबसे संबंधित रहता है, और जब ये हेल्थी रहता है हम हेल्थी रहते हैं। तो इसकी जानकारी, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा समझना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि हमें आगे चल के ट्रीटमेंट भी जल्दी मिले। और इसका एडवांटेज ये है कि जल्दी पकड़ में आने में ट्रीटमेंट भी बहुत ही आसान है। तो ये ग्लैंड, इसके सिम्टम्स, इसके फंक्शन, इसके प्रॉब्लम्स है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि हम हेल्थी कैसे रहे।
1: बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ये ग्रंथि है जो बहुत ही कम वेट का है, लेकिन इससे पूरा जो है बहुत सारे काम होते हैं जो आपने अभी जिक्र किया। तो अब बात आती है कि अभी कॉमनली जैसे कि चलो थायराइड का ही बीमारी है ये समझना बहुत जरूरी है पहली बात तो कि ये थायराइड के कारण हो रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो फिर चीजें आगे बढ़ेगी नहीं। तो प्रॉब्लम को कैसे हम लोग कॉमनली देख सकते हैं, समझ सकते हैं?
2: बिल्कुल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया ये पूरे शरीर पे काम करता है, तो इसके सिम्टम्स भी जो है वो सामने आने के लिए भी काफी टाइम लगते हैं, लेकिन लकीली जो 30 साल या 40 साल पहले सिवियर डिजीज के साथ आते थे कि बाबा बहुत ही थायराइड का इश्यू है और फिर वो डायग्नोस हो रहे हैं, वो लकीली आज अनफॉर्चुनेटली जो बोले कि आजकल कम दिखाई देता है, क्योंकि ये टेस्ट बहुत फ्रीली अवेलेबल है और जो सतर्कता है एटलीस्ट शहरों में या आप गांव में भी बोले तो ये टेस्ट जो है काफी इजिली मिलता है करने के लिए। तो ये हॉर्मोन्स जो है जो ग्लैंड से निकलते हैं वो बेसिकली दो हॉर्मोन है, T3 और T4। इसका जो लेवल बॉडी में रहना चाहिए उसका जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उससे हमें एक इजिली आइडिया आ जाता है कि लेवल्स आपके बॉडी में बराबर है कि नहीं। अगर लेवल्स बॉडी में कम है, अभी प्रॉब्लम्स अगर हम सोचे तो सिम्टम्स वाइज अगर हार्मोन लेवल ज्यादा है, यानी प्रोडक्शन जो कार्य प्रणाली ग्रंथि से हो रही है अगर वो ज्यादा हो रही है तो इसे हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, यानी जो हार्मोन लेवल है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है। अगर उसका प्रोडक्शन या कार्य प्रणाली कम है, यानी थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम कर रहा है, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और तीसरा एक टोटली डिफरेंट सिम्टम जो हम और डिस्कस करेंगे वो है कि जब गले में गांठ आती है जो नॉन कैंसरस या बिनाइन भी बोलते हैं और जिसमें उसमें कैंसर होता है, तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। अभी ये जो हॉर्मोन्स है वो बचपन से लेके अपने आयु के अंत तक उसका काम रहता है, स्पेशली लेडीज में ऐसा देखा गया है कि 10 लेडीज में से एक को डेफिनेटली थायराइड प्रॉब्लम होता है और वो कभी कभी मिस हो जाता है। अभी ये 10 में से आप एक सोचो, यू आर टॉकिंग अबाउट 10%, काफी बड़ा नंबर है। और ये लेडीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्यूबर्टी से लेके प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इसका जो रोल है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स आते हैं लेडीज में उस पे काम उसका उसका प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो इनफर्टिलिटी, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, जिनमें जिनमें कंसीव जो हम बोलते हैं कि बच्चा हो नहीं रहा है, जिसको हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं, ब्लीडिंग का इश्यूज ज्यादा होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान जब अगर स्त्री को या महिला को थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर, तो उसे हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो बच्चे में और मदर में, दोनों में हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो प्रॉब्लम आते हैं वो ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो कार्य प्रणाली है वो कम है, तो थायराइड हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान देना है वो बराबर से गायनेक एंडोक्राइन जो स्पेशलिस्ट है वो देखे, प्रेगनेंसी एंड तक बराबर उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बाय चांस ये मिस हो गया और अगर बच्चा पोस्ट डिलीवरी हमें चेक करना है कि बाबा रिसेंटली डायग्नोस हुआ है या उनका जो ट्रीटमेंट है वो एडिक्वेट नहीं है मदर का, तो बच्चे में भी हाइपोथायराइड सिम्टम्स बहुत डेंजरस होते हैं। ब्रीदिंग से लेके क्राइंग तक, फीडिंग तक, मेंटल रिटार्डेशन तक वहां प्रॉब्लम जा सकता है और ये इरिवर्सिबल है। अगर हम जल्दी पकड़ नहीं लेते हैं कि बाबा बच्चे में, जन्मजात बच्चे में, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू बॉर्न, उसमें एक स्पेशल टेस्ट रहता है जो हील प्रिक टेस्ट बोलते हैं, वहां से खून में इमीडिएटली हम लोग चेक करते हैं कि थायराइड लेवल कैसा है, और अगर हम तभी के तभी इनिशिएट नहीं करते हैं ट्रीटमेंट तो आगे चल के रिटार्डेशन और प्रॉब्लम जो इरिवर्सिबल है उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। तो ये सब चीज जो है थायराइड हार्मोन से जुड़ी हुई है और ये थायराइड ग्लैंड जो लेडीज में मैंने जब अभी उसका उल्लेख किया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि थायराइड अपना नॉर्मल होना चाहिए। सिम्टम्स आप बताएं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत वेग सिम्टम्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्किन ड्राइनेस रहना, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स, मोटापा होना, अगर मोटापा एज इन नॉट ओबेसिटी टाइप मोटापा, खाते भी ज्यादा है खाते कम है कोई कोई लोग, नींद नहीं आती है, थोड़ा सा लेथार्जी जो बोलते हैं कि बाबा एनर्जी नहीं है, निकलना नहीं है बेड से, ये सब चीजें जो है, कभी कभी फेस में थोड़ा सा पफीनेस आ जाता है, ये थोड़े वेग सिम्टम्स है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा एक सिम्टम पकड़ के हम बोले कि बाबा ये थायराइड की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि बाबा 3 महीने पहले मैं आई वॉज फीलिंग बेटर और अभी थोड़ा सा बदल हो गया है, ये सब थोड़े थोड़े सिम्टम्स है, तो बेटर टू गेट योर थायराइड लेवल्स चेक। हाइपर थायराइडिज्म में जहां वो कार्य प्रणाली ज्यादा हो रही है, वो ट्रेमर्स आते हैं हाथ में, पैल्पिटेशंस होते हैं, एपेटाइट बढ़ता है लेकिन वेट नहीं बढ़ता है, जो हाइपर एक्टिविटी है वो होता है, तो अब एब्सोल्युटली उल्टा सिम्टम्स, और दोनों कैटेगरी में लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकते, दैट इज क्वाइट कॉमन इन बोथ. अभी ड्राई आईज रहते हैं किसी किसी में, हाइपर में, और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि आंख जो है, हमें आंख का जो ऊपर का व्हाइट है जो नॉर्मली दिखता नहीं है वो दिखने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एक्सोफ्थाल्मा. सो वेरी क्लासिकल, लकीली ज्यादा दिखता नहीं है अभी, लेकिन दिस आर द सिम्टम्स. तीसरा जो रीजन है ये सब, अभी मैं हॉर्मोन्स का मैं आपको लेवल बता रही हूँ, लेकिन उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे आपके ऑफिस में आपका बॉस रहेगा या आपका फैन रेगुलेट करने के लिए एक स्पीड रहेगा, तो हमें पता कैसे चलेगा बाबा मैं सिर्फ T3 T4 करके अगर मेरा लेवल नॉर्मल है तो, या डज दैट मीन कि मेरा थायराइड बराबर है. आप सबने TSH करके टेस्ट सुना होगा जो इसके साथ में जाता है, T3 T4 TSH. अभी ये TSH जो है वो थायराइड से निकलता नहीं है, वो थायराइड का एक बॉस है जो ब्रेन में रहता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. वो और एक हार्मोन ग्लैंड है, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का ग्लैंड है, लेकिन वो किंग है. तो जब हमारे शरीर में हम उसको लगता है कि बाबा हमें थायराइड हार्मोन ज्यादा चाहिए, यानी कमी है, तो वो एक सिग्नल भेजता है, TSH बढ़ जाता है. तो ये जो लेवल है वो उल्टा है, यानी आपका थायराइड ग्लैंड कम सेक्रेट कर रहा है तो ये TSH ज्यादा हो जाएगा. तो ये काफी लोगों को समझता नहीं है, उनको लगता है कि मेरे को थायराइड ज्यादा हो गया है क्योंकि TSH बढ़ जाता है, लेकिन उसका जो मतलब है वो उल्टा है. यानी TSH बढ़ गया यानी आपका थायराइड लेवल कम है, तो आपको थायराइड की गोली चाहिए. उल्टा हाइपर थायराइड में होता है कि उसका जो प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से थायराइड का जो स्टिमुलेशन चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कम होता है, तो वो रेंज से कम हो जाता है. तो हमें पता चलता है कि बाबा ये पेशेंट हाइपर थायराइड है. तो ये कॉमन सिम्टम्स है हाइपो और हाइपर के लिए. अभी मैं रही सर्जिकल डॉक्टर, तो मैं ज्यादा मेडिकल इश्यूज से ज्यादा आई एम ज्यादा मेरा गले से जो गार्ड के पेशेंट आते हैं सिम्टम लेके, उस पे हमारा ज्यादा ध्यान जाता है. तो थर्ड कैटेगरी के जो पेशेंट है वो गले में गांठ लेके आते हैं. अभी आप अगर कहीं भी घूमे तो भी आप देखेंगे कि बहुत सारे इसमें ये गांठ दिख जाती है रास्ते में चलते हुए, बहुत लोगों में आपने देखा होगा. अभी ये जो है इसे हम इंग्लिश में गॉइटर बोलते हैं. इसका स्पेसिफिक सिर्फ थायराइड से संबंध है, और हिंदी में इसको गलगंड बोलते हैं. अभी ये जो गॉइटर है वो बहुत, हम अगर क्लासिफाई करें तो हमें जो है उसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं. एक जो है स्मूथ जो ग्लैंड रहता है उसको डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं, और दूसरा आप देखेंगे पूरा ऐसे पूरा सूज जाता है तो उसे डिफ्यूज गॉइटर बोलते हैं. दूसरे इसमें जहां वो थायराइड के ग्लैंड में ही गांठ आती है उसको नोड्यूलर गॉइटर बोलते हैं. अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है दोनों का. और तीसरे जो वैरायटी है वो पूरे अपने कैंसर रिलेटेड आते हैं. तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे आई कैन स्पीक ऑन द स्वेलिंग्स की हम
1: जी जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन किसी ने डाला है. ट्राइबल एंड ट्राइबल आदिवासी लोगों को ज्यादा थायराइड होता है क्या, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये पूछा है. और व्हाई पीपल एक्सप्लेन्स ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बताइए दीदी. डॉक्टर प्रीति जी, अर्जुन रमेश जी, अर्चना जी, ओम शांति, थैंक यू. आदिवासी और ट्राइबल जो गांव के अंदर रहते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है कि, ये पूछा है उन्होंने.
2: बिल्कुल, अभी ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये पिछले आई थिंक 50 या 60 ईयर्स में काफी बदल चुके हैं. बिकॉज जो पहले के जमाने में जो सॉल्ट होता था वो हमें या तो डायरेक्टली सी सॉल्ट से मिलता था, और उसका जो है सब्स्टिट्यूट ज्यादा इंटीरियर्स में नहीं मिलता था, एज इन द सेंस कि वो लोग जो है उनके प्रोडक्शन में जो उनको सॉल्ट मिल रहा है वो यूज करते थे. अभी थायराइड इतना एक अमेजिंग या इतना वंडरफुल एक ग्लैंड है जो पूरे शरीर में आयोडीन का जो रिक्वायरमेंट रहता है, आयोडीन करके आई थिंक आप सब लोग तो वो जो आयोडीन है वो उसको यूज करने में सबसे इम्पोर्टेंट उसका एक काम है, और वो T3 और T4 दोनों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है काम करने में. तो पहले के जमाने में जब हमारे पास आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं रहता था तो ये जो नमक आती थी, अभी जो आप सब नमक जो मार्केट में मिलता है वो सब आयोडाइज्ड है. तो पहले के जमाने में जब नहीं मिलता था, या तो ऐसे जो आदिवासी हैं जो आयोडाइज्ड नमक नहीं ले रहे हैं, उनमें जो है ये आयोडीन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन थायराइड का सेक्रीशन कम हो जाता है और उनको वो गॉइटर आ जाता है. तो उसमें वो स्वेलिंग्स और वो जो हाइपोथायराइड डिजीज है वो आयोडीन डेफिशिएंसी किसी के वजह से है और ये रिवर्सिबल है. तो इन लोगों में अगर ये हम इंफॉर्मेशन दें कि बाबा आपका सॉल्ट आपसे वो नमक चेंज करके आयोडाइज सॉल्ट ले ले तो ये प्रॉब्लम मिट जाए. तो अभी कंपेयर टू द लास्ट 40-50 इयर्स बहुत कम है, लेकिन पहले एंडेमिक एरियाज थे जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में एंडेमिक एरियाज थे जहाँ पे ये हमें ज्यादा दिखता था.
1: प्रीति जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और सुभाष जी बहुत ही अच्छा सवाल पूछने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका. क्योंकि कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर हम उसे ठीक से नहीं समझ पाते. अगर समझ जाएंगे तो नेचुरली ये चीजें जो है, पहले मेरे ख्याल से ये खास करके एड भी चलता था एक तरह का, एडिन नमक खाइए करके
2: वगैरह.

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Mamta ki murat bhi wahi, shakti ka swarup bhi wahi. Nari ko kamzor kehne walo, nari ko kamzor kehne walo, himmat karo, pehle use samjho to sahi. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। हेमलता जी के काफी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, आइए इसी कड़ी में और भी इनके अनुभव सुनेंगे। तो हेमलता जी, आप जैसे बता रहे थे कि आप अकेले पड़ जाते थे, तो पहले तो आपने शुरुआत में तो आप अकेले बैठ करके थोड़ा उदास होते थे, थोड़ा रोना भी आ जाता था। फिर आपने क्या सोचा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, सिलाई कढ़ाई बुनाई करूं, तो ये किसी ने आपको कहा या अंदर से आपको सूझा?
2: नहीं, मेरे अंदर से ही सूझा था कि मैं अकेली किससे बात करूं। मैं राजस्थान से आई हुई यहाँ अबू रोड में, फिर मैं किसी को जानती नहीं थी, ना किसी से बात करती थी। तो फिर अंदर ही अंदर मैंने यही सोचा कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ मनोरंजन भी कर लूंगी।
1: अच्छा सोचा। तो आपने सबसे पहले अपने हस्बैंड से बात की होगी?
2: हाँ, हस्बैंड से बात की ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यही चालू कर दो, मैं पीछे रहता नहीं हूँ घर पे, और अकेली पड़ जाती है तो फिर साथ में यही।
1: तो इस तरह आपने ट्यूशन की शुरुआत की?
2: शुरुआत
1: जी। बच्चे आपके कितने साल बाद हुए?
2: बच्चे मेरे एक साल बाद हो गए थे, 81 में बड़ा वाला हो गया था।
1: और एक साल तो कहते हैं ना, ससुराल पियर आने जाने में भी समय,
2: आने जाने में ही बीत जाता है एक साल, तो फिर मेरे हो गया था।
1: जी जी। तो हाँ, आने जाने में कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। फिर थोड़े बहुत आपके जेठानी भी रहे होंगे?
2: जी हाँ, साथ में रहे ना वैसे तो।
1: जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि आपकी 18-19 साल की एज में शादी हुई, आपको सारे काम आते थे या आपकी जेठानी ने सिखाया यहाँ?
2: ना, यहाँ आके सीखी थी मैं, मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, सब उन्होंने सिखाया मेरे को। अब पढ़ाई करते हुए अपन साड़ी कहाँ पहनते हैं, वही सलवार सूट और जीन्स टॉपर और यही पहनते थे, तो साड़ी मैंने यहाँ आके सीखी।
1: जी जी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले उनका अनुभव नहीं होता है, बाद में ही होता है। जब हम कहते ना कि जमीन पर उतरते हैं और जब घर गृहस्थी में रचते पचते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर सीखी। तो जैसे आप कह रहे थे कि कढ़ाई बुनाई, ये आपने मायके सीखा है या सीखा?
2: ये तो मैं स्कूल में सीखी थी सारा।
1: हाँ जी हाँ जी, आपने स्कूल का बताया था। और आपने बच्चों का ट्यूशन, आपके बच्चा हो गए उसके बाद शुरू किया या पहले ही शुरू कर दिया?
2: नहीं, पहले ही शुरू कर दिया था।
1: तो बच्चे लोग आते थे?
2: आते थे, छोटे बच्चे आते थे ना, सब आते थे।
1: तो इसकी एड कैसे की आपने?
2: एड तो जब तो मैं फ्री थी ना उस समय, फिर बच्चा होने के बाद वापस बंद कर दिया था, फिर थोड़े बड़े हो गए 2-3 साल के, फिर वापस चालू कर दिया।
1: जी, लेकिन कैसे लोगों को पता चला कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं?
2: वो तो टीचर थे ना हमारे घर से, तो उन्होंने बताया, और मोहल्ले में भी पता था सब कि भाई इनके घर से प्रिंसिपल है, तो वो आते थे पूछने मोहल्ले वाले और क्या पढ़ा दोगे क्या। पुराने जमाने में तो इतना ट्यूशन का कहाँ था, पहले छोटे बच्चों को घर पे ही भेजते थे।
1: जी जी, ट्यूशन का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन
2: अब तो उसमें जाते हैं सब लाइब्रेरी में, तो घर वाले को कौन पूछे, पढ़े लिखे ऐसे ही बैठे रहते।
1: जी जी, तो आपका टाइम पास हो जाता था और आपकी भी पढ़ाई वापिस रिपीट हो जाती थी?
2: जी हाँ, वापस रिपीट हो जाती, वो नॉलेज भी रहता ना कोई चीज का पढ़ाने से कि भाई इसको ये पढ़ाना है, इसको ये पढ़ाना।
1: जी, और आपके जैसे बता रहे थे कि आपके चार बच्चे हैं, तो कैसे आपने बच्चों की परवरिश की अकेले हाथ, क्योंकि आपके जेठानियां रहते नहीं थे, अकेले आपको रखना, आपके हस्बैंड भी पूरे दिन झोप पर रहते थे, तो कैसे उनका पालन पोषण किया आपने?
2: मेरा बड़ा वाला तो जोधपुर हुआ था, तो 5-6 महीने तो मैं उसको वहीं से करके लेके आई थी, फिर यहाँ आके फिर जेठानी ने थोड़ा रखा, अब थोड़ा हमने संभाला, ऐसे करके साल भर का हो गया वो बड़ा। फिर धीरे धीरे परवरिश करती रही, फिर 83 में दूसरा नंबर का लड़का हुआ, 83 में, और 90 में दोनों गुड़िया हुई, ट्विंस।
1: अच्छा, ट्विंस हुई?
2: ट्विंस हुई दोनों मेरी गुड़िया।
1: ओ, ट्विंस को तो रखना बहुत मुश्किल है।
2: तो फिर काम वाली बाई रखी थी ना, मालिश वाली और सब, फिर दो को तो मैं कैसे संभालती, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई सास नहीं, कोई देवर नहीं, कोई जेठ नहीं।
1: बहुत जने क्या करते, ट्विंस होते तो एक को पियर छोड़ देते, एक को अपने पास रखते, तो आपने ऐसा तो नहीं किया?
2: नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मेरे बच्चों को मैंने ही परवरिश की दोनों की।
1: आपके पियर वालों ने तो कहा होगा एक बच्चे को छोड़ दो।
2: आई थी ऐसे तो मम्मी आई थी रहने के लिए, भाई दो चार महीने रहती फिर चली जाती, फिर आती फिर चली जाती। उनका भी बुढ़ापा था तो फिर इतना सहन नहीं होता ना। फिर मैं काम वाली लगा दी थी मेरे, वो रखते थे फिर सब, और दोनों बच्चे संभालते थे गुड़िया को जब मैं खाना बनाती।
1: जी, आपके दोनों बेटे थोड़े बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे ना मेरे, एक 8 साल का था, एक 10 साल का था, तो दोनों में उनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा, उनमें 2 साल का ही डिफरेंस था, 2 साल बाद दूसरा हो गया था, इनमें ज्यादा 10 साल का डिफरेंस रहा था।
1: अच्छा, दोनों बेटियां जो हुई और बेटा के बीच 10 साल का गैप?
2: 10 साल का गैप, ये 90 में हुई थी, वो छोटा वाला 83 में हुआ था और बड़ा वाला 81 में हुआ था, तो 2 साल का उनके गैप रहा और इनके साथ 10 साल का रहा।
1: तो बच्चे थोड़े रखने जैसे हो गए, बड़े हो गए?
2: बड़े हो गए थे रखने जैसे, तो दोनों गुड़िया को रखते थे, स्कूल भी जाते थे बच्चे दोनों।
1: जी जी जी, हाँ स्कूल भी जाते थे, फिर वो जाते थे उस समय आप रखते, आपने वैसे ही काम वाली माई लगा रखी थी?
2: रखी थी, और फिर इसके पापा भी जाते सुबह, उनका टिफिन बना के देना। काम तो बहुत मजबूरी से, बहुत दुखी से कराए, आज कहीं जाके सुख आया है।
1: कहते हैं ना दुख सुख जीवन के साथ चलते हैं,
2: जोड़ा होता है ना दोनों का ही।
1: जी जी, चार बच्चों के खैर अकेले हाथ परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर आप इतने लाड़ प्यार से पियर में पले हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना घर में भतीजा भतीजे को बड़ा किया हो, तो उनके लिए थोड़ा सरल है?
2: सरल है, कराना बड़े को भतीजा भतीजी, तीन की शादियां हो गई थी मेरे से पहले, तो उनके भी तो बच्चे थे ना, उनको संभालना, सारा घर का काम देखना सब करती थी मैं।
1: तो फिर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस थी?
2: प्रैक्टिस थी मेरी कि भाई बच्चों को कैसे संभालना है,
1: इसलिए इतना मुश्किल नहीं लगा?
2: इतना मुश्किल नहीं लगा, गृहस्थी संभालना मुश्किल नहीं लगा।
1: जी जी, लेकिन जब टिफिन बनाना होता है, एक साथ में बना के देना पड़ता है, उस समय मुश्किल होता है?
2: क्या मैं तो मुश्किल ही, भाई बनाना तो अपने को ही है ना, दूसरा थोड़ी बनाएगा।
1: बिल्कुल, तीन जनों का टिफिन, फिर दो बच्चों को संभालना,
2: बच्चों को संभालना सारा।
1: जैसे आपने कहा कि कामवाली बाई लगाई आपने, तो कामवाली बाई क्या करते थे, बच्चों को खिलाने के लिए लगाई या घर के काम में?
2: दोनों काम करती थी कामवाली बाई, बच्चों को भी रखती थी और घर का काम भी करती थी, पूरे दिन के लिए लगा रखी थी। जैसे बच्चे सो रहे तो भाई घर का काम कर लेती, बच्चे उठ गए तो उनको संभाल लेती, एक को मैं संभाल लेती, ऐसे करके 5 साल तक उनको बड़ा किया। 2 साल तक तो मैं पियर ही नहीं गई, बाहर ही नहीं निकली घर से, दो बच्चों को लेके कैसे जाऊं।
1: तो फिर आपके पियर वाले मिलने आते आपसे?
2: आते थे ना पियर वाले मिलने, आते थे कभी भैया भाभी आ जाते, कभी मम्मी आ जाती, कभी कोई आ जाता।
1: पर आपके तो जैसे हस्बैंड के प्रिंसिपल की जॉब थी, तो छुट्टियों में तो छुट्टियां ही छुट्टियां, उस समय जा सकते थे?
2: तो 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती ना जब, तो फिर बच्चों को कैसे संभालना, बाहर कैसे लेके जाना दोनों बच्चों। आगे तो कोई गाड़ियां वाड़ियां कोई सुविधा नहीं थी, वही बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, फिर 80 का पात्र बनता, इसलिए मैं तो मैंने कहा मेरे तो कहीं नहीं जाना 2 साल तक।
1: अच्छा, नहीं आपके हस्बैंड भी तो साथ में आ सकते थे ना?
2: आ सकते थे, पर बच्चों को तो मेरे को ही संभालना था ना भाई, तो अब एक को दूध पिलाऊंगे दूसरे को।
1: अच्छा, इसलिए आप नहीं जाते
2: नहीं
1: थे?
2: नहीं गई मैं 2 साल तक, कहीं नहीं गई, घर से बाहर ही नहीं गई मैं।
1: चलिए हेमलता जी, फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, नारी की नजरों में दुनिया प्यार और परवाह से भरी, पर जब बात हक की आए तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी, तो वो चट्टानों जैसी अड़िग खड़ी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में हेमलता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं, और हम पूछना चाहेंगे हेमलता जी से कि जैसे हेमलता जी आपने बताया कि आपके ट्विंस बेबियां थी, दोनों गुड़िया थी, तो 2 साल आप मायके नहीं गए। परिवार में कहते ना कि कहीं शादी ब्याह भी होते हैं, कहीं कोई प्रसंग भी होता है, तो फिर सारे आपने छोड़े?
3: सारे छोड़े मैंने, मेरी सारी इच्छाएं खत्म कर दी थी, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी 2 साल।
2: लेकिन 2 साल में भी कहां बच्चे बड़े हो पाते हैं?
3: फिर भी बैठने लायक उठने लायक तो हो ही जाते हैं ना बच्चे बड़े, जैसे चलना फिरना या कोई गोदी भी ले सकता है, और इतने से छोटे बच्चे को लेके तो कोई संभाल नहीं सकता ना।
2: जी जी, फिर तो कोई भी गोदी में ले ले तो फिर जा सकता
3: है, बच्चे को तो कोई भी गोदी में उठा सकता है, कोई भी घुमा सकता है, घूम जैसे हो जाते बच्चे 2 साल के।
2: जी जी, तो 2 साल के बाद आपने आना जाना शुरू किया?
3: शुरू किया 2 साल के बाद।
2: और अभी बच्चे कितने बड़े हैं?
3: अभी तो शादियां हो गई, उनके बच्चे भी हो गए 4ों के।
2: क्या बात है, तो अभी तो आप दादी नानी बन गए।
3: नानी बन गई ना।
2: तो अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए?
3: कहाँ, जिम्मेदारियां तो और बढ़ती जाती है, कभी इसका कभी उसका कभी बेटों का।
2: कहते ना मूल से भी ब्याज प्यारा लगता
3: रहा होता है।
2: तो फिर भी अभी आप काफी हद तक फ्री है?
3: फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है। फिर घर की स्थिति ऐसी है ना, मेरे पति को कैंसर हो गया तो उनके तकलीफ है, उनको खाने पीने का टाइम टाइम दवाई देना सारा देखना पड़ता है, बच्चे छोटे हैं मेरे, दोनों बच्चों के डायलिसिस हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है जो।
2: अच्छा, पोते पोती के?
3: पोते पोती को।
2: अच्छा, तो ये शारीरिक व्याधियां आ गई?
3: हाँ, ये परेशानियां हो गई ये सब।
2: जी जी, तो आपका समय सेवा करने में
3: सेवा
2: जाता
3: करने
2: है?
3: करने में ज्यादा लगता है मेरा समय, इसलिए मैं किसी को टाइम नहीं दे सकती बाहर, मजबूरी में इधर उधर जैसे संगीत में चली जाऊं या भजन में या विश्वविद्यालय में आ जाती हूँ टाइम।
2: जी जी, सत्संग में आप थोड़ा सा समय देते हैं?
3: हाँ, ज्यादा नहीं, बुधवार 11 को बस, 2 बार।
2: अच्छा, या तो बुधवार या 11,
3: दोनों में से एक दिन जाती हूँ, जब जब ये बच्चे घर पे रहते हैं जब जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती।
2: अच्छा, सभी साथ में है, दोनों बहुएं साथ में?
3: सब साथ में, सब साथ में।
2: तो बच्चों के कैसे हो गया, बचपन से था, जन्म से?
3: नहीं था, ये तो इनकी वो क्या बोलते रहे, जेनेटिक प्रॉब्लम हुई है।
2: अच्छा, और आपके हस्बैंड को कितने साल से कैंसर है?
3: मेरे हस्बैंड को तो 5 साल हो गए, कोरोना में हुआ था।
2: अच्छा, कोरोना के समय हो गया?
3: ऑपरेशन करवा दिया, वो तो था जो सारा दांत में कैंसर हो गया था, तो हमने तो पूरा जबड़ा ही निकलवा दिया एक साइड का, ना बड़े आगे ना कुछ हो गए।
2: तो कभी बीड़ी सिगरेट या तंबाकू खाते थे क्या?
3: अच्छा नहीं, बाजार का नाश्ता तक नहीं करते मेरे हस्बैंड।
2: फिर भी कैंसर हो गया, तो अभी ठीक है?
3: हाँ अभी ठीक है।
2: तो अभी उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं है?
3: नहीं, जिम्मेदारी तो है ही ना, अभी उनका सारा खाना बनाना, लिक्विड लेते हैं, खा नहीं सकते, एक एक तरफ का जबड़ा निकला हुआ तो एक तरफ चबा नहीं सकते, फिर उनको लिक्विड बना के देती हूँ, जूस बना के देती हूँ, पेजी बना के देती हूँ टाइम टाइम से, फिर उनको दवाई देना।
2: जी जी जी, पर कहीं मान लीजिए आपको अंदर बाहर जाना पड़ता है तो बहुएं संभाल लेती
3: है? हाँ, बहुएं संभाल लेती है, और टाइम से अगर जो होता है तो मैं करके चली जाती हूँ, नहीं तो बहू संभाल लेती है।
2: जी जी जी, और आपके बच्चे क्या करते हैं, बेटे बेटियां जॉब करते हैं, उनको कितना पढ़ाया आपने?
3: मेरे बच्चे, छोटा वाला बेटा तो मेरा एक्सियन है पीएचडी में, बड़ा बेटा एमबीए करा हुआ है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, बड़ी बहू फार्मेसिस्ट है उदयपुर में मेडिकल कॉलेज में, और दोनों बेटियां एमए बीएड करी हुई है।
2: अच्छा, तो बेटियां भी जॉब करती
3: है? नहीं, जॉब नहीं करती अभी, दे रही है, फाइट दे रही है।
2: जी जी, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा है? अच्छा पढ़ा दिया,
3: सारा परिवार पढ़ा लिखा है सारा।
2: तो आपका कमी खली वो आपने अपने बच्चों में पूरी कर दी?
3: उन्होंने पूरी कर दी मेरी, सारे जीवन में खुशियां दे दी, सब कुछ नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब है, सारी खुशियां दे दी उन्होंने।
2: जी जी जी, तो अभी आप अपने जीवन में खुश है?
3: खुश हूँ मैं, बिल्कुल बहुत खुश हूँ मेरे जीवन में।
2: जी, तो आप हमारी जो बहनें सुन रही हैं, जो सीनियर सिटीजन बहनें हैं 60 प्लस वाली, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कितनी बार क्या है कि महिलाओं के जैसे सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाती, लेकिन सास बहू के किटपिट होती रहती, तो आप क्या कहेंगे?
3: नहीं, हमारे कभी सास बहू में किटपिट नहीं हुई है आज तक।
2: तो कैसे आप बहुओं को किस नजर से देखते हैं?
3: बेटी की नजर से देखते हैं, और क्या करें। जब अपने को सुखी रहना है तो अगले को जैसा ढलना चाहिए इंसान। और मेरा यही निवेदन है कि सभी बहनें 60 से ऊपर से हो गई है, तो यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में अपनी खुशी के लिए सबको त्याग दो। किसी को ये मत कहो कि तू मेरी बहू है, तू मेरा वो है। अपन खुद मम्मी बन के रहो सबके साथ में। तो आपको भी यही कहना है मेरा कि आप भी ऐसे ही जीवन में जियो तो खुश रहोगे। आज के जमाने में बहुओं को टोका टोकी करना ही नहीं, न करने से चार बात अपने को सुनने को मिलेगी। इसलिए मुंह को बंद रखो, आंखों से देखो और हंसते रहो।
2: क्या बात है। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया है कि 60 प्लस वाली बहनें जिनके घर में बहुएं आ चुकी है, उनके साथ प्यार से रहो, ज्यादा टोका टाकी न करो, ताकि बैलेंस बना रहे और घर में शांति बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो हेमलता जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बहुत ही सुंदर अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, रेडियो मधुबन को समय दिया और हमारे सभी श्रोता बंधुओं के साथ आपने अपने अनुभव शेयर किए, इसके लिए
3: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में हेमलता जी गोयल हमारे साथ बने हुए थे। आबू रोड से है आप ने भले पढ़ाई 8वीं तक की है, लेकिन आपका नॉलेज देखिए कितना है। आज आप अपनी बहू के साथ प्यार से रह रही है, जब शादी करके आए तो अपनी भाभियों के साथ बहुत ही प्यार से रहे, तभी घर में सुख शांति बनी रही। और आज भी आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए थोड़ा रुचि रख रहे हैं और भजन सत्संग में भी अपना समय देते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रगति का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज आपका पास पहुंचाने के लिए उपस्थित है स्टूडियो में ही, तो पर्यावरण एनवायरनमेंट का बारे में और एपिसोड में कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर जब स्टूडियो में ही हमारा जो मेहमान कहे चाहे हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सजा रहते हैं वो आए हैं गोपाल राम पुरे जी, उनको स्वागत करेंगे रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। और खास जोर से आज आकर्षित होकर स्टूडियो में पहुंचे तो उनको स्वागत करते, सर आपका स्वागत करते, वेलकम करते हैं। आज का विषय तो बहुत शानदार होगा और अति जानकारियां का साथ हम आज आपका पास पहुंच रहे हैं, तो स्वागत है सर आपका, वेलकम आपका, इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: सर नमस्कार। सर
0: नमस्कार।
1: पर्यावरण पर प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की परिणति और उसका जो एक्सप्रेशन है
0: जी,
1: वो रेडियो मधुबन के माध्यम से बीके पवित्र भाई हम तक पहुंचते हैं। तो आप सभी से प्रेरित होकर के ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहा है, वहां पर हमारा पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण हो जाता है
0: जी।
1: क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी उसी को प्रतिफलित करते हैं। शारीरिक स्वस्थता के साथ में फिर वही राजयोग और वही संकल्प के साथ पूरे विश्व में शांति के माहौल को बनाता है। आज इस कार्यक्रम पर अपनी बात आप समझ सबके साथ में समझ के साथ साझा करेंगे, उसका जो मुख्य विषय है वो हरित ग्रह प्रभाव रहेगा
0: जी। हरित ग्रह प्रभाव
1: जी सर, कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको सामान्य तौर पे कहा जाता है,
0: सभी को पता है।
1: जी हाँ जी हाँ। तो ये किस तरह से मानव को प्रभावित करता है, यानी कि मानव के स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, ये बात इसके अंदर हम आपके माध्यम से समझने और बीके पवित्रा भाई के साथ में पवित्र विचारों के साथ में समझाने का प्रयास करें।
0: क्या बात
1: सर, जैसा कि मानसरोवर में हमने प्रभाव देखा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आम आप में विश्व शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए किए जाने वाले जो प्रयास है, उनके मुख्यालय का मानसरोवर एक भाग है। वास्तव में ये नाम लेते ही हमारे दिमाग में भी कहीं न कहीं अंतः वातावरण बन जाता है। मान सरोवर मानस में शांति को लाने वाला है और अंदर से आह्लादित करने वाला होता है। अगर हम ध्यान देवें उस पर, अगर हम ध्यान करें, अगर संकल्प करें और चारों ओर के वातावरण को देखें, तो वास्तव में वातावरण में बैठ करके वातावरण की बात करना ये अपने आप में अद्भुत है सर। अब यहाँ पर हरितिमा ऐसी है चारों तरफ, जिसकी कल्पना अगर आप आंखें बंद करके उस शांत भाव से उसको महसूस करें, तो आपके अंदर शांति का जो सागर है वो हिलोरे लेने लगता है।
0: क्या बात, सही में।
1: आसपास के वातावरण में राजयोग के द्वारा होने वाले विभिन्न सम्मेलन, सभी मुख्य भवनों में सम्मेलन हो रहे हैं और संकल्पित होकर के सभी अपने अपने तरीके से राजयोग सीख रहे हैं। तो सर, इस हरितिमा में राजयोग को सीखने का या जीवन को जीने का, और यहाँ से जो आसपास के जितने भी लोग हैं या जो भी इसको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को, उनको समझाने का एक अलग ही आनंद यहाँ पर महसूस किया जा सका। अब हम मुख्य विषय पर बात करें, ये जो हरित ग्रह प्रभाव है
0: जी जी,
1: यह एक गैसीय प्रभाव है। बिल्कुल सर, गैसीय प्रभाव है, गैसेज का इफेक्ट है सर। इसमें ऐसा होता है कि सूर्य से आने वाली किरणें,
0: सुबह शाम दोपहर हमेशा उसका किरण,
1: बिल्कुल सर यही बात। अब वही बात आपने कही ना, सुबह दोपहर शाम
0: तीनों टाइम उसका तो रेज का
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर ये तो रात को भी रहती है। वास्तव में इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा
0: जी, जी।
1: पूरी तरह से समझाने का प्रयास। रात को ऐसे रहती है कि पृथ्वी तो घूमती रहती है ना, सूर्य के सापेक्ष, सूर्य भी ब्रह्मांड में घूमता है।
0: क्या बात, हम लोग सोचते थे सूर्य स्थिर है।
1: नहीं सर नहीं, हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं इसलिए इस बात को भी ढंग से रखना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है
0: जी जी,
1: ब्रह्मांड के अंदर लाखों सूर्य है, लाखों तारे हैं, और ये जो सूर्य है जो हमारे इस सौर मंडल का मालिक है सर, कोई एक सूर्य है। अब ब्रह्मांड की विशालता की तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन विषय आया तो बात समझाना जरूरी है कि सूर्य भी गति करता है, लेकिन अब हमारा जो ग्रह है, हमारा जो सौर मंडल है, जिसमें सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, ये सारे के सारे ग्रह उसके चारों सौर मंडल में परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। अब सूर्य से जो प्रकाश आता है सर, उसी से हमारा जीवन बनता है। जहां पर अनुकूल स्थितियां हैं, वहां पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश,
0: पर्यावरण,
1: ये सब मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं।
0: पर्यावरण का भाषा भी ऐसे हम जानते हैं, पर्यावरण का अर्थ ही हमारा चारों ओर का,
1: चारों ओर का आवरण, आवरण, बिल्कुल सर,
0: जिसमें सजीव भी है और निर्जीव भी,
1: सभी है, सभी कुछ है,
0: जीव जंतु।
1: और हम तो उसको अब नए तरीके से सोचते हैं, तब अंत है पर्यावरण की बात में यहाँ पर पहली बार कहना शुरू किया है।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि पूरे दिन रात मैं तो पर्यावरण के बारे में सोचता हूँ आपके साथ, कि अंत पर्यावरण भी हमारा बिल्कुल शुद्ध हो जाए, संकल्पित हो जाए।
0: हम तो बाहर वाला
1: पर्यावरण है जिसकी बात कर रहे हैं, खूब ज्ञान बढ़ा है।
0: अंतःकरण जो बाहर, उसमें हम पिछले
1: दोनों उसमें दोनों पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत है अंदर आ जाएगा कि हमको इसके लिए काम करना है, तो बाहर तो है ही, तो उस पर खूब सारा ज्ञान है, सरकारें बांट रही है,
0: शक्ति जो है सोचने का, जो
1: जी हाँ
0: जी आता है सोच आपका,
1: बिल्कुल वही सोच आएगी और तभी जाकर के आप उस कार्य के लिए प्रेरित हो जाएंगे, जैसा आपने हमको प्रेरित किया।
0: जी जी,
1: हम और आप इतने वर्ष से इसमें लगे, ये क्या है सर, ये अंत पर्यावरण ही है, उसको आप अंत चेतना कह दो।
0: तो जीव जंतु आया ना उसमें ही, हमारा चेतना
1: उसी में तो आएगा, इसीलिए तो आप भाग भाग पर सामुदायिक सेवा के लिए जाते हो, रेडियो मधुबन पर संगीत, मधुर संगीत सुना करके उस वातावरण को मधुर कर देते हो, उस वातावरण को
0: परमात्मा
1: मुरली सुना देते हो, परमात्मा की आवाज सुना देते हो, विभिन्न माध्यम से म्यूजिक के द्वारा उस वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास, तरंगित करने का प्रयास,
0: तो ये पर्यावरण के लिए का,
1: ये तो पर्यावरण ही है।
0: अच्छा, मैंने शुद्ध पर्यावरण,
1: बिल्कुल सर, शुद्ध शुद्ध संगीत में और शुद्ध पर्यावरण आप इसको
0: डायरेक्टली उनको सहयोग, ऐसे जो हम कर रहे
1: सीधा सीधा, हाँ, वो इसलिए आप प्रेरित,
0: पर्यावरण का अर्थ सही मायने में
1: बाहरी के साथ में
0: संरक्षण कर रहे हैं,
1: बिल्कुल आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, आप इसकी प्रिजर्वेशन की बहुत बड़ी ताकत लगा रहे हैं सर। इसके साथ ही आपने मुझे भी भ्रमण कराया विभिन्न स्कूलों का, सब स्कूलों में क्या पाया आप जानते ही हो, तो वहाँ भी उसको तरंगित करने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, मतलब आपकी पर्यावरण के प्रति सोच, उनकी अंदर की चेतना भी जगानी है, तब जाकर के उस पर काम होगा,
0: बाह्य और अंतर
1: दोनों पर काम होने पर ही हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो सर जो हरित ग्रह प्रभाव है, मूल प्रश्न पर आवे,
0: जैसे सूरज का,
1: सूरज वही सौर मंडल से
0: किरणें, जो
1: हाँ किरणें आती है, तो वो सर जहाँ पर प्रकाश, पानी, उपयुक्त धरातल, पृथ्वी, जल, तेज, उपयुक्त वायु, शुद्ध वायु, आकाश, ये सब मिल करके जीव को उत्पन्न करने की, जीव के जीवन की, जीव के विकास की, उसके सर्वाइवल की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। साहब ये हजारों वर्षों पहले बहुत शुद्ध विशुद्ध पर्यावरण था, और अब पर्यावरण में
0: कुछ ना कमी आई है,
1: रोग भी बढ़े हैं, इस पर इसलिए रोज इसकी चिंतन हम करते हैं, उसका वजह यही है, चिंता करने की बात नहीं, उस पर चिंतन कीजिए, उस पर चलिए, उसको बचाने का छोटा छोटा छोटा छोटा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से यह पर्यावरण तरंगित हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, और आपको इतना कुछ देगा कि उसमें आप खुशी से सराबोर हो जाएंगे। अब रही बात, अब हरित ग्रह प्रभाव जो हमारा पड़ रहा है वो किस तरह से हमारे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, इस पर चर्चा करते हैं।
0: सही बात,
1: सूर्य से आने वाली किरणें, सुबह किरणें कितनी माइल्ड या सॉफ्ट या आनंददायी लगती है,
0: छोटा बच्चा जैसे प्यारा लगता है,
1: और दोपहर को तेज धूप जैसा ऋतु के अनुसार, और सायं को ढलती हुई किरणें,
0: सबका अलग अलग महसूस का
1: अलग अलग प्रभाव है सर,
0: हम सब
1: सबका अलग अलग प्रभाव है सर।
0: सुबह में तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, मैंने छाया का जरूरत नहीं, सुबह का बच्चा जैसे हो,
1: तो सर वो सर अब देखिए स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक भी है,
0: सर्दी का टाइम में
1: बिल्कुल
0: उसके लिए तरसते हैं,
1: बिल्कुल तरसते हैं लोग,
0: और
1: ताकत मिलती है सर
0: बाहर में,
1: और गर्मी में आप बाहर निकल जाओ ग्रीष्म काल में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में, तो आपको ये चीज सहज ही समझ में आ जाएगी कि ये इसका संतुलन कितना हमारे लिए कितना
0: आवश्यक, 10 बजे तक सहन नहीं करता,
1: सहन नहीं कर पाता।
0: अभी 12 बजे तक हम रहेंगे सर्दी का टाइम में, कुछ
1: तो सर
0: ऋतु अनुसार उसका भी प्रकोप होता है, और खासकर कभी कभी ठंडी का टाइम में, सर्दी का टाइम में भी सहन नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल सर ये होता है,
0: दो दिन पहले हम लोग गए थे, सहन नहीं हो पाया 12 बजे,
1: बिल्कुल
0: सर्दी का मौसम।
1: तो सर ये संतुलन आवश्यक है, और ये संतुलन होगा तभी जा करके हम हमारे सभी कार्य, विकास के कार्य वगैरह सभी सुचारू रूप से कर पाएंगे। अब सर
0: ये तो है जो भी बोल रहे,
1: किरणें आती है सुबह
0: जी,
1: वो सर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी है, सूरज की किरणें सुबह एक निश्चित समय तक या थोड़े समय तक जब वो माइल रहता है, टक टक आंखों की रोशनी भी बढ़ती है उससे, शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है, विटामिन डी भी मिलता है। तो सर
0: अरे बहुत सारा चर्म रोग जो होता है ना,
1: बिल्कुल उससे ठीक होता है, ठीक होता है। अब सर इसी पर हम बात करते हैं,
0: घाव फोड़ होता है,
1: बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात,
0: खोला में कोई बैंडेज वगैरह नहीं करते, इसे खोला छोड़ते हैं धूप में बढ़ते तो
1: बिल्कुल सर वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा
0: सर,
1: ठीक हो जाएगा सर। सर ये चीजें सर जब अपन कई बार आध्यात्मिक अपन कई बार बात करते तीर्थों की, सर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
0: जी
1: ध्यान करना, साधना करना, तीर्थ के जल से नहाना, सर वो जल वहाँ शुद्ध है इसलिए वो तीर्थ,
0: और भावना भी शुद्ध रहता है
1: सर, भावना भी शुद्ध है
0: वहाँ जो जाते तीर्थ पर, ऐसे अशुद्ध विचार कोई ज्यादा नहीं सर, और भावना आपका शुद्ध होगा ना
1: जी,
0: कहीं भी जाएगा आपका भावना से वो अमृत बन जाएगा सर,
1: बस तो वो सर पर्यावरण में दुगना फायदा करेगा,
0: और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। आप पॉजिटिव भावना, मैंने देखा है पॉजिटिव भावना लेकर कहीं जाए
1: जी,
0: और प्रकृति जो 5 तत्व है
1: जी जी,
0: वो भी आप पहचानता है, पॉजिटिव भावना लेकर और वो अपना रूप।
1: तो सर वहाँ पर रोग मुक्ति तीर्थों पर अधिकांश देखी गई है,
0: वो तो है, जैसे गंगा जल में जाते हैं
1: जी जी जी,
0: कोई भी तीर्थ
1: पर वहाँ सर गंदगी करेंगे तब तो नुकसान ही, वही बात, जैसे गंगा जी को साफ करने का अभियान अब छेड़ना पड़ा,
0: क्या जरूरत,
1: नर्मदा सफाई अभियान अभी छेड़ना पड़ा,
0: कारण
1: और कारण की व्यक्ति सर वहाँ जाता है लेकिन वो पॉलिथीन वही इधर उधर डाल देता है, कचरा इधर उधर डाल देता है, तो वो नियत स्थान पर नियत समय पर डालेंगे तब जाकर के हम सरकारों का भी सहयोग कर पाएंगे, नहीं तो वो चीज कितना नुकसान के, आपको भी नुकसान होगा दूसरों को भी नुकसान आप कर रहे हैं
0: जी।
1: तो जो हरित गृह प्रभाव है सर, यहाँ पर मुख्य सोचने की बात यह कि वो गर्मी को बढ़ाता है,
0: गर्मी को बढ़ाता
1: है, टेम्परेचर को, ओवरऑल टेम्परेचर को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है सर, कि वो जब टेम्परेचर को, जब उसकी जो तरंग दैर्ध्य के हिसाब से जो किरणें अंदर घुस जाती है, हमारे वातावरण में आती है, वो पृथ्वी पर टकराने के बाद सर वापस जाती है ना, वहां पर जो ये हरित गैसीय जो आवरण जो बनता है
0: जी,
1: वो गर्म उनको कितना रोकता है, वो उनको रोक लेता है, और वो सर एक सीमा तक तो ठीक है, अभी तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर जो टेम्परेचर आप बढ़ने की बात कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, हमारी स्किन वगैरह पर जो फायदा करता है वो ही नुकसान कर जाएगा, तो इसके लिए हमको सावधान होने की बात है। तो ये जो सर वापस जाने वाली तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें हैं वो सर इस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड का,
0: कार्बन डाइऑक्साइड
1: मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड इस पर ज्यादा प्रभाव डालती है। अब सर इसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवरण है,
0: आवरण
1: उसका जो आवरण बना हुआ है, या अन्य गैसें भी है जिसमें जिस चीज का प्रभाव है मैं उसका परसेंटेज भी आपको बताऊंगा, तो वो जो आवरण का जो प्रभाव है सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण 76% तक उसका प्रभाव रहता है उस पर,
0: 76
1: टोटल में से, जैसे 100% अगर कोई चीज है तो 76% दुष्प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। CH4 का जो प्रभाव है वो 16% है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 6% है, और जो जितनी फ्लुओरिनेटेड जो गैसेज हैं इनका जो इफेक्ट होता है वो 2% होता है, 2% मीन्स ये भी बहुत बड़ा सा प्रभाव माना जा सकता है। सर आपसे मैं इसमें बात करूं तो सबसे ज्यादा काम इस पर जो हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नॉर्वे सर सबसे ज्यादा काम कर रहा है इसके अंदर।
0: ओके
1: सर, नॉर्वे में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको महासागर के तली में स्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत काम हो रहा है सर उसको स्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जर्मनी में सर बहुत बड़ा काम हुआ है, ये कुछ देश है बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से जिस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, या उसका कोई साइंटिफिक उपयोग किया जा सके कहीं और, या फिर उसको डंप किया जा सके, इस तरह करके जो तरीके हैं वो बहुत अपनाए जा रहे हैं। तो हम सबको भी इसके लिए सावधान होकर के इसके ऊपर हमको काम करना पड़ेगा
0: जरूर।
1: अब सर ये सर मैंने उस समय आपसे निवेदन किया था कि ये कैसे कैसे सर इफेक्ट करती है, ये परसेंटेज बताया, अब सर ये कितने वर्ष तक एस्टैब्लिश रहती है ये चीज बता रहा हूँ। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, आज जितनी निकल गई उसका, हाँ वो कितने वर्ष बाद खत्म होगा भाई। जैसे आज निकली आज वाली, वो इतने वर्ष बाद, फिर जो कल निकलेगी वो फिर आगे इतने वर्ष तक मतलब रहेगी तो सस्ते नहीं, लेकिन आप उसको कितना कम प्रभाव दुष्प्रभाव कर पाते उसके लिए सोचने वाली बात है। इसमें सर ये है कि आपका जो CH4 है वो सर लगभग 12 वर्ष तक निवास करता है। सर ये सारे साइंटिफिक आंकड़े हैं सर, जो वैज्ञानिक जितने भी जर्नल निकलते हैं उसके अंदर से 12 वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है। मतलब 12 वर्ष के बाद वो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन वो 12 वर्ष रहेगा, कल से निकला वो फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष, मतलब तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा। और फिर जितना आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा,
0: इसका अंत नहीं,
1: इसका अंत नहीं, तो इस
0: डेली जन्म हो रहा है,
1: वो कितना, हाँ, वो कितना नुकसान करेगा। तो उसी क्रम में दूसरे भी समझना,
0: जैसे तो
1: जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सर 100 वर्ष तक निवास कर, मतलब आज जो निकली सर आज जो निकली उसको अगर वृक्षारोपण के जरिए नियंत्रित नहीं किया या मशीनों से आपके व्हीकल के धुएं को कम नहीं किया गया
0: तो मानव समाज के,
1: तो 100 साल तक रहता है, आज का प्रभाव 100 साल तक रहेगा। जैसे इस समय जो हुआ है प्रदूषण वो 100 साल रहेगा, दूसरे घंटे हुआ वो 100 साल रहेगा,
0: एक दिन में तो कितने घंटा होता
1: है, बस सर इसमें टनों निकलती है, उसके आंकड़े भी मैं आपको बाद में देने का प्रयास करूंगा। और यही सर हमको प्रेरित किया है कि हम इसके लिए थोड़ा लोगों को सचेत करें, थोड़ा जागरूक करें वहां जाकर के, ताकि भाई तुम थोड़ा लंबे समय तक अपने आप को बचा पाओ, या फिर जब तक बचो तब तक अच्छा काम करो। आप बीमारियों से ग्रसित तो ना जियो, आप सुखी शांत और आनंद में जीवन तो जियो।
0: कितना बड़ा विषय है,
1: इसलिए सर
0: तो हमें कितना जागरूक होना चाहिए, हमें कैसे लग रहा, आप जैसे पूरा
1: जी जी जी जी
0: इसको अनुभव किए, भाई करो कुछ, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा कल, बचाओ बचाओ के लिए करो,
1: खुद के लिए करो सर, खुद के लिए करो,
0: खुद भी कर रहे हैं उसका साथ साथ हम भाई, हम खुद के लिए, हमारा समाज भी है ना हमारा साथ, तो उसको भी देखना है ना
1: सभी। आप सर यही बात, समाज ऐसे बनेगा, आप स्वयं क्या करेंगे, मैं स्वयं क्या करूंगा, वो स्वयं क्या करेंगे, तो ये तो समाज बन गया ना सर। तो समाज खुद का काम समाज करेगा तब सर सरकार है उसमें कुछ कर पाएगी, नहीं तो फिर सरकार क्या करेगी सर।
0: सही बात
1: सर, तो सरकार के सहयोग के लिए स्वयं को अपने आप को बदल करके इसमें काम करना होगा। सरकार ने तो सर पर्यावरण मंत्रालय बना दिया सर, भारत सरकार की बात करो, बाकी जगह भी चल रहा है
0: जी
1: सर। परसों सर एक अभियान चला सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सर मेरे सोचने का विषय थोड़ा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय होता है सर। उन्होंने अभी एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, एक मास एक उपवास,
0: जानेंगे एक मास एक उपवास,
1: गजब
0: अल्प विराम का बात सर, एक मास एक उपवास
1: बहुत गजब की चीज।
0: जानने के लिए तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, और क्या इसका राज है एक मास एक उपवास, जो नया थीम लेकर हम पहुंचेंगे आपके पास अगला कड़ी में। सुनते रहिए, सर को विराम देते हैं और हम भी श्रोता मित्र को थोड़ा सा विराम देते हैं, सुनेंगे एक मास एक उपवास का राज, और खासकर पर्यावरण
1: के संबंध में
0: संबंधित करता है
1: पर्यावरण के संबंध में।
0: सुनेंगे अल्प विराम का बाद, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, खासकर पर्यावरण स्पेशल में आज हरित ग्रह प्रभाव के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमें खुशी लग रहा है इस तरह कम्युनिटी से कोई आकर हमारा रेडियो मधुबन को सजाएंगे, कितना खुशी का बात, क्योंकि सरकार का जो मंशा है कम्युनिटी एंगेजमेंट सही में आज देखने को मिल रहा है। जो 12-13 साल से रेडियो मधुबन आसपास गांव अंचल में घूमता है उसका परिणाम धीरे धीरे समझ कर आ रहे हैं, समझदार बन के और रेडियो में अपना आवाज को सुना रहे हैं, ये बहुत खुशी का बात है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: गणपति बप्पा,
1: गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया।
0: गणपति कहाँ आ रहे हैं?
2: हाँ बिटिया, गणपति आ रहे हैं हम सबके घर और हम स्वागत करेंगे धूमधाम से।
3: गणपति जी के आगमन पर आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से शुभकामनाएं। गणपति जी के साथ आइए, उनके प्यार, सेवा और शक्ति के गुणों को भी करें धारण। मनाएं गणेश उत्सव उमंग और हर्ष उल्लास के साथ।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते तो हुए आप सब सुन पा रहे हैं, खासकर एनवायरनमेंट पर्यावरण का विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और हमारा साथ इसको सजाने के लिए हमेशा की तरफ आज भी उपस्थित है स्टूडियो में। आज हम कम्युनिटी आउटरीच में नहीं पहुंचे, आज हम स्टूडियो में ही उनको बुलाए और स्टूडियो से ही आपको आपका बात को हमारा बात को आप सब तक रूबरू कराने के लिए तो सर को पुनः स्वागत करते हैं। ब्रेक का बाद तो सर खासकर हम पिछला लिंक में इसी लिंक में हम सुनाए थे एक मास एक उपवास, मास तो जानते हैं
1: महीना
0: होता है और उपवास मतलब
1: आराम
0: देना है और कुछ खाना में निर्जल उपवास कहते हैं।
1: गजब गजब।
0: और जब कोई त्योहार आता है
1: बहुत फायदा
0: उपवास होता है
1: बहुत,
0: तो उसमें पर्यावरण को, ये तो मनुष्य को फायदा होता है खुद को, लेकिन उसमें पर्यावरण को क्या फायदा होगा?
1: जी जी सर,
0: सर आप ही
1: बिल्कुल सर बिल्कुल सर। अब सर बात से बात निकली है
0: जी।
1: तो सर एक मास एक उपवास, सर ये इतनी बड़ी थीम है पर्यावरण की रक्षा के लिए जिसका कोई सानी नहीं। अपन सोचेंगे कि ये तो सामान्य बात बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं, पर सर इस पर जो अभियान सरकार ने चलाया है अभी उसका उद्घाटन परसों ही भारत सरकार के द्वारा किया गया है,
0: 12 दिसंबर 2025
1: को इसका उद्घाटन हुआ है सर। उसमें सर ये एक मास एक उपवास इतना बड़ी थीम मुझे लगी सर, कहने में सबको पता है सरल सी चीज है,
0: करते भी है उपवास,
1: करते भी है, लेकिन क्यों करें ये वाली बात उसमें सामने आ गई सर। उसमें पर्यावरण मंत्रालय से अपने जो मंत्री हैं
0: राजस्थान का ना
1: भूपेंद्र यादव, सेंट्रल का सेंट्रल भूपेंद्र यादव जी ने उन्होंने कहा, मतलब बहुत ही गजब की बात उन्होंने कही कि शरीर का जो जो वजन बढ़ता है उसको कम करने के लिए उपवास आवश्यक है, यानी कि जो जो वजन बढ़ता है शरीर में बीमारियां बढ़ती रहती है और आपका जो अंदर का जो पर्यावरण का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है।
0: जैसे
1: आप जब अस्वस्थ हो जाते हैं और अस्वस्थ हो गए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हो सकता
0: है, तो आएगा बस बेचैन होगा पर्यावरण का, उसका वाइब्रेशन जाएगा भाई, जो भी आपका पास आएंगे पशु पक्षी होता है धूप में आपको अच्छा नहीं लगेगा,
1: नेगेटिव
0: जाएगा
1: बस, तो फिर नेगेटिव जाएगा बस, तो फिर आपका जो है आपकी सोच ही थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो फिर आप

0: कर पाएंगे।
1: तो सर एक मास में एक उपवास वाली जो थीम है उन्होंने योग के साथ में इसको करने का कहा, जिसमें शारीरिक योग की बात उन लोगों ने कही, तो आध्यात्मिक योग तो है ही, आध्यात्मिक होगा तभी शारीरिक योग होगा। बाद में सर उसमें डॉक्टर सरीन जो एशिया के लीवर ट्रांसप्लांट और पाचन के सबसे जबरदस्त विशेषज्ञ है पूरे एशिया के बड़े डॉक्टर्स में, उन्होंने कहा कि आप जितना उपवास करेंगे उतना ही शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपका बिना किसी दवाई के ही ट्रीटमेंट हो जाएगा।
0: इसलिए डॉक्टर लोग कभी कोई कहते भाई आपका आहार पर थोड़ा हल्का लो, कम लो,
1: नियंत्रण करो आहार पर नियंत्रण करो। तो सर उन्होंने ये कहते हुए कहा कि छोटे बच्चे जो है ना सर, अभी आजकल के क्या करते हैं हम लोग, छोटे बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाते, छह महीने तक छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाना आवश्यक है ये उन्होंने बताया। अगर आप 6 महीने तक बच्चे को, छोटे बच्चे को माँ का दूध, अति आवश्यक कोई कारण हो जाए वो एक बात अलग है, लेकिन उसको जब माँ का दूध पिलाएंगे तो उसमें इम्यूनिटी उसकी इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि वो आगे जा करके बीमार नहीं होगा, उसका जो आंतरिक पर्यावरण इतना बढ़िया हो जाएगा कि वो बीमार होने की स्थितियां उसकी बहुत कम होगी, नहीं तो वो मोटा हो जाएगा।
0: चैलेंज का बात है,
1: ये बहुत बड़ा चैलेंज है सर,
0: कि पहले से लोग का 6 महीने तक माँ का दूध नहीं पिलाना है, इसका तो सबका मन में है माताओं का,
1: लोग तो ये कहते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि उनको माँ का दूध ही पिलाना है। कोई अन्यथा कारण हो जाए, जैसे कोई बीमार है माँ और वो एक अलग बात होती है, वो डॉक्टर की सलाह, लेकिन 99% मतलब 100% ही बच्चे को जब आप माँ का दूध देंगे तो 6 महीने तक उसको देंगे और उसके बाद में उसकी जो भोजन प्रणाली है वो भी व्यवस्थित रहेंगे, वो मोटा नहीं होगा, तो मोटापे से उसके शरीर में उसका लीवर फैटी हो जाएगा, उसके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएंगे, तो भाई वो क्या बीमार हो जाएगा, तो फिर वो क्या आगे बढ़ेगा, क्या सोचेगा, क्या उसका विकास होगा, क्या आप पढ़ा लेंगे, क्या लिखा लेंगे। तो सर ये पर्यावरण को सबसे जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर अगर आप और हम सब भी संकल्पित हो जाए, 1 महीने में 1 दिन का उपवास, ये मशीन भी सर 24 घंटे चलती है शरीर, तो इसको कभी कभार आराम करवा दे, ओवर हीलिंग करने के लिए इसको आराम करवा दे, उस तरह पूरे दिन आप शिथिल होकर आनंद के साथ में आध्यात्मिक चिंतन करें।
0: शुरू शुरू में जब भी कोई संक्रांति होता है, अमावस्या होता है, तो
1: जी जी जी
0: माताएं उपवास करते
1: हैं। सर इनके संस्कार में है, इनकी संस्कृति में है,
0: कम खाते भोजन भी एक टाइम करते हैं, कोई कोई पूरा दिन
1: जैसा भी उपवास करे सर, आप अगर 7 दिन के बाद, आप 15 दिन के बाद नियमित अंतराल पर महीने में
0: प्रभाव पड़ेगा
1: उसका, निश्चित रूप से उसके शरीर पर, उसके माइंड पर, उसके सोचने पर, उसके अंतः चिंतन पर, सब पर प्रभाव पड़ेगा, और वो सर कितना भोजन बचा देगा।
0: तो अरे जो अंतर में जो इंजन हमारा है, जो भी इस पकाने के लिए पचाने के लिए जो
1: जी जी,
0: उनको लगेगा चलो आज तो मुझे रेस्ट मिला, कोई आया नहीं कुछ,
1: इतना रेस्ट कभी कभार उसको भी
0: रेस्ट, तो सर वो जंत्र भी अपना जो भी कचरा था वो निकल,
1: वो भी निकल जाएगा,
0: उसको तो खाने के लिए चाहिए तो चलाएगा तो खराब निकल जाएगा गंदगी।
1: तो सर
0: ये भी ऐसा पॉइंट,
1: सर लीवर के लिए सबसे जबरदस्त उपाय है सर
0: उपवास,
1: क्योंकि सर उपवास होगा तब क्या होगा सर, वो डॉक्टर ये बता रहे थे कि जो ग्लूकोज आपका इकट्ठा हो गया है बॉडी के अंदर, फैट जो आपका इकट्ठा हो गया है बॉडी के अंदर, वो सर जब उपवास होगा तब बॉडी उसी को कंज्यूम करती है।
0: इसमें हम लोग जनरली देखते हैं आसपास का भाषा में
1: जी,
0: माताओं का उम्र ज्यादा बढ़ता रहता है और भाई लोग का
1: ठीक
0: कम उम्र में शरीर छोड़ देते,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उपवास का जो माता है जितना
1: सर, ये,
0: और खान पीन को थोड़ा कंट्रोल करते हैं
1: जी जी,
0: है ना सर,
1: तो ये सर यही सबसे बड़ा फायदा है।
0: भाई लोग का देखिए, मैंने देखा स्वामी स्त्री रहते हैं,
1: बिल्कुल सर,
0: बुढ़ा बुढ़ी जो होते हैं
1: जी जी जी,
0: ओल्ड एज जो होते हैं, तो कम लोग जो बूढ़ी पहले जाते हैं शरीर छोड़ते हैं, बुढ़ा बाद में जाते, लेकिन अधिकांश लोग पहले मर्द जो मेल छोटा है,
1: बस बस फिर अगर आप ये बताते हैं तो इसका मतलब
0: कारण भी है, मैंने देखा सोच और उपवास
1: बड़ा कारण है सर, वो सोच से शांत रहते हैं,
0: तो एक मास में एक उपवास जो सर, इसका सार्थक,
1: बिल्कुल सर, बहुत
0: सभी को
1: जबरदस्त जबरदस्त अंतर लाएगा मानव जीवन के कल्याण के लिए, बहुत उपयोगी।
0: ब्राह्मण लोग जो होते हैं सर
1: जी जी जी,
0: वो लोग तो उपवास कराते हैं, करते भी, अरे सभी को कराने के लिए, अरे सरकार ने दे दिया भाई करना ही है।
1: और सर उपवास कैसा करना चाहिए वो फिर देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उपवास में इधर का खा लिया उधर का खा लिया उसको फिर को खाली छोड़ना पड़ेगा।
0: नहीं वो तो निर्जल उपवास है
1: भाई, सजल भले ही कर लो लेकिन कम से कम उपवास में उपवास ही होना, ऐसा नहीं कि ये तल के वो खा लिया वो खा लिया,
0: चावल का गेहूं का नहीं खाएंगे।
1: हाँ बस तो उसमें सर निश्चित पर कुछ भी नहीं खाना है, तब जाकर के सर उपवास का सही प्रभाव उसकी सोच पर हो जाएगा और सर वही सोच आपके पर्यावरण भारी पर्यावरण को
0: याद सुंदर
1: बिल्कुल सर वो प्रभु को याद करेंगे
0: उसमें याद रहता है।
1: तो सर ये पुरानी जो परंपरा है पुरानी जो संस्कृति है को वापस ले आइए ना,
0: जैसे शिवरात्रि जो आता है उसमें उपवास रहते हैं।
1: जी हाँ
0: होली में कोई कोई उपवास रहते हैं
1: बिल्कुल,
0: गुरुवार जो होता है लक्ष्मी का
1: सर जब जब ऋतु का संक्रमण होता है उस समय उपवास अति आवश्यक है, तो शरीर उसको अपने आप ही एडजस्ट कर देता है, छोटा मोटा इंटॉक्सिकेशन जो होता है वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, तो ये तो सब जगह बहुत ही आवश्यक है सर।
0: जड़ चीज हम गाड़ी को भी ओवररन करते हैं
1: बिल्कुल सर,
0: हमेशा चलता तो रोकते हैं
1: उसकी भी ओवर
0: रेस्ट चाहिए,
1: उसको भी तो रेस्ट चाहिए,
0: कोई भी कंटिन्यू चलेगा तो उसकी हालत क्या होगी।
1: तो सर इसको
0: हम तो कंटिन्यू करते रहते उसको जब और नहीं वो काम नहीं हुआ तो दूसरे काम दे देते उस
1: पर नहीं खाना वो नहीं देना
0: सर, खाना खाते हैं और कहाँ पर मिल गया उससे ज्यादा।
1: तो सर ये कितना बड़ा सुप्रभाव लाएगा, बहुत बड़ी चीज है सर, सामान्य चीज आप और हम सब कहेंगे हमको तो पता ही था, अरे पता ही था पर पता काम तो करे तो होगा ना, पता तो है ही है, ज्ञान तो भरा पड़ा है, उसके लिए संकल्पित हो जाइए ना, एक सिस्टम में ले आइए ना उसको,
0: कब उसको चोट लगे तब उसको जागृत होता है सर, ऐसे हाँ कुछ तो नहीं कभी होगा नहीं हाँ, हम जैसे उसको भाई देखो ऐसे क्या ना ऐसे भोगना पड़ता है सर, जो
1: तब तब जाकर के ये बात समझ में आएगी कि अपने को ये करना बहुत
0: हम तो नेग्लेक्ट कर दे, आपने बताया ये तो होना चाहिए, एक बार उपवास करना चाहिए,
1: होना चाहिए सर, फिक्स करेंगे तभी होगा, एक महीने में एक दिन करना है या कैसे करना है
0: फिर 15 दिन में करिए दो बार,
1: हाँ, वो महीने में तो जैसे अलग वो एक अलग बात है लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए सर, शरीर बॉडी सभी को आराम मिलेगा, उसमें जो इंटॉक्सिकेशन से जो फैले हुए हैं शरीर के अंदर जो जमा हुआ है डिपॉजिट उसको वो बॉडी अपने आप ही कंज्यूम कर लेगा, तो आप निरोगी
0: इससे इंडायरेक्टली पर्यावरण का साथ हम सहयोग
1: बिल्कुल सर, अपन सर इंडायरेक्ट या डायरेक्ट भी सहयोग कर रहे हैं इसमें,
0: अनाथ तो दिन जितना हम 5-6
1: अब सर बात कर ले, भारत की जनसंख्या 160 करोड़
0: जी,
1: दुनिया की
0: 7-7 करोड़
1: 6-7 अरब ठीक है, 1-1 टाइम का उपवास अगर महीने में एक व्यक्ति करता है
0: तो कितना अनाज पानी
1: कितना फायदा सर, सोचने से ये चीज समझ में आती है कि कितना फायदा है, पर फायदे के लिए नहीं शरीर के फायदे के, सर आप रोग मुक्त हो रहे हैं इसके लिए, तो सर क्या आप पर्यावरण में सहयोग नहीं दे रहे,
0: ये भी सहयोग है
1: बहुत बड़ा सहयोग है सर, और प्रतिदिन बचेगा सर, सर सर
0: लेकिन
1: सर प्रतिदिन बचेगा ना,
0: सिर्फ पानी को बचा दिन से एक ड्रॉप वो बदल नहीं लेकिन तो खाना खा रहे हैं
1: इसको भी बचाइए,
0: उसमें कितना खर्च होता है,
1: कितना खर्च
0: एक गेहूं आएगा कितना
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: खेती जो कास्कर भाई हमारा दे रहे हैं
1: कितनी मेहनत करते हैं,
0: वो हमारे पास आता है रोटी बन के कितना मेहनत कितना लोग उसमें,
1: तो फिर
0: तो उसको हम बिना डालते जा रहे हैं
1: डालते ही जा रहे हैं आवश्यकता के अनुसार उसको लिया जाए तो वो
0: ज्यादा हो जाए
1: रूप से,
0: तो ये पर्यावरण
1: बहुत बहुत बड़ा फायदा,
0: और बचत भी
1: खूब जबरदस्त,
0: बचत मींस प्रोडक्शन सर,
1: सर मैं ये बता
0: रहा हूं प्रोडक्शन भले नहीं कर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम भले नहीं कर पा रहे लेकिन हम अनावश्यक लाइट को बंद किए,
1: ये भी बहुत बड़ा सर पर्यावरण को बहुत बड़ा संरक्षण है, लाइट का बटन बंद करना ये बहुत बड़ा संरक्षण है, अब लाइट को बचा रहे हैं, मतलब जिस सर जहाँ से लाइट आ रही है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है
0: तो उसको एक यूनिट में कितना पैसा खर्च होता
1: है, कितना पैसा
0: अब एक यूनिट बचत करते हैं उतना पैसा आप इनडायरेक्ट दे रहे हैं,
1: बिल्कुल आप इनडायरेक्ट उनको दे रहे हैं, तो ये तो सर कितनी बड़ी चीज, कितना पर्यावरण पर आप काम कर रहे हैं, तो छोटा छोटा करके अगर आप अगर ये अभ्यास करेंगे आपकी कार्य करेंगे पर्यावरण की तरफ पॉजिटिव सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा सहयोग कर जाएंगे,
0: सही बात, लेकिन ये ठान लेंगे दृढ़ता से करेंगे तब होगा,
1: सोचना तो पड़ेगा,
0: बोलने तो सभी बोलते हैं,
1: देखो सर बोल तो मैं भी रहा हूँ लेकिन करने के लिए बोल रहा हूँ कि करें, हम स्कूलों तक गए थे कि लोग करें उसको समझें तब जा करके होगा, पास होकर के 100 में से 100 नंबर लाना तो सामान्य चीज है,
0: कैसे भी करके
1: आ जाएंगे फर्स्ट आ जाएंगे लेकिन सर उसको व्यवहार में लाना है
0: उसमें ही चैलेंज
1: सर, उसमें बहुत बड़ी बात है सर,
0: लालच मेहनत सब चीज उसमें आ जाता है।
1: एक बात मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं सरकारी सेवा में था तब मैं भी नहीं कर पा रहा था
0: क्योंकि आपका जो दायरा इतना तक रुकना है,
1: तो सर ये सरकार के सभी अधिकारियों की स्थिति बन रही है, करना तो चाहते हैं
0: कर नहीं पाते,
1: कर नहीं पाते क्योंकि काम इतना होता है,
0: क्या क्या करे, जो प्रायोरिटी उसको करते हैं।
1: तो सर जब अंत चेतना होगी तो वो भी करेगा,
0: क्योंकि इस सिस्टम में आपका जमा हो रहा है,
1: करेगा वो, तो इसलिए ज्ञान के साथ में करना होगा तो निश्चित कर लेगा। उसमें अगर दृढ़ निश्चय की बात आ गई, उसमें संकल्प आ गया, तो वो उस काम को किसी न किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके देने का प्रयास करेगा, तो वो हो जाएगा।
0: हुआ ही पड़ा है
1: सर, सिर्फ हुआ ही पड़ा है। तो सर इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है
0: जी,
1: वो सर 115 वर्ष तक सस्टेन कर जाती है वातावरण के अंदर। अब आप देखिए वो कितना बड़ा पॉल्यूशन का कारण बनेगी। और जो आपको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से वो 270 इयर्स तक ये उसमें सस्टेन कर जाते हैं सर। ओवरऑल इससे सर ग्लोबल वार्मिंग होकर के ग्लेशियर पिघलते हैं,
0: समुद्र का भी विनाश नहीं, अंत नहीं,
1: समझिए ना, हम यही समझाना चाह रहे थे। उसका पॉल्यूशन जो कितना जबरदस्त हो जाएगा,
0: गहरा सांस लेना पड़ता है,
1: इतना पॉल्यूशन है। अब आप समझ रहे हैं, तभी तो ये बात,
0: फिर भी प्रकृति हमें कितना जिंदा रखने के लिए कितना कोशिश कर रही है,
1: प्रकृति कितना प्रयास कर रही है, वो प्रभु कितना प्रकृति के माध्यम से अपने को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं।
0: नहीं तो हम कब से धारा से निकल जाते
1: सर। एक और निवेदन कि उनकी प्रेरणा से जो जो आध्यात्मिक संस्थान, जो जो एनजीओ इसके लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जो जो देश काम कर रहे हैं सर, वो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं साहब, तब जाकर के संभव है, नहीं तो पृथ्वी पर सारा सिस्टम आज ही गड़बड़ा जाए। तो इस भयावहता को देखते हुए हमको पर्यावरण के
0: थोड़ा सा अटेंशन
1: संरक्षण के लिए हमको ध्यान देना होगा, और थोड़े थोड़े स्टेप ही आपके बहुत बड़े हो जाएंगे, छोटा छोटा। आप जहाँ शुरू हो, जहाँ खड़े हो, वहीं से शुरू कर दीजिए। जैसे आपने जहाँ से हमको मिले वहीं से शुरू किया, ये चीज होगी। जहाँ है वहीं खेत में बैठो, जहाँ हो वहीं से चल पड़ो, जहाँ देखो वहीं पर उस चीज को कंट्रोल कर लो, उसके लिए सहयोग कर लो। तो मेरे ख्याल से प्रकृति आपको बहुत कुछ लुटा देगी, आप पर आशीर्वाद की बारिश कर देगी,
0: वहाँ पसारे आपको इंतजार कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: देने के लिए तय, क्योंकि आप उनका मालिक है। आज वो मालिक हो गया जिसका चलता आज भोगना पड़ता, क्योंकि आप मालिक जैसे नहीं रहे,
1: आप मालिक जैसे रहे, नहीं रहे, इसलिए फिर
0: वो मालिक
1: बने गए।
0: और दिखाई दे रहा,
1: बिल्कुल,
0: कोरोना का ले लो, अभी अनावश्यक जहाँ बारिश सीजन नहीं, वो बारिश हो रहा है,
1: बारिश हो रहा है सर।
0: इसे
1: इस बार सर जो बादल फटने की कितनी घटनाएं हुई आपके भारत के अंदर,
0: तो
1: हिमाचल में कितनी, कैसी हुई पंजाब में, कैसी हुई।
0: तो सर ये हम दहन किए, लूटे हैं,
1: सर उसका रिटर्न तो मिलने, आपने जो किया है उसको,
0: कर्म का सिद्धांत।
1: तो सर हम सभी इसके लिए जिम्मेदार है, वो करने वाले ही नहीं, आप भी उनको समझा नहीं पा रहे, तो यहाँ पर हम भी जिम्मेदार है। भाई जो जानता है वो तो समझाए,
0: मैं नहीं जानता, तुम तो जानता, तुम क्यों बताया नहीं मुझे।
1: ये बात है, इसलिए सर ये बताना आपकी हमारी जिम्मेदारी, और ये कौन करेगा, हम करेंगे। हाँ, तब जा करके ये सब कुछ संभव,
0: दौड़ दौड़ कर आ जाते आप
1: सर, सर आपने ये मौका दिया है, तो सर इस बात को जन जन तक पहुँचाने का एक छोटा कार्य तो करें।
0: सर जो अति आवश्यकता है,
1: जी हाँ जी हाँ,
0: मेरा जब आता है ना, मेरा परिवार, मेरा एनवायरमेंट, मेरा समाज है,
1: मेरा है,
0: मेरा जो आता है ना सर, उसमें धूप छाया दूध नहीं दिखाई देता, मैं उसको बचाना है, मेरे को बचाना है,
1: बचना है,
0: मेरा परिवार है, मेरा पर्यावरण है,
1: जी हाँ, मेरी दुनिया है,
0: मेरी दुनिया है, और मैं उसमें हूँ,
1: मेरा
0: मेरा
1: मेरा ईश्वर है।
0: और एक प्यार सर,
1: जी प्यार के साथ,
0: प्यार से कर रहे आप
1: जी,
0: आपको जबरदस्त नहीं
1: सर,
0: जबरदस्त किसको नहीं कर सकते
1: सर, जबरदस्त
0: से प्यार है, रेडियो मधुबन के साथ आपको प्यार है,
1: प्यार है,
0: और पर्यावरण के साथ प्यार है,
1: बस
0: मेरा पर्यावरण, पर्यावरण के साथ मेरा प्यार है,
1: मेरा प्यार है, बस मैं पर्यावरण की बात ही कर लो, ये मेरी पूजा है, ये मेरा भगवान है, इसकी बात ही कर लो, मैं इसमें दो बात नहीं डाल दो कैसे भी करके, अध्ययन करके, जी हाँ,
0: तो मेरा और प्यारा
1: जी,
0: और मीठा,
1: बिल्कुल मीठा,
0: मिठास, मीठा परिवार, मीठा समाज,
1: बिल्कुल मिठास,
0: मिठास मतलब मधुर,
1: मधुर,
0: तो हमें भी खुशी मिलेगा और हमारा पर्यावरण हमें खुशी
1: देगा,
0: देगा, मेरा पर्यावरण मीठे पर्यावरण,
1: जी हाँ, मीठा पर्यावरण,
0: और प्यारा लगता है, फिलहाल हम लग पड़े हैं,
1: जी हाँ, कभी खुशियों की बरसात
0: बरसता है, हमें
1: बरसात खुशियों की बरसात,
0: क्योंकि पर्यावरण भी हमारा दोस्त है, मित्र है, परिवार है,
1: बिल्कुल सर,
0: तो इसलिए हमें खुशी मिलता है। और जैसे भोपाल राम जी जैसे वर्णविद एक्सपर्ट पहुँच गए, तो हमें तो और चार चंद लग गया, तो जाते क्या कहना चाहेंगे सर, जो आज का मूल हम लोग डिस्कशन किए उसमें क्या सार में क्या लेना चाहिए, हम क्या लेंगे और आप क्या लेंगे।
1: सर इसका सार तो यही है, अब आप सब जानते हैं कि हम क्या कहेंगे वह भी आप जानते हैं, लेकिन हम हमारे मुंह से कहते हैं कि ये हम जितना भी प्रदूषण का कारण जहां भी बनते हैं, गैसों को लेकर के या अन्य प्रकारों को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, जहां हम प्रदूषण का कारण बनते हैं वो कारण कम कर दे और वहां पर जागरूकता फैलाए और आत्मचिंतन करें।
0: क्या बात,
1: राजयोग के माध्यम से करें
0: तो चिंतन में विवेकवान जिसको
1: विवेकवान होकर के हर
0: विवेकवान
1: होकर के कार्य करें,
0: मैं क्या कर रहा हूँ
1: बस,
0: और उससे किसको दुख तो नहीं पहुँचे
1: बस बस बस बस। और आपने स्वयं अगर कर दिया वो
0: जंतु,
1: आपने स्वयं कर दिया और एक पवित्र भाई से करवा दिया काम, या एक पवित्र भाई ने मुझसे करवा दिया काम, तो वो काम कारवा बन जाएगा, चल पड़ेगा चल पड़ेगा चल पड़ेगा, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली।
0: एक से तो शुरू होता है ना सर,
1: एक से ही शुरू होगा, एक से ही शुरू
0: होगा,
1: एक से ही शुरू।
0: अरे एक तो हम और आप एक ही,
1: बस बस बस चलता रहेगा चलता रहेगा।
0: अच्छा लगा मुझे,
1: छोटा प्रयास,
0: छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा कोशिश हमारा, जैसे हम हर बार आपको एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा चिड़िया का जो कोशिश था ट्राई किया,
1: बिल्कुल तो उसमें
0: नाम
1: उसका सहयोग होगा, सहयोग।
0: सेतुबंध में जैसे हम ब्लड अपना
1: जी
0: राम को सेतुबंध में मदद किया था, छोटा सा
1: जी है, जी है। तो सर वो एक गिलहरी वाली कहानी भी है,
0: वही तो
1: वो गिलहरी रेत में यूं उलट पलट के वहां सागर पे जाए, तो वो सर अब आप और हम समझते हैं कि पर हमारा भी इतना छोटा, उससे भी छोटा ही प्रयास है, तो वो वैसा ही करते रहे तो
0: लाएगा रंग, नहीं लाएगा
1: फूल खिलेंगे
0: तो वो तो आप प्रभु तो आपका प्रकृति आपको तो शाबाश देगा,
1: आशीर्वाद दे ही रहा है
0: और दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें यहीं पर दीजिए इजाजत। गोपाल राम पुरोहित जी जो कि हमारा पर्यावरणविद पूरा एक्सपर्ट है और इस कार्यक्रम को उनका दिल से देने के लिए कोशिश करते, और हमें खुशी लगता है इससे मिलते तो हमें भी खुशी मिलते, तो हमारा श्रोता मित्र भी इसको बहुत सुंदर से
1: धन्यवाद।
0: हम दोनों को दीजिए इजाजत, फिर अगला एपिसोड में मिलेंगे और किसी बात को लेकर सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, और खासकर पर्यावरण स्पेशल एनवायरमेंट स्पेशल प्रोग्राम।
1: जी हाँ, थैंक यू।

0: चलो चलो वो आ गए हैं,
1: हमारे घर में उन्नति लाए हैं।
2: अरे गीत गाओ, उत्सव मनाओ, शुभकामनाएं दो।
3: हाँ, खुशियों को वो अपने साथ लाए हैं।
4: कौन आया है हमारे घर?
5: सिर्फ आपके नहीं बल्कि हमारे और सभी के घर शुभ कदमों से आए हैं गणपति बाप्पा। आइए उनका खूब सत्कार करें, मनाएं गणेशोत्सव उमंग और हर्षोल्लास से। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को गणपति बप्पा के आने की ढेरों शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत का मूल्य मानव जीवन और प्रकृति के साथ कितना है, ये हम जानेंगे। जैसे एक छोटा शिशु जब सारा दिन खेल पाल करके थक जाता है, तब माँ से चाहता है कि वो उसे लोरी सुनाकर सुला दे। एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी हम संगीत सुनाकर बहला सकते हैं। मन और तन दोनों ही हर पल संगीत से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी सबको नमस्कार करते हैं।
0: श्यामली जी, आज आप कौन सा राग लेकर आए?
1: हाँ, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा राग, नाम है जौनपुरी।
0: जौनपुरी?
1: यस।
0: अच्छा,
1: तो जौनपुरी ऐसा राग है, इसको ठाट जो है आशावड़ी, शायद पहले भी लिसनर जो है वो सुना है कि आशावड़ी एक राग भी है, ठाट भी है, राग भी है। ठाट में गा और नी कोमल है, लेकिन जब आशावड़ी राग बन जाते हैं तब है जाने का टाइम का नी वर्जित है, आवरोहन में कोमल नी कोमल गा होता है। लेकिन ये जौनपुरी राग में जैसे सारे मा पा धा नी सा, आशावड़ी राग में सारे मा पा धा सा डायरेक्ट धा से सा लगता है।
0: अच्छा,
1: और आने का टाइम दोनों में एक ही है, हम इसमें अंतर कर सकते हैं, लेकिन ठाट आशावड़ी है, ठीक है।
0: okay.
1: तो यही ऐसे राग हमने लाए हैं। समय जो है 9 से 12 अर्थात दिन में दूसरा प्रहर।
0: अच्छा,
1: हम ये गा सकते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो ठाट भी इसको मैंने पहले कह दिया कि ठाट है आशावड़ी। और जाति जो है सारव संपूर्ण, मतलब जाने के टाइम गा यूज नहीं होता है, गा वर्जित है
0: जी।
1: और आने का अवरोहन में सात्सरी प्रयोग होता है।
0: okay.
1: इसमें गा और नी कोमल है, ठीक है। इसका जो प्रकृति जो है बहुत शांत प्रकृति का है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा गा के सुनाते हैं
0: जी,
1: ठीक है। थोड़ा मैं क्या करती हूँ, आशावड़ी राग भी थोड़ा करके दिखाऊंगी, उसके बाद जौनपुरी, तब
0: डिफरेंस पता
1: चलता है। पहले हम कर रहे हैं आशावड़ी राग
0: जी।

0: अरहुन अवरहुन पकर हम बता दिया। एक बात है, वादी सर जो है धा है, संवादी है गा।
1: अच्छा
0: ठीक है। अभी आज हम पहले सिखाएंगे इसका विलंबित राग बड़ा ख्याल। तो बड़ा ख्याल के लिए, विलंबित ख्याल के लिए लिसनर को किताब पेन से बैठना है, लिखना है
1: जी।
0: वही 12 मात्रा की है, एक ताल की है। 12 मात्रा मतलब 48 मात्रा है। तो 48 मात्रा की जो गीत है बंदी के लिए जो स्वरलिपि हम अभी देते हैं, ठीक है। चार मात्रा मुकरा है, एक साथ लिखना है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। नी और गा कोमल है, ध्यान रखना है, गा और नी कोमल है। ठीक है, शुरू करते हैं। पाधा मापा, पाधा एक साथ, मापा एक साथ, रेमा पाधा एक साथ, मापा एक साथ। मतलब एक एक मात्रा, चार मात्रा है ना। पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, एक साथ है। सा ऊपर की सा है, सा में सोम है। पहले शुरू करती हूँ। पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, सा आ नी धा, पाधा नी धा पा, पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, गा आ रे सा, रे ए सा आ धा नी। ये जो धा नी है ये मंद्र सर की है, नीचे का है। धा नी सा आ रे मा पाधा पा आ मा पा धा नी सा सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, रे ए सा आ। ये जो रे है सा है ऊपर की सा है, नी धा आ पा आ। फिर से पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, सा आ। हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे, अगर वो उसे जैसे हम जहाँ जल्दी बोल रहे हैं, मतलब कि एक मात्रा में दो स्वर है
1: साथ साथ में।
0: साथ साथ पाधा एक साथ है, मापा एक साथ है, रेमा पाधा एक साथ है, मापा मतलब एक एक मात्रा है, लेकिन उसमें दो स्वर चार स्वर है। कभी भी तीन स्वर भी हो सकते हैं।
1: आपकी बोलने की गति के ऊपर भी
0: ऊपर भी ध्यान देखना है
1: जी, जी।
0: कि आगे बढ़ते हैं ना।
1: हाँ जी।
0: फिर से हम करते हैं। पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, सा आ नी धा, पाधा नी धा पा, पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, गा आ रे ए सा आ, धा नी सा आ, रेमा पाधा पा आ, मा पा, धा नी सा सा, रे ए सा आ, नी धा आ पा आ। ये है स्थाई का स्वरलिपि। अंतरा भी दे देते हैं। चार मात्रा मुकरा है, मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, सा में सोम है। फिर से बोलती हूँ। मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा, रे रे सा सा, सा रे मा गा रे सा। ये जो है सब ऊपर की है, नी सा रे रे सा नी धा, सब ऊपर की है। रे रे सा जो है ऊपर की है। पाधा पाधा नी धा पा, पाधा मापा, रेमा पाधा मापा, मागा आ रे सा, धा धा पा, धा नी सा सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, रे ऊपर की है, रे ए नी धा, पाधा नी धा पा। फिर से मैं बोलती हूँ। मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा, रे रे सा सा, सा रे मा गा रे सा, नी सा रे रे सा नी धा, पाधा पाधा नी धा आ, पाधा मा पा रे मा पाधा मा गा आ रे सा, धा धा पा पा धा नी सा सा, रे ए नी धा, पाधा नी धा पा। ये स्थाई अंतरा के जो स्वरलिपि है हमने दे दिया है।
1: तो ये स्वरलिपि जो आपने लिखवाई है,
0: हाँ जी,
1: इसके ऊपर अभ्यास करना।
0: हाँ, अभ्यास करना। बात हम धुन में बैठा देंगे।
1: अच्छा, तो धुन में बिठाने के लिए भी हमको ये बाय हार्ट करना पड़ता है।
0: हाँ, हाँ जी।
1: श्यामली जी, जौनपुरी राग की आपने जो स्वरलिपि दी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आगे जौनपुरी राग के बारे में आपसे जरूर जानेंगे। तब तक के लिए ब्रेक में हम अपने श्रोता मित्रों को सुनाना चाहते हैं इसी राग से संबंधित एक प्यारा सा मीठा सा गीत। श्रोता मित्रों, आप इस गीत का आनंद लीजिए और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से जौनपुरी राग की शुरुआत की और शुरुआत में उन्होंने हमको आशावरी राग और जौनपुरी राग के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी बताया
1: जी।
0: साथ साथ में उसकी स्वरलिपि भी हमने देखी। आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, हमने जो स्वरलिपि दे दिया इसको धुन में बैठाना है ना।
0: हाँ जी,
1: अभी धुन में बैठाती हूँ। ठीक है,
0: ओके।

0: हमने जो स्थाई अंतराज्यों स्वरलिपि दिया है
1: उसको धुन में बिठा दिया।
0: एक्यूरेट माने ग्रामेटिकली मैथमेटिकली चलना है।
1: अच्छा,
0: एक एक मात्रा, इसलिए मैं ऐसे सिखा रही हूँ। ऐसे जब हम करते हैं, जो बड़े बड़े महारथी वो ताल को एकदम अपना लेते हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं उसमें ध्यान नहीं है कहाँ वो दो मात्रा है कहाँ तीन मात्रा है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अभी जो लिसनर सीख रहे हैं,
1: जी
0: नए नए सीख रहे हैं, उसके पास थोड़ा कठिनाई ये
1: सीखने के समय।
0: हमने क्या किया, एकदम ग्रामेटिकली मैथमेटिकली इसको सुर में बैठा दिया, एकदम चार चार मात्रा करके 48 मात्रा में बैठा
1: अगर
0: दिया।
1: अगर ध्यान से उन्होंने किया होगा अभ्यास होगा तो वो भी कर पाएंगे।
0: नी और गा जैसे से हमने किया है, जैसे बोल दिया करेंगे, तब तबला के साथ एकदम एक्यूरेट चल सकता है।
1: अच्छा।
0: और इसके लिए मस्ट है आकार सहयोग।
1: हाँ।
0: जितना आकार करेंगे उसमें बैठ जाएंगे। पहले मैं आप बताया है कि जितना करेंगे आकार अंदर में बैठ जाएंगे, जब हम बंदिश देंगे वो आसानी से वो कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये तो आपने स्वर लिपि को धुन में बिठा दिया।
0: हाँ,
1: अब आगे आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
0: हाँ, मैं

0: सिखा नहीं रही हूँ, मैं सुनाना चाहती हूँ।
1: अच्छा
0: कैसे ये जो राग है, छोटा सा बंदिश करती हूँ, बहुत अच्छा बंदिश है।
1: अच्छा
0: तो करके सुनाती हूँ
1: जी।

0: जौनपुरी राग की ये छोटी सी बंदिश आपने सुनाई। श्यामली जी, समय देता है हमको इजाजत, फिर भी सुने बिना तो हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते। जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: हाँ, बहुत अच्छा एक फिल्म है, दो बदन।
0: दो बदन, अच्छा।
1: इसमें लता जी का बहुत अच्छा एक गीत है, लो आ गई उनकी याद।
0: वो नहीं आए,
1: वो नहीं आए।
0: वाह, सुपर।
1: मैं सुनाना चाहती हूँ जौनपुरी राग, तब भी इसमें थोड़ा मिस्र है। मैं सोचती मिस्र है तब भी चलता है, हिंदी
0: पूरा जौनपुरी नहीं है।
1: जौनपुरी है
0: मैक्सिमम।
1: हाँ, मैक्सिमम है, थोड़ा मिस्र है। ठीक है
0: जी।

0: वाह बहुत सुंदर,
1: थैंक यू। कोशिश कर सकते हैं
0: जी। और ये गीत के जो बोल हैं
1: कितना सुंदर,
0: जिसने है। भी लिखे हैं
1: जी,
0: सच में इतनी भावना भरे बोल
1: हाँ जी,
0: जिसकी याद में उसने ये गाए हैं या लिखत है, बहुत सुंदर
1: बहुत सुंदर।
0: श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, रागों की श्रृंखला में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जब आसमान में एकदम अंधेरा होता है, काले बादलों ने चांद को भी ढक दिया होता है, और तब एक टिमटिमाता तारा नजर आता है जो ये एहसास कराता है कि ढूंढने पर रोशनी की एक झलक तो मिल ही जाती है। राठौर परिवार के जमाईसा यानी सूरजमल जी को अपने घर से बेदखल कर दिया गया और अपनी पत्नी यानी राठौर परिवार की सुपुत्री शांति के साथ घर जमाई बनकर रहना मतलब समाज की जिल्लत सहना। क्या राठौर परिवार अपने जमाई को अपनाएगा? क्या इस घर में एक और मेंबर आएगा, या फिर शांति और सूरजमल को अपना ठिकाना कहीं और ढूंढना होगा? आइए सुनते हैं।
1: मेरा फैसला यह है कि
2: क्या है पापा,
3: थोड़े दिन तो जमाई सा को रहने देते हैं।
4: मुझे पता है पापा कभी नहीं मानेंगे।
5: मुझे तो लगता है कहीं साथ साथ शांति को भी ना घर से निकाल दें।
1: इस दुनिया में भांति भांति के रिश्ते हैं। कुछ लोग उन्हें दिल से निभाते हैं और कुछ समाज के डर से। मान मर्यादा का ख्याल हमको भी है। समाज के नियम के हिसाब से हम भी चलते आए हैं, लेकिन वो नियम जो सच्चे हैं, जो घर की सुख शांति के लिए जरूरी है।
5: हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हैं, और हम राठौर परिवार का नाम बदनाम थोड़ी होने दे सकते हैं। जा शांति, तू भी अपना बैग पैक कर ले, ढूंढो कहीं और अपना ठिकाना दोनों।
6: भाभी, आप ये क्या कह रही है? क्या ये घर मेरा नहीं है? पापा, आप भी?
7: शांति, सब ठीक कह रहे हैं। चलो, हमें यहाँ किसी पर बोझ नहीं बनना है।
1: तुम लोग का आज से टीवी सीरियल देखना बंद।
8: क्या?
9: क्या?
8: क्या?
9: क्या?
1: अरे मेरी पूरी बात सुने बिना एकदम टीवी सीरियल के जैसे अपना अपना मतलब निकलते जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, और बेटा सूरजमल, इस दिल में और इस घर में दोनों में तुम्हारे लिए बहुत जगह है।
2: हाँ जमाईसा तो यहीं रुकेंगे, कितनी अच्छी बात है ना?
3: हाँ बिल्कुल, ये बात सही है।
6: मैं तो बहुत खुश हूँ।
3: बढ़िया,
2: बहुत अच्छी बात है,
10: सब लोग मिलकर रहेंगे।
11: सुनिए, मैं जानती हूँ आप शांति और दामाद जी का भला चाहते हैं, और मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन सोचिए जरा, घर जमाई बनकर उनकी क्या इज्जत रह जाएगी?
3: माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त जमाई सा को हमारी जरूरत है।
1: मेरा फैसला आखिरी है, जमाई सा यही रहेंगे, अब से यही उनका घर।
12: वीरेंद्र, तू तो समझ बेटा, मैं तो बस इनकी भलाई सोच रही हूँ।
13: माँ, आप क्या चाहती हो, दीदी और जीजा जी सड़क पर दर दर भटके?
11: किशन, सुन ले मेरी बात, वो तेरी तरह किताबी बातें और शायरी नहीं करते हैं जो सड़क पर भटकना पड़े।
3: जमाई सा परिवार के हैं, और आपने ही हमें बचपन से सिखाया है कि परिवार का मतलब ही है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। हम आपकी ही सीख पर चल रहे हैं माँ।
5: अरे ये समाज हम पर थू थू करेगा, और घर जमाई की इज्जत कौन करता है?
13: हम तो करते हैं भाभी जी, भाभी ताने कसती है फिर भी उनकी करते हैं, तो जीजा जी की क्यों नहीं?
14: अरे वैसे भी भाभी, जब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होता तो भला बहू और दामाद में क्यों हो?
5: मेरा इस घर में कोई सुनता ही नहीं है, पहले गलती करेंगे फिर पछताएंगे। देखती हूँ मैं भी कब तक रहती है खुशी न दामाद की।
3: अरे जमाई सा, अब तो आंसू पोंछ दीजिए, आपका आपके घर में स्वागत है।
2: वैसे जमाई सा, मैं आपको वार्न कर देती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है।
11: अरे राजकुमारी, तू डरा क्यों रही है इस बेचारे को?
3: अरे माँ, खतरा है ना?
12: क्या?
3: राजकुमारी के हाथ का खाना।
7: नहीं नहीं, मुझे तो राजकुमारी भाभी के हाथ का खाना बहुत पसंद है।
14: क्या करेले के लड्डू
6: या मिर्ची का हलवा?
2: बस इसी से वार्न कर रही थी मैं आपको जमाई सा, यहाँ ना आपकी टांग खिंचाई कर कर के लंबा ही कर देंगे। लेकिन सच बताऊँ, ये परिवार बहुत प्यारा है, हर रंग है यहाँ पे।
5: देखो किस्मत हमारी, जब इनके जीवन में अंधेरा हुआ, ठोकर लगी तो हम याद आ गए। भाई हम सब कोई सूरज थोड़ी हैं जो तुम्हारे जीवन में उजाला कर देंगे। इतनी कमाई नहीं है हमारी कि अब बेटियों को और उनके पतियों को भी बैठ कर खिलाएं।
13: इस बात पर मुझे गर्मा गर्म शेर याद आ गया।
9: सुनाओ सुनाओ किशन, इनके तानों से अच्छा है तुम्हारा शेर ही सुन ले।
2: शेर नहीं भाई साहब, शेर शेर।
9: हाँ हाँ वही।
11: हाँ बेटा, हमारी समझ में नहीं आते ये तेरे शेर कविताएं, लेकिन कम से कम किसी के दिल को दुखाती तो नहीं है तेरी ये कविताएं।
13: तो अर्ज किया है, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, सूरज सी नहीं है रोशनी मगर चांद उदास है क्या, अहमियत पर उसे अपनी कुछ कम नाज है क्या, अंधेरों में साथ निभाता है दिन में भला क्या खूबी है, मुख्तलिफ किस्मत पर अपनी उसे एतराज है क्या।
3: किशन बात तो तूने सो आने सच्ची कही है, रिश्ते कभी चांद बन जाते हैं तो कभी दिए की लौ ही सही, लेकिन अंधेरों में कभी रोशनी देना नहीं भूलते।
5: तो बनो चांद सितारे तुम लोग, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना।
9: चंद्रावती तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती हो।
5: मैं तो बस सच्ची बात कहती हूँ, बुरी तुम लोग को अपने आप लग जाती है।
9: सच तो बहुत है दुनिया में चंद्रावती, एक सच मैं भी कह देता हूँ।
3: भाई साहब जाने दीजिए ना।
7: भाभी जी मैं किसी पर बोझ बनने नहीं आया हूँ, मैं शांति को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, बस कुछ दिन ही।
9: जमाई सा आपका घर है, आप यहीं रहेंगे, और तुम्हें सच सुनना है ना चंद्रावती, तो सुनो, एक तुम हो जो इस घर का माहौल खराब करके रखती हो, ना किसी को चैन से रहने देती हो ना सोने देती हो तुम।
3: भाई साहब बस कीजिए, जमाई सा के सामने ये सब शोभता नहीं।
5: मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है और ये कहते हैं।
2: भाभी जी, भाभी जी चुप हो जाइए, हम जानते हैं आपके पास जुबान कड़वी है दिल नहीं।
14: बातों बातों में आधा सच कह दिया राजकुमारी भाभी ने, जुबान की तो बड़ी कड़वी है बड़ी भाभी।
13: हाँ बहना, रोने में भी ऐसा लग रहा है गुस्से में तंतना रही हो।
5: क्या क्या मैं कड़वी हूँ जुबान की?
11: नहीं नहीं बेटा, तेरे मुंह से तो फूल झड़ते हैं।
1: अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या करो, ऐसे ही बिठा कर रखा है जमाई साहब, कुछ खिलाओ।
7: आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है पापा।
1: एहसान कैसा बेटा, ये तो रिश्ते की परिभाषा है, समय का खेल बहुत निराला है, कभी किसी का अच्छा वक्त आता है कभी बुरा, ये तो जीवन का चक्र है, रिश्ते इस पूरे चक्र में साथ निभाते, अगर गम में साथ नहीं तो खुशी में रहने का अधिकार भी नहीं।
3: पापा एकदम सही कह रहे हैं जमाई साहब, हम पांचों भाई बहन में बड़े भाई साहब किशन, शांति और रागनी यही सीख के बड़े हुए हैं कि परिवार मतलब प्यार, कितनी भी नोक झोंक हो, गुस्सा आए या एक दूसरे से दिमाग की सोच में अंतर हो सकता है,

0: लेकिन दिल में नहीं।
1: चलिए जमाई साहब, अब आप अंदर चलिए, मुंह हाथ धो लीजिए, फिर हम बाहर खाने के लिए मिलते हैं।
2: पापा कितना सही कह रहे हैं भाभी, ऐसा कोई अपने घर वालों के साथ करता है क्या जैसा जमाईसा के भाई ने किया? ऐसे तो मैं अपने जले हुए आटे के साथ ना करूं। उस दिन आटे का हलवा बनाते समय जो आटा जल गया था उसको भी मैंने सब्जी में घोलकर इस्तेमाल कर लिया था। वो जो जली हुई सी महक नहीं आ रही थी सब्जी में, आप लोग कह रहे थे सब्जी जली भी नहीं महक भी आ रही है, ऐसा कैसे? वो उस आटे की वजह से ही तो थी। जमाईसा रुकिए रुकिए, मैंने कल ही काली गाजर और करेले का केक बनाया है, आपके लिए अभी लेकर आई।
3: अब राजकुमारी जी के हाथ का केक खा के जमाईसा का हाजमा खराब होगा या सिर्फ मुंह का टेस्ट, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ लेकिन ये जानता हूँ कि रिश्तों के धागों में अगर एक बार गांठ पड़ जाए तो खुलने पर भी धागे को कमजोर कर देती है। क्या सचमुच रिश्ते इतनी आसानी से छूट जाते हैं? क्या वो भाई या बहन जिसके साथ बड़े हुए, हंसे खेले, जिसने बचपन में हमें पापा की डांट से बचाया, जिसको अगर किसी और ने चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो हम आगे खड़े हो गए, उसे हम आज खुद चोट पहुंचाने में जरा भी नहीं सोचते। कैसे आ जाती हैं इतनी दूरियां? वो प्यार कहां खो जाता है? खैर मुझे तो इस बात की खुशी है कि राठौड़ परिवार ने सूरजमल यानी जमाई सा को ये एहसास दिलाया कि ये उनका अपना घर है। लेकिन राठौड़ परिवार है जी, यहाँ सूरज भी अपनी निकलने की दिशा भूल जाता है तो नए जमाई सा मतलब पुराने जमाई, नए घर जमाई क्या चीज है ना? बस सुनते जाइए कि इस जंगल में अब क्या क्या होगा जब एंट्री होगी एक नए जीव की। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
4: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौर, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायू,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: Meditation is the soul's flight, with the feathers of a divine intellect. Let's fly now towards our supreme abode, beyond the sun, moon, and galaxies untold. Then we'll land far, far away, in the subtle regions

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेक ईगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸಮ ಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಷು ಸರ್ವದಾ. ರೇಡಿಯೋ ಮಧುಬನ್ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೆ ಸಭಿ ಶ್ರೋತಾವೋ ಕೋ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಇಸ್ ಪರ್ವ ಕಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಭ ಕಾಮನಾಯೇ. ರೇಡಿಯೋ ಮಧುಬನ್ ಸುನ್ತೆ ರಹಿಯೇ, ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ರಹಿಯೇ.
1: ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಜ್ ಹೇ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ಔರ್ ಆಜ್ ಹೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಸಭಿ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಕೋ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಕಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಭ ಕಾಮನಾಯೇ, ಬಧಾಯಿ ಹೋ, ಬಧಾಯಿ ಹೋ. ಆಜ್ ಸಾರೇ ಭಾರತ ಮೇ ಬಡಾ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಹರ್ ಭಾರತವಾಸಿ ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಹೈ, ಕ್ಯೋಕಿ ಸೋಚತೆ ಹೈ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಆಯೆ ಹಮಾರೆ ಸಾರೇ ವಿಘ್ನೋ ಕೋ ಹರ್ ಕೆ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಜೀವನ್ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಹೋ ಜಾಯೆಗಾ. ಯೇ ತೋ ಜರೂರ್ ಸಮಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ವಿಘ್ನ ಆನೆ ಕಾ ಕಾರಣ ಕಹೀ ನ ಕಹೀ ಮನುಷ್ಯ ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಅಹಂಕಾರ ಹೈ. ಯಹಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಮುಸೀಬತೋ ಕೋ ಭೀ ಲೇ ಆತಾ ಹೈ, ವಿಘ್ನೋ ಕೋ ಭೀ ಜನ್ಮ ದೇತಾ ಹೈ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯಾಓ ಕೋ ಭೀ ಲೇ ಆತಾ ಹೈ. ಇಸ್ ಅಹಂಕಾರ ಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ಕರ್ ಜೀವನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ನಿರ್ಮಾಣತಾ ನಮ್ರತಾ ಕೋ ಧಾರಣ ಕರ್ನೆ ಸೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇ ಲೇ ಆನೆ ಸೆ ಯೇ ಸಮಸ್ಯಾಯೆ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋಗಿ. ಇಸಿಲಿಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಆಕರ್ ಕೆ ಹಮ್ ಸಬ್ ಕೋ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಯೇ ಅಹಂಕಾರ ಯುಕ್ತ ಬುದ್ಧಿ ಕೋ ಸಮಾಪ್ತ ಕರ್ ಏಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಯುಕ್ತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೋ ಜಾಗೃತ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಜ್ಞಾನ ಕಾ ತೀಸರಾ ನೇತ್ರ ಖೋಲ್ತೆ ಹೈ, ಜಿಸ್ಸೆ ಜೋ ಕರ್ಮ ಕರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇ ಆಯೆ ವೋ ವಿವೇಕಶೀಲ ರೂಪ ಸೆ ಹಮ್ ಕರ್ಮ ಕರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಜ್ ಕೋ ಜೀವನ್ ಮೇ ಧಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಹರ್ ಕರ್ಮ ಔರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕರೆ ತೋ ಜರೂರ್ ಹೈ ಹಮಾರೆ ವಿಘ್ನ ಸ್ವತಃ ಸಮಾಪ್ತ ಹೋಂಗೆ. ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಿಘ್ನ ಕೋ ಜನ್ಮ ದೇನೆ ವಾಲಾ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಹೈ. ತೋ ಇಸಿಲಿಯೆ ಆಜ್ ಯಹಿ ಶುಭಕಾಮನಾ ರಖತೆ ಹೈ ಕೆ ಸಚ್ಮುಚ್ ಇಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಜ್ ಸೆ ಆಪ್ಕಾ ಜೀವನ್ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರಹೆ ಔರ್ ಐಸೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಜೀವನ್ ಸೆ ಆಪ್ ಹಮೇಶಾ ಉನ್ನತಿ ಕರ್ತೆ ರಹೋ, ಜೀವನ್ ಮೇ ಖುಷಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ್ತೆ ರಹೋ, ಯಹಿ ಹಮಾರಿ ಮಂಗಲ್ ಕಾಮನಾ ಹೈ. ಸುನ್ತೆ ಹೈ ಆಜ್ ಕೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮತುರ್ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಆಜ್ ಕಿ ಮುರಳಿ ಮೇ ಬಾಬಾ ಕಹತೆ ಯೇ ಕೌನ್ ಆತಾ ಹೈ ಸವೇರೆ ಸವೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮುರಳಿ ಸುನಾನೆ. ಕಹಾ ಜಾತಾ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಬಾಪ್ ಆಯೆ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಚಾನೆ ಔರ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ಮುರಳಿ ಸೆ ಹೀ ಹಮಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಚ ಜಾತೆ ಹೈ. ಮಾಯಾ ಕೆ ಉಪರ್ ಹಮ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ತಕದೀರ್ ಕೋ ಜಗಾತೆ ಹೈ, ತಕದೀರ್ವಾನ್ ಬನ್ತೆ ಹೈ. ಇಸಿ ಜ್ಞಾನ ಮುರಳಿ ಕೋ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೈ ಸಚ್ಚಿ ಸಚ್ಚಿ ಗೀತಾ, ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಕಿ ಸಚ್ಚಿ ಕಥಾ ಯಾ ಅಮರ ಕಥಾ. ಐಸಿ ಜ್ಞಾನ ಮುರಳಿ ಕೋ ಜೀವನ್ ಮೇ ಧಾರಣ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಅನೇಕ ರೂಪ ಸೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನೆ ಜೀವನ್ ಕೋ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಖತೆ ಹೈ, ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ವಿಘ್ನೋ ಸೆ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಖತೆ ಹೈ ಔರ್ ಅಪ್ನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಂಜಿಲ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಅರ್ಥಾತ್ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿ ಸೆ ಸಿದ್ಧಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಜೀವನ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಹರ್ ಕದಮ್ ಮೇ ಜಹಾ ಹರ್ ಕರ್ಮ ಮೇ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಸಫಲತಾ ಹಮಾರೆ ಜೀವನ್ ಕಾ ಆಧಾರ ಹೈ. ತೋ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ಆಜ್ ಕೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮಧುರ್ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಪ್ರಾಣ ಬಚಾನೆ ವಾಲಾ प्राणेश्वर बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं वह पंख देने हैं। अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है, ब्रह्मा बाबा का शरीर जब प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उसमें नाम बदली कर दिया है। तो परमात्मा की ये ज्ञान मुरली सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवान वाच है ना। यह भी समझ गए, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्य नारायण की है, तो यही मुरली सत्य नारायण की कथा भी है। गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है, तो सच्ची सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है ये ज्ञान मुरली। बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसको भी पता नहीं है। यहां भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है, एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठी मीठी रूहों को समझाता हूं। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी जरूर बनना है, बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है ना, विनाश कराने वालों का भी पार्ट है। ये कोई नई बात तो है नहीं। बाबा कहते हैं ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। बाबा कहते टोटल विनाश तो होना नहीं है, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता है। टोटल प्रलय हो फिर जन्म कहां से होगा, प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए। तो क्या दिखाते शास्त्र में, दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता है, शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों को, भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। ये भी बाबा की भविष्यवाणी, आगे चलकर विद्वान और अनेक ऐसे भीष्म पितामह जैसे लोग भी आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं, तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं, सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? तुम बच्चे समझते हो हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरत के महल थे, कल की ही बात है। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, बाबा कहते वो लाखों वर्ष कह देते सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था, लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठ योगी, टांग टांग पर चढ़ा कर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं, तो माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, टांग पर टांग चढ़ा करके बाबा कहे बैठ भी न सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते मीठे बच्चे ये कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है, कितना सहज सरल बाबा तरीका बताता है। बाबा कहते स्कूल में स्टूडेंट्स कायदे सर तो बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते, जैसे चाहो वैसे बैठो, बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। बल्कि इतना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले।

अब वह तो सभी भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है ये ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं, तो कितनी सरल सहज युक्ति बाबा बताते हैं। ये भी बताया कि स्कूल में स्टूडेंट्स कायदे सिर बैठते हैं, लेकिन मानो अगर तबीयत ठीक नहीं है, बाबा का भाव ये है, ये नहीं कि क्लास में कोई कैसे भी बैठ जाए, लेकिन बाबा का भाव है कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तो भले व्यक्ति बाबा की मुरली मिस न करे कोई भी हालत में, अगर उससे बैठा नहीं जाता है तो बाबा कहते भले लेटे लेटे भी मुरली जरूर सुने। मानो बीमार हो, प्राण तन से निकलने वाले हो, तो भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। ये मुरली का महत्व आज बाबा हम सबको बताते हैं। तुम बच्चे अब अपने घर से आते हो तो हमको छोड़कर आते हो, परमधाम से जब संसार में आते हैं तो बाबा कहते तुम बच्चे हमको घर में छोड़कर आते हो। बाप कहते हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है, माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, यहां किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। कलियुगी दुनिया में किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहां आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहां ठहरे नहीं, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं। लॉ नहीं कहता है, बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम एक सेकंड में सब जान लेते हो, दुनिया में किसको भी पता नहीं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है। श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ। यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है, सूक्ष्म भावार्थ है। राम को भी काला दिखाते हैं, उनको भला किसने डसा, कुछ भी समझते नहीं है। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे, निश्चय नहीं होगा तो कभी नहीं समझेंगे, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे, पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। तकदीर में ही नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहां भी ऐसे आकर बैठते हैं, इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, वह फिर क्या आकर करेंगे। राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा, दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, कई आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है।
जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहां आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पापात्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में, राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब ये नर्क है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है। यहां तब क्या था? स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है, तो फिर यहां क्या था? जरूर नर्कवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नर्कवासी है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित है, पावन बनाने वाले आप हो। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं। राम को बुलाते हैं, अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो, महसूस भी करते जो आते हैं जैसे अलग दुनिया में आ गए हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, उनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मनिश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, त्रिकालदर्शी बन। व्यर्थ संकल्प व संस्कारों को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है। बाबा कहते सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों और विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे

योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में योग शब्द नहीं आता, और किसी को याद करने को योग नहीं कहा जाता है। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा की तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। अब ये परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से, योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझ भस्म करते हैं, और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है। योग से विकर्मों को भस्म करते पास्ट के, और ज्ञान से हमें पता पड़ता कि आगे के लिए कौन सा कर्म करना है और क्यों। जीवन की जड़ है संस्कार, आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु ये दोनों चीजें मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्म से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्त हो और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जिससे कर्म अकर्म होता है, तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपने जीवन की जड़ संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले, तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालता है, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, अब अपने दाता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आप पूर्वज पूज्य आत्माओं को अनेक आत्माएं शांति देवा शक्ति देवा कह याद कर रही है। ऐसे समय पर हे शांति देवा आत्माएं, मास्टर शांति के सागर, मास्टर शांति के सूर्य अपनी शांति की किरणें, शांति की लहरें, दाता के बच्चे देवा बन सर्व को देते रहो। ऐसी सेवा करने के विशेष अभ्यासी बनो, ऐसी सेवा करने के विशेष अभ्यासी बने। कौन सी? शांति की लहरें, शक्ति की लहरें सारे विश्व में देवा बनकर देते चलो। अच्छा, ओम शांति।